मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के श्रावण माह की 21वीं तिथि, तदनुसार 12 अगस्त 2026। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस समय 5:57 होने को हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ हो रही है।

0: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 6 बजने को है। कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। गृहमंत्री अमित शाह आज राज्यसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पेश करेंगे। विधेयक के अंतर्गत संविधान की पहली अनुसूची में केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का प्रावधान है। लोकसभा ने इसे कल ही पारित कर दिया है। राज्यसभा में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पर भी विचार और उसे पारित करने की संभावना है। वहीं लोकसभा में खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर विचार और उसे पारित करने की प्रक्रिया होगी। कल विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही एक बार फिर बाधित रही। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया है। संसद परिसर में उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है।
2: राहुल गांधी जी कई दिनों से गृह मंत्री अमित शाह का जवाब मांग रहे हैं सदन में। अब जब सरकार तैयार है, गृह मंत्री जी पूरे घटनाओं का बहुत डिटेल में जवाब देने के तैयार है, फिर राहुल गांधी जी भाग रहे हैं। मैंने इसलिए सदन में कहा कि भागना नहीं है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा ट्रायंफ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक माय लाइफ माय स्ट्रगल्स का विमोचन करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। ये आत्मकथा पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के जीवन की यात्रा का एक अत्यंत व्यक्तिगत विवरण प्रस्तुत करती है। ये पुस्तक उन मूल्यों, अनुभवों और परिस्थितियों की जानकारी देती है जिन्होंने उनकी यात्रा और सार्वजनिक सेवा को आकार दिया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाली अमावस्या के अवसर पर नई दिल्ली में व्यापक पौधारोपण अभियान की शुरुआत करेंगे। श्री चौहान की अपील पर वृक्ष मित्र अभियान से जुड़े देश भर के हजारों सदस्य भी अपने अपने गांवों और शहरों में पौधारोपण अभियान चलाएंगे। इस अवसर पर देश भर में 50,000 से अधिक पौधे लगाने का संकल्प लिया गया है। झारखंड में भाजपा के आह्वान पर बंद के चलते राज्य के कई हिस्सों में कल जनजीवन प्रभावित रहा। रांची में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने पुरानी विधानसभा से नई विधानसभा की ओर मार्च करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोककर हिरासत में ले लिया। इस बीच झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा विवाद को लेकर छात्रों का आंदोलन कल 18वें दिन भी जारी रहा। विधानसभा घेराव के दौरान हुए लाठीचार्ज और झड़प के बाद छात्र नेताओं ने आंदोलन और तेज करने की घोषणा की थी। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने शेयर बाजारों को वित्तीय नतीजों को जमा करने संबंधी अपने विनियमों के अंतर्गत सूचीबद्ध ऋण साधन वाले नगर पालिकाओं की समय सीमा में छूट दी है। कल जारी किए गए नियमों के अंतर्गत सूचीबद्ध नगर पालिकाओं को अब बिना ऑडिट वाले पहली छमाही के नतीजे 60 दिनों के भीतर जमा करने होंगे, जबकि पहले ये समय सीमा 45 दिन की थी। भारत ने दोहराया है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अविभाज्य तथा अभिन्न अंग है और इस निर्विवाद वास्तविकता को कोई नहीं बदल सकता। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि चीन के साथ मजबूत संबंधों के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता आवश्यक है। श्री जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों का हनन हुआ है।
3: पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में अभी कुछ महीनों में जो वहां पर मानवाधिकार का हनन हुआ, जिस प्रकार से लोग मारे गए, एक बार फिर से इस बात को उजागर करता है। और जहां तक लोगों के मानवाधिकार के पक्ष को गारंटी करने की बात आती है, उसमें पाकिस्तान को बहुत कुछ करना है। और हमको लगता है कि जो अभी हाल ही के हिंसा में इतने लोग मारे गए हैं, उस पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को चिंता करने की जरूरत है और साथ ही साथ में पाकिस्तान को जवाबदेही ठहराए जाने की जरूरत है।
1: नाइजीरिया के लागोस में आयोजित

0: कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप में भारत ने पदक जीतने का शानदार सिलसिला जारी रखा है। करुण सिंह और शेरजिन शांतिमोल ने कल रात सीनियर पुरुष स्पर्धाओं में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीते। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, पश्चिम बंगाल, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पंजाब, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिमी राजस्थान, गोवा और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। लीजिए अब सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना, और शुरुआत करते हैं इस शिव वंदना से।

ईश्वर के विविध नामों में हम उन्हें ढूंढते हैं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों और गिरजाघरों में ढूंढते हैं, जबकि वो तो हमारे हृदय में ही निवास करते हैं, हम सबके हृदय में निवास करते हैं। अतः हमें सबके प्रति कल्याण की भावना और सेवा भाव रखना चाहिए।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
1: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगा।

0: बताऊं 8700014242 पर।
1: दो अक्षर का नाम राम जन जन के हृदय में बसा हुआ है। ये एकमात्र ऐसा नाम है जिसे लेकर पापी से पापी मनुष्य भी भव सागर से तर जाता है। राम शब्द का अर्थ ही है सभी संत जनों में आनंद देने वाला, और जो सब में रमे वही राम है। ऐसे राम रतन धन को छोड़कर यदि मनुष्य लौकिक संपत्ति के पीछे भागे तो उससे बड़ा अभागा और कौन हो सकता है।

भक्ति ऐसी होनी चाहिए, प्रेम ऐसा होना चाहिए और समर्पण ऐसा होना चाहिए जैसे गोपियों और ग्वालों का वृक्षों और तृण मात्र का था अपने कान्हा के लिए, क्योंकि उन्हें हमसे संपूर्ण समर्पण और श्रद्धा भाव के अतिरिक्त और कोई चाह नहीं है।

0: भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम विचार बिंदु। और इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं महामना पंडित मदन मोहन मालवीय के विचार।
1: हमारे समक्ष एवं इर्द गिर्द जो भी वस्तु है वो ईश्वर के अस्तित्व का ढिंढोरा पीटती है। ईश्वर संसार की प्रत्येक वस्तु में है। संसार में वही वास्तविक सत्य है। उससे परिचित होना जीवन का सर्वोच्च सुख है। दूसरों के साथ आप ऐसा व्यवहार न करें जो कि आप दूसरों को अपने प्रति करने देना नहीं चाहते। आप निद्रा त्याग कर उठ खड़े हों और साहस के साथ अपने कामों में जुट जाएं। हृदय में ये दृढ़ विश्वास रखते हुए कि हमें अपने प्रयास में विजय अवश्य प्राप्त होगी। अपनी इच्छा से बिना किसी प्रकार के बंधन व स्वार्थ के दीन दुखी प्राणी की सेवा करना, इससे परे क्या यज्ञ है, क्या तप है, क्या दान है, क्या सुख है। असहाय प्यासे को पानी, भूखे को अन्न, शीत से सताए हुए को वस्त्र देना, जले हुए के घाव पर मलहम लगाना, डूबते को बचा लेना, जिसके घर में आग लगी हो उसके घर की आग बुझाना, उसके प्राणियों को आग से बचा लेना, रोगी को औषध देकर रोग की पीड़ा से छुटा देना, अंधों को सहायता देना, अनाथ बच्चों और विधवाओं के माता पिता भाई बनना, मेलों में निराश बिछड़े हुओं को मिलाकर उन्हें नया प्राण देना, जो अजान अकिंचन प्राणी विदेशों में अकेले लुट गए हों उनको सहायता देकर उनके घर पहुंचाना, ठग लुटेरों और अन्यायियों से सताए जाने वालों का रक्षक होना, सेवा करना, इससे पवित्र और क्या मार्ग हो सकता है। देशभक्ति का संचार हमारे हृदय से स्वार्थ को निकाल कर फेंक देगा। हम अदूरदर्शी, स्वार्थी और खुशामदियों की तरह ऐसे कार्य कदापि न करेंगे जिनसे कि देशवासियों को हानि पहुंचे, बल्कि दूरदर्शी, परमार्थी, सत्यशील और दृढ़ता प्रिय आत्माओं की भांति असंख्य कष्ट उठाते हुए भी वही करेंगे जिसमें देश का भला हो। निर्धन धनवान, निर्बल और मूर्ख भी बुद्धिमान हो जाएं, प्रत्येक प्रकार के सामाजिक दुख मिटें और दुर्भिक्ष आदि विपत्तियां दूर होकर लाखों बिलबिलाती हुई आत्माओं को सुख पहुंचे। देशभक्ति द्वारा इतने धर्मों का संपादन होता हुआ देखकर भी यदि कोई धर्म के आगे देशभक्ति को कुछ नहीं समझता, उस पुरुष को जान लीजिए कि वो धर्म के तत्व ही कोई नहीं पहचानता। इस विचित्र सृष्टि का वैभव एक परमात्मा दिखा रहा है। वो सब करता हुआ दृष्टा है, खुद ही सब देखता है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कैलाश पर और समुद्र के गंभीर तल में उसकी लीला का नृत्य होता रहता है। वो गर्भ में बच्चे की रक्षा करता हुआ पालन करता है, वो उसकी रचना करता है, शरीर के भिन्न भिन्न अंग बनाता है और उनको सुंदर रचकर दिव्य रूप में प्रकट कर देता है। कैसा सुंदर बालक पैदा होता है कि उसकी बनावट देख आश्चर्य होने लगता है। उसके कैसे छोटे छोटे अंग प्रत्यंग बनते रहते हैं। उस कारीगर की रचना अनोखी है। वो अंतर जगत में जैसा कार्य करता रहता है वैसा ही बाह्य जगत में भी करने लगता है। कभी प्रातःकाल की शोभा, कभी संध्याकाल की लालिमा, कभी इंद्रधनुष और मेघाच्छन्न आकाश, कभी शरद पूर्णिमा की शांति, उसकी ज्योति सूर्य की किरणों के रूप में, चंद्र की चांदनी में, पुष्प की सुगंध में और भिन्न भिन्न पदार्थों के स्वरूप में दृष्टिगोचर होती रहती है। जब कोई भारी सहायता कर देता है तो हम उसके आभार को मानते हैं, उसके कृतज्ञ होते हैं और धन्यवाद देते हैं। तब जिस प्रभु ने हमारे जीवन के लिए सब कुछ दिया है, सुंदर शरीर, दिव्य रूप दिया, उसका उपकार मानना चाहिए या नहीं।
0: विचार बिंदु कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे महामना पंडित मदन मोहन मालवीय के विचार। यह कार्यक्रम अब समाप्त हुआ।

0: किसान भाइयों को कृषि जगत कार्यक्रम में आज हम सुनवा रहे हैं कृषि रसायनों के प्रयोग में सावधानियां विषय पर अनिल कुमार से की गई जयकिशोर नारायण शर्मा की ये बातचीत।
1: किसान भाई, खेती बाड़ी में बहुत से कीटनाशी बहुत से रसायनों के प्रयोग होते हैं, लेकिन कोनो भी रसायन हो के प्रयोग में निश्चित रूप से कुछ सावधानी बरते की चाहिए ताकि कोनो हानि न हो पावे स्वास्थ्य के प्रति और ठीक ढंग से फसलन पर उकर असर पड़े। आज जोन बातचीत का विषय है कृषि रक्षा रसायनों के प्रयोग में सावधानियाँ, ये पे जानकारी देव दे विशेषज्ञ के तौर पे हमारे बीच में श्री अनिल कुमार जी अल्बर्ट है। आप विशेषज्ञ बैठे भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत हो। अनिल कुमार जी, अपने किसान भाई बदे आपसे हम जानल चाहब कि कृषि रक्षा रसायन कौन कौन से हैं और उनके प्रयोग में सावधानियाँ का बाटी जोन किसान भाई अपने खेतन में प्रयोग करत हैं।
2: किसान भाइयों, कृषि रक्षा रसायन का प्रयोग मुख्य रूप से 6 स्थितियों में किया जाता है
1: जी।
2: भूमि शोधन के रूप में, बीज शोधन के रूप में, कीटों के नियंत्रण के लिए, रोगों के नियंत्रण के लिए और खरपतवार नियंत्रण के लिए तथा अन्न भंडारण में सुरक्षित रखने के लिए।
1: जी जी,
2: मतलब इन 6 स्थितियों में किसान भाई बौधा या मुख्य रूप से इन्हीं स्थितियों में रसायनों का प्रयोग किया जाता है।
1: जी जी, तो क्रम से के बताएं कि कैसे कैसे उनमें सावधानी बरतें।
2: ध्यान देने योग्य बात यह है कि चाहे जिस स्थिति में कृषि रक्षा रसायन का प्रयोग करना हो तो बहुत ही सोच समझकर सावधानी रखने की आवश्यकता होती है। यदि हम सावधानी नहीं रखेंगे तो किसान भाई जन धन का नुकसान उठाना पड़ सकता है। मुख्य रूप से कीटों के नियंत्रण के प्रयोग में जब हम रसायनों का प्रयोग करें तो क्या क्या सावधानी रखें, किसान भाई इस चीज़ को विशेष ध्यान दें। कीटनाशकों का प्रयोग तभी करना चाहिए जबकि नासी जीवों की संख्या
1: जी
2: आर्थिक क्षति स्तर के पार न कर जाए। माने ये देख लें कि जब हम रसायन का प्रयोग करने जा रहे हैं कीटनाशी नियंत्रण हेतु,
1: हाँ,
2: तो कीटों का प्रकोप हमारे जो रसायन प्रयोग करने जा रहे हैं उससे अधिक,
1: हाँ, हाँ,
2: अगर नुकसान मालूम पड़ता है तो ही प्रयोग करें,
1: बिल्कुल
2: अन्यथा न करें।
1: हाँ,
2: कीटनाशकों का प्रयोग केवल आवश्यकता होने पर ही करना चाहिए।
1: जी जी,
2: केवल उन्हीं कीटनाशकों का प्रयोग करना चाहिए जो सिर्फ हानिकारक कीटों को मारते हैं,
1: हाँ,
2: हमारे फसल के
1: लाभदायक कीट
2: हैं उनको न मारते हों। कीटों का जैविक नियंत्रण कारकों का कोई नुकसान न कर पाए,
1: हाँ,
2: ऐसे
1: हाँ,
2: कीटनाशकों का प्रयोग करना चाहिए
1: जी।
2: एक से अधिक कीटनाशकों को एक साथ मिलाकर के प्रयोग नहीं करना चाहिए,
1: मतलब एक साथ कई कीटनाशकों के प्रयोग से अपने किसान भाई बचें जी।
2: कीटनाशकों का प्रयोग सही समय पर करना चाहिए
1: जी।
2: देख लें किसान भाई कि इस समय हमारे खेत में कीटों का प्रयोग अधिक है जो नुकसान अधिक पहुंचा सकते हैं, तभी करें। पहले या बाद में करने से इसका कोई फायदा नहीं होगा। कीटनाशकों के छिड़काव में पानी की सही मात्रा का प्रयोग करें। पानी की मात्रा कम होने पर छिड़काव नहीं सही हो पाता है तथा नुकसान उठाना पड़ता है। कीटनाशकों के प्रयोग के समय हवा के बहाव को ध्यान में अवश्य रखें
1: जी जी।
2: हवा के विपरीत दशा में अगर हम कीटनाशकों का प्रयोग करेंगे तो वो छिड़कने वाले आदमी के
1: चेहरा पे
2: पड़कर के नुकसान कर
1: जी,
2: सकता है,
1: स्वास्थ्य के लिए हानिकर हो जी,
2: जी, जी।
1: हवा के रुख ही सन देख लें कि अपनी तरफ हवा ना आवत हो बल्कि उल्टा जात हो
2: जी
1: जी।
2: छिड़काव के बाद जब कीटनाशकों का प्रयोग कर लें तो हाथ पैरों को साबुन से धोना चाहिए, स्नान करना चाहिए ताकि हमारे शरीर के ऊपर किसी प्रकार से कीटनाशक का प्रभाव पड़ा हो,
1: हाँ,
2: तो साफ हो जाए। तो
1: कभी हाथ में भी दस्ताना वगैरह कुछ लगाना चाहिए
2: जी जी जी। कीटनाशकों के प्रयोग के समय बीड़ी,
1: हाँ,
2: या लोग तंबाकू का सेवन

0: एकदम नहीं करना
1: बिल्कुल
0: चाहिए।
1: ना करें।
0: कीटनाशकों का छिड़काव करते समय आंख पर चश्मा
1: हाँ
0: तथा मुंह पर कपड़ा
1: हाँ
0: अवश्य बांधना चाहिए। केवल उन्हीं कीटनाशकों का प्रयोग करना चाहिए जो कि भारत सरकार की रजिस्ट्रेशन कमेटी से पंजीकृत हों,
1: हाँ सरकार द्वारा जो संस्तुत कीटनाशक है वही का प्रयोग करें
0: या निकट के विश्वविद्यालय या राज्य सरकार द्वारा निर्धारित हों।
1: जी।
0: कीटनाशकों को खरीदते समय उन पर लगे लेबल, ISI आदि चिन्हों के बनने व असर समाप्त होने की तिथि को अवश्य पढ़ लेना
1: मतलब एक्सपायरी
0: चाहिए,
1: डेट जरूर देख ले भैया।
0: देखने कि
1: हाँ
0: हमारे प्रयोग करने का भी इसका दिनांक, तारीख, तिथि है कि नहीं,
1: हाँ हाँ
0: और
1: हाँ
0: लेबल में ISI या सरकार द्वारा प्रमाणित ये दवा है कि नहीं।
1: बहुत से
0: यदि
1: दुकानदार भैया पुरानी दवा भी रखे रहते हैं कि फायदा कमाए बदे, ऐसे देख लेक चाहिए कि एक अवधि खत्म हो कि अभी हो। हाँ
0: पर्यावरण के लिए जो कीटनाशक उपयुक्त तो हों
1: हाँ
0: उन्हीं का प्रयोग करना
1: जी
0: चाहिए,
1: जी
0: क्योंकि बहुत से ऐसे कीटनाशक हैं जो हमारे पर्यावरण में प्रदूषण फैलाते हैं और हमारे जन धन, पशुधन सबको नुकसान पहुंचाते
1: जी
0: हैं।
1: जी
0: दूसरी स्थिति आती है कि किसान भाई खरपतवार नियंत्रण हेतु भी रसायनों का प्रयोग करते हैं,
1: जी
0: तो खरपतवार नियंत्रण करने हेतु जब रसायनों का प्रयोग करें तो किसान भाई क्या क्या सावधानी रखें। रसायन का घोल बनाने के लिए साफ पानी का प्रयोग हमेशा करना
1: जी
0: चाहिए।
1: जी
0: यदि साफ पानी नहीं रहेगा तो आपके रसायन के घोल की गुणवत्ता खराब हो सकती है
1: बिल्कुल
0: और
1: बिल्कुल
0: वो
1: मतलब गंदा
0: आपका,
1: या माटी वाला पानी न रहे।
0: जी, रसायन का घोल बनाने के पूर्व कंटेनर या पैकेट जिसमें वो हम रसायन खरीद रहे हैं,
1: जी
0: यदि घोल के रूप में है तो कंटेनर में है,
1: हाँ
0: यदि पाउडर के रूप में है तो पैकेट के रूप में प्राप्त
1: जी
0: होगा,
1: हाँ
0: उनके लीफ प्लेट उस पर लगा
1: हाँ
0: रहता है, उसको अच्छी तरह से पढ़ लेना चाहिए
1: हाँ
0: कि ये दवा सही है कि नहीं है,
1: जी
0: तभी उसका प्रयोग करना चाहिए।
1: हाँ
0: रसायन का घोल बनाते समय हाथ में दस्ताना, आंख पर चश्मा, नोज मास्क, नाक पर कपड़ा बांध लें, नोज मास्क नहीं उपलब्ध है तो टोपी एवं संपूर्ण शरीर को ढकने वाला कपड़ा प्रयोग करना चाहिए, एवं हवा के विपरीत बैठकर या खड़े होकर घोल नहीं बनाना चाहिए।
1: जी
0: दवा को अच्छी तरह पानी में घोलने के लिए लकड़ी के डंडे का प्रयोग करना चाहिए। रसायन का छिड़काव हवा के विपरीत नहीं करना चाहिए एवं हाथ में दस्ताना, आंख पर चश्मा, नोज मास्क, टोपी एवं संपूर्ण शरीर को ढकने वाले कपड़े तथा जूते का प्रयोग करना
1: जी
0: चाहिए।
1: जी लड़का के दिला भी आसपास न रहे।
0: जी, छिड़काव करते समय धूम्रपान अथवा कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए। कंटेनर या पैकेट जिसमें हमने,
1: बर्तन भैया कैसन रहे चाहिए जोने में कि ओके घोल बनावल जाए।
0: कंटेनर या पैकेट
1: हाँ
0: जिसमें अवशेष दवा बच जाती है, हम प्रयोग करते हैं
1: हाँ
0: तो
1: हाँ
0: कुछ दवाएं हमारी बच जाती हैं,
1: जी
0: उसको अच्छी तरह से बंद कर स्टोर में हवादार सूखे स्थान पर बच्चों से दूर रखना चाहिए।
1: मतलब जहाँ लड़का के देला न पहुंच पावे। हाँ
0: बर्तन जैसे हम दवा छिड़कते हैं तो हमारे कई प्रकार के स्प्रेयर आते हैं,
1: हाँ
0: पीठ पर रखने वाला आता
1: हाँ
0: है, पैर
1: हाँ
0: से चलाने वाला आता है।
1: जी जी
0: पीठ पर रखने वाला स्प्रेयर बहुधा बहुत ही सामान्य होता है जो एक ही आदमी आसानी से प्रयोग कर
1: जी
0: सकता
1: जी
0: है,
1: हाँ
0: उसमें 15 लीटर पानी आता है।
1: हाँ
0: पहले हमको अपने स्प्रेयर को, मशीन को अच्छी तरह से
1: चेक
0: साफ
1: कर लो
0: सफाई
1: चाहिए
0: कर लेना
1: जी
0: चाहिए, उसके नोजल और सब चेक कर लेना चाहिए कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, तभी उसके अंदर घोल बना करके दवा का प्रयोग करना। दवा के प्रयोग के बाद खाली कंटेनर या पैकेट को घरेलू उपयोग में कभी नहीं लाना चाहिए। दवा के प्रयोग के बाद खाली कंटेनर या डिब्बा को नष्ट कर ऊंचे स्थान पर जमीन में गाड़ देना चाहिए।
1: शाम के ही छिड़काव करें चाहिए कि सुबह। हाँ
0: नहीं, सुबह तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, दोपहर के बाद करना चाहिए,
1: अच्छा।
0: क्योंकि सुबह जो है मधुमक्खी या हमारे जो लाभदायक कीट हैं वो फसलों
1: हाँ
0: पर ज़्यादा आते हैं।
1: बिल्कुल भैया। भैया अनिल कुमार जी, आप कृषि रक्षा रसायनों के प्रयोग में सावधानियां पे किसान भाई के बहुत अच्छी जानकारी देना, आपका जानकारी देव देव बहुत बहुत धन्यवाद।
2: कृषि रसायनों के प्रयोग में सावधानियां विषय पर किसान भाई अभी सुन रहे थे अनिल कुमार से की गई जयकृष्ण नारायण शर्मा की बातचीत। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ।

0: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं वर्षा ऋतु में होने वाली स्वास्थ्य समस्याएं और उनका उपचार। वार्ताकार हैं डॉक्टर आशुतोष, वैद्य आशुतोष मालवीय।
1: हमारे जीवन काल में सभी ऋतुओं का अपना अलग अलग महत्व होता है, वो चाहे ग्रीष्म ऋतु हो या शीत ऋतु या वर्षाकाल, सभी हमें जीवनी शक्ति प्रदान करती हैं। इनमें वर्षाकाल निसंदेह हमें आनंदित करता है, मन में उत्साह और खुशी भी देता है, क्योंकि खाद्यान्न की उत्पत्ति के लिए अच्छी वर्षा भी जरूरी होती है। वर्षाकाल जितना जीवनदायिनी होता है, उसी अनुपात में लापरवाही होने पर विभिन्न प्रकार के रोग व्याधियों को पैदा कर देता है। वर्षा के बाद जगह जगह पर रुका हुआ वर्षा का पानी, वर्षा के बाद हुई धूप, शरीर में होने वाली चिपचिपाहट एवं आर्द्रता तमाम रोगों को बुलावा देती है, जैसे बुखार, खांसी, जुखाम, सरदर्द, बदन दर्द, जोड़ों में सूजन एवं दर्द, जी मिचलाना, उल्टियां या दस्त, मलेरिया जैसे ज्वर, पीलिया, चर्म रोगों में खाज, खुजली, शीतपित्त आदि विभिन्न प्रकार के चर्म रोग उत्पन्न हो जाते हैं। वर्षा काल में सर्प, बिच्छू आदि के काटने की संभावनाएं भी बहुत बढ़ जाती हैं। चूँकि वर्षा काल में विषाणुओं और जीवाणुओं की अधिकता हो जाती है, अतः पानी और गंदे पानी से सिंचित पत्ते वाली सब्जियों का प्रयोग से बचना चाहिए, क्योंकि इनसे हैजा, पीलिया, पेट में कीड़े होने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं। आजकल बासी भोजन, कटे रखे फल या सब्जियाँ, सलाद, बासी पानी, घरों में रहने वाली नमी तमाम परेशानियों को लेकर आती है, जिसमें उल्टियाँ, दस्त, पेट दर्द एवं हैजा जैसे संक्रमण बहुत बढ़ जाते हैं। वर्षा काल की नमी में चर्म रोगों की काफ़ी इजाफा हो जाता है, जिसमें खाज, खुजली और शीतपित्त रहती है। सर के बालों के टूटने की परेशानियाँ भी बहुत बढ़ जाती हैं। चूँकि वर्षा काल में आर्द्रता बहुत बढ़ जाती है और यह आर्द्रता सर में बनी रहती है, इस आर्द्रता के कारण ही जब हम सर धोते हैं या कंघी करते हैं तो सर के बाल टूटने प्रारंभ हो जाते हैं। सभी जगह आर्द्रता के कारण ही विषाणुओं का बोलबाला बढ़ जाता है तथा इस मौसम में मनुष्य की जठराग्नि भी कमजोर हो जाती है, अर्थात पेट में अग्नि कमजोर होने के कारण भोजन ठीक से पच नहीं पाता। अतः वर्षा काल में बासी भोजन, मैदे के आहार, मांसाहारी भोजन से सर्वथा बचना चाहिए। आजकल कुएं के पानी का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। कुएं के पानी में वर्षा काल का पानी और गंदगी को मिलाकर बहुत संक्रमित हो जाता है। ग्रामीण लोगों को कुएं के पानी को भली भांति छानकर या उबालकर लेना ही उचित होता है। पानी रखने के बर्तन को हमेशा साफ रखना जरूरी होता है। नमी वाले स्थानों पर भोजन या पीने का पानी रखना अनुचित होता है, क्योंकि वर्षा काल में नमी वाले जगह में विषाणुओं के कारण संक्रमण शीघ्र हो जाता है। 24 घंटे से पुराना रखा हुआ पानी बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। पका हुआ आहार 2-3 घंटे के अंदर तक ही खा लेना उचित होता है, क्योंकि नमी के कारण पका हुआ भोजन का रस भी समाप्त होने लगता है, जिससे इसे पचने में दिक्कत होती है तथा पेट में वायु उत्पन्न होने की संभावना पैदा हो जाती है, जिससे पेट में फूलन, गैस, दर्द या अम्लपित्त की शिकायत उत्पन्न हो जाती है। स्थिर पानी वाले तालाबों या पोखरों में नहाने से बचना चाहिए, क्योंकि इस पानी में नहाने से चर्म रोगों की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं। इस प्रदूषित पानी में विषाणुओं के होने के कारण मुंह या नाक के द्वारा शरीर में प्रवेश करके रोग व्याधियों को बढ़ावा मिल जाता है। वर्षा काल में गीले एवं नमी वाले बिस्तर पर सोना भी नहीं चाहिए। नमी वाले बिस्तर पर सोना अत्यंत कष्टप्रद हो जाता है। एक बार का पहना हुआ कपड़ा भी दोबारा स्वच्छ पानी से धोकर या सुखाकर ही पहनना उचित होता है। आँखों की रक्षा सर्वथा करनी चाहिए। नियमित पानी से आँख को धोते रहने से आँखों की व्याधियों से बचा जा सकता है।
0: वर्षा ऋतु में होने वाले स्वास्थ्य

समस्याएं एवं सावधानियां विषय पर अभी आप वैद्य आशुतोष मालवीय की ये वार्ता सुन रहे थे। इसी के साथ कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 MHz पर ये आकाशवाणी प्रयागराज है। लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विवरण। रात 8 बजे संसद समीक्षा, रात 9:30 बजे चर्चा का विषय है और रात 10 बजे संसद में प्रश्नकाल के कार्यवाही की रिकॉर्डिंग। ये सभी कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुबह 7:30 पर पंडित रामकृष्ण का क्लैरिनेट वादन और दिन में 12:15 पर सुनेगा गुरु प्रसाद शर्मा का वायलिन वादन। सुबह 9:50 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में अरुण गुलवाड़ी के गाय भजन सुनवाए जाएंगे।

वॉइस ऑफ प्रयागराज कार्यक्रम में सुबह 10:05 पर डॉक्टर जी एस तोमर से अभिनव प्रज्ञ पांडे की बातचीत का पहला भाग प्रसारित होगा। लोकगीतों के कार्यक्रम में सुबह 10:30 पर आज आप सुनेंगे सुरेंद्र प्रताप और साथियों के गाए लोकगीत। एक ही कलाकार, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे दिन में 11 बजे। फोन इन प्रोग्राम हेलो फरमाइश का प्रसारण होगा दिन में 12:30 पर।

दिन में 1:15 पर गृहलक्ष्मी कार्यक्रम में बहनें डॉक्टर मनीष कुमार सिंह की वार्ता सुनेंगी। क्या होती है सामाजिक पूंजी और सांस्कृतिक पूंजी, 7:31 पर सुनेगा बोलते नगमे और 8:30 सबरस का प्रसारण होगा। अभी आप हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विवरण सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 6:55 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार। संस्कृत में समाचार हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं। कृपया प्रतीक्षा करें।

ब्रह्मा ने सब प्रकार से योग्य पाकर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया था। इतना बड़ा अधिकार पाकर दक्ष को सत्ता का मद हो गया और उन्होंने शिव का अपमान करने की धृष्टता कर दी। जब यक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया तो उसमें भगवान शंकर को निमंत्रित ना करके उस अपमान को जैसे दोहरा कर दिया। यही कारण था कि जब सती ने पिता के यज्ञ में उपस्थित होने के लिए जाना चाहा, तो शिव ने बिना निमंत्रण जाना सती के शील स्नेह अथवा मान मर्यादा के अनुरूप नहीं पाया। जब सती ने पिता के यज्ञ में जाने की जिद ही कर दी तो भगवान शंकर ने अपने प्रमुख गणों के साथ उन्हें विदा कर दिया। उधर पिता ने सती का कुशल क्षेम तक नहीं पूछा। यज्ञ में सभी देवताओं के भाग की सामग्री थी, किंतु कहीं भी शिवजी का भाग दिखाई नहीं दिया। पति की ये उपेक्षा देख अपमान से सती के अंग प्रत्यंग जल उठे, उनके क्रोध की सीमा ना रही। इस मदांधता तथा नादानी के लिए उन्होंने पिता की भर्त्सना ही नहीं की, बल्कि ग्लानि तथा क्रोध के वशीभूत होकर अपने को उसी यज्ञ की अग्नि में भस्म कर डाला।

अभी आप महेंद्र कपूर और शोभना राव के स्वर में सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ। संगीत दिया था सतीश भाटिया ने। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। लीजिए अब सुनिए फिल्मों से भजन। सबसे पहले हम आपको देव फिल्म की रचना सुनवा रहे हैं। रचना है निदा फाजली की, संगीत आदेश श्रीवास्तव का, आवाजें हैं अभिजीत भट्टाचार्य और साथियों की।

और अब अंत में हम आपको अग्निपथ की रचना सुनवा रहे हैं। अमिताभ भट्टाचार्य के बोल हैं, अजय अतुल का संगीत और आवाज अजय अतुल की। आवाज है अजय गोगावले की।

0: आप सुन रहे थे फिल्मों से भजन, ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 7:20 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, प्रतीक्षा करें।
1: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। अधिकरण प्रणाली में दक्षता और पारदर्शिता लाने के लिए संसद ने पारित किया अधिकरण सुधार विधेयक 2026। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को गर्व के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाने को कहा। विकसित भारत के संकल्प के साथ हर घर पर तिरंगा फहराने का किया आह्वान।

0: अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सीईओ की नियुक्ति के लिए साक्षात्कार शुरू। 2 सितंबर को ट्रस्ट की बैठक में होगा अंतिम निर्णय। और ग्रेटर नोएडा में 3 दिवसीय इंडिया बायो एनर्जी एंड टेक एक्सपो 2026 का आज उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अब समाचार विस्तार से। संसद ने अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे कल राज्यसभा ने मंजूरी दे दी। लोकसभा पहले ही विधेयक को पारित कर चुकी है। इससे पहले विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि यह विधेयक आधुनिक स्वतंत्र और एक रूप अधिकरण प्रणाली स्थापित करने के लिए लाया गया है।
1: यह विधेयक विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यताओं, नियुक्तियों, सेवा की शर्तों और नियमों में दक्षता, स्वतंत्रता, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करने, अधिकरणों के प्रशासन और कामकाज को बेहतर बनाने, एक राष्ट्रीय अधिकरण आयोग की स्थापना करने तथा उससे जुड़े मामलों के लिए, जैसा कि लोकसभा द्वारा पारित किया गया है, इस विधेयक पर विचार किया जाए।
0: विधेयक में राष्ट्रीय अधिकरण आयोग की स्थापना का भी प्रस्ताव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से स्वतंत्रता दिवस गर्व के साथ मनाने और विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लेने को कहा है।
2: आइए 15 अगस्त को आन बान शान से मनाएं, स्वतंत्र सेनानियों को श्रद्धांजलि दें, विकसित भारत का संकल्प लें। हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, हर मन तिरंगा। आइए हर घर पर तिरंगा लहराइए।
0: देश भर में हर घर तिरंगा अभियान उत्साह के साथ चलाया जा रहा है। 17 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस बीच प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान में प्रदेश के सभी मदरसे भी भाग लेंगे।
3: इस अभियान से उत्तर प्रदेश के जो तमाम मदरसे वो भी जुड़ेंगे। हमने मदरसा के तमाम छात्रों से भी अपील की है, अपने प्रमुख सचिव को भी निर्देशित किया है, डिपार्टमेंट को भी निर्देशित किया है, उत्तर प्रदेश के हर मदरसे इस अभियान से जुड़े, अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में इस अभियान को हम ले जाएं और हर व्यक्ति देशभक्ति के भावना से ओतप्रोत हो। इस अभियान का जो मकसद है उसको हम धरातल पर ले जाएंगे।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि गुमशुदा व्यक्तियों की उम्र या लिंग चाहे जो हो, उसकी गुमशुदगी पर तुरंत प्राथमिकी दर्ज करना अनिवार्य है। न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने इसका पालन नहीं करने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह निर्देश दिया।
4: शीर्ष न्यायालय ने इसका अनुपालन न करने वाले राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस प्रमुखों को अदालत के समक्ष पेश होकर ये बताने का निर्देश दिया है कि उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए। मामले की अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को होगी। न्यायालय ने इससे पहले पुलिस को सभी गुमशुदा व्यक्तियों के मामलों में बिना किसी प्रारंभिक जाँच के तुरंत प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया था। अदालत ने गुमशुदा बच्चों का पता लगाने और उनकी सुरक्षा के लिए भी उपाय लागू किए थे। समाचार कक्ष से मुकेश कुमार बल।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO की नियुक्ति के लिए कल से साक्षात्कार शुरू हो गया। इस पद के लिए करीब 5,200 आवेदन आए थे, जिनकी स्क्रीनिंग के बाद 18 अभ्यर्थियों को अंतिम चरण के लिए चुना गया है।
5: राम मंदिर ट्रस्ट के CEO पद के लिए राम मंदिर परिसर स्थित पिलग्रिम फैसिलिटेशन सेंटर में 9 लोगों का साक्षात्कार लिया गया। बाकी बचे 9 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। 3 सदस्य चयन समिति इंटरव्यू के बाद चयनित व्यक्ति की जानकारी ट्रस्ट को सौंपेगी। इस फैसले पर 2 सितंबर को होने वाली ट्रस्ट की बैठक में अंतिम मोहर लगेगी। तन्मय सोनी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज ग्रेटर नोएडा में 3 दिवसीय इंडिया बायो एनर्जी एंड टेक

0: एक्सपो 2026 का उद्घाटन करेंगे। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने कल इस एक्सपो का अनौपचारिक शुभारंभ किया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल संत कबीर नगर में 684 करोड़ रुपए की लागत वाली 201 विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि बहराइच से खलीलाबाद तक बन रही रेलवे लाइन संत कबीर नगर के विकास का आधार बनेगी।
1: जो सड़कें बन रही हैं, ये जो बाईपास बन रहे हैं, ये जो बस स्टेशन बन रहे हैं, बहराइच से लेकर के बांसी होते हुए खलीलाबाद तक जो ये रेलवे लाइन बन रही है, ये रेलवे लाइन ये विकास करेगी, बेहतर कनेक्टिविटी देगी। और हम लोगों ने तय किया है लैंड बैंक जैसे ही यहाँ का तैयार होगा तो हम लोग संत कबीर नगर में भी एक विकास प्राधिकरण के गठन की कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे।
0: इससे पहले मुख्यमंत्री ने कल ही गोरखपुर में 70 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित सोनौली नौतनवा गोरखपुर मार्ग से माधोपुर बंधे तक 2 लेन मार्ग का लोकार्पण किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मार्ग की कनेक्टिविटी से अब वाराणसी, लखनऊ, नेपाल, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज और बलरामपुर आदि स्थानों पर जाने वालों को शहर के अंदर जाने की जरूरत नहीं होगी।
2: अब बदलता हुआ गोरखपुर दिखाई देता है। पहले संकरा मार्ग था, लोग चल फिर नहीं पाते थे, जल जमाव होता था। अब विकास के ढेर सारे कार्य आज गोरखपुर को एक नई पहचान दिला रहे हैं। आज गोरखपुर का हर मार्ग 4 लेन की सड़क से जुड़ चुका है, फ्लाईओवर बन रहे हैं, बहुत सारे बनकर के तैयार हो भी गए हैं।
0: सावन माह की शिवरात्रि के पावन अवसर पर कल प्रदेश भर के शिव मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ रही। बागपत के ऐतिहासिक श्री परशुरामेश्वर महादेव मंदिर, वाराणसी के श्री काशी विश्वनाथ धाम और हापुड़ के श्री गढ़ मुक्तेश्वर मंदिर सहित प्रदेश के कई प्रमुख शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का दर्शन पूजन कर जलाभिषेक किया।
3: जनपद हापुड़ में सावन मास की महाशिवरात्रि पर मंदिरों में सुबह से ही भगवान आशुतोष को जलाभिषेक करने के लिए कांवड़ियों और श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी, जिससे वातावरण शिवमय बना रहा। जनपद हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर के मुक्तेश्वर महादेव, कल्याणपुर के कल्याणेश्वर महादेव, प्राचीन शिव मंदिर सबली, सरावा के झारखंडी महादेव के अलावा जनपद के सभी शिवालयों में श्रद्धालुओं ने गंगा जल, बेलपत्र, आग, धतूरा, चंदन आदि से भगवान आशुतोष का अभिषेक किया। रविंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, हापुड़।
0: मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में कल से जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 14 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक कहीं कहीं भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के मुताबिक प्रदेश भर में आज भी कहीं कहीं बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना बनी हुई है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। अधिकरण प्रणाली में दक्षता और पारदर्शिता लाने के लिए संसद ने पारित किया अधिकरण सुधार विधेयक 2026। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को गर्व के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाने को कहा। विकसित भारत के संकल्प के साथ हर घर पर तिरंगा फहराने का किया आह्वान। अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सीईओ की नियुक्ति के लिए साक्षात्कार शुरू। 2 सितंबर को ट्रस्ट की बैठक में होगा अंतिम निर्णय। और ग्रेटर नोएडा में 3 दिवसीय इंडिया बायो एनर्जी एंड टेक एक्सपो 2026 का आज उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
4: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम।

लीजिए सुनिए शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं पंडित रामकृष्ण का राग भूपाली तोड़ी में क्लैरोनेट वादन। तबले पर आपके साथ संगत की सुदर्शन राम ने। विलंबित रचना एक ताल में और मध्य लय और द्रुत लय तीन ताल में निबद्ध है। तो आइए सुने पंडित रामकृष्ण का क्लैरोनेट वादन। राग है भोपाली तोड़ी।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पंडित रामकृष्ण का राग भूपाली तोड़ी में क्लैरिनेट वादन, तबले पर आपके साथ संगत की सुदर्शन राम ने। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ।

आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 8 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार प्रभात, प्रतीक्षा करें।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है।

0: और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं हैं, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। गृह मंत्री अमित शाह आज राज्यसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पेश करेंगे। लोकसभा में खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा का विमोचन करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज सुबह भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को रवाना करेंगे। पूर्वी राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखंड और गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल में आज मूसलाधार बारिश की चेतावनी और राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में करण सिंह, शेरजिन शांतिमोल और तनिष्का खत्री ने नाइजीरिया में स्वर्ण पदक जीते। और अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह आज राज्यसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पेश करेंगे। राज्यसभा में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पर भी विचार और उसे पारित करने की संभावना है। एक रिपोर्ट।
2: केरल नाम परिवर्तन विधेयक का उद्देश्य संविधान की पहली अनुसूची में राज्य का नाम केरल से बदलकर केरलम करना है। इस संबंध में केरल विधानसभा ने जून 2024 में एक प्रस्ताव पारित किया था। प्रस्ताव में कहा गया था कि मलयालम में राज्य को केरलम के नाम से जाना जाता है, जबकि संविधान की पहली अनुसूची में इसका नाम केरल दर्ज है। इस बीच खान और खनिज विकास और विनियम संशोधन विधेयक 2026 का उद्देश्य खान और खनिज अधिनियम 1957 में संशोधन करना है। इस विधेयक का उद्देश्य देश के बढ़ते महत्वपूर्ण खनिजों की मांग को पूरा करने के लिए भारत के खनन क्षेत्र को अधिक प्रभावी, निवेश के अनुकूल और सक्षम बनाना है। दिलनशी आरजू की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा ट्रायंफ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक माई लाइफ माई स्ट्रगल्स का विमोचन करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री एक सभा को भी संबोधित करेंगे। यह आत्मकथा पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की जीवन यात्रा का एक व्यक्तिगत विवरण प्रस्तुत करती है। ये पुस्तक उन मूल्यों, अनुभवों और परिस्थितियों की जानकारी देती है जिन्होंने उनकी यात्रा और सार्वजनिक सेवा को आकार दिया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाली अमावस्या के अवसर पर नई दिल्ली में एक व्यापक वृक्षारोपण अभियान का संचालन करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान के वृक्ष मित्र अभियान से जुड़े देश भर के हजारों सदस्य भी उनकी अपील पर अपने अपने गांवों और शहरों में वृक्षारोपण अभियान में भाग लेंगे। नागरिकों से आग्रह करते हुए श्री चौहान ने कहा कि हरियाली अमावस्या प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर प्रदान करने वाला त्योहार है। श्री चौहान ने कहा कि प्रकृति के प्रति कृतज्ञता केवल शब्दों से ही व्यक्त नहीं की जानी चाहिए, बल्कि वृक्षारोपण के माध्यम से भी प्रदर्शित की जानी चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पौधा लगाना केवल पर्यावरण संरक्षण का कार्य ही नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित, संरक्षित और सुंदर भविष्य की नींव रखने का भी एक तरीका है। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज सुबह भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को रवाना करेंगे। ये रैली स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित हर घर तिरंगा अभियान का हिस्सा है। इसका उद्देश्य नागरिकों में राष्ट्रभक्ति की भावना को और मजबूत करना है। रैली में बड़ी संख्या में युवा, स्वयंसेवी संगठन और विभिन्न संस्थानों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। अभियान के अंतर्गत देश भर के लोगों से अपने घरों पर तिरंगा फहराने और राष्ट्रध्वज के प्रति सम्मान व्यक्त करने का आह्वान किया जाएगा। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने आज सुबह मेजर ध्यानचंद स्टेडियम से हर घर तिरंगा साइकिल यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। श्री मांडविया ने दिल्ली विश्वविद्यालय के माय भारत वॉलंटियर्स के साथ इस रैली का नेतृत्व किया। इस अवसर पर श्री मांडविया ने कहा कि इस रैली से पूरे देश में फिटनेस

0: का संदेश जाएगा।
1: दिल्ली में माई भारत के 1000 से अधिक वॉलंटियर्स ने हर घर तिरंगा साइकिल यात्रा के द्वारा देश को फिटनेस का संदेश दिया है। कोई भी राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनना है तो देश के नागरिक स्वस्थ रहे बहुत आवश्यक है। साइकिलिंग ये फिटनेस का संदेश है, पोल्यूशन का सॉल्यूशन है। चलो हम सब लोग हमारी तिरंगा की आन बान और शान के लिए, देश के युवा फिट रहे इस हेतु को सिद्ध करने के लिए साइकिलिंग करते रहे।
0: जम्मू कश्मीर में आज श्रीनगर के प्रसिद्ध डल झील के किनारे बुलवर्ड रोड पर एक विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रैली का नेतृत्व किया, जिसमें हजारों विद्यार्थी, सरकारी कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी और समाज के विभिन्न वर्गों के लोग शामिल हुए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि राज्य सरकार जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए एक विधेयक लाने की योजना बना रही है। बांकुरा में कल पश्चिमांचल उन्नयन परिषद की बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में जल्द ही एक समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में युवाओं, विशेष

0: श्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि राज्य सरकार जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए एक विधेयक लाने की योजना बना रही है। बांकुरा में कल पश्चिमांचल उन्नयन परिषद की बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में जल्द ही एक समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में युवाओं, विशेषकर जेन जी से जुड़ने और कविता के जरिए उनके विचारों को समझने के लिए एक अनोखी पहल शुरू की गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रंग दे बसंती कैंपेन कल शुरू हुआ और ये 14 अगस्त तक राज्य के अलग अलग शहरों में चलेगा।
1: कल रात प्रयागराज की हिंदुस्तानी अकादमी में अपनी कविताओं के माध्यम से माफिया संस्कृति पर निशाना साधा। कार्यक्रम समन्वयक विश्वदीप शुक्ला ने बताया कि वीर रस और ओज रस की कविताओं के माध्यम से युवा पीढ़ी की भावनाओं को समझने वाले 8 कवियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रख्यात गीतकार डॉक्टर विनम्र सेन सिंह और अंतर्राष्ट्रीय कथाकार आचार्य शांतनु जी महाराज ने की। अगला कार्यक्रम आज लखनऊ में आयोजित किया जाएगा। कल मुजफ्फरनगर में कॉमिक्स वितरण और संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा जो युवाओं को जोड़ने के लिए कई रचनात्मक माध्यमों को एक साथ लाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी परीक्षार्थियों का विरोध प्रदर्शन 19वें दिन में प्रवेश कर गया है। विद्यार्थी कथित परीक्षा अनियमितताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच के नेतृत्व में जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्रों का आंदोलन जारी है। छात्र संदिग्ध परीक्षाओं को रद्द करने, सीबीआई जांच और भर्ती प्रक्रिया में सुधार की मांग दोहरा रहे हैं। छात्रों ने कल शाम मौन जुलूस निकाला और कहा कि इसका उद्देश्य अपनी मांगों को शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से उठाना है। इसके बाद जिला प्रशासन के अधिकारियों की एक टीम जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंची और आमरण अनशन पर बैठे छात्रों से बातचीत की। छात्रों ने दोहराया कि उनकी प्रमुख मांगें पूरी होने तक आंदोलन और आमरण अनशन जारी रहेगा। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज वैज्ञानिक और पद्म विभूषण से सम्मानित डॉक्टर विक्रम साराभाई को उनकी जयंती पर स्मरण किया। श्री बिरला ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डॉक्टर साराभाई का मानना था कि विज्ञान को केवल प्रयोगशालाओं तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसका उद्देश्य आम आदमी के जीवन को बेहतर बनाना होना चाहिए। कर्कटिका वावू के अवसर पर आज सुबह केरल में हजारों श्रद्धालुओं ने पितृतर्पण देना शुरू किया। हिंदू परंपरा में मलयालम महीने कर्कटम की अमावस्या को दिवंगत आत्माओं की शांति और आध्यात्मिक मुक्ति के लिए अनुष्ठान करने का सबसे पवित्र दिन माना जाता है। अधिकांश मंदिरों में यह अनुष्ठान सुबह 3:30 बजे से 5 बजे के बीच शुरू हुए। समाचार सेवा प्रभाग की विशेष श्रृंखला पर्सन बिहाइंड द स्टोरी के अंतर्गत आगामी कड़ी में आज हम दुनिया के पहले तीनों सेनाओं के महिला नेतृत्व वाले समुद्र यात्रा अभियान का हिस्सा रहीं विंग कमांडर विभा सिंह, स्क्वाड्रन लीडर वैशाली भंडारी और मेजर प्राजक्ता पी निकम से बातचीत करेंगे। इस बातचीत को आज शाम 5:10 से 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर सुना जा सकता है। श्रोता इस कार्यक्रम को न्यूज ऑन एआईआर ऐप और न्यूज ऑन एआईआर के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण कल सुबह 9:10 से किया जाएगा। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 2-3 दिनों तक देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों, सिक्किम, हिमालयी पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, पश्चिम मध्य प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान, गुजरात, कोंकण, गोवा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर के साथ साथ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश में कई जगहों पर लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मॉनसून की वर्षा का क्रम रुक रुक कर जारी है, जिसके चलते कई स्थानों में सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। मंडी जिला प्रशासन ने भारी बारिश के कारण भूस्खलन और पत्थर गिरने के खतरे के दृष्टिगत मंडी कुल्लू राष्ट्रीय उच्च मार्ग 21 और मंडी जोगिंदर नगर राष्ट्रीय उच्च मार्ग 154 पर यातायात बीती रात से ही पूर्णतः बंद रखा है। 45 विद्युत ट्रांसफार्मर जबकि 82 पेयजल योजनाएं भी प्रभावित है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज प्रदेश के 6 जिलों कांगड़ा, मंडी, कुल्लू, शिमला, चंबा और लाहौल स्पीति में भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई जिलों में आज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।
4: मौसम

0: विज्ञान विभाग ने आज उड़ीसा में व्यापक बारिश का अनुमान लगाया है, जिसमें ज्यादातर जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश या गरज के साथ बछौरे पड़ने की संभावना है। उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे सटे इलाकों में ऊपरी हवा में चक्रवाती परिसंचरण के कारण आज उसी क्षेत्र में कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। इस सिस्टम से उड़ीसा में बारिश की गतिविधि बढ़ने की उम्मीद है। IMD ने अनुगुल और केंदुझर जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश के लिए ऑरेंज वार्निंग जारी की है। मछुआरों को भी सतर्क रहने की सलाह दी गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: नाइजीरिया के लागोस में आयोजित राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत ने पदक जीतने का शानदार सिलसिला जारी रखा है। करण सिंह और शेरजिन शांतिमोल ने कल रात सीनियर पुरुष स्पर्धाओं में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीते। ये समाचार हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर सबसे ऊपर छाई खबरें हैं। झारखंड में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई को लेकर संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जारी नोकझोंक, और हाल ही में फुकेट से नई दिल्ली आ रहे एयर इंडिया विमान में अस्थिरता की जांच में सामने आई कुछ नई बातें। लोक सत्य की पहली सुर्खी है पक्ष विपक्ष का आमने सामने प्रदर्शन, संसद में हंगामा। नवभारत टाइम्स ने इसी खबर को सचित्र प्रकाशित करते हुए शीर्षक दिया है ऐसे भिड़े सांसद हो गई धक्का मुक्की। जनसत्ता में इस खबर का शीर्षक है संसद परिसर में सत्ता पक्ष विपक्ष के सांसद आमने सामने, भारी हंगामा। पिछले सप्ताह फुकेट से नई दिल्ली आ रही एयर इंडिया की उड़ान के अचानक 300 फुट नीचे आने के मामले में हुई जांच को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए जनसत्ता ने शीर्षक दिया है मारिहुआना के प्रभाव में था पायलट, जबकि अमर उजाला की सुर्खी है एयर इंडिया पायलट गांजा के नशे में था, सहयोगी उड़ा रहा था विमान। पत्र ने पायलट एसोसिएशन द्वारा रखे पक्ष को भी शीर्ष समाचार में जगह देते हुए लिखा है टर्बुलेंस मामले में पायलट एसोसिएशन ने कहा हाइड्रोलिक में खराबी से हुई घटना। दैनिक भास्कर ने मतदाताओं को लुभाने के लिए कुछ राज्यों में बांटे जा रहे उपहारों के मुद्दे को अपनी संपादकीय लेख का विषय बनाया है और शीर्षक दिया है कम से कम गरीब राज्य तो रेवड़ी संस्कृति से दूर रहें।
1: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह आज राज्यसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पेश करेंगे। लोकसभा में खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा का विमोचन करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज सुबह भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को रवाना करेंगे। पूर्वी राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखंड और गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल में आज मूसलाधार बारिश की चेतावनी। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. Union Home Minister Amit Shah to move the Kerala Alteration of Name Bill 2026 for consideration and passing in Rajya Sabha today to alter the name of Kerala. In Lok Sabha, Mines and Minerals Development and Regulation Amendment Bill to be tabled for consideration and passing. Prime Minister Narendra Modi to release autobiography of former President Ramnath Kovind in New Delhi today. Vice President C.P. Radhakrishnan to flag off Har Ghar Tiranga bike rally at Bharat Mandapam in a short while. Alert issued for heavy rainfall over East Rajasthan, Madhya Maharashtra, Odisha, Jharkhand and Gangetic West Bengal today. And in Commonwealth Fencing Championship, Karan Singh, Sherjin Shantimol and Tanishka Khatri clinch gold medals in Lagos, Nigeria. And now the news in detail. Union Home Minister Amit Shah is scheduled to move the Kerala Alteration of Name Bill 2026 for consideration and passing in Rajya Sabha today to alter the name of Kerala. In Lok Sabha, Mines and Minerals Development and Regulation Amendment Bill 2026 is to be tabled for consideration and passing.

0: दी है। राज्यसभा में कौमी इमदादी बाहमी तरक्याती कॉरपोरेशन तरमीमी बिल 2026 को भी आज बहस और मंजूरी के लिए पेश किया जा सकता है। लोकसभा में कानों और मादनियात की तरक्की और इंजबात से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 को आज गौरखौज और मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। मजीद तफसील हमारे नामनिगार से।
1: केरला तब्दीली नाम बिल 2026 आइन के पहले शेड्यूल में रियासत केरला के नाम को केरलम नाम से तब्दील करेगा। इस बारे में कानून साज असम्बली ने जून 2024 में एक करारदाद मंजूर की थी। केरला कानून साज असम्बली की 2026 में मंजूर हुई करारदाद में मरकज से केरला रियासत के नाम को केरलम करने की दरख्वास्त की गई थी। करारदाद में कहा गया है कि मलयालम जबान में रियासत का नाम केरलम है, जबकि आइन के पहले शेड्यूल में इसे केरला लिखा गया है। इस दौरान कानों और मादनियात की तरक्की और इंजबार से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 का मकसद कानों और मादनियात की तरक्की और इंजबार से मुतालिक 1957 के कानून में तरमीम करना है। वहीं इस बिल का मकसद भारत के कानकनी के शोबे को ज्यादा मौसर, सरमायाकारी के लिए ज्यादा साजगार और अहम मादनियात के लिए मुल्क की बढ़ती जरूरतों से हम आहंग करना भी है। दिल्ली से दिलनशी आरजू की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं अब्दुल मालिक।
0: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साबिक सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद की खुदनविश्त भारत गणराज्य के विजय मेरा जीवन मेरे संघर्ष का इजरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इस मौके पर तकरीब से खिताब भी करेंगे। ये खुदनविश्त साबिक सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद की जिंदगी के सफर, उनके तजुर्बों, जद्दोजहद और हुसूलियाबियों का इंतहाई ज़ाती नौयत का खाका पेश करती है। साथ ही उनकी शुरुआती जिंदगी से लेकर भारत के 14वें सदर जमहूरिया के तौर पर अवामी जिंदगी में उनकी खिदमात का अहाता करती हैं। ये किताब उन इकदार, तजुर्बों और हालात से भी वाकिफ कराती है जिन्होंने साबिक सदर जमहूरिया के सफर और अवामी खिदमत को नुमाया किया। वज़ीर आज़म की जानिब से खुदनविश्त का इजरा भारत की सरकर्दा अवामी शख्सियात में से एक की जिंदगी और उनके तआवुन की निशानदही करने का मौका है। नायब सदर सीपी राधाकृष्णन ने अब से कुछ देर पहले नई दिल्ली के भारत मंडपम में हर घर तिरंगा बाइक रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। हर घर तिरंगा मुहिम के तहत मुल्क भर में मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनेकाद किया जा रहा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कल शहरियों से फ़ख्र, ताज़ीम और अजमत के साथ यौम आज़ादी मनाने और तरक्की याफ्ता भारत का अज़्म करने की अपील की थी। इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए गए अपने वीडियो पैगाम में जनाब मोदी ने लोगों से हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, हर मन तिरंगा मुहिम के हिस्से के तौर पर हर घर पर कौमी परचम लहराने की अपील की। खेलों और नौजवानों के उमूर के वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज सुबह नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में हर घर तिरंगा साइकिल यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना किया। जनाब मांडविया ने माय भारत रजाकारों के साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी तक रैली की क्यादत की। मीडिया से बात करते हुए जनाब मांडविया ने कहा कि 1000 से ज्यादा माय भारत रजाकारों ने रैली के जरिए मुल्क तक फिटनेस का पैगाम पहुंचाया है। जनाब मांडविया ने किसी भी मुल्क की तरक्की याफ्ता मुल्क बनने में साइकिल चलाने के फायदों को नुमाया किया।
2: दिल्ली में माय भारत के 1000 से अधिक वॉलंटियर्स ने हर घर तिरंगा साइकिल यात्रा के द्वारा देश को फिटनेस का संदेश दिया है। कोई भी राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनना है तो देश के नागरिक स्वस्थ रहे बहुत आवश्यक है। साइकिलिंग ये फिटनेस का संदेश है, पोल्यूशन का सॉल्यूशन है। चलो हम सब लोग हमारी तिरंगा की आन बान और शान के लिए, देश के युवा फिट रहे, इस हेतु को सिद्ध करने के लिए साइकिलिंग करते रहे।
0: जम्मू कश्मीर में श्रीनगर की मशहूर डल झील के किनारे से मुत्तसिल बुलवार्ड रोड पर आज अजीम तिरंगा यात्रा निकाली गई। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने रैली की क्यादत की जिसमें हजारों तलबा, सरकारी मुलाजमीन, सिक्योरिटी अहलकारों और मुख्तलिफ तबकात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। झारखंड में JPSC JSSC के उम्मीदवारों का एहतजाज 19वें दिन में दाखिल हो गया है। तलबा अपनी भूख हड़ताल जारी रखे हुए हैं और इम्तिहानात में मुबैना बेजाबतगियों पर कार्रवाई का मुतालबा कर रहे हैं। रांची में देर रात जिला इंतजामिया एहतजाजी मुजाहरे की जगह पर पहुंचने के बाद कशीदगी में इजाफा हो गया। पेश है एक रिपोर्ट।
3: तलबा ने कल शाम खामोश मार्च निकाला और कहा कि ये मार्च पुरअमन और जमहूरी तरीके से उनके मुतालबात को उठाने के लिए था। बाद अज़ा जिला इंतजामिया के अफसरान की एक टीम जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में एहतजाज कर रहे तलबा के पास पहुंची और भूख हड़ताल पर बैठे तलबा से बात की। तलबा रहनुमा ने कहा कि इंतजामिया ने कोर कमेटी के मेम्बरान की तफसीलात मांगी हैं और यकीन दहानी कराई कि वो इस अमल

0: और क्यूंझार अजला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि बालासोर, भद्रक, जाजपुर, केंद्रपाड़ा, कटक और संबलपुर समेत दीगर कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। माहीगीरों को सलाह दी गई है कि वो समंदर में ऊंची लहरें उठने के मद्देनजर चौकस रहें। ज़िरात और किसानों के बहबूद के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में हरियाली अमावस्या के मौके पर बड़े पैमाने पर शजरकारी मुहिम में हिस्सा लेंगे। मुल्क भर में जनाब चौहान के वृक्ष मित्र अभियान से जुड़े हजारों कारकुन भी उनकी अपील पर अपने अपने गांवों और शहरों में इस मुहिम में हिस्सा लेंगे। मुल्क में 50,000 से ज्यादा पौधे लगाने का इज्तिमाई अहद किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने बाकी 19 रियासतों और मरकज के जिलंतजाम इलाकों से कहा है कि वो कैंसर को काबिल इत्तला मर्ज करार देने पर गौर करें ताकि मर्ज का जल्द पता लगाया जा सके और मरीजों के मुनासिब इलाज को यकीनी बनाया जा सके। भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत की सरबराही वाली एक बेंच ने कल ये हिदायत जारी की। अदालत को बताया गया था कि 36 रियासतों और मरकज के जिले इंतजाम इलाकों में से 17 ने पार्लियामानी कायमा कमेटी की सिफारिशात के बाद पहले ही काबिल इत्तला बीमारी के तौर पर कैंसर को नोटिफाई कर दिया है। मरकज ने अदालत को बताया कि सेहत रियासत का मौजू है और वाजे किया कि 17 रियासतों ने पहले ही कैंसर को नोटिफाई कर दिया है। नाइजीरिया के लागोस में जारी दौलत मुश्तरका तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत की तमगे जीतने वाली मुतासिरकुन कारकर्दगी का सिलसिला जारी है। मर्दों के सीनियर मुकाबलों में कल रात भारत के करण सिंह और शेरजिन शांतिमोल ने मुल्क के लिए सोने के तमगे जीते। वहीं मर्दों के सीनियर फॉइल मुकाबले में भारत के तलवारबाज तेजस पाटिल ने भी शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए कांस्य का तमगा जीता। इधर खवातीन भारतीय तलवारबाजों ने भी शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया और खवातीन के सीनियर एपी मुकाबले में 3 तमगे जीते। इनमें तनिषा खत्री का सोने का तमगा और उनकी हमवतन खुशी दाभाड़े का चांदी का तमगा शामिल है। ये थीं खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं अब्दुल मालिक।
1: शुक्रिया जमीर। कौमी राजधानी से शाये होने वाले आज के उर्दू अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी के लिए मुंतखब किया है। रोजनामा प्रताप की एक खबर के मुताबिक वजीर अजम नरेंद्र मोदी आज साबिक सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद की खुदनविश्त भारतीय गणराज्य की विजय मेरा जीवन मेरे संघर्ष का इजरा करेंगे। इसी अखबार ने दिल्ली असेंबली में कौमी गीत वंदे मातरम गूंजने और वजीर आला रेखा गुप्ता और मेम्बरान असेंबली के तिरंगा लिए हुए असेंबली पहुंचने को बड़ी खबर बनाया है।
0: और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज राज्यसभा में केरला रियासत के नाम को तब्दील करने वाला केरला तब्दीली इनाम बिल 2026 बहस और मंजूरी के लिए पेश करेंगे। लोकसभा में कानों और मादनियात की तरक्की और इंजबात से मुतालिक तरमीमी बिल को गौर व खौज और मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साबिक सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद की खुदनविश्त का इजरा करेंगे। नायब सदर सीपी राधाकृष्णन ने भारत मंडपम में हर घर तिरंगा बाइक रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। मशरकी राजस्थान, वस्ती महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखंड और गंगाई मगरबी बंगाल में आज शदीद बारिश से मुतालिक अलर्ट जारी किया गया है। और नाइजीरिया के लागोस में जारी दौलत मुश्तरका तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारतीय तलवारबाजों करण सिंह, शेरजिन शांतिमोल और तनिष्का खत्री ने सोने के तमगे जीते हैं। इसके साथ ही आकाशवाणी से यह खबरनामा खत्म हुआ।

0: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
3: मेहमान आएंगे, हो सकता है इंडिया मैच जीतेगा, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन एचआईवी का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
4: एचआईवी को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के आईसीटीसी केंद्र पर एचआईवी टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org

नमस्कार श्रोताओं, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र और समय हो गया है कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज का। वी आर नॉट डिस्ट्रैक्टेड, वी आर जस्ट रीडिफाइंड। हम भटके युवा नहीं हैं, हम बस नए दौर के हिसाब से खुद को ढाल चुके हैं। जी हाँ श्रोताओं, आज है 12 अगस्त, वो तारीख जब हम युवाओं के जुनून, उनके सपने, उनकी उड़ान, उनकी ऊर्जा और उनकी शक्ति के रूप में मनाते हैं। आज का ये दिन अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में हम मनाते हैं। आज जब हम विकास की बात करते हैं, तकनीक की बात करते हैं, स्टार्टअप्स की बात करते हैं, पृथ्वी से लेकर आकाश तक को नापने की हिम्मत करते हैं, तो इन सब के पीछे जो शक्ति काम करती है वो हमारे इन युवाओं की होती है। साल 1999 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 17 दिसंबर को एक प्रस्ताव पास करके आज का यानी 12 अगस्त का दिन विश्व युवा दिवस के रूप में घोषित किया था। पहली बार इसे साल 2000 में 12 अगस्त के दिन मनाया गया। इस दिन को मनाने का उद्देश्य था दुनिया भर के युवाओं के मुद्दों को सामने लाना, उनकी भागीदारी बढ़ाना और उन्हें विकास का साझेदार बनाना। साल 2026 का विश्व युवा दिवस का थीम है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट कॉमन एस्पिरेशंस, यानी अलग अलग परिस्थितियां समान आकांक्षाएं। और सही भी है कि अलग अलग परिस्थितियों में रहने वाले जो युवा हैं उनकी आकांक्षाएं एक जैसी हैं, जैसे सम्मान, अवसर, अच्छी शिक्षा, रोजगार और बेहतर भविष्य। भारत में भी हम 12 जनवरी विवेकानंद जयंती के दिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं, लेकिन विश्व स्तर पर ये 12 अगस्त का दिन वैश्विक एकजुटता के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है।

युवा केवल हमारा भविष्य नहीं वर्तमान है, आज का वर्तमान ही कल का भविष्य तय करेगा। दुनिया की आबादी का बड़ा हिस्सा युवा है, भारत तो युवाओं का देश है, लेकिन आज का युवा बहुत से चुनौतियों का सामना कर रहा है, जैसे बेरोजगारी, मानसिक तनाव, शिक्षा की गुणवत्ता, डिजिटल डिवाइड, जलवायु परिवर्तन और सामाजिक दबाव। फिर भी युवा सबसे अधिक इनोवेटिव हैं, उनमें एडेप्टेशन है और सबसे बढ़कर उम्मीद भी। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उठो जागो और लक्ष्य प्राप्त होने तक मत रुको। आज भी उनका ये वाक्य उतना ही प्रासंगिक है। आप में से बहुत से लोग अभी पढ़ रहे हैं, नौकरी ढूंढ रहे हैं, स्टार्टअप कर रहे हैं या समाज सेवा में लगे हैं। हमारी छोटी सी की गई कोशिश भी बड़ा बदलाव ला सकती है। प्रधानमंत्री जी ने भी यही संदेश दिया है, वोकल फॉर लोकल। हमें एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि युवा कहलाने के लिए केवल कम उम्र का होना ही ज़रूरी नहीं है, बल्कि हर वो व्यक्ति युवा है जिसके अंदर कुछ अलग, कुछ नया करने की हिम्मत हो, जो केवल सपने ही न देखता हो बल्कि उसे सच करने के लिए एड़ी से चोटी का जोर लगा देता हो और असफल होने पर हार मानने की बजाय एक बार और कोशिश करते हैं, ऐसा विचार रखता हो, क्योंकि कोशिश करते रहने पर कभी न कभी सफलता हमारे हाथ लग ही जाती है। ज़रूरत होती है लगातार मेहनत करते रहने की, वो भी पूरी ईमानदारी के साथ।

आज के युवाओं के पास आधुनिक तकनीक का ज्ञान है, वो इन तकनीकों का इस्तेमाल पर्यावरण के संरक्षण में, मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देने के बारे में, शिक्षा के क्षेत्र में व्याप्त असमानता के बारे में, महिलाओं और उपेक्षितों की आवाज बनने में कर सकता है। कोई भी महान काम करने में समय लगता है, वो रातों रात नहीं हो जाता, इसलिए मेहनत, निरंतरता और धैर्य ही असली ताकत है। सभी युवा देश और दुनिया के असली चेंज मेकर्स हैं।

आज का युवा सिर्फ रील्स का ट्रेंड नहीं सेट कर रहा, ये आसमान में भारत का नया ट्रेंड भी लिख रहा है। जब देश की लगभग 750 युवा लड़कियां एक होकर अपना आज़ादी सैट अंतरिक्ष में भेजती हैं तो समझ आता है ये नया भारत है, ये युवा भारत है। यहाँ सिर्फ रील्स ट्रेंड्स नहीं बल्कि हमारे यूथ की कोडिंग, साइंस और सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में भी ट्रेंड सेट कर रहा है।

अंत में अपने सभी युवाओं को हम अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं और उनके लिए एक कोट, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज। थोड़ी देर में आप सुनेंगे फिल्म संगीत।

0: सुनो ना,
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है, हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
0: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
2: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
3: जी,
2: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
3: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
2: पर ये होगा कैसे?
3: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाए।

0: या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
1: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
0: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
1: बस
0: बस
1: समझ गया।
0: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: चलता हूँ हर सुबह शाम।
1: आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का ये पहला गाना 72 घंटे फिल्म से। आशीष चटर्जी के बोल हैं, संजय बोस ने संगीतबद्ध किया है, आवाजें हैं सुखविंदर सिंह और अनुप्रिया चटर्जी की।

ये है छिछोरे फिल्म का गीत, लिखा है अमिताभ भट्टाचार्य ने, संगीत दिया है प्रीतम ने, आवाजें हैं नकाश अजीज देवनेगी, अमित मिश्रा, अमिताभ भट्टाचार्य, श्री रामचंद्र और अंतरा मित्रा की।

और अब अंत में हम आपको बाटला हाउस फिल्म का गाना सुनवा रहे हैं। लिखा है देव कोहली ने, संगीत है तनिष्क बागची का, आवाजें हैं नेहा कक्कड़, तुलसी कुमार और बी प्राक की।

0: आप सुन रहे थे फिल्म संगीत, आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 9:15 होने को है। थोड़ी देर में हमारा अगला प्रसारण होगा, हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा करें।
1: रायबरेली और शाहजहांपुर जिले की हलचल।
2: जिले की हलचल, आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए रायबरेली और सहारनपुर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं रायबरेली जिले की हलचल। आलेख और स्वर है पंकज सिंह का।
3: रक्षाबंधन और कांवड़ यात्रा को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग ने जिले में बड़ी कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। सहायक आयुक्त खाद्य मानिक चंद्र सिंह ने सभी होटल, रेस्टोरेंट और मिठाई प्रतिष्ठानों के संचालकों को सख्त निर्देश जारी करते हुए गुणवत्ता और साफ सफाई में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतने की चेतावनी दी है। सहायक आयुक्त ने स्पष्ट किया कि मिठाइयों से भरी ट्रे पर बेस्ट बिफोर और यूज्ड बाय की जानकारी वाले स्टिकर अनिवार्य रूप से लगाए जाएं। बिना लेवल के मिठाइयों की बिक्री पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। कांवड़ यात्रा मार्ग पर पड़ने वाली खाद्य दुकानों पर उपभोक्ताओं की शिकायत और फीडबैक के लिए QR बार कोड प्रणाली लागू की गई है, ताकि श्रद्धालु सीधे विभाग तक शिकायत दर्ज करा सकें। होटल और रेस्टोरेंट से निकलने वाले इस्तेमाल किए गए तेल के सुरक्षित निस्तारण और प्रबंधन के संबंध में भी विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री रोकने के लिए विभाग ने विशेष सचल दल तैनात किया है, जो लगातार बाजारों, मिठाई दुकानों और भोजनालयों की जाँच कर रहा है। रक्षाबंधन को देखते हुए मिठाइयों के लगातार नमूने लेकर प्रयोगशाला जांच के लिए भेजे जा रहे हैं। सहायक आयुक्त खाद्य मानिक चंद सिंह ने बताया,
4: कोई भी पेरिसेबल आइटम हो या नॉन पेरिसेबल आइटम, उनका बेस्ट बिफोर और या यूज बाई जरूर मेंशन करें। सभी आपके फूड हैंडलर मेडिकल टेस्ट अपना करा लें, क्योंकि जो भी कंज्यूमर आए उनके लिए एक रिडक्शन सिस्टम रखें, जिसपे उनसे फीडबैक लें कि क्या सही है क्या गलत है, कि जो भी डिब्बे की क्वालिटी हो उसको।

0: इंश्योर करें, इस हिसाब से डिपो का भी संचालन रखें जिससे कि किसी प्रकार की शिकायत न हो। अगर किसी प्रकार की शिकायत या प्राप्त होती है तो उनके खिलाफ फिर फूड सेफ्टी एक्ट के तहत विधिक कार्रवाई की जाएगी।
1: श्रावण मास में आबकारी विभाग ने कांवड़ यात्रा में पड़ने वाली शराब की सभी दुकानों को कपड़े से ढकवा दिया है। जनपद में लालगंज, डलमऊ, सलोन व ऊंचाहार के मार्ग ऐसे हैं जहां से श्रद्धालु पैदल चलकर गंगा घाट पहुंचते हैं। इन सभी मार्गों में पड़ने वाली शराब की दुकानों को ढकवाने का निर्देश दिया गया है। जिला आबकारी अधिकारी दिनेश कुमार ने बताया,
2: जिले में कुल 58 दुकानें चिन्हित की गई हैं जिन्हें कपड़े से ढका गया है, और कपड़े से ढकने का मुख्य कारण यही है कि जो कांवड़ यात्रा के मार्ग में दुकानें लोगों को दिखाई ना पड़े, उनका ध्यान बनना है, कोई किसी प्रकार का व्यवधान पैदा ना हो। परिक्षेत्र में पड़ने वाले सभी संदिग्ध ग्रामों पर भी हम सतत निगरानी रख रहे हैं और लगातार हमारी प्रवर्तन कार्यवाही की जा रही है।
1: श्रावण मास के पहले सोमवार को जनपद रायबरेली पूरी तरह शिवमय हो उठा। भोर की पहली किरण के साथ ही मंदिरों की घंटियां गूंज उठी और भगवान भोलेनाथ के जयकारों से वातावरण भक्तिमय हो गया। ब्रह्म मुहूर्त से ही श्रद्धालु गंगा जल, दूध, दही, शहद, बेलपत्र, धतूरा, भांग, अक्षत, पुष्प और अन्य पूजन सामग्री लेकर मंदिरों की ओर रवाना होने लगे। महिलाएं मंगल गीत गाते हुए मंदिर पहुंची, युवाओं ने कांवर लेकर भोलेनाथ का जलाभिषेक किया और बुजुर्ग श्रद्धालुओं ने शांत भाव से शिवलिंग पर जल अर्पित कर परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। शहर के प्रसिद्ध जगमोहनेश्वर मंदिर में सुबह 4 बजे से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतार लगनी शुरू हो गई। मंदिर परिसर के बाहर सैकड़ों श्रद्धालु हाथों में जल कलश और पूजा सामग्री लिए अपनी बारी का इंतजार करते दिखाई दिए। मंदिर में प्रवेश के लिए अलग अलग कतारें बनाई गई थीं ताकि महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों को असुविधा न हो। रायबरेली के ओई गांव में बारिश के जमीन धंसने से एक सुरंग और पक्की दीवार जैसी संरचना दिखाई दी। इस अनोखी संरचना को देखने के लिए देखते ही देखते पूरे गांव की भीड़ जमा हो गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीएम महाराजगंज और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई लखनऊ मंडल की टीम मौके पर पहुंची। सहायक पुरातत्वविद डॉक्टर मनोज कुमार यादव के नेतृत्व में टीम सीढ़ी के सहारे इस रहस्यमय सुरंग के अंदर उतरी। सुरंग के अंदर जांच के दौरान पुरातत्व विभाग की टीम को कई ऐतिहासिक चीजें मिली हैं। यहां से प्राचीन काल की पुरानी ईंटें, मिट्टी के सुराही और एक हैंडल वाली धूपदानी बरामद की गई है। एक्सपर्ट के शुरुआती आकलन के मुताबिक ये सभी अवशेष कुषाण कालीन बताए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, जांच के दौरान गांव के ही रहने वाले अशोक प्रताप मौर्य के पास से भी कई प्राचीन अवशेष मिले हैं जिन्हें वो 1985 से सहेज कर रखे हैं। बताया जा रहा है यह ओई भीट पुरातत्व विभाग के अभिलेखों में दर्ज एक ऐतिहासिक स्थल है। सुरक्षा के लिहाज से प्रशासन ने पूरे इलाके को सील कर दिया है। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है और ग्रामीणों को गड्ढे के पास जाने से मना किया गया है। एएसआई की विस्तृत रिपोर्ट आने के बाद ही इस प्राचीन और ऐतिहासिक सुरंग के बारे में और जानकारी मिल सकेगी। हर घर तिरंगा अभियान को जन आंदोलन का स्वरूप देने और इसमें अधिकाधिक जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जिलाधिकारी सरनीत कौर प्रोगा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक सम्पन्न हुई। जिलाधिकारी ने कहा कि व्यापारिक संगठनों, स्वैच्छिक संस्थाओं, निजी संस्थानों तथा अन्य सामाजिक संगठनों के सहयोग व जन भागीदारी से हर घर तिरंगा अभियान सफल बनाया जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि यह अभियान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों तथा राष्ट्र की सेवा में अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीरों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है। अभियान के दौरान जनपद के अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाए, राष्ट्रनायकों की प्रतिमाओं का अलंकरण कराया जाए तथा प्रमुख बाजारों, चौराहों और पार्कों को तिरंगा थीम पर सजाया जाए। उन्होंने बताया कि हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत सभी शासकीय भवनों, शैक्षणिक संस्थानों, होटलों, कार्यालयों आदि पर ध्वजारोहण, सम्मान और तिरंगा प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी तथा नागरिक गण को तिरंगे के साथ सेल्फी लेकर उसे वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए प्रेरित किया जाए।
3: रायबरेली जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं सहारनपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है विजयंत कुमार सैनी का।
4: सहारनपुर में श्रावण कांवड़ यात्रा सकुशल ढंग से संपन्न हुई। हरिद्वार से गंगा जल लेकर यहां से अपने गंतव्य की ओर रवाना हुए लाखों शिव भक्तों के जयघोष से जिला शिवमय बना रहा। कांवड़ मार्ग पर जगह जगह सेवा शिविर, भंडारे और स्वागत कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रशासन और पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। हर हर महादेव और बोल बोल बम के जयघोष से वातावरण भक्ति में रहा। मंडलायुक्त डॉक्टर उपेश कुमार एवं डीआईजी अभिषेक सिंह के निर्देशों के क्रम में जिलाधिकारी अरविंद कुमार चौहान, एसएसपी अभिनंदन, नगर आयुक्त शिपुगिरी, सीडीओ सुमित राजेश महाजन के नेतृत्व में यात्रा को सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने के लिए प्रशासन ने पूरे कांवड़ मार्ग को 3 सुपर जोन, 11 जोन और 23 सेक्टरों में बांटकर 69 सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किए। 4 नियंत्रण कक्षों में 54 अधिकारी कर्मचारी 24 घंटे ड्यूटी पर रहे। 12 प्रमुख मंदिरों पर जलाभिषेक के लिए 14 मजिस्ट्रेट तैनात किए

0: गए। 40 अस्थाई चौकियां, 27 बैरियर, 32 पिकेट, 15 वॉच टावर स्थापित किए गए। कावड़ मार्ग पर स्ट्रीट लाइट, जनरेटर, शौचालय और खाद्य सुरक्षा की व्यवस्था की गई। करीब 148 ढाबों, रेस्टोरेंट और होटलों की नियमित जांच भी की गई। कावड़ियों के स्वागत में मंडलायुक्त डॉक्टर रूपेश कुमार और डीआईजी अभिषेक सिंह ने हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की। इससे एक दिन पूर्व नगर निगम की ओर से महापौर डॉक्टर अजय कुमार ने भी नगर आयुक्त शिवपुगिरी और योग गुरु भारत भूषण के साथ हेलीकॉप्टर से कांवड़ियों पर फूल बरसाए। वहीं गागलहेड़ी में करीब 2,70,000 रुपए के नोटों से सजी कांवड़ भी आकर्षण बनी। जिले में युवाओं को राष्ट्र निर्माण से जोड़ने के लिए माई भारत पोर्टल पर पंजीकरण अभियान चलाया जा रहा है। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हुई जिला सलाहकार समिति की बैठक में युवाओं को स्वयं सेवा, कौशल विकास, इंटर्नशिप और नेतृत्व विकास के अवसरों की जानकारी दी गई। ब्लॉक, ग्राम पंचायत और शहरी वार्ड स्तर पर अधिक से अधिक युवाओं को पंजीकरण कराने के निर्देश दिए गए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय की वार्षिक पत्रिका नवोदय प्रभात का डीएम अरविंद कुमार चौहान ने विमोचन किया। पत्रिका में विद्यार्थियों की मूल रचनाओं और विद्यालय की गतिविधियों को शामिल किया गया है। जनपद स्तरीय डेयरी कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री स्वदेशी गो संवर्धन योजना के तहत चयनित 14 महिलाओं और 14 पुरुषों समेत 28 लाभार्थियों को चयन एवं अनुमति पत्र दिए गए। कार्यक्रम में स्वदेशी नस्ल की गायों को बढ़ावा देने और पशुपालकों की आय बढ़ाने पर जोर दिया गया। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर भी तैयारियां चल रही हैं। स्वतंत्रता दिवस से पहले बड़ी संख्या में तिरंगे तैयार किए जा रहे हैं। सरकारी कार्यालयों और सार्वजनिक स्थानों के साथ आम लोगों को भी अभियान में शामिल किया जा रहा है। वहीं आगामी त्योहारों और परीक्षाओं को देखते हुए जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 23 सितंबर तक लागू की गई है। बिना अनुमति जुलूस, सभा और प्रदर्शन पर रोक रहेगी। परीक्षा केंद्रों के आसपास भीड़ और निर्धारित क्षेत्र में फोटो कॉपी स्कैनर संचालन पर प्रतिबंध रहेगा। चाइनीज और सिंथेटिक मांझे के निर्माण, बिक्री और उपयोग पर भी रोक लगाई गई है। पुलिस सीओ के गनर राहुल ढाका हत्याकांड में अदालत ने मेहताब उर्फ काना उर्फ जीवा और सादर खां को उम्र कैद की सजा सुनाई। दोनों पर 75-75 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया। अभियोजन की ओर से 17 गवाह पेश किए गए। 5 मई 2013 को चिलकाना क्षेत्र में पेट्रोल पंप लूट के बाद बदमाशों का पीछा करते हुए गनर राहुल ढाका की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। नानोता स्थित किसान सहकारी चीनी मिल में करीब 68 लाख रुपए के गबन का मामला सामने आया। आरोप है कि ठेकेदारों से मिलीभगत कर एक ही काम को दो बार भुगतान कराया गया। इस मामले में पुलिस ने अकाउंटेंट चैतन्य राम ठाकुर को गिरफ्तार किया है।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
2: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी प्रयागराज है। लीजिए सुनिए समूह स्वरों में देशगान

0: अभी आप समूह स्वरों में देशगान सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। 9:30 होने वाले हैं। थोड़ी देर में हमारा अगला प्रसारण होगा। हमारे अगले प्रसारण की बस थोड़ी सी प्रतीक्षा।
1: हाजिर है आपकी खिदमत में आपका मेजबान मोहम्मद फर्रुख जमाल। आज के उर्दू प्रोग्राम का आगाज करेंगे डॉक्टर दरख्शां ताजवर के एक मकाले से, जिसका उनवान है हिंदुस्तान की जंग आज़ादी का बेखौफ अखबार पयाम आज़ादी। और कलाम शायर के तहत आज के शायर हैं जनाब शब्बीर अजीजी। लेकिन पहले समाअत फरमाइए एक मुख्तसर तकरीर तहरीक आज़ादी और उर्दू अखबार। ख्वातीन हजरात, पूरे मुल्क में जश्न आज़ादी की तैयारियाँ अपने शबाब पर हैं, और क्यों ना मनाएं हम ये जश्न आज़ादी, क्योंकि एक तवील स्याह रात के बाद हमारा मुल्क गुलामी की जंजीरों से आज़ाद हुआ। लेकिन क्या आपको मालूम है कि आज़ादी के हुसूल में इस आज़ादी को पाने के लिए न जाने कितनी माओं ने अपने बेटों को, कितनी बहनों ने अपने भाइयों को और कितनी सुहागिनों ने अपने शौहरों की कुर्बानियाँ पेश की, तब कहीं जाकर हमारा मुल्क आज़ाद हुआ। हिंदुस्तान की जंग आज़ादी की तारीख में शहीदान वतन की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। आज़ादी वतन की खातिर जानिसार करने वालों के साथ साथ मुल्क के अदीबों, शायरों और सहाफ़ियों ने भी अपने कलम से तलवार का काम लिया। उस अहद के मुतादिद अखबार और ख़ास तौर से उर्दू अखबार जिन्होंने हुकूमत बरतानिया की नींदें हराम कर दीं। उर्दू अखबार के महदूद ज़राए के बावजूद अखबारों की बेबाकी, जुर्रत और हौसला मंदी का कोई जवाब न था। उर्दू ज़बान में शाया होने वाला पहला अखबार जामे जहनुमा, जो सन 1822 में कलकत्ता से शाया हुआ, इसके मालिक हरिहरदत्त और एडिटर लाला सदा सुखलाल थे। एदाद शुमार पर अगर

महेंद्र सरीन के लिखे इस भजन के बाद अब हम आपको दादू दयाल का ये भजन सुनवा रहे हैं। आवाज़ है अरुण गुलवाड़ी की।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे थे अरुण गुलवाड़ी के गाए भजन। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। ठीक 10 बजे आप सुनेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा ट्रम्प ऑफ द इंडियन रिपब्लिक माई लाइफ माई स्ट्रगल्स का विमोचन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के जीवन और संघर्षों का उल्लेख किया। श्री मोदी इस समय सभा को संबोधित कर रहे हैं, आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
1: साथियों, बचपन के इन संघर्षों के बीच कोविंद जी ने शिक्षा को अपने सामर्थ्य को बढ़ाने का मार्ग बनाया। उन्होंने मेहनत की, उन्होंने संसाधनों की कमी को कमजोर नहीं बनने दिया और एक ऐसे मुकाम तक पहुंचे जिसकी कल्पना भी तब लोगों ने नहीं की होगी।
0: गृह मंत्री अमित शाह आज राज्यसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पेश करेंगे। राज्यसभा में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पर भी विचार और उसे पारित करने की संभावना है। एक रिपोर्ट।
2: केरल नाम परिवर्तन विधेयक का उद्देश्य संविधान की पहली अनुसूची में राज्य का नाम केरल से बदलकर केरलम करना है। इस संबंध में केरल विधानसभा ने जून 2024 में एक प्रस्ताव पारित किया था। प्रस्ताव में कहा गया था कि मलयालम में राज्य को केरलम के नाम से जाना जाता है, जबकि संविधान की पहली अनुसूची में इसका नाम केरल दर्ज है। इस बीच खान और खनिज विकास और विनियम संशोधन विधेयक 2026 का उद्देश्य खान और खनिज अधिनियम 1957 में संशोधन करना है। इस विधेयक का उद्देश्य देश के बढ़ते महत्वपूर्ण खनिजों की मांग को पूरा करने के लिए भारत के

0: खनन क्षेत्र को अधिक प्रभावी, निवेश के अनुकूल और सक्षम बनाना है। दिलनशी आरज़ू की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को रवाना किया। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नागरिकों से स्वतंत्रता दिवस को सम्मान, गर्व और गौरव के साथ मनाने और विकसित भारत का संकल्प लेने का आग्रह किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए गए एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने लोगों से हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, हर मन तिरंगा अभियान के अंतर्गत हर घर में राष्ट्रीय ध्वज फहराने की अपील की। जम्मू कश्मीर में भी आज श्रीनगर के प्रसिद्ध डल झील के किनारे बुलेवार्ड रोड पर एक विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रैली का नेतृत्व किया, जिसमें हजारों विद्यार्थी, सरकारी कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी और समाज के विभिन्न वर्गों के लोग शामिल हुए। मुंबई के विले पार्ले में कल रात आग लगने की घटना में 2 लोगों की मौत हो गई और 4 अन्य घायल हो गए। अधिकारियों के अनुसार विले पार्ले पश्चिम में एक भूतल और 12 मंजिला इमारत की 11वीं मंजिल पर आग लग गई थी। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति के लिए साक्षात्कार की प्रक्रिया आज समाप्त हो रही है। इस पद के लिए 5,200 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें से अंतिम चरण की जाँच के बाद 18 उम्मीदवारों को चुना गया है। झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी परीक्षार्थियों का विरोध प्रदर्शन 19वें दिन भी जारी है। विद्यार्थी कथित परीक्षा अनियमितताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर हैं। रांची में जिला प्रशासन के देर रात विरोध स्थल पर पहुंचने के बाद तनाव बढ़ गया है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि राज्य सरकार जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए एक विधेयक लाने की योजना बना रही है। बांकुरा में कल पश्चिमांचल उन्नयन परिषद की बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में जल्द ही एक समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस संबंध में एक मसौदा विधेयक तैयार किया जा चुका है। श्री अधिकारी ने आरोप लगाया कि धार्मिक संस्थानों की स्थापना के नाम पर विदेशों से धन प्राप्त हो रहा है और इस धन का उपयोग धर्मांतरण के लिए किया जा रहा है। नाइजीरिया के लागोस में आयोजित राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत ने पदक जीतने का शानदार सिलसिला जारी रखा है। करण सिंह और शेरजिन शांतिमोल ने कल रात सीनियर पुरुष स्पर्धाओं में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीते। सीनियर महिला स्पर्धा में भारतीय महिला फेंसरों ने फिर शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 पदक अपने नाम किए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज और एफएम 14.3 मेगा हर्ट्ज पर इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। प्रस्तुत है कार्यक्रम वॉयस ऑफ प्रयागराज। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं डॉक्टर जीएस तोमर से की गई अभिनव प्रज्ञा पांडे की बातचीत का पहला भाग।
3: श्रोताओं नमस्कार, वॉइस ऑफ प्रयागराज कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं अभिनव प्रज्ञा पांडे। सेहत एक ऐसी चीज जिसके बारे में कहा जाता है कि सबसे बड़ा धन आज के समय में इस भागती दौड़ती जिंदगी के बीच में अगर कुछ है तो वो सेहत है। अपने लिए समय निकाल पाना, अपने शरीर के लिए समय निकाल पाना, खासकर उन सांसों के लिए समय निकाल पाना जो हमको मिली हैं, और शायद जैसा कहा जाता है कि हर व्यक्ति उतनी ही सांसें लेता है जितनी उसको दी गई हैं ऊपर वाले की तरफ से। ऐसी कई सारी समस्याएं होती हैं और सबसे ज़्यादा अपनी पूरी जीवन शैली को लेकर के, उसमें आयुर्वेद आजकल हम किसी ना किसी रूप में अपना रहे हैं, खासकर कोरोना के बाद से। लेकिन कई बार लोगों को पता नहीं होता है कि किस मात्रा में क्या चीज़ कितनी लेनी चाहिए या आयुर्वेद की आज के समय में क्या महत्ता है, क्या प्रासंगिकता है, क्यों जरूरी है। इन विषयों पर बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रयागराज के प्रख्यात आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर जीएस तोमर। डॉक्टर जीएस तोमर, आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में और वॉइस ऑफ प्रयागराज कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
4: धन्यवाद अभिनव जी, आपने एक ऐसे विषय को चुना है कि हमारे यहाँ कहा गया है कि पहला सुख है उत्तम काया।
3: क्या बात।
4: और यही नहीं, हमारे भारतीय धर्मशास्त्र में कहा गया है कि धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्य मूलम उत्तमम रोगा तस्यापहर्तारा श्रेयसो जीवितस्य च। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ चतुष्टय हैं।

0: इन चारों की ही योजना करने के लिए, चारों को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति जीवन भर निरंतर प्रयासरत रहता है।
1: बिल्कुल
0: तो इन चारों का मूल बताया गया आरोग्य को, स्वास्थ्य को। तुम पहले स्वस्थ रहेंगे तभी हम धर्मार्थ का काम कर पाएंगे, अर्थ का उपार्जन कर पाएंगे
1: जी
0: और कामना की पूर्ति कर पाएंगे, अल्टीमेटली हम मोक्ष के लिए प्रवृत्त हो पाएंगे। स्वास्थ्य के लिए हमारे यहाँ कहा गया है कि बहुत महत्वपूर्ण है। अब बात आती है कि स्वास्थ्य को हम प्राप्त कैसे करें। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि स्वास्थ्य की जो परिभाषा, या आपको जान के प्रसन्नता होगी कि हमारे भारतीय धर्मशास्त्र में, हमारे भारतीय ज्ञान परंपरा में सुश्रुत संहिता एक हमारा ग्रंथ है आयुर्वेद
1: जी
0: का, उसने 5,000 साल पहले स्वास्थ्य की जो परिभाषा दी, समदोषः समाग्निश्चय समधातु मलक्रिया प्रसन्नात्मेन्द्रिय मन स्वस्थ इत्यादि। तो इसको WHO को जो परिभाषा स्वास्थ्य के देता है उसको परिभाषा बदलनी पड़ी। परिभाषा उसने दी थी कि हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ एब्सेंस ऑफ डिसीजेज और इनफर्मिटी। अगर शरीर में कोई रोग नहीं है तो हम स्वस्थ हैं। जब सुश्रुत की परिभाषा की तरफ ध्यान गया तो उन्होंने कहा कि प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मन, हम शारीरिक रूप से स्वस्थ हों तो केवल

0: इंद्रियों मना स्वास्थ्य इत्यादि थे। तो इसको WHO को जो परिभाषा स्वास्थ्य के देता है उसको परिभाषा बदलनी पड़ी। परिभाषा उसने दी थी कि हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ एब्सेंस ऑफ डिसीजेज और इनफर्मिटी। अगर शरीर में कोई रोग नहीं है तो हम स्वस्थ हैं। जब सुसुप्ति की परिभाषा की तरफ ध्यान गया तो उन्होंने कहा कि प्रसन्न आत्म इंद्रिय मना, हम शारीरिक रूप से स्वस्थ हों तो केवल स्वस्थ नहीं हो सकते जब तक हम मानसिक रूप से भी स्वस्थ ना हों,
1: बिल्कुल,
0: और हम जो है आध्यात्मिक रूप से भी स्वस्थ ना हों तब तक हम स्वस्थ नहीं रह सकते। लिहाजा परिभाषा बदली गई।
1: बिल्कुल,
0: आज विश्व स्वास्थ्य संगठन कहता है कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से जब तक हम स्वस्थ नहीं है तब तक हम स्वस्थ अपने आप को नहीं कह सकते। यही दृष्टिकोण है। आयुर्वेद कहता है कि इलनेस टू वेलनेस, वेलनेस टू हैप्पीनेस।
1: क्या बात है।
0: अंतिम लक्ष्य हमारा है सुखपूर्वक, प्रसन्नतापूर्वक जीवन का यापन करना। यह आयुर्वेद का मूल उद्देश्य है।
1: आजकल हम देखें डॉक्टर जी एस तोमर, तो हमारे पास जो हमारी जीवन शैली हो गई है, बहुत सारे लोग शिफ्ट्स में काम करते हैं, उनके पास खुद के लिए समय नहीं होता है। और सबसे बड़ी चीज़ एक डिवाइस हमारे हाथ में आ गई है 6 इंच की, जिसे कहते हैं मोबाइल। आज आप, अभी आपने मानसिक स्वास्थ्य की बात की, मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर खासकर जो हमारी सरकार है वो कोरोना के बाद से बहुत अधिक सक्रिय हो गई है। हम पहले ध्यान भी नहीं देते थे कि ये मानसिक स्वास्थ्य आखिर होता क्या है। किसी को समस्या होती भी थी तो वो मानता नहीं था। आयुर्वेद किस तरह से हमारे मानसिक स्वास्थ्य को ठीक कर सकता है, प्रभावित कर सकता है, और खासकर आजकल जो स्क्रीन टाइम हमारा इतना बढ़ गया है, अगर हम पुरानी जीवन शैली देखें तो हमारे खान पान से लेकर के हमारी जो जीवन शैली थी रोज़ की, उसमें स्वतः ही व्यायाम शामिल होता था। खासकर अगर हम ग्रामीण परिक्षेत्र की बात करें, एक तो हमारा ताज़ा होता था खाना, उसमें कई सारी आयुर्वेदिक या जड़ी बूटियाँ हम खाने में ही प्रयोग करते थे। आज की अगर हम बात करें, इन सारी चीज़ों को लेते हुए हमारा शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य आयुर्वेद किस तरह से प्रभावित कर सकता है?
0: देखिए, कोरोना कालखंड में न केवल आयुर्वेदीय औषधियों का प्रचार प्रसार हुआ, हमारा आयुष क्वाथ, 97% अमेरिकन्स ने हमारे आयुष क्वाथ को अपनाया, 93% यूके पॉपुलेशन ने हमारे आयुष क्वाथ को अपनाया, दिल्ली पुलिस पर्सनल के 80,000 पुलिस पर्सनल को आयु रक्षा किट हम लोगों ने प्रोवाइड किया और कोई भी कोरोना से प्रभावित नहीं हुआ। तो न केवल आयुर्वेद औषधियों का प्रचार प्रसार हुआ बल्कि आयुर्वेदीय जीवन शैली, हमारी नमस्कार की पद्धति को सारे विश्व ने अपनाया और हम लोगों ने जो अपनी जीवनचर्या थी, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, प्रातःकाल तांबे के पात्र में रखा हुआ जलपान करना, इसे कहते हैं उषापान, और साथ साथ में आपको योग और व्यायाम का एक नियम बताया गया, नाक में अणु तेल डालना, मुंह में जो है अपना तेल का, इसे कहते हैं हम मुंह में तेल को रखना, ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ जो बताई गई अपने आप में बड़ी ही वैज्ञानिक तथ्यों से लेके बनी हुई हैं। और आपने जो महत्वपूर्ण बात हमारे सामने कही कि आयुर्वेद में 3 उपस्तंभ माने गए हैं, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। आहार के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि सबसे महत्वपूर्ण घटक आहार है, कि शरीर का निर्माण आहार से होता है
1: जी।
0: और आहार अगर आपने सही तरीके से प्रयोग नहीं किया तो आप रोगाक्रांत हो जाएंगे। तो इसके लिए हम क्या खाएँ, कितना खाएँ, कब खाएँ, ये सारी चीज़ें हमारी नियमबद्ध हैं, तो इनका हम पालन करें। पहली बात होती है क्या खाएं। हमारी प्राचीन परंपरा में हमारा श्री अन्न, जिसको हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने मिलेट्स ईयर में घोषित किया, मोटा अनाज, ज्वार, बाजरा, सावा, कोदो, चैना, कुटकी, कुट्टू, रामदाना, ये हमारे रसोई के अंग हुआ करते थे।
1: बिल्कुल।
0: जैसे ये रसोई में कम पड़ने लगा तो हरित क्रांति आई, तो हमारा 80% भूभाग जो सिंचित था वो हमारा चावल, गेहूं और मक्का ने ले लिया, और नतीजा क्या हुआ कि आज हम जो है उन गोरी रोटियों की तरफ, अपने मूल चीज़ से हट करके गेहूं और चावल की तरफ चले गए, जिनके अंदर ग्लूटन होता है, तमाम प्रकार की बेकारिक समस्याएं होती हैं। आज मैं कह सकता हूं अपने शोध के आधार पर कि गेहूं और चावल मधुमेह के रोगियों के लिए पैदा करने का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कारण है, इसीलिए आज भारतवर्ष मधुमेह की राजधानी बन रहा है, डायबिटीज़ की कैपिटल बनता जा रहा है
1: जी।
0: तो हमें को क्या खाना चाहिए, आज पुनः हम वहीं आ गए हैं, मड़ुआ पूर्वांचल में जो हम प्रयोग करते हैं। मैंने कोरोना कालखंड के साथ जब हमारा मिलेट्स ईयर घोषित हुआ उसमें हम लोगों ने 1000 व्याख्यान पूरे देश में दिए और हमने देखा कि जगह जगह लोगों ने अब हमारे यहाँ इन सब का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया है। अब तो मल्टी ग्रेन आटा जो है बड़ा पॉपुलर हो रहा है। तो मैं कहना चाहूँगा कि हमको निश्चित रूप से अपनी पारंपरिक रसोई की तरफ जाना चाहिए। कितना खाएं, हम अपने स्टमक को 4 हिस्से अनुमानित बना लें, 2 हिस्से सॉलिड फूड से भरें, 1 हिस्सा जलीय द्रव्यों से भरें, चाहे वो छाछ हो, चाहे फ्रूट का जूस हो, चाहे दुग्ध हो, और एक

0: एक हिस्सा खाली छोड़ दें।
1: ये मैं रोकना चाहूंगा, ये आप कहते तो है, लेकिन ये जब भूख लगती है तो सामान्य प्रश्न उठता है कि पता कैसे चले कि हमारा दो हिस्सा भरा है।
0: आपका सामान्य अनुमान है कि अगर हमारी चार चपाती की रोटी की भूख है, निर्धारित हो जाता है कि हम दिन में चार चपाती खाते हैं, तो हमें कोशिश करना चाहिए उस अमाउंट को हम ऐसे कैलकुलेट करें कि हम तीन चपाती खाएंगे, इतना फ्रूट जूस लेंगे
1: जी
0: अपने अकॉर्डिंगली, क्योंकि यहाँ पर आयुर्वेद एक पर्सनलाइज्ड व्यक्तिगत विज्ञान है। योग मासाम तो योग विद्या देश कालोपपादितम पुरुषम पुरुषम बीच सके वो विश्वकर्मा।
1: क्या
0: हर
1: बात है,
0: व्यक्ति का एक अलग प्रकृति होती है, हर व्यक्ति का एक अलग मापदंड होता है,
1: बिल्कुल
0: उस हिसाब से हम निर्धारित करें। कोई व्यक्ति दो रोटी खाता है, कोई चार खाता है, कोई छह खाता है, उसी हिसाब से हम निर्धारित करें कितनी मात्रा लें।
1: डॉक्टर साहब, आपने कह तो दिया कि ब्रह्म मुहूर्त में उठें और उषापान करें, लेकिन हमारा जो युवा ब्रह्म मुहूर्त में सोना ही शुरू करता है, वो कैसे ब्रह्म मुहूर्त में उठेगा?
0: आज के वैज्ञानिकों ने शोध करके सामने देख रख दिया है कि रात्रि के अंधकार में सोने से ही आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, क्योंकि जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं, जो जागृत होते हैं,
1: जी
0: जिनसे कम हुआ शरीर में शिथिलता आती है, आराम मिलता है, ये इसका नोबेल प्राइज लोगों को मिला है कि हम रात्रि के अंधकार में ही सोएंगे तभी हमको लाभ मिलेगा। और हमारे बच्चों का क्या होता है कि रात को अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, ये कहने की बात रह गई है, हमारे देश के लोग इसको फॉलो नहीं करते। रात के 2 बजे जब सोना हो रहा है तो
1: जी
0: सवेरे 8 बजे जगेंगे, सूर्योदय का दर्शन उनके भाग्य में नहीं है। तो हमको प्रयास करना चाहिए कि किसी भी कॉस्ट में सबसे महत्वपूर्ण शाम का भोजन जो डिनर है
1: जी
0: वो हर हालत में 7 बजे तक हम कर लें, मैक्सिमम अप टू 8, और 8 बजे के बाद में हम बिल्कुल अगर नहीं खा पाते हैं तो अब दुग्ध पीने के बाद छोड़ दें, खाने को स्किप कर दें। और प्रातःकाल ब्राह्म मुहूर्त में उठने का अभ्यास करें, 6 से 7 के बीच में तो उठ ही जाना चाहिए, अच्छा हो कि 5 से 6 के बीच में उठें।
1: क्या बात, डॉक्टर साहब, बातचीत तो आगे भी जारी रहेगी। बीच में, चूंकि संगीत भी बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए, खासकर मानसिक स्वास्थ्य के लिए, कोई गीत अगर आप हमारे श्रोताओं से साझा करना चाहें।
0: ये गीत तो हमारा एक ऐसी परंपरा है कि जिन पुष्पों में, पेड़ पौधों में फूल नहीं आते, फल नहीं आते,
1: जी
0: उनको अगर हम गीत और सुनाते हैं, संगीत सुनाते हैं, तो उनके अंदर एक तरंगे पैदा करने के बाद एक बड़ी उत्कृष्ट अनुभूति होती है।
1: जी
0: तो मनुष्य के अंदर तो स्वाभाविक प्राणी है, तो एक बहुत ही अच्छी कला है और एक अपनी चिकित्सा भी है, मानसिक रोगों के लिए संगीत एक चिकित्सा है।
1: बिल्कुल,
0: तो मैं ये मौसम, इस समय बरसात का है, तो बादल बिजली
1: चंदन पानी
0: चंदन पानी
1: जैसा अपना
0: ऐसा
1: प्यार,
0: अपना प्यार, ही बहुत अच्छा गाना पसंद आता है हम
1: क्या
0: लोगों
1: बात है,
0: को,
1: क्या बात है,
0: तो यदि उसको आप
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो
0: शुरू
1: आइए सुनते हैं
0: करवाएं
1: ये गीत और अपने
0: फूलों के रंग
1: श्रोताओं को भी
0: से
1: सुनवाते हैं।
0: दिल की।

0: बड़ा खूबसूरत सा गीत था और इस मौसम में एक अलग ही रौनक पैदा कर रहा था। खैर, हम बात कर रहे थे अपनी जीवन शैली और आयुर्वेद की। डॉक्टर साहब, भारत विश्व का सबसे युवा देश है। युवा तर्क करता है, अनुसंधान करता है, रिसर्च करता है। बहुत सारे युवा ये प्रश्न करते हैं आज कि आयुर्वेद ठीक है, अच्छा है, लेकिन आयुर्वेद की कुछ सीमाएं हैं। जैसे वो ऑपरेशन, जो शल्य चिकित्सा है, ऑपरेशंस में आयुर्वेद उतना आज प्रभावी नहीं है। दूसरा, उनका एक ये भी कहना होता है कि दवाएं तो दे दी जाती हैं, सब वैद्यों की बात नहीं करते, लेकिन बहुत सारे वैद्य दवा तो दे देते हैं, लेकिन उनको मात्रा या जो कंपोजिशन है उसका बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं होता है। ये बात सच है क्या?
1: देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि आपको आश्चर्य होगा कि सुश्रुत संहिता में जो हमारी सर्जरी के बारे में, ऑपरेशंस के बारे में, प्लास्टिक सर्जरी के बारे में, अंग प्रत्यारोपण के बारे में, किस प्रकार से गणेश जी को हाथी का सिर लगाया गया, किस प्रकार से वृषणों का दान किया गया, किस प्रकार से अश्विनी कुमार को घोड़े का सिर लगा हुआ है और दक्ष प्रजापति को बकरे का सिर लगा हुआ है, ये विद्या उस समय बड़ी हमारी पारंगत थी। और सुश्रुत संहिता में शल्य के जो उपकरण और यंत्र शस्त्रों का जो उल्लेख किया गया है, आज की नई तकनीक ने केवल उनको परिमार्जन किया है, कोई नया सिद्धांत नहीं
0: तो
1: दिया।
0: आयुर्वेद इतना परिमार्जन क्यों नहीं कर पाया आज?
1: ये आयुर्वेद का जो परिमार्जित रूप था, इसको विदेशों की धरती पर जो ब्रिटिशर्स थे उसको लेके गए, और आज आपको जान के आश्चर्य होगा कि ऑस्ट्रेलिया के जनरल कॉलेज ऑफ फिजिक सर्जन का के गेट पर सुश्रुत की एक चित्र बड़ा मूर्ति लगी हुई है, उसके नीचे लिखा है फादर ऑफ सर्जरी। कैलिफोर्निया मेडिकल स्कूल में जब मैं गया अमेरिका में, तो मैंने
0: जी
1: देखा कि जीवक का एक तैल चित्र लगा हुआ था, बड़ा सा, नीचे लिखा हुआ था फर्स्ट न्यूरो सर्जन ऑफ द वर्ल्ड। आज आपके इस ज्ञान की परंपरा को संपूर्ण विश्व स्वीकार करता है कि जड़ें जो हमारी शल्य की हैं वो हमारे महर्षि सुश्रुत से जुड़ी हुई हैं और इन्होंने ही सारी चीज़ें हमारी दी। आपको एक जान के आश्चर्य होगा कि आज फेको सर्जरी, जो हमारे आंखों का, जो हम कॉर्निया को निकालते हैं और कैटरेक्ट की सर्जरी करते हैं,
0: जी
1: सुश्रुत ने जिस स्थान पर शल्य करने का विधान किया उसको सुनकर के लोग पहले उपहास करते थे, आज एग्जैक्ट

0: लिए उसी पॉइंट पर सर्जरी करने के बाद कैटरेक्ट का ऑपरेशन करते हैं। 24 शस्त्र बताए गए और हमारे यंत्र बताए गए, उनके बारे में जो गणना की गई, ऑपरेशंस के प्रकार बताए गए, छेद्यम वेद्यम तथा लेक्यम एशम आहरणम तथा, इसके अलावा कोई नया कर्म नहीं है। प्लास्टिक सर्जरी का जो बताया गया कि कहाँ से अंग लेकर के कैसे प्लास्टिक सर्जरी किया जाए, इसको सब लोग आज भी स्वीकार करते हैं कि सुश्रुत वाज द फर्स्ट प्लास्टिक सर्जन ऑफ द वर्ल्ड।
1: तो श्रोताओं, वॉइस ऑफ प्रयागराज में आज आपने सुना प्रख्यात आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर GS तोमर से बातचीत का पहला भाग। वॉइस ऑफ प्रयागराज के अगले अंक में हम इसका दूसरा भाग लेकर के आएंगे। जुड़े रहिए हमसे और सुनते रहिए आकाशवाणी। चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं इस खूबसूरत से गीत के साथ।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वॉयस ऑफ प्रयागराज। आज इस कार्यक्रम में आप सुन रहे थे डॉक्टर G.S. तोमर से अभिनव प्रज्ञ पांडे की बातचीत का पहला भाग। प्रस्तुति थी अभय कांत तिवारी की। आकाशवाणी के हम प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे लोकगीत।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। प्रस्तुत है लोकगीतों का कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं सुरेंद्र प्रसाद सिंह और साथियों के गाए लोकगीत। सबसे पहले लीजिए सुनिए ये देवी गीत।

आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से आप सुन रहे हैं लोकगीत और आज कलाकार हैं सुरेंद्र प्रसाद सिंह और साथी। लीजिए अब सुनिए सुरेंद्र प्रसाद सिंह और साथियों का गाया ये कजरी गीत।

लोकगीतों के कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे सुरेंद्र प्रसाद सिंह और साथियों के गाए लोकगीत। ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है।

0: सुबह सवेरे आध्यात्मिक चेतना का कीजिए विकास आराधना के साथ।
1: विचारों की तरंग और भावनाओं की उमंग, नमस्कार प्रयागराज के संग।

0: एक ही कलाकार में फिल्मी सितारों का सफरनामा। जोड़िए दिल से दिल के तार हेलो फरमाइश के साथ।
1: गृह लक्ष्मी के साथ होंगी घर की

0: लोक रंग लोक उमंग लेकर आता है पनघट।
1: युवाओं की सोच को आवाज देता कार्यक्रम युववाणी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: और पंचायत घर में होंगी खेत खलिहान और चौपाल की बातें।

0: संस्कृत हिंदी और उर्दू कार्यक्रमों का संगम सिर्फ आकाशवाणी पर। तू शायर है,
1: मैं तेरी शायरी। समाज का प्रतिबिंब और जन जन की आवाज आईना के साथ।
2: तू आशिक है, मैं तेरी आशिकी।
0: सिल्वर स्क्रीन से खुलेगा सिनेमा की सुनहरी यादों का एल्बम।

0: लिफाफों में बंद एहसासों के रंग, चिट्ठी आई है के संग। पहली
1: बार सुबह से रात तक आपकी आवाज आपके साथ।
0: सुनते रहिए आकाशवाणी प्रयागराज, धड़कन हर दिल की।
1: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही कलाकार।

नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का हमारे इस खास संगीतमय सफर में बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, जब भी भारतीय संगीत में चंचलता और रोमानियत की बात होती है तो एक नाम खुद ब खुद हमारे होठों पर आ जाता है। जी हाँ, आशा भोसले का। शास्त्रीय गायकी की गहराई से लेकर कैबरे तक आशा जी ने हर सुर को एक नया आयाम दिया है।

श्रोताओं, 60 और 70 के दशक में जब आशा जी ने ओपी नैयर साहब और आरडी बर्मन साहब के साथ काम करना शुरू किया तो संगीत को एक नई तरंग मिली। उनकी आवाज में एक ऐसी खनक और चंचलता थी जिसने हर किसी को झूमने पर मजबूर कर दिया। आइए सुनते हैं ऐसा ही एक क्लासिक और रोमांटिक गीत

श्रोताओं, आशा जी की गायकी के करियर में चार फिल्में मील का पत्थर साबित हुईं। फिल्म नया दौर, तीसरी मंजिल, उमराव जान और रंगीला। नया दौर आशा जी की पहली बड़ी सफल फिल्म है। मोहम्मद रफी के साथ गाए उनके गीत जैसे मांग के साथ तुम्हारा, साथी हाथ बढ़ाना, साहिल लुधियानवी द्वारा लिखित और ओपी नैयर साहब द्वारा संगीतबद्ध गीतों ने उन्हें एक खास पहचान दी।

श्रोताओं, आशा भोसले राहुल देव बर्मन की फिल्म तीसरी मंजिल से काफी प्रसिद्ध हुई। जब पहले उन्होंने गाने की धुन सुनी तो गीत आजा आजा इस गीत को गाने से मना कर दिया था, जो वेस्टर्न डांस पर आधारित था। तब आर डी बर्मन ने संगीत को बदलने का प्रस्ताव आशा जी के सामने रखा, किंतु आशा जी ने चैलेंज स्वीकार करते हुए 10 दिन के लगातार अभ्यास के बाद जब अंतिम दौर पर यह खास गीत आशा जी ने गाया तो खुशी से आर डी बर्मन ने 100 रुपए का नोट आशा जी के हाथ में रख दिया।

श्रोताओं, अगर आपको लगता है कि आशा जी सिर्फ तेज और चुलबुले गानों की मलिका थी तो जरा सोचिए। सन 1981 में आई फिल्म उमराव जान ने दुनिया को आशा भोसले का एक बिल्कुल नया रूप दिखाया। खयाम साहब के संगीत में जब आशा जी की मखमली आवाज में गजलें ढली तो उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया। आइए सुनते हैं।

श्रोताओं, आठ दशकों का लंबा सफर, हजारों गाने, अनगिनत यादें। आशा जी भोसले केवल एक गायिका ही नहीं बल्कि भारतीय संगीत का एक ऐसा जज्बा थी जो कभी पुराना नहीं होता। वक्त की सुइयां हमें इजाजत नहीं देती, वरना ये कारवा यूं ही चलता रहता।

और अब जतिन ललित के संगीत निर्देशन में सुनिए समीर की रचना। फिल्म का नाम है कुछ कुछ होता है और

श्रोताओं, फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप इस समय आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से सुन रहे हैं। और अब अरिजीत सिंह को सुनिए फिल्म छिछोरे में।

थ्री इडियट्स। लीजिए इस फिल्म में सुनिए सोनू निगम, स्वानंद किरकिरे और शान को।

दिल धड़कने दो। लीजिए इस फिल्म में सुनिए प्रियंका चोपड़ा और फरहान अख्तर को। गीतकार हैं जावेद अख्तर और संगीतकार शंकर एहसान लॉय।

श्रोताओं, आज के फिल्म संगीत में आपने जिन फिल्मों के गीत सुने उनके नाम हैं केदारनाथ, डंकी, कुछ कुछ होता है, छिछोरे, थ्री इडियट्स और दिल धड़कने दो। इसी के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

0: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। हमें ये नहीं भूलना है कि हम पहले इंसान हैं, बाद में हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई। आइए सांप्रदायिक सद्भाव का प्रण लें। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है। अनेकता में एकता इसकी विशेषता है। आकाश में सितारों की तरह आपस में मिलजुल कर रहिए। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। 12 बजने को है, थोड़ी देर में आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है। संसद भवन परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में श्री शाह ने कहा कि विपक्ष आज ही चर्चा के लिए सदन में उपस्थित हो। उन्होंने कहा कि हमारे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में आज सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने की कोशिश की, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर को मिले चंदे में कथित अनियमितताओं का मुद्दा उठाया। श्री बिरला ने विपक्षी सदस्यों से सदन की कार्यवाही चलाने देने की अपील की। अध्यक्ष ने कहा कि सरकार विपक्ष की मांग पर सहमत हो गई है और गृहमंत्री अमित शाह बयान देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने सत्ता पक्ष और विपक्ष से सहमति बनाने तथा संवाद के जरिए आगे बढ़ने की अपील की। लगातार हंगामा जारी रहने के कारण सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। सदन की कार्यवाही शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों ने विभिन्न मुद्दों पर हंगामा किया, जिस वजह से सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा भारतीय गणराज्य की विजय मेरा जीवन मेरा संघर्ष का विमोचन किया। ये आत्मकथा श्री कोविंद के उल्लेखनीय जीवन सफर का एक व्यक्तिगत विवरण प्रस्तुत करती है। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति के रूप में रामनाथ कोविंद का मार्गदर्शन उनके लिए शक्ति का एक बड़ा स्रोत रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने युवा पीढ़ी से रामनाथ कोविंद के जीवन की कहानी उन्हीं के शब्दों में जानने और उनके लेखन और अनुभवों को पढ़ने का आग्रह किया।
2: हमें भविष्य में कोविंद जी जैसे अनेकों युवा चाहिए जो परेशानियों से परास्त न हो, जो मुश्किलों से मायूस न हो, बल्कि अपनी मेहनत से हर मंजिल को आसान बनाने का हौसला रखे। इसी बदलाव से सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प पूरा होगा। यहीं से आत्मनिर्भर और विकसित भारत का रास्ता बनेगा।
1: इस अवसर पर श्री कोविंद ने कहा कि राजनीति केवल सत्ता हासिल करने का साधन नहीं है, बल्कि राष्ट्र की सेवा करने का एक जरिया भी है। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 संस्थागत पारदर्शी और जवाबदेह न्यायाधिकरण प्रशासन की दिशा में परिवर्तनकारी बदलाव का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि ये राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग को एक मजबूत न्यायाधिकरण प्रणाली के केंद्र में रखता है। एक अंग्रेजी दैनिक के लिखे लेख में श्री मेघवाल ने कहा कि ये विधेयक न्यायाधिकरणों के मूल अधिकार क्षेत्र में कोई परिवर्तन किए बिना उनकी शासन संरचना को मजबूत करने का प्रयास करता है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि सेवा

0: मृत आरआरपीएस डॉक्टर भूमा वीजी को मॉरिशस के अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक सर्विस एंड इनोवेशन एआईपीएसआई के कुलपति पद के लिए चुना गया है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि एआईपीएसआई मॉरिशस का पूर्व सिविल सर्विस कॉलेज है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम ने मार्च 2025 में संयुक्त रूप से किया था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को रवाना किया। हर घर तिरंगा अभियान के तहत देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नागरिकों से स्वतंत्रता दिवस को सम्मान, गर्व और गौरव के साथ मनाने और विकसित भारत का संकल्प लेने का आग्रह किया। जम्मू कश्मीर में आज श्रीनगर के प्रसिद्ध डल झील के किनारे बुलेवार्ड रोड पर एक विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है। ब्यूरा हमारे संवाददाता से।
1: छात्र संदिग्ध परीक्षाओं को रद्द करने, सीबीआई जांच और भर्ती प्रक्रिया में सुधार की मांग दोहरा रहे हैं। छात्रों ने कल शाम मौन जुलूस निकाला और कहा कि इसका उद्देश्य अपनी मांगों को शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से उठाना है। इसके बाद जिला प्रशासन के अधिकारियों की एक टीम जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंची और आमरण अनशन पर बैठे छात्रों से बातचीत की। छात्रों ने दोहराया कि उनकी प्रमुख मांगे पूरी होने तक आंदोलन और आमरण अनशन जारी रहेगा। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने अमेरिका में आयोजित ग्रैंड शतरंज टूर की प्रतियोगिता सिंकफील्ड कप के दूसरे दौर में जावखोरिन सिंदारोव को हराकर अपनी पहली जीत दर्ज की। इस जीत के साथ ही प्रज्ञानंदा 2 मैचों में 1.5 अंक पर पहुंच गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी। The news read by Sarabjit Kaur. Both the houses of parliament have been adjourned till 2 p.m. following opposition uproar over several issues, including alleged police action during students' protests over the NEET issue. When the Lok Sabha assembled at 11 a.m., Lok Sabha Speaker Om Birla tried to take up the question hour, but the opposition members raised the issue of alleged police action during students' protests and alleged anomalies in Ayodhya Ram Mandir donations. Mr. Birla said, "Today the country is celebrating International Youth Day, and the youth of the country also want discussions on issues concerning them." The Speaker urged the opposition members not to undermine the dignity of Parliament and allow the House to take up question hour, but the opposition were on their feet pressing their demand. However, due to continuous uproar by the opposition members, the Speaker adjourned the House till 2 p.m. Prime Minister Narendra Modi today released the autobiography of former President Ram Nath Kovind titled Triumph of the Indian Republic, My Life, My Struggles. In New Delhi, the autobiography offers a deeply personal account of Mr. Kovind's remarkable life journey, tracing his experiences, struggles and achievements from his early years to his distinguished public life and eventual service as the 14th President of India. Speaking on the occasion, Mr. Modi said that Mr. Kovind's autobiography will not only provide insights into his life, personality and contributions, but also serve as a legacy for Indian democracy and society.
3: हमें भविष्य में कोविंद जी जैसे अनेकों युवा चाहिए जो परेशानियों से परास्त न हो, जो मुश्किलों से मायूस न हो, बल्कि अपनी मेहनत से हर मंजिल को आसान बनाने का हौसला रखे। इसी बदलाव से सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प पूरा होगा। यहीं से आत्मनिर्भर और विकसित भारत का रास्ता बनेगा।
2: Union Minister of State for Law and Justice Arjun Ram Meghwal today underlined that the Tribunal Reforms Bill 2026 marks a transformative shift towards institutionalized, transparent and accountable tribunal governance, placing the National Tribunals Commission at the core of a stronger tribunal ecosystem. Writing an article for an English daily, the minister noted that the bill seeks to strengthen the governance architecture of tribunals without altering their substantive jurisdiction. Mr. Meghwal added that the bill represents the next stage of a broader reform journey aimed at making India's legal and regulatory ecosystem more modern, predictable, and effective.

0: founding fathers of India's space program. In Himachal Pradesh, four people were killed in an accident while nine others were injured after a Bolero pickup vehicle fell into a deep gorge at Gatlong in Sirmaur district. The condition of two of the injured is reported to be critical. The injured have been referred to the medical college in Nahan for treatment. The police are currently investigating the matter. Benchmark domestic equity indices were trading around 0.7% lower in the forenoon session today. The Sensex shed 555 points to 77,599, while the Nifty dropped 177 points to 24,295 when reports last came in. Indian Grandmaster R. Pragananda defeated Javakir Sindhrov in a second round match of the Singfield Cup in St. Louis, United States. In his first victory in the tournament, which is the penultimate event of the Grand Chess Tour. And that is the end of this news bulletin.
1: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। संसद समीक्षा आप सुनेंगे रात 8 बजे और रात 10 बजे सुनिएगा संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग। रात में 9:30 पर कार्यक्रम होगा चर्चा का विषय है। ये सभी कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। बोलते नगमे ये प्रोग्राम आप सुनेंगे शाम 7:31 पर। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में दिन में 12:15 पर आज सुनिएगा गुरु प्रसाद शर्मा का वॉयलिन वादन। श्रोताओं के फोन कॉल्स पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम हेलो फरमाइश होगा दिन में 12:30 पर। दिन में 1:15 पर गृहलक्ष्मी कार्यक्रम में आज बहने डॉक्टर मनीष कुमार सिंह की वार्ता सुनेंगी क्या होती है सामाजिक पूंजी और सांस्कृतिक पूंजी। एनसीईआरटी का स्पॉन्सर प्रोग्राम सुनिएगा दिन में 2:30 पर। शाम 6:30 पर पंचायत घर कार्यक्रम में सुरेंद्र प्रताप सिंह और साथियों के गाय लोकगीतों का आनंद लीजिएगा। हमारा सबरस कार्यक्रम आप सुनेंगे रात में 8:30 पर। अभी आप आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में सुन रहे थे।

और अब खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं सुनिए। हीरालाल कोरी सूचित करते हैं कि अलका दिनांक 25 जून सन 2026 से लापता है। अलका की आयु लगभग 16 वर्ष, कद 5 फीट 2 इंच, रंग गोरा और चेहरा गोल है। वो सलवार सूट पहने हुए हैं। अलका के मिलने की सूचना कृपया इस पते पर दें। श्री हरिलाल कोरी, पुत्र सतई राम, निवासी ग्राम सराय राजू, थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़। मोबाइल नंबर है 7524043050। मोबाइल नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 7524043050। एक और खोए हुए व्यक्ति के संबंध में सूचना सुनिए। अमृतलाल सरोज सूचित करते हैं कि मंजू देवी दिनांक 29 जून सन 2026 से लापता हैं। मंजू देवी की आयु लगभग 25 वर्ष, कद 5 फीट 2 इंच, रंग गोरा और चेहरा गोल है। मंजू देवी के मिलने की सूचना कृपया इस पते पर दें। अमृतलाल सरोज, पुत्र बद्री प्रसाद, निवासी ग्राम पूरे बसंतराय, थाना लालगंज, जनपद।

पथ प्रतापगढ़। मोबाइल नंबर है 8175868319। मोबाइल नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 8175868319। अभी आप खोई हुई व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं सुन रहे थे।

आकाशवाणी के हम प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज सुनिए गुरु प्रसाद शर्मा का वॉयलिन वादन। प्रस्तुत है वॉयलिन पर राग सिद्ध सारंग। कलाकार हैं गुरु प्रसाद शर्मा। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं संदीप कुमार चक्रवर्ती।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप गुरुप्रसाद शर्मा का वॉयलिन वादन सुन रहे थे। आप सुन रहे थे वॉयलिन पर राग शुद्ध सारंग। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे संदीप कुमार चक्रवर्ती। आकाशवाणी के हम प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। पेश है प्रोग्राम हेलो फरमाइश। पेश कर रही हैं मधु कुमार।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अपना नाम बता दीजिए।
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्कार जी।
1: रेखा यादव कुकुड़ा
0: जी। रेखा जी, कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मैम चलो सजना जहाँ तक घटा चले।
0: लता जी की आवाज में ये बड़ा ही खूबसूरत सा गाना है। और फिल्म का नाम बताएंगी आप? चलो सजना जहाँ तक घटा चले। तो इस फिल्म का मैं आपको नाम बता देती हूँ। इस फिल्म का नाम है मेरे हमदम मेरे दोस्त। फिल्म का ये गाना है, लता जी की आवाज़ में बहुत ही मधुर सा गीत है। और रेखा जी ने फरमाइश की हंडिया से। तो रेखा जी किसी का नाम लेना है आपने?
1: हाँ मैम
0: जी बताइए।
1: बच्चों का नाम लेंगे आयुष और अनन्या
0: जी,
1: हमारे नाना नानी और मैम आप।
0: अरे वाह, तो चलिए भाई सुनते हैं मेरे हमदम मेरे दोस्त फिल्म का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम, अपना नाम बताइए
1: सोनू जायसवाल साहब पर प्रतापगढ़ से बोल रहा
0: जी। सोनू जी, कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: लव का।
0: अच्छा, ये आमिर खान की एक फिल्म आई थी जूही चावला के संग।
1: जी हाँ, एक।
0: अच्छा, तो उसका कौन सा गाना है?
1: जीना है प्यार में जी।
0: जीना है प्यार में जीना, ये गीत की फरमाइश आई है सोनू जी से। तो आइए सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गाना, लीजिए सुनिए।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अपना नाम बता दीजिए।
1: गांव दोदापुर पोस्ट उमरी प्रयागराज निवासी आरणी मधु दीदी, मैं आपका जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति श्री राधा सुखी मथुरा से आपको करता हूँ सादर नमस्कार।
0: नमस्कार जी, बताइए कौन सा गीत सुनेंगे।
1: दीदी गीत सुनना है हम साथ साथ हैं,
0: जी
1: और गीत के बोल हैं फूलों में खुशबू है।
0: बहुत ही सुंदर गीत है हम साथ साथ हैं फिल्म का, और शारदा प्रसाद प्रजापति जी ने इसकी फरमाइश की है। अगर आपको
1: जी
0: नाम लेने हैं अपने मित्रों के तो ले लीजिए।
1: जी मैं सर्वप्रथम याद करना चाहता हूँ राजेंद्र कुमार जी को, जिन्होंने 31 जुलाई के कार्यक्रम में अपने गीतों के साथ में मेरा भी नाम शामिल किया, मुझे याद किया। मैं उन्हें हृदय से धन्यवाद करता हूँ। और इस गीत में प्यारा सा खूबसूरत जो गीत मैंने पसंद किया है राजेंद्र कुमार जी को समर्पित करते हुए ये याद करना चाहता हूँ राकेश कुमार भैया नेजा वाले को, गुलाब प्रजापति बाबूगंज को, और साथ में हमारे जो मित्र हैं लोकेंद्र वर्मा है, राजू यादव हैं, राजू लवानिया हैं, महेश चौधरी, महेंद्र सिंह, भजन लाल जी, इन सभी दोस्तों के साथ में ये प्यारा सा खूबसूरत गीत आकाशवाणी प्रयागराज से सभी श्रोताओं को सादर सम्मानित करता हूँ।
0: तो सुनवाते हैं आपकी पसंद का हम साथ साथ हैं फिल्म का ये गाना, लीजिए सुनिए।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम, अपना नाम बताइए।
1: सुरेंद्र यादव, बांका जलालपुर, दोस्त महुआई में, जिला प्रयागराज।
0: जी सुरेंद्र जी, कौन सा गीत
1: बरसात
0: सुनेंगे?
1: का जी
0: बरसात का गीत?
1: जी मैडम।
0: अच्छा, जिसमें बरसात का जिक्र हो, ऐसा गाना सुनना चाहते हैं सुरेंद्र जी?
1: जी मैम।
0: चलिए तो हम आपको सुनवा देते हैं ये गीत, आशा करते हैं आपको पसंद आएगा। लीजिए।

0: इस समय श्रोता सुन रही हैं कार्यक्रम हेलो फरमाइश और मैं हूँ मधु आपके गीतों के साथ। अपना नाम बताइए।
1: पोस्ट हंडिया तहसील हंडिया थाना हंडिया गांव मगरा जिला प्रयागराज से प्रेमचंद यादव बोल रहे हैं मैम। नमस्कार।
0: नमस्कार प्रेमचंद जी, कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: मैम फिल्म का नाम है एक पहेली लीला
0: जी
1: और गाने के बोल हैं

अभी आप हेलो फरमाइश प्रोग्राम सुन रहे थे। पेश कर रही थी मधु कुमार। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है।

0: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। एक बजने को है, थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के मुद्दे सहित किसी भी विषय पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है और संसद में सदस्यों की ओर से उठाए गए सभी सवालों का जवाब देगी। संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में श्री शाह ने कहा कि सरकार के पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है और वो चर्चा के लिए तैयार है।
2: आज 3 बजे तक स्पीकर साहब को वो पत्र दे दें, 3 बजे से लेकर कल 3 बजे तक सभी प्रकार की चर्चा के लिए हम तैयार हैं। मैं सदन में ही बैठूंगा, सबको सुनूंगा और सब चीजों का जवाब दूंगा। सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं, देश की जनता के सामने सारी चीजें स्पष्ट हो जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए।
1: श्री शाह ने कहा कि संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि सरकार नीट परीक्षा को लेकर विद्यार्थियों के प्रदर्शन से जुड़े सभी पहलुओं पर चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि इतने गंभीर मुद्दे पर चर्चा संसदीय प्रक्रिया के अनुसार होनी चाहिए। श्री शाह ने आरोप लगाया कि विपक्ष सदन की कार्यवाही नहीं चलने दे रहा। वहीं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि विपक्ष नीट प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कार्रवाई को लेकर सरकार से जवाबदेही मांग रहा है। संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में श्री गांधी ने कहा कि विपक्ष को गृहमंत्री के किसी बयान में कोई दिलचस्पी नहीं है, बल्कि जवाबदेही चाहिए। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा में आज सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने की कोशिश की, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर को मिले चंदे में कथित अनियमितताओं का मुद्दा उठाया। श्री बिरला ने विपक्षी सदस्यों से सदन की कार्यवाही चलाने देने की अपील की। लगातार हंगामा जारी रहने के कारण सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। राज्यसभा में भी ऐसी स्थिति देखने को मिली। सदन की कार्यवाही सुबह शुरू होने पर मंत्रियों ने अपने अपने मंत्रालयों के दस्तावेज सदन के पटल पर रखे। रक्षा, वित्त, परिवहन, पर्यटन और संस्कृति, कृषि, पशुपालन तथा खाद्य प्रसंस्करण, कोयला खान और इस्पात से संबंधित संसदीय स्थायी समितियों की रिपोर्ट भी सदन में प्रस्तुत की गई। हंगामे के बीच सभापति ने सदन की बैठक को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा भारतीय गणराज्य की विजय मेरा जीवन मेरा संघर्ष का विमोचन किया। ये आत्मकथा श्री कोविंद के उल्लेखनीय जीवन सफर का एक व्यक्तिगत विवरण प्रस्तुत करती है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने युवा पीढ़ी से रामनाथ कोविंद के जीवन की कहानी उन्हीं के शब्दों में जानने और उनके लेखन और अनुभवों को पढ़ने का आग्रह किया।
3: हमें भविष्य में कोविंद जी जैसे अनेकों युवा चाहिए जो परेशानियों से परास्त न हो, जो मुश्किलों से मायूस न हो, बल्कि अपनी मेहनत से हर मंजिल को आसान बनाने का हौसला रखे। इसी बदलाव से सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प पूरा होगा, यहीं से आत्मनिर्भर और विकसित भारत का रास्ता बनेगा।
1: इस अवसर पर श्री कोविंद ने कहा कि राजनीति केवल सत्ता हासिल करने का साधन नहीं है, बल्कि राष्ट्र की सेवा करने का एक माध्यम भी है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ग्रामीण ज्ञान सेतु ऐप का शुभारंभ करेंगे। ये ऐप गुजरात के गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र की विभिन्न लाइब्रेरियों को एक साथ जोड़ने के लिए विकसित किया गया है। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 संस्थागत, पारदर्शी और जवाब

0: resistance against British colonial rule and now needs to become a tool for economic empowerment. Har Ghar Tiranga movement is gaining momentum across the nation. The campaign aims to encourage people to bring the Tiranga home and to hoist it to mark India's independence. In Delhi, Har Ghar Tiranga bike rally was organized by the Culture Ministry today. Addressing the participants, Vice President C.P. Radhakrishnan has said that the spirit of Vande Mataram had inspired India's freedom struggle and continues to strengthen the nation's identity today. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी लखनऊ है। अब आप शाइस्ता बानो से इलाकाई खबरें सुनिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने साबिक सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद की सवान-ए-उम्री जारी की, जिसका उन्वान ट्राइव ऑफ द इंडियन रिपब्लिक माई लाइफ माई स्ट्रगल्स है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज हमें श्री रामनाथ कोविंद की सवान-ए-उम्री जारी करने का मौका मिला है। मुझे इस तकरीब का हिस्सा बनने का शरफ हासिल होने पर खुशी हुई है।
2: कोविंद जी की जीवन यात्रा को आप उनके शब्दों में जाने, उनकी लेखनी को, उनके अनुभवों को, इससे हर किसी को काफी कुछ सीखने को मिलेगा। मैं रामनाथ कोविंद जी को इस आत्मकथा के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, कोविंद जी ने अपनी इस पुस्तक को बहुत ही सटीक नाम दिया है, ट्रायम्फ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक माई लाइफ माई स्ट्रगल्स।
1: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने लोगों से यौमे आज़ादी फ़ख्र के साथ मनाने और तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान की तामीर का अहद करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि 15 अगस्त को फ़ख्र और वक़ार के साथ मनाएं, एक तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान का अहद करें। हर घर में तिरंगा, हर दिल में तिरंगा में मुहिम पूरे मुल्क में शुरू है। घर में तिरंगा लहराएं। 17 अगस्त तक जारी रहने वाली इस मुहिम का मकसद शहरियों को अपने घरों में तिरंगा लहराने और हुब्बुल वतनी और कौमी इत्तेहाद से मुतालिक प्रोग्रामों में शिरकत करने की तरगीब देना है। इस दौरान रियासती वजीर बराए अक़लियती बहबूद दानिश आज़ाद अंसारी ने कहा कि रियासत के तमाम मदारिस हर घर में तिरंगा मुहिम में हिस्सा लेंगे।
3: इस अभियान से उत्तर प्रदेश के जो तमाम मदरसे वो भी जुड़ेंगे। हमने मदरसा के तमाम छात्रों से भी अपील की है, अपने प्रमुख सचिव को भी निर्देशित किया, डिपार्टमेंट को भी निर्देशित किया है कि उत्तर प्रदेश के हर मदरसे इस अभियान से जुड़े, अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में इस अभियान को हम ले जाएं और हर व्यक्ति देशभक्ति के भावना से ओतप्रोत हो। इस अभियान को जो मकसद है उसको हम धरातल पर ले जाएंगे।
1: वहीं संभल में भारतीय जनता पार्टी ने अपने हर घर में तिरंगा मुहिम के एक हिस्से के तौर पर बहजोई कॉलेज बहजोई से एक अजीम तिरंगा मार्च का अहतमाम किया। रियासती हुकूमत के वजीर मुमलिकत बराए सानवी तालीम गुलाब देवी ने तिरंगा लहराकर मार्च का आगाज किया। वहीं रायबरेली में यौम जमहूरिया के मौके पर जिला इंतजामिया ने हर घर तिरंगा मुहिम के हिस्से के तौर पर आज एक अजीम तिरंगा रैली का इनेकाद किया। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल संत कबीर नगर में 684 करोड़ रुपए के 201 तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया। इस मौके पर अपने खिताब में वज़ीर आला ने कहा कि बहराइच से खलीलाबाद तक जो रेलवे लाइन बन रही है वो संत कबीर नगर की तरक्की की बुनियाद बनेगी। उन्होंने कहा कि ये सड़कें, बाईपास, बस स्टेशन और बहराइच और खलीलाबाद तक जो रेलवे लाइन बन रही है उससे तरक्की होगी और बेहतर राबता फराहम होगा। प्रयागराज उत्तर प्रदेश में नौजवानों खास तौर पर जेंजी से जुड़ने और शायरी के जरिए उनके ख्यालात को समझने के लिए एक मुनफरिद पहल शुरू की गई है। हमारे नामानिगार ने इत्तला दी है कि रंगदेव बसंती मुहिम कल शुरू हुई और यह रियासत भर के मुख्तलिफ शहरों में 14 अगस्त तक चलेगी।
4: कल रात प्रयागराज की हिंदुस्तानी अकादमी में अपनी कविताओं के माध्यम से माफिया संस्कृति पर निशाना साधा। कार्यक्रम समन्वयक विश्वदीप शुक्ला ने बताया कि वीर रस और ओज रस की कविताओं के माध्यम से युवा पीढ़ी की भावनाओं को समझने वाले 8 कवियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रख्यात गीतकार डॉक्टर विनम्र सेन सिंह और अंतर्राष्ट्रीय कथाकार आचार्य शांतनु जी महाराज ने की। अगला कार्यक्रम आज लखनऊ में आयोजित किया जाएगा, जहाँ कलाकार माफिया संस्कृति के खिलाफ पर चित्र बनाएंगे। कल मुजफ्फरनगर में सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए कॉमिक्स वितरण और संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इन सभी कार्यक्रमों में रैप संगीत, लाइव परफॉर्मेंस और डिजिटल कलाओं का प्रदर्शन भी होगा, जो युवाओं को जोड़ने के लिए कई रचनात्मक माध्यमों को एक साथ लाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पहले चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर की तकरीरी के लिए कल इंटरव्यू शुरू हुए। इस पोजीशन के लिए तकरीबन 5,200 दरखास्तें मौसूल

0: हुई थी और स्क्रीनिंग के बाद 18 उम्मीदवारों को फाइनल राउंड के लिए मुंतखब किया गया था। राम मंदिर के अहाते में वाकई यात्री सहूलत मरकज में राम मंदिर ट्रस्ट के सीईओ के ओहदे के लिए 9 लोगों का इंटरव्यू लिया गया, बाकी 9 को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यूज के बाद 3 रुकनी सिलेक्शन कमेटी मुंतखब शख्स की मालूमात ट्रस्ट को जमा कराएगी। इस फैसले को 2 सितम्बर को होने वाली ट्रस्ट के इजलास में हतमी शक्ल दी जाएगी। सावन अमावस्या के मुकद्दस त्यौहार को मनाने के लिए आज के रोज बड़ी तादाद में अकीदतमंद चित्रकूट पहुंचे, जिसे हरियाली अमावस्या भी कहा जाता है। बड़े हुजूम के पेश नज़र इंतजामिया और पुलिस ने सिक्योरिटी और ट्रैफिक के खसूसी इंतजाम किए हैं। महकमा मौसमियात ने मशरक़ी उत्तर प्रदेश में कल से शुरू होने वाली और मगरबी उत्तर प्रदेश में 14 अगस्त से 17 अगस्त तक अलग थलग बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया। महकमे के मुताबिक आज भी रियासत भर में कहीं कहीं बारिश और गरज चमक के साथ बारिश के इम्कान हैं। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें खत्म हुई। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नशर किया जाएगा।
1: आकाशवाणी के हम प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। अब बहनें सुनेंगी कार्यक्रम गृहलक्ष्मी।

0: बादलों के बीच रिमझिम फुहारों के साथ हर ओर है पहली हरियाली को लिए हम हाजिर हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम गृहलक्ष्मी को लेकर।
1: गृहलक्ष्मी सुनने वाले सभी श्रोता बहनों को शारदा का
0: और प्रीति का प्यार भरा नमस्कार।
1: सखियों, आज है हमारे कार्यक्रम में बहुत कुछ ऐसा जो आपको मन को भाएगा और जायके का स्वाद आपको बहुत ही सुख और
0: खूब रास आएगा। भाई साथ में रहेगी सामायिक वार्ता जिसमें जानेंगे आप सामाजिक और सांस्कृतिक पूंजी के विषय में, और आज का दिन यानी हरियाली अमावस्या की भी हम चर्चा करेंगे आपके साथ। पर कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ।

0: तो भाई शारदा, कार्यक्रम का शुभारंभ तो हो गया
1: बिल्कुल। और वैसे प्रीति, देखो ना कि आजकल कितना सुंदर समय चल रहा है ना, रिमझिम बरसात और ये पूजा पाठ अर्चना है ना
0: सब कुछ।
1: सावन के जो महीना है ये, जो इसका हर दिन ही खास होता है।
0: सच कह रही हो।
1: हाँ, लगता है मानो प्रकृति हर दिन हर पल नए कलेवर में सस समर रही है ना।
0: सही कह रही हो शारदा, बारिश की जो बूंदे है ना, ये नए कोपलों को खिला रही है। ये पेड़ पौधे वृक्ष सभी नए पत्तों से खुद को मान लो सजा सवार रहे हैं। वैसे देखो हर कोई अपने अपने तरीके से इस सावन को एंजॉय कर रहा है। जो छोटे बच्चे हैं या जो हमारे स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, वो ये चाहते हैं कि मौका मिले तो हम बारिश में भींग जाए, भले उन्हें कितना मना करो, वो किसी न किसी बहाने से बाहर निकल ही आते हैं।
1: बिल्कुल। अरे बच्चों की क्या बात है, बड़े बुजुर्ग भी तो मतलब कि बहुत प्रसन्न होते हैं सावन के महीने आने से। मतलब उनको ये लगता है कि रिमझिम फुहारों को देखकर उनका मन तो खुश होता ही है, साथ ही पूजा पाठ ध्यान के बीच उनकी जो आंखें भी है ना, इस नजारे से तृप्त हो जाती है।
0: सही कह रही हो।
1: और वहीं पर देखो तो हमारी प्यारी सखियां हैं जो हमारी श्रोता बहनें हैं जो, भाई इनके लिए सावन का तो कुछ खास ही आनंद होता है ना।
0: सही,
1: भाई हाथों में हरी हरी चूड़ियां और हरे कपड़ों की कितनी वो होती है कि भाई सावन है तो हरी साड़ी, हरे दुपट्टे, हरे सूट, हर चीज हरी बिंदी, हरी नेल पॉलिश, बस पूछो ही नहीं।
0: सही कहा, आजकल तो ऐसा फैशन में आ गया है कि जैसे तुमने कहा ना कि हरी नेल पॉलिश, थोड़ा ये मुझे अलग सा लगता है, ऐसा हम लोग सोच नहीं पाते थे, लेकिन अब तो देख सकते हैं
1: सुंदर लगता है। बस ये हरे रंग से भी सुंदरता देखा जाए प्रीति, तो लाल रंग से कहीं 19 नहीं है।
0: बिल्कुल ठीक कह रही हो। और भाई देखो, जब ये जो हमारी सखियां है ना, ये जब चूड़ियाँ खनकाती हुई ये झूले पे बैठ के मानो ऐसी पेंग लगाना चाहती हैं कि अपने मायके की ड्योरी को छू के आ जाए।
1: बिल्कुल। और बहनों, आज का दिन 12 अगस्त, आज का दिन यानी कि हरियाली अमावस्या। पहले तो हम दोनों बहनों की तरफ से हमारी प्यारी सखियों को, सभी को हरियाली अमावस्या का बहुत ही शुभकामना। भाई सावन महीने में प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने और पर्यावरण संरक्षण और पौधा रोपने के लिए ये महीना, ये दिन, आज का दिन बहुत ही शुभ माना जाता है।
0: हाँ, और शारदा देखो, चूंकि ये अमावस्या सावन में पड़ रही है, इसलिए इसका नाम हरियाली अमावस्या पड़ गया है। और आज के दिन श्रद्धापूर्वक पूजा पाठ करने से कहते हैं कि विशेष फल मिलता है, और भगवान शिव की आराधना करते हैं, पूरे महीने ही करते हैं, लेकिन आज के दिन भगवान शिव और माता पार्वती जी का जो पूजा की जाती है वो विशेष फलदायी होती है।
1: और देखो ना कि जैसे कि बड़े बड़े जो पौधे होते हैं उनको लगना, बहुत लोग होता है कि नीम लगाएं, बरगद लगाएं, बेल लगाएं, तो वो होता क्या है, सूख जाता है, खराब हो जाता है। लेकिन इस माह में, अगर सावन माह में इन पौधों का रोपण किया जाए, लगाया जाए, तो ये हरा भरा, क्योंकि इनको शुरुआत से ही बारिश का एक प्राकृतिक पानी मिलता है, इससे ये लग जाते हैं।
0: वैसे भी देखो, इस महीने में जो भी हम पेड़ पौधे लगाते हैं वो बड़ी जल्दी से लग जाते हैं,
1: बहुत जल्दी लग जाते हैं प्रीति। और देखो ना कि अभी 2-3 दिन के बाद ही पड़ रहा है भाई हरियाली तीज, तो इसका भी बहुत ही विशेष महत्व है ना।
0: भाई सखियों, जब हमारी शारदा तीज की बात करी है तो लग रहा है कि इन्होंने काफी तैयारी भी कर रखी है, इनके जो चेहरे पे चमक खूब दिखाई रही है। तो शारदा, तुम्हारी इस बात को हम और भी सुनेंगे, करेंगे, लेकिन तुम्हें क्यों ना एक प्यारा सा गीत सुनवा दे।
1: चलो सुनते हैं।

0: जहाँ क्रांति की ललकार हो और स्वदेश का दुलार हो, ऐसे ही गीतों से सजेगा हमारा आपका ये त्योहार।
1: 14 अगस्त को हेलो गृह लक्ष्मी के मंच पर गूंजेंगे आपके फरमाइश पर फिल्म क्रांति।
2: बरस अब के बरस तुझे धरती की रानी कर देंगे
1: और स्वदेश के यादगार नगमे।
2: ये जो देश है तेरा स्वदेश है।
0: लाइनें खुली रहेंगी, बस एक कॉल और आपकी पसंदीदा फिल्मों के गाने सीधे आपके नाम।
1: तो फोन करना ना भूलिएगा, हमारा नंबर है 0532-2423-649 और 0532-2970-462। जुड़िए हमारे साथ देशभक्ति के इस सुरीले जश्न में।
0: 14 अगस्त समय 12:15 बजे सिर्फ FM 100.3 पर।

0: तो शारदा, देखो अभी तुमने संदेश सुना
1: बिल्कुल.
0: तो नोट कर लेना है, हमारे सभी श्रोताओं को नंबर हेलो गृहलक्ष्मी में करना है फोन, क्योंकि फिल्में मेरी तो बड़ी फेवरेट है क्रांति और स्वदेश, तो उस दिन हम सब कोशिश करेंगे नंबर लगाने की और बातें करेंगे दीप्ति और कंचन जी से, है
1: बिल्कुल. अपीति होता भी है ना कई बार कि हम अपनी इतनी खूबसूरत फिल्में हैं,
0: ना. हाँ
1: क्रांति के गाने कितने स्वदेश के गाने कितने सुंदर हैं,
0: सही कहा.
1: तो सुन नहीं पाते हैं आस रात, मतलब देखते रहते कि भाई अब आए अब आए. तो ये अवसर मिला है श्रोताओं, आप जरूर इसका फायदा उठाएं, है ना.
0: और ये बताओ, ये तुम्हारी हरी चूड़ियां हैं, ये लग रहा है जो तुम बातें कर रही थी उसी की तैयारी का नतीजा है.
1: बिल्कुल. वैसे पता है 2 दिन के बाद ही पड़ रहा है हरियाली तीज. और प्रीति, इसका महत्व भी बहुत अधिक है. इस दिन भी जो है कि जो सावन महीने में हमारे बहने जो बहन है हमारी जो श्रोताएं सखियाएं वो गौरा पार्वती का पूजा अर्चना करती हैं और व्रत भी रहती हैं इस दिन. हाँ.
0: और तुम्हें पता है इस दिन वो झूला भी झूलती हैं, सावन
1: और
0: के गीत भी गाती हैं
1: गाती है. और तो और हाथों में हरी हरी चूड़ियाँ हरी हरी साड़ियाँ पहन करके गौरा पार्वती का पूरे श्रद्धा मनोभाव से प्रेम और पूजन और अर्चना करती हैं. और कहते हैं कि इस दिन जो है कि बहुत ही पवित्र दिन है गौरा गौरा मैया और भोलेनाथ और गौरा माता के मिलन का. वैसे देखा जाए प्रीति, तो ये जो समय है ये वक्त है ये जो पर्व है ये हमें कितना कुछ सिखा जाता है.
0: बिल्कुल सिखा जाता है कि देखिए अच्छा समय आता है, कभी मुश्किल समय भी आता है, पर इन सब से हमें आगे बढ़ते रहना है. और जो समय मिला है उसे हमें सजो लेना है, उसे एंजॉय करना है और उसी में कुछ ना कुछ सकारात्मक करते रहना है.
1: बिल्कुल. और पता है प्रीति, ये चीज मतलब कि जो जैसे कि कोई भी पर्व है अधिकतर मतलब कि जो महिलाओं का पर्व है देखा जाए तो एक दूसरे से मिलकर, चाहे वो नवरात्रि हो चाहे सावन का ये हरियाली तीज हो हरियाली अमावस्या हो या कोई भी पूजन पाठ होता है, देखो कई मतलब महिलाएं इकट्ठा होती हैं चाहे वो करवा चौथ हो कुछ भी हो.
0: बिल्कुल. ये हमारे सामाजिक ताने बाने को बहुत सुदृढ़ करता है, यही कहना चाह रही हूँ.
1: बिल्कुल बिल्कुल. और आज हम लोगों ने कुछ ऐसी ही वार्ता लेकर आए हैं कि क्या होती है सामाजिक पूंजी और सांस्कृतिक पूंजी.
0: और वार्ता कर हैं डॉक्टर मनीष कुमार सिंह. तो ये वार्ता पहले हम सुनते हैं और फिर इस पर और भी बातें करेंगे.
1: चले.
2: सामाजिक पूंजी से अभिप्राय उन सामाजिक संबंधों एवं विश्वास सहयोग सहभागिता तथा पारस्परिक नेटवर्क से है जिनके माध्यम से व्यक्ति और समुदाय अपने सामूहिक उद्देश्यों की प्राप्ति करते हैं. यह भौतिक या आर्थिक पूंजी की तरह दिखाई नहीं देती बल्कि समाज के सदस्यों के बीच विद्यमान विश्वास सामाजिक मानदंडों सहयोग की भावना तथा परस्पर उत्तरदायित्व के रूप में कार्य करती है. सामाजिक पूंजी समाज में एकता सामंजस्य सहयोग सामाजिक सुरक्षा तथा विकास को बढ़ावा देती है. परिवार मित्र पड़ोस शैक्षणिक संस्थाएं, स्वयंसेवी संगठन तथा सामाजिक समूह इसके प्रमुख स्रोत होते हैं. मजबूत सामाजिक पूंजी किसी भी समाज के सतत एवं समावेशी विकास का महत्वपूर्ण आधार मानी जाती है. सामाजिक पूंजी के संदर्भ में पियरे बुरदियु जो एक प्रसिद्ध समाजशास्त्री हैं इनका विचार है कि सामाजिक पूंजी वास्तविक तथा संभावित संसाधनों का वह समुच्चय है जो अस्थाई सामाजिक संबंधों एवं नेटवर्क की सदस्यता से प्राप्त होती है. रॉबर्ट डी पुटनम कहते हैं कि सामाजिक पूंजी से आशय सामाजिक संगठन की उन विशेषताओं जैसे विश्वास मानदंड और नेटवर्क से है जो समन्वित कार्यों को सुगम बनाकर समाज की कार्य क्षमता को बढ़ाती है. सामाजिक पूंजी विश्वास पर आधारित होती है, सामाजिक संबंधों एवं नेटवर्क को सुदृढ़ बनाती है तथा सहयोग एवं सहभागिता की भावना को प्रोत्साहित करती है. सामाजिक पूंजी सामुदायिक एकता और सामाजिक समरसता को बढ़ाती है, संसाधनों एवं सूचनाओं के आदान प्रदान में सहायता करती है, सामाजिक समस्याओं के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, लोकतांत्रिक मूल्यों एवं नागरिक उत्तरदायित्व को सुदृढ़ करती है, सतत सामाजिक एवं आर्थिक विकास को आधार प्रदान करती है.

है। सामाजिक पूंजी समाज में विश्वास का स्तर जितना ही अधिक होगा, सामाजिक पूंजी उतनी ही मजबूत होगी। शिक्षा एवं जागरूकता से किसी भी समाज में सामाजिक पूंजी का स्तर बढ़ता है। परिवार एवं सामाजिक समस्याएं सामाजिक मूल्यों के विकास के माध्यम से सामाजिक पूंजी को बढ़ावा देती है। आर्थिक समानता एवं रोजगार के अवसर सामाजिक सहयोग और विश्वास को बढ़ाते हैं। वहीं राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था न्यायपूर्ण शासन सामाजिक पूंजी के विकास में सहायक होता है। सामाजिक पूंजी सामाजिक विश्वास एवं सहयोग को बढ़ावा देती है। सामुदायिक एकता एवं सामाजिक समरसता को सुदृढ़ करती है। लोकतांत्रिक मूल्यों एवं नागरिक सहभागिता को प्रोत्साहित करती है। सामाजिक एवं आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती है। सामाजिक समस्याओं एवं संघर्षों के समाधान में यह सहायक होती है। यह शिक्षा स्वास्थ्य एवं अन्य सार्वजनिक सेवाओं की प्रभावशीलता को बढ़ाती है। आपदा एवं संकट के समय पारस्परिक सहयोग एवं सहायता को सुदृढ़ करती है। हमने कोरोना महामारी के दौरान यह देखा कि हमारी सामाजिक पूंजी समाज में सहयोग को निरंतर बनाए रखी। संसाधनों सूचनाओं एवं अवसरों के आदान प्रदान को यह सरल बनाती है। सामाजिक सुरक्षा शांति एवं स्थिरता को बनाए रखने में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह सतत समावेशित एवं मानव केंद्रित विकास के लिए मजबूत आधार प्रदान करती है। सांस्कृतिक पूंजी कल्चरल कैपिटल से अभिप्राय उस ज्ञान कौशल भाषा व्यवहार सांस्कृतिक मूल्यों परंपराओं कलात्मक अभिरुचियों तथा शैक्षिक योग्यताओं से है जो व्यक्ति को समाज में सम्मान प्रतिष्ठा एवं उन्नति प्राप्त करने में सहायता प्रदान करती है। यह पूंजी आर्थिक संपत्ति के रूप में नहीं होती बल्कि व्यक्ति के व्यक्तित्व शिक्षा संस्कार जीवन शैली तथा सांस्कृतिक अनुभवों में निहित होती है। परिवार विद्यालय सामाजिक संस्थाएं तथा सांस्कृतिक परिवेश इसके प्रमुख स्रोत माने जाते हैं। सांस्कृतिक पूंजी व्यक्ति के सामाजिक विकास बौद्धिक परिष्कार सामाजिक गतिशीलता तथा समाज में प्रभावी सहभागिता का महत्वपूर्ण आधार मानी जाती है। यह समाज की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण एवं संवर्धन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रसिद्ध समाजशास्त्री पियर बोरोदियू कहते हैं कि सांस्कृतिक पूंजी से अभिप्राय उन सांस्कृतिक संसाधनों ज्ञान कौशल शिक्षा तथा योग्यताओं से है जो व्यक्ति को समाज में विशेष स्थान और सामाजिक लाभ प्राप्त करने में सक्षम बनाते हैं। जॉन स्कॉट कहते हैं कि सांस्कृतिक पूंजी उन सांस्कृतिक योग्यताओं अभिरुचियों तथा ज्ञान का समुच्चय है जो सामाजिक प्रतिष्ठा एवं अवसरों की प्राप्ति में सहायक होते हैं। सांस्कृतिक पूंजी ज्ञान शिक्षा एवं सांस्कृतिक अनुभवों पर आधारित होती है। व्यक्ति के व्यक्तित्व एवं सामाजिक व्यवहार को परिष्कृत करती है। परिवार एवं शिक्षा के माध्यम से सांस्कृतिक पूंजी अर्जित की जाती है। सामाजिक प्रतिष्ठा एवं सम्मान प्राप्त करने में सहायक होती है। सांस्कृतिक मूल्यों एवं परंपराओं के संरक्षण में यह महती भूमिका निभाती है। सामाजिक गतिशीलता एवं अवसरों को बढ़ावा देती है। बौद्धिक कलात्मक एवं नैतिक विकास को यह प्रोत्साहित करती है। समाज में प्रभावी संचार एवं सामाजिक सहभागिता को यह सुदृढ़ बनाती है। पारिवारिक वातावरण एवं संस्कार शिक्षा का स्तर एवं गुणवत्ता सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवेश तथा भाषा एवं संचार कौशल साहित्य कला एवं मीडिया सांस्कृतिक पूंजी को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है। व्यक्तित्व के समग्र विकास में सांस्कृतिक पूंजी सहायक होती है। सामाजिक प्रतिष्ठा एवं सम्मान में यह वृद्धि करती है। शिक्षा और ज्ञान के स्तर को समृद्ध बनाती है। सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण एवं संवर्धन में यह योगदान देती है। सामाजिक समरसता राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ बनाती है। रचनात्मक

0: कला एवं नवाचार को प्रोत्साहित करती है, रोजगार एवं सामाजिक अवसरों की संभावना को यह बढ़ाती है, नैतिक मूल्यों और सामाजिक उत्तरदायित्व का विकास करती है, अंतर सांस्कृतिक समझ एवं सहिष्णुता को समाज में बढ़ावा देती है। सांस्कृतिक पूंजी सतत सामाजिक, सांस्कृतिक एवं मानवीय विकास का आधार प्रदान करती है।
1: तो मैंने भी सुन रही थी क्या होती है सामाजिक पूंजी और सांस्कृतिक पूंजी। वार्ताकार थे डॉक्टर मनीष कुमार सिंह। और शारदा, जब ये बातें कर रहे थे तो इनकी बातों से, जैसा कि हम लोग आपस में भी चर्चा की कि इनकी बातें कितनी सही हैं, अगर इन बातों पे हम ध्यान दें तो जो हम अपने व्यक्तित्व का विकास कितना कर सकते हैं, जो अपने व्यक्तित्व की कमियां हैं उसे हम दूर करके हम अपने समाज में, अपनी संस्कृति में कितना योगदान दे सकते हैं, ये सब जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इनका अगर हम ध्यान रखें, जो कि हमको ज्ञान, शिक्षा और अनुभव से मिलती है, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, अगर हम इन चीज़ों पर ध्यान दें तो हम न सिर्फ अपने व्यक्तित्व के विकास में बल्कि जो अपने समाज में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं।
2: और पता है प्रीति, अभी डॉक्टर साहब ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि एक आर्थिक पूंजी जो होती है हम सभी के पास, जो आर्थिक पूंजी होती है वो क्या है, वो जो है सो है, लेकिन जो हमारी सामाजिक पूंजी क्या होती है, हमारा मान सम्मान, हमारी संस्कृति, हमारा शिक्षा, जिससे कि हम अपने परिवार को एक अच्छा सुंदर परिवेश देंगे, जिससे एक अच्छे समाज का रचना होगा, तो यहीं पर एक सामाजिक पूंजी होती है ना।
1: हाँ, और देखो ना, ये जो कहते हैं, जैसा उन्होंने कहा ना, बहुत अच्छी बात कही, मैं तो उनकी बात बहुत ध्यान से सुन रही थी कि भले ये जो जैसे तुमने कहा ना आर्थिक, ये दिखती नहीं है लेकिन बड़ी सुदृढ़ होती है। और अभी हम लोग चर्चा भी कर रहे थे सखियों कि बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं हमारे जीवन में, जिनको हम अगर ध्यान दें आपस में तो अपने परिवार को, अपने समाज को बेहतर बना सकते हैं। जैसे कि एक छोटी सी बात चर्चा हम लोग कर लेते हैं कि कई बार हम ईगो मन में पाल लेते हैं, अहम, बहुत छोटी छोटी बातों को लेकर हम आपसी रिश्तों में तनाव, दरार ले आते हैं, तो कितना ही अच्छा हो ना थोड़े से हम समझदार बने और इन ऐसी बातों को जो जिन्हें हम इग्नोर कर सकते हैं उन्हें इग्नोर करके अपने आपसी रिश्तों को बचाएं।
2: इसको सरल भाषा में इस तरीके से हम बोल सकते हैं प्रीति कि मान लीजिए कोई भी चीज होती है, जैसे कि
1: अगर आपको अच्छी नहीं
2: चुन रहे हैं, फूल ही चुन रहे हैं तो गुलाब में कांटे भी हैं, लेकिन हम उसमें से कितना खूबसूरत गुलाब का फूल ले लेते हैं, है ना, लेकिन कांटों से तो कोई हमें कोई बैर भी नहीं होना चाहिए, तो कोई रिश्ता भी नहीं होना चाहिए, भाई फूल से मतलब है फूल ले लिया, है ना।
1: अरे वाह, शारदा ने तो बहुत पते की बात कह दी। और क्यों ना इसी बात पे एक प्यारा सा गीत सुनवा दे।
2: चले
1: चलो।

0: जहाँ क्रांति की ललकार हो और स्वदेश का दुलार हो, ऐसे ही गीतों से सजेगा हमारा आपका ये त्योहार।
1: 14 अगस्त को हेलो गृह लक्ष्मी के मंच पर गूंजेंगे आपके फरमाइश पर फिल्म क्रांति।
2: अब के बरस तुझे धरती की रानी कर देंगे।
1: और स्वदेश के यादगार नगमे।
3: ये जो देश है तेरा स्वदेश है।
0: लाइनें खुली रहेंगी, बस एक कॉल और आपकी पसंदीदा फिल्मों के गाने सीधे आपके नाम।
1: तो फोन करना ना भूलिएगा, हमारा नंबर है 0532-2423-649 और 0532-2970-462। जुड़िए हमारे साथ देशभक्ति के इस सुरीले जश्न में।
0: 14 अगस्त समय दोपहर 1:15 बजे सिर्फ FM 100.3 पर।
3: ये जो देश है तेरा स्वदेश है तेरा।
4: तो इस संदेश के बाद हमारी सभी सखियों का, हमारे सभी श्रोतागणों का स्वागत है एक बार फिर से उनके अपने पसंदीदा कार्यक्रम गृह लक्ष्मी में। शारदा, मैं ये सोच रही थी आज हम लोगों ने सावन की इतनी ढेर सारी बातें की, तुमने पूजा पाठ की और हम लोगों ने इसकी भी चर्चा कर ली, तो ये बताओ कि भाई इतनी सारी बातें होगी, सब कुछ होगी, कुछ तुमने सखियों से वायदा किया था जायके का भी प्रबंध है

0: बिल्कुल बिल्कुल
1: तो भाई
0: प्रीति,
1: कुछ,
0: यहाँ से तो हम लोग पीछे हट ही नहीं सकते भाई।
1: हाँ, और हटने भी नहीं
0: हाँ,
1: दूंगी।
0: हाँ, भाई भोजन है तो भजन है ना।
1: हाँ, तो कुछ ऐसा बताओ जो हम व्रत में भी खा सकें और हेल्दी भी हो और जरा चटपट बन जाए।
0: बिल्कुल। अब ऐसे देखो ना, आजकल सावन का महीना चल रहा है और इसमें कुछ ना कुछ कोई ना कोई पर्व आता ही रहता है जिसमें कि लोग
1: कुछ
0: व्रत,
1: पूजा,
0: हाँ,
1: हाँ
0: व्रत
1: पूजा
0: रखते
1: वगैरह भी
0: हैं।
1: कर रहे हैं,
0: तो आज
1: रुद्राभिषेक।
0: क्यों ना चलो प्रीति, सिंगाड़ी के आटे के कुछ व्यंजन
1: अरे
0: बताते
1: वाह,
0: हैं।
1: तो
0: हाँ,
1: क्या बता रही हो सबसे
0: बहुत
1: पहले?
0: ही सिंपल सा बताएंगे। सबसे पहले तो पूरी बना लेते हैं भाई।
1: अच्छा,
0: हाँ, वो कभी सोचते ना कि भाई सिंगाड़े का आटा का पूरी कैसे
1: कैसे
0: बनेगा।
1: बनाए?
0: हाँ,
1: हाँ,
0: तो इसमें उबले आलू से सिंगाड़े का आटा और
1: मैश
0: सेंधा
1: कर
0: नमक,
1: लेंगे।
0: हाँ सेंधा नमक और हरी मिर्च मिला करके पूरी जैसा आटा इसमें गूंथ लें और
1: हाँ,
0: बहुत ही नॉर्मली इसको पूरी जैसा शेप में बेल बेल करके आप धीमे धीमे आंच पर तल लीजिए
1: अरे
0: और
1: वाह,
0: चाय के साथ सर्व कीजिए। बहुत ही आराम से फटाफट बनने वाला है ये।
1: बड़ा अच्छा सा नाश्ता है
0: हाँ, और
1: ना।
0: हाँ बिल्कुल। और हलवा, जैसे कि नॉर्मली हम जानते ही हैं कि सिंगाड़े का आटा का हलवा कैसे बनता है, तो सेम वैसे ही करिए। कोशिश करें कि इसको आप जब भी सिंगाड़े का आटा भूनती हैं तो एक गहरे बर्तन में इसको निकाल करके इसको पानी डाल करके घोल बना लें।
1: अच्छा,
0: हाँ, ताकि इसमें जो है कि गिल्ठिया ना
1: लम्स ना
0: पड़े,
1: पड़े।
0: लम्स ना
1: ठीक।
0: पड़े, गिल्ठिया ना पड़े और ये घुल जाए। फिर उसके बाद आप कढ़ाई में घी डालिए या रिफाइंड है, जो भी आपके पास सुविधा है वो डालिए। फिर उसमें छोटी इलायची डाल दीजिए और इसी एक और उसमें पानी डालिए, थोड़ा
1: ठीक है।
0: पानी डाल के और चीनी डाल देते हैं। और जब अपने अंदाज अनुसार जितना आपको खाना है जिस हिसाब से रख करके, फिर इसमें जो आप आटा घोल के रखें वो डाल दें। डालने के बाद फिर उसको जब अच्छी तरीके
1: चलाते
0: से
1: रहना
0: पक
1: है।
0: जाए, फिर थाली में ग्रेसिंग करेंगे घी का और उसमें जमा देंगे। 10-5 मिनट के बाद फिर बर्फी आकार में काटिए और खाइए,
1: आनंद लीजिए।
0: आनंद लीजिए।
1: अरे
0: और
1: वाह।
0: वैसे कहते हैं ना कि चीला, हाँ, सिंगाड़े के आटे का चीला है, तो
1: अच्छा।
0: सिंगाड़े के आटे को भी अच्छी तरीके से वैसे ही बेसन की तरह इसको घोल लीजिए। इसमें हरी मिर्च काट लेते हैं, हरी धनिया काट लेते हैं और सीधा नमक डाल दीजिए। अपनी इच्छा अनुसार आप चाहें तो मूंगफली को अगर आप थोड़ा सा भून करके उसको दरदरा सा बना करके वो डाल दीजिए, ड्राई फ्रूट डाल दीजिए, तो बहुत अच्छा है। फिर ऊपर से जब भी इसको चीला बनाइए, आपके आपकी इच्छा अनुसार ऑप्शन पर रहे कि आप इस पे थोड़ा पनीर भी कद्दूकस कर लीजिए, हरी मिर्च डाल दीजिए और तो और वो नारियल है उसको कद्दूकस करके डाल दीजिए और चीला स्वरूप आगे पीछे अच्छे से सेक करके सर्व कीजिए।
1: अरे वाह, ये तो बड़ा हेल्दी है और भाई खाने में भी बहुत अच्छा लग
0: बहुत अच्छा
1: रहा
0: लगेगा। बिल्कुल।
1: है।
0: वैसे देखो पकौड़े की टिक्की भी ऐसे कि देखा जाए तो सेम ऐसे ही है कि
1: बना सकते
0: बना
1: हैं।
0: सकते हैं। ऐसे उबले हुए आलू को मसाले में, जैसे कि इसमें मेन मसाला तो व्रत में जीरा, काली मिर्च होता है
1: और हरी
0: और
1: धनिया डाल
0: हरी
1: लिया,
0: धनिया डाल
1: महीन
0: लिया,
1: महीन
0: थोड़ा
1: काट
0: सा
1: के।
0: आमचूर पाउडर डाल लिया, थोड़ा सा हो सके तो चाट मसाले में कोशिश ध्यान रहे कि इसमें भाई नमक ना हो, आप अपने घर में ही बना लीजिए। और ये मसाले डाल करके उसको जो है कि साबुदाना वगैरह फुला करके रखिए, उसको आलू मैश करके फिर सिंगाड़े के आटे की कोटिंग कर लीजिए उसके ऊपर करके, उसको मंद मंद आँच पर सेक करके और सर्व कीजिए।
1: और
0: वैसे
1: भाई देखो, सावन के महीने में और इन रिमझिम फुहारों के बीच अगर सिंघाड़े की भी टिक्की खाने को मिल जाए, पकौड़ी खाने को मिल जाए, तो क्या बात
0: बिल्कुल। अप्रीति कहेंगे ना
1: है।
0: कि बस थोड़ा सा एक चीज हमारी बहनों को करना होगा और वो है आंतरिक इच्छा।
1: वैसे देखो शारदा, अभी जब मैं आ रही थी तो मुझे भुट्टे सिक्के जगह जगह दिख रहे थे। मन तो हुआ कि तुम्हारे लिए ले लूं, लेकिन फिर मुझे लगा कि पता नहीं तुम खाओगी कि फिर कहोगी क्या प्रीति ले आई, तो
0: अरे
1: मैंने कहा कि
0: नहीं प्रीति, ये तो तुमने बहुत गड़बड़ कर ली है
1: अच्छा कर
0: भाई।
1: दी। तो ये बताओ, कुछ
0: हाँ
1: ऐसा व्यंजन बताओ भुट्टे का जो आम तौर पे हम लोग ना बना पाते
0: हाँ
1: हो,
0: देखो
1: कुछ नया हो
0: एक
1: लेकिन आसान हो।
0: बिल्कुल, देखो ऐसा अधिकतर कर हम उत्तर प्रदेश में ये देखे हैं भुट्टे, भुट्टे को जो है यूपी में, हमारे इलाहाबाद प्रयागराज हो चाहे पूरे यूपी में हो, उसके कोयले पर या तो किसी तरीके से भून लेते हैं। भूनने के बाद फिर इसमें नमक और नींबू लगाते हैं, रगड़ा और लो भैया खाना शुरू बरसात में। एक ये बढ़िया द बेस्ट है। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ इसका एक हमने देखा कि एक इंदौर में, इंदौर शहर का बहुत ही अच्छा स्नैक्स है इसमें जो है, क्या कहते हैं कि इसको कहते हैं भुट्टे का कीस।
1: अच्छा
0: भाई
1: अच्छा तो
0: सुनिएगा,
1: कैसे बनाते हैं?
0: इसको बनाने के लिए थोड़े गर्म मसाला ले लीजिए, नोट कर
1: अच्छा।
0: लें कि 4 भुट्टे अच्छे साइज के हों और उसको अच्छे से कद्दूकस करके निकाल लीजिए उसके
1: ठीक
0: दानों
1: है।
0: को। उसमें 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 पिंच हींग, 1/2 टीस्पून काला नमक और 1 टीस्पून गरम मसाला।
1: मतलब रेगुलर मसाले जो हल्दी, लाल मिर्च, जीरा पाउडर,
0: हाँ,
1: धनिया,
0: इन
1: हींग है हमारे
0: सबको
1: घर
0: एक
1: में।
0: कटोरी में आप रख लीजिए, अभी
1: अच्छा
0: इसमें मिलाना
1: ठीक है,
0: नहीं है।
1: मिलाएंगे नहीं।
0: हाँ, अब एक पैन ले, उसको गर्म करते हैं और उसमें 3 टेबल

0: जो तेल डालते हैं, जो भी आपके पास रिफाइंड हो रिफाइंड डाल दें, सरसों का तेल है वो डाल दी, और उसमें हाफ टी स्पून गर्म तेल मतलब कि राई, हाफ राई डालते हैं, राई चटकाते हैं, फिर उसमें थोड़ी सी कड़ी पत्ते डाल देते हैं, हाँ हरी मिर्च दो चार काट के बारीक काट के डाल दें, और ये करी पत्ता डालते हैं, और इसी में कद्दूकस किया हुआ अदरक भी थोड़ी सी डाल करके अच्छे से इसको पका लेते हैं।
1: ठीक है।
0: इसको पकाने के बाद फिर गैस का नॉब बंद कर देंगे, और इसमें जो हमने कटोरी में सारे गर्म मसाले के जो
1: रखा हुआ था,
0: रखा हुआ है, वो सारे मसाले इसमें डाल देते हैं।
1: अच्छा।
0: डालने के बाद गैस ध्यान रहे कि बंद करेंगे, और सूखा पाउडर रूप में ही मसालों को उसमें डालना है, गीला नहीं करना है, ये डालेंगे। फिर डालने के बाद फिर इसमें धनिया बारीक कटी हुई ऊपर से डाल लेते हैं, और इसको अच्छी तरीके से मिलाएंगे। फिर जो है कि घिसा हुआ जो भुट्टा हम रखे हुए हैं पहले एक कटोरी में चार भुट्टे, वो इसमें डाल देते हैं।
1: अच्छा।
0: हाँ, इसमें डालने के बाद फिर अगर आपकी इच्छा पर आई, अगर आपके पास उपलब्ध है तो आप इसमें करीब 250 ग्राम दूध डाल दें। हाँ, पानी
1: मतलब ऑप्शनल है।
0: हाँ, दूध या पानी ऑप्शनल है, दूध डालने से थोड़ा टेस्ट इसका और भी निखर के आता है।
1: अच्छा।
0: इसमें डालेंगे, फिर इसको करीब ढक करके 3-4 मिनट तक धीमी धीमी आंच पर पकाएं, और भुट्टे की देखेंगे कि भुट्टा जब अच्छी तरीके से पक गया है तब इसमें आधा नींबू का रस डाल देते हैं और थोड़ा चीनी ऊपर से ऐड,
1: थोड़ा सा खटमिट जैसा,
0: खट्टा
1: जैसे कि पोहे बनते हैं,
0: पोहे जैसे बनते हैं, वो डालते हैं। इससे स्वाद में इसके और भी चार चांद लग जाते हैं। अब स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, हरी धनिया डालेंगे, और नारियल कद्दूकस करके गर्मा गर्म सर्व करेंगे। तो प्रीति देखो कितनी
1: अब तुमने
0: अच्छी
1: इतनी अच्छा व्यंजन सुनाया है, बताया है, तो मैं इसको ट्राई करूंगी और तुमको ये प्यारा सा गीत सुनवा दे।
0: चलो सुनते।

0: तो श्रोताओं, आपको इस गीत के साथ हम छोड़े जाते हैं, और आपको हमारे कार्यक्रम कैसा लगा आपके फीडबैक का रहेगा इंतजार। अब दीजिए इजाजत प्रीति
1: और शारदा को।
0: नमस्कार।

0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार, विपक्ष से संसद चलने देने का आग्रह। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण आज भी बाधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का युवाओं से आत्मकथा पढ़ने और रील्स तथा सोशल मीडिया की शॉर्टकट संस्कृति से बचने का आग्रह। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर 60 पैसे प्रति लीटर का अनाथ और विधवा उपकर लगाया। इस राशि को अनाथ बच्चों और विधवाओं के लिए चल रही कल्याणकारी योजनाओं पर लगाया जाएगा। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर लोगों में उत्साह। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा, वंदे मातरम की भावना देश की पहचान को मजबूत कर रही है। राजस्थान, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, मध्य महाराष्ट्र और उड़ीसा में कुछ स्थानों पर आज मूसलाधार बारिश का अलर्ट। और ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने ग्रैंड शतरंज टूर की प्रतियोगिता सिंगफील्ड कप के दूसरे दौर में जावोखेल सिंदारोव को हराकर पहली जीत दर्ज की। अब समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के मुद्दे सहित किसी भी विषय पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है और संसद में सदस्यों की ओर से उठाए गए सभी सवालों का जवाब देगी। संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में श्री शाह ने कहा कि सरकार के पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है और वो चर्चा के लिए तैयार है।
1: आज 3 बजे तक स्पीकर साहब को वो पत्र दे दें, 3 बजे से लेकर कल 3 बजे तक सभी प्रकार की चर्चा के लिए हम तैयार हैं। मैं सदन में ही बैठूंगा, सबको सुनूंगा और सब चीजों का जवाब दूंगा। सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं, देश की जनता के सामने सारी चीजें स्पष्ट हो जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए।
0: श्री शाह ने आरोप लगाया कि विपक्ष सदन की कार्यवाही नहीं चलने दे रही।
1: विपक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है दोनों गृहों में, तो कोई जाकर क्या करेगा। जहां तक चर्चा का सवाल है, सरकार की ओर से किरण रिजिजू जी ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि जो नीट आंदोलन के छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए।
0: वहीं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि विपक्ष नीट प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर सरकार से जवाबदेही मांग रहा है। संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में श्री गांधी ने कहा कि विपक्ष को गृहमंत्री के किसी भी बयान में कोई दिलचस्पी नहीं है, बल्कि वो जवाबदेही चाहता है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हो रही है। लोकसभा में आज सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने की कोशिश की, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों को प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर को मिले चंदे में कथित अनियमितताओं का मुद्दा उठाया। श्री बिरला ने विपक्षी सदस्यों से सदन की कार्यवाही चलने देने की अपील की। राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। सदन की कार्यवाही सुबह शुरू होने पर मंत्रियों ने अपने अपने मंत्रालयों के दस्तावेज सदन के पटल पर रखे। विपक्ष के हंगामे के बीच राज्यसभा सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया। इस समय दोनों सदनों की कार्यवाही जारी है। झारखंड लोक सेवा आयोग JPSC और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC सहित प्रदेश की अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर राजधानी रांची में विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन 19वें दिन भी जारी है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: छात्र नेता रविंद्र पासवान ने कहा कि सरकार द्वारा उनकी मांगे स्वीकार किए जाने तक आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से छात्रों के साथ संवाद करने की अपील की। प्रदर्शनकारियों के अनुसार वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी देर रात आंदोलन स्थल पर पहुंचे और आमरण अनशन कर रहे छात्रों से अनशन समाप्त करने का आग्रह किया। हालांकि छात्रों ने अनशन जारी रखने की बात कही और बताया कि आंदोलन की आगे की रणनीति कोर कमेटी तय करेगी। इस बीच झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र कल निर्धारित समय से एक दिन पहले ही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। परीक्षा विवाद और छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर सदन में लगातार हंगामा हुआ। छात्रों का कहना है कि केवल परीक्षा रद्द करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि कथित अनियमितताओं की स्वतंत्र जांच कर दोषियों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से आग्रह किया है कि वो अपने प्रिय व्यक्ति की आत्मकथा पढ़ें और रील्स तथा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के युग में शॉर्टकट अपनाने से बचें। उन्होंने विकसित भारत के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित युवाओं की निरंतर आवश्यकता पर भी बल दिया।
3: हमें भविष्य में कोविंद जी जैसे अनेकों युवा चाहिए जो परेशानियों से परास्त न हो, जो मुश्किलों से मायूस न हो, बल्कि अपनी मेहनत से हर मंजिल को आसान बनाने का हौसला रखे। इसी बदलाव से सशक्त भारत के निर्माण का

0: संकल्प पूरा होगा, यहीं से आत्मनिर्भर और विकसित भारत का रास्ता बनेगा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा भारतीय गणराज्य की विजय मेरा जीवन मेरा संघर्ष का विमोचन किया। ये आत्मकथा श्री कोविंद के उल्लेखनीय जीवन सफर का एक व्यक्तिगत विवरण प्रस्तुत करती है। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति के रूप में रामनाथ कोविंद का मार्गदर्शन उनके लिए शक्ति का एक बड़ा स्रोत रहा है।
0: कोविंद जी ने ये काम हम सबके लिए किया है, क्योंकि उनके जीवन में ऐसा कितना कुछ है जिसमें गरीब वंचित तबके से आए तमाम लोग अपने जीवन की परछाई देख सकते हैं। कैसे एक साधारण परिवार मुश्किल हालातों में भी जीवन की शुचिता और ईमानदारी से समझौता नहीं करता।
1: इस अवसर पर श्री कोविंद ने कहा कि राजनीति केवल सत्ता हासिल करने का साधन नहीं है, बल्कि राष्ट्र की सेवा करने का एक माध्यम भी है। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। हिमाचल प्रदेश में पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमतें बढ़ गई हैं। राज्य सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर 60 पैसे प्रति लीटर का अनाथ और विधवा उपकर लगाया है। संशोधित दरें कल आधी रात से लागू हो गई हैं। इससे प्राप्त राशि को अनाथ बच्चों और विधवाओं के लिए चल रही कल्याणकारी योजनाओं के लिए दिया जाएगा। भाजपा के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता और विधायक राकेश जम्वाल ने इस फैसले को जन विरोधी बताया है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारतीय व्यापार महोत्सव का उद्देश्य अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और रक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में भारत की बढ़ती क्षमता को प्रदर्शित करना है, जिससे आत्मनिर्भर भारत की दिशा में देश की प्रगति को गति मिल सके। नई दिल्ली में भारतीय व्यापार महोत्सव 2026 के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने ये बात कही। इस अवसर पर वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितेन्द्र प्रसाद ने कहा कि प्रौद्योगिकी और व्यापार भारत की विकास यात्रा के दो प्रमुख आधार हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ग्रामीण ज्ञान सेतु ऐप का शुभारंभ करेंगे। ये ऐप गुजरात के गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र की विभिन्न लाइब्रेरियों को एक साथ जोड़ने के लिए विकसित किया गया है। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने हथकरघा क्षेत्र में एक बड़े बदलाव का आह्वान किया है। उन्होंने उद्योग को पुनर्जीवित करने और बुनकरों तथा कारीगरों के लिए नए अवसर सृजित करने के लिए नवाचार, बाजार उन्मुख डिजाइन और टिकाऊ उत्पादन पर बल दिया। नई दिल्ली में भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान के पहले वार्षिक सम्मेलन सूत्र 2026 में श्री सिंह ने ये बात कही। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है।
2: इस वर्ष हर घर तिरंगा 2026 अभियान वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के जज्बे को समर्पित है। यह अभियान देशभक्ति, तिरंगे के प्रति गर्व और हमारे राष्ट्रगीत में झलकने वाले मातृभूमि के प्रति प्रेम का जश्न मनाता है। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत शुरू किए गए इस अभियान का उद्देश्य लोगों को तिरंगा घर लाने और भारत की आजादी के उपलक्ष्य में उसे फहराने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसकी शुरुआत इस सोच के साथ हुई थी कि राष्ट्रध्वज के साथ हमारा रिश्ता हमेशा व्यक्तिगत होने के बजाय औपचारिक और संस्थागत रहा है। इसलिए एक राष्ट्र के तौर पर सामूहिक रूप से तिरंगे को घर लाना न केवल तिरंगे के साथ व्यक्तिगत जुड़ाव का प्रतीक बन गया, बल्कि राष्ट्र निर्माण के प्रति हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता का भी प्रतीक बन गया। इस पहल का मकसद लोगों के दिलों में देशभक्ति की भावना जगाना और भारतीय राष्ट्रध्वज के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि वंदे मातरम की भावना ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित किया और आज भी ये देश की पहचान को मजबूत कर रही है। संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित हर घर तिरंगा बाइक रैली में हिस्सा लेने वालों को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में कही।
3: इन तिरंगा यात्रा, बाइक एंड साइकिल रैलीज, कल्चरल प्रोग्राम्स एंड कंसर्ट्स, ईच एक्टिविटी हैज अ डिफरेंट फॉर्म बट द सेंटीमेंट बिहाइंड देम इज कॉमन। द नेशनल फ्लैग इज द सिंबल इन विच एवरी सिटीजन कैन फाइंड अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से स्वतंत्रता दिवस को सम्मान, गर्व और गौरव के साथ मनाने और विकसित भारत का संकल्प लेने का आग्रह किया। सोशल मीडिया पोस्ट में एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने लोगों से हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, हर मन तिरंगा अभियान के तहत हर घर में राष्ट्रीय ध्वज फहराने की अपील की है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज युवाओं से देश को आगे ले जाने की जिम्मेदारी उठाने और भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में योगदान देने का आह्वान किया। नई दिल्ली में तिरंगा यात्रा के दौरान युवा छात्रों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने ये बात कही। जम्मू कश्मीर में आज श्रीनगर के प्रसिद्ध डल झील के

0: किनारे बुलेवार्ड रोड पर एक विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। स्वतंत्रता दिवस से पहले मध्य प्रदेश में भी हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत देशभक्ति का रंग देखने को मिला। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में तिरंगा यात्राओं से लेकर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
1: स्वतंत्रता दिवस से पहले मध्य प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान जोर पकड़ रहा है। प्रदेश में 9 से 17 अगस्त तक चल रहे इस अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में तिरंगा यात्रा के साथ की। इसके बाद से प्रदेश भर में तिरंगा यात्राएं, बाइक और साइकिल रैलियां निकाली जा रही हैं। गांवों से लेकर शहरों तक तिरंगा मेले, प्रदर्शनियां, मानव श्रृंखला और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। स्कूल कॉलेजों में भी रंगोली, चित्रकला, निबंध और देशभक्ति गीतों जैसी प्रतियोगिताओं के जरिए बच्चों और युवाओं को अभियान से जोड़ा जा रहा है। 13 से 15 अगस्त तक लोगों से अपने घरों, दुकानों और प्रतिष्ठानों पर तिरंगा फहराने की खास अपील की गई है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: राज्यसभा में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पर विचार विमर्श और पारित करने के लिए चर्चा शुरू हुई। सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने ये विधेयक प्रस्तुत किया। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम 1962 में और संशोधन करना है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि रेलवे के लगभग 89% आरक्षित टिकट ऑनलाइन बुक किए जा रहे हैं। वर्ष 2013-14 में ये आंकड़ा लगभग 49% था। श्री वैष्णव ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में ये जानकारी दी। मुंबई के घाटकोपर इलाके में आज तड़के एक चौल में भूस्खलन होने से 6 लोगों की मौत हो गई और 4 अन्य घायल हो गए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि स्थानीय अधिकारियों द्वारा बचाव और राहत कार्य जोरों पर है।
2: मुंबई के घाटकोपर इलाके में आज तड़के भारी बारिश के बाद हुए भूस्खलन में 6 लोगों की मौत हो गई। बृहन मुंबई महानगर पालिका के अनुसार यह घटना चिराग नगर स्थित गौसिया चौल में हुई। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक पहाड़ी का एक हिस्सा चौल पर गिर गया, जिससे 2 से 3 मकान मलबे की चपेट में आ गए। घटना के बाद मुंबई की महापौर ऋतु तावड़े और अतिरिक्त नगर आयुक्त पूर्वी उपनगर डॉक्टर अविनाश ढाकने ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और जारी बचाव कार्यों का निरीक्षण किया। प्रार्थना के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए मुंबई से मैं स्वीटी जैन।
0: वहीं मौसम विभाग ने राजस्थान, पश्चिम बंगाल के गंगई क्षेत्र, मध्य महाराष्ट्र और उड़ीसा में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कल तक बिजली चमकने और तेज बारिश का अनुमान है। ओडिशा तट के पास उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में एक नया कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण उत्तरी और तटीय ओडिशा के कुछ हिस्सों में तेज बारिश की संभावना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव का एक नया क्षेत्र बना है, जिससे उड़ीसा में बारिश बढ़ गई है। भद्रक, केंद्रापड़ा और जगत सिंहपुर में भारी से बहुत भारी बारिश के लिए ऑरेंज चेतावनी जारी की गई है। 25 अन्य जिलों के लिए येलो चेतावनी जारी की गई है। IMD को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में उड़ीसा में व्यापक होगी और आज व कल कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। तटीय इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। खेलों में ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने अमेरिका में आयोजित ग्रैंड शतरंज टूर की प्रतियोगिता सिंगफील्ड कप के दूसरे दौर में जावुखेर सिंदारोव को हराकर अपनी पहली जीत दर्ज की। 95 चालों तक चले इस मैच में प्रज्ञानंदा ने शुरुआत से अंत तक अपना दबदबा बनाए रखा। इस जीत के साथ ही प्रज्ञानंदा के 2 मैचों में 1.5 अंक हो गए हैं। अभी समाचार मिला है कि लोकसभा की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार, विपक्ष से संसद चलने देने का आग्रह। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण आज भी बाधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का युवाओं से आत्मकथा पढ़ने और रील्स तथा सोशल मीडिया की शॉर्टकट संस्कृति से बचने का आग्रह। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर 60 पैसे प्रति लीटर का अनाथ और विधवा उपकर लगाया। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर लोगों में उत्साह। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा, वंदे मातरम की भावना देश की पहचान को मजबूत कर रही है। और ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने ग्रैंड शतरंज टूर की प्रतियोगिता के दूसरे दौर में जावुखेर सिंदारोव को हराकर पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है।

0: पतंग।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश।
1: और मैं हूं अजीत। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज के उमंग कार्यक्रम में। सुनते हैं एक सुंदर सुविचार जिसे हमें भेजा है प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी ने।
2: लिखते हैं, सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं, इसलिए सुख में विनम्र रहें और दुख में धैर्य रखें, क्योंकि समय हमेशा बदलता रहता है।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर प्रेरणादायी संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो श्रोताओं, पहला संदेश हमें मिला है ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अब्बान अब्बासी का।
2: साथ ही साथ हमें संदेश प्राप्त हुआ है भट्टीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू का। उन्होंने लिखा है,
1: नमस्कार, उमंग कार्यक्रम में ये भी जानिए श्रृंखला में आप जिस विषय की जानकारी को समाहित करते हैं उसका पूरा इतिहास अच्छे से सरल शब्दों में समझाकर बताते हैं, जिसे बच्चों को भी समझ में आ सके। 13 से 17 जुलाई वाले सप्ताह में आपने पुस्तकों के उद्भव और विकास की कहानी को व्यापक जानकारी देकर बताया। इसी सप्ताह आपने मानसून, अरावली की कहानी और हिमालय की उत्पत्ति पर संग्रहणीय भौगोलिक जानकारी दी। पूरी उमंग टीम को हमारी ओर से हार्दिक धन्यवाद।
2: आपका भी बहुत बहुत आभार संदेश भेजने के लिए। संघ संकारा सोमनी, जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से नारायण लाल साहू, कुलवंतीन देवी साहू, देवेंद्र प्रताप साहू, नेहा देवी साहू, मिलिंद कुमार साहू, प्रणय कुमार साहू और रुद्रांश प्रताप साहू।
1: रायगढ़ छत्तीसगढ़ से गेंदलाल श्रीवास संतोष और श्रीवास कृष्ण कुमार यादव और बल्लू निषाद।
2: ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अबान अब्बासी।
1: आप सबको हमारा बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं। एक बार फिर से निवेदन करते हैं कि संदेश भेजते रहिए और जुड़े रहिए उमंग कार्यक्रम से।
2: जी, ये भी जानिए श्रृंखला की इस कड़ी में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। श्रोताओं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं स्वतंत्रता संग्राम या भारत की आजादी की लड़ाई में शामिल हुए कुछ ऐसे लोगों की,
1: जिन्हें महात्मा गांधी और अन्य प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानियों की तरह नाम और प्रसिद्धि तो नहीं मिली, लेकिन उनका योगदान भारत को स्वतंत्र कराने में किसी से कम न था।
2: उन गुमनाम और कम चर्चित लोगों में से आज हम जिनकी चर्चा करेंगे उनका नाम है पिंगली वेंकैया। बहुत कम हैं जो इस नाम को जानते हैं। तो श्रोताओं, आपको बता दें कि वो पिंगली वेंकैया ही थे जिन्होंने हमारे प्यारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को डिजाइन किया था।
1: श्रोताओं, उनका जन्म 2 अगस्त 1876 को आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में हुआ था। वे स्वतंत्रता सेनानी, कृषि वैज्ञानिक, भाषा विद्वान और भूविज्ञानी थे। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ाई के बाद उन्होंने कई भाषाओं का अध्ययन किया और महात्मा गांधी के संपर्क में आए।
2: वे ब्रिटिश भारतीय सेना में थे और उन्हें बहुत बुरा लगता था जब ब्रिटेन के झंडे को एक भारतीय सैनिक की हैसियत से उन्हें सलामी देनी होती थी। उन्हीं दिनों में उनके मन में एक तीव्र इच्छा जागृत हो गई कि भारत का भी अपना राष्ट्रीय ध्वज हो। समय बीता, वे गांधी जी के संपर्क में आए और स्वाधीनता आंदोलन में शामिल हो गए।
1: जब राष्ट्रीय ध्वज बनाने की बात आई तो इसके लिए पिंगली वेंकैया जी को ही चुना गया। लगभग 5 वर्षों तक उन्होंने दुनिया भर के झंडों का गहरा अध्ययन किया और करीब 30 डिजाइन संविधान सभा के सामने प्रस्तुत किए। उनमें से आज का हमारा प्यारा तिरंगा चुना गया। श्रोताओं, वेंकैया जी का निधन 4 जुलाई 1963 को हुआ। उन्हें हमारा शत शत नमन।
2: श्रोताओं, तिरंगा हमारी जान है, आन है और शान है
1: जी।
2: लेकिन बहुत जरूरी है ये जानना कि हम इसका सम्मान कैसे करें। आइए कुछ प्रमुख नियमों को जानते हैं।
1: श्रोताओं, पहली बात, राष्ट्रध्वज हमेशा सम्मान पूर्वक फहराया जाना चाहिए। कभी भी इसे जमीन, पानी या फर्श को छूने नहीं देना चाहिए।
2: कभी भी फटा, गंदा या क्षतिग्रस्त तिरंगा नहीं फहराना चाहिए। ध्वज का उपयोग किसी अन्य प्रकार से कभी नहीं होना चाहिए, जैसे मेजपोश, पर्दे, कुशन या सजावट की वस्तु के रूप में नहीं किया जाना चाहिए।
1: श्रोताओं, तिरंगे पर कुछ भी लिखना, चित्र बनाना

0: इसके वास्तविक रूप से छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए।
1: जी
0: और हाँ, यह बात जरूर ध्यान में रखनी चाहिए कि किसी अन्य ध्वज को राष्ट्रीय ध्वज से ऊंचा या अधिक सम्मानजनक स्थान पर नहीं लगाया जा सकता।
1: जी हाँ श्रोताओं, तिरंगा हमें केवल अधिकारों की याद नहीं दिलाता बल्कि हमारे कर्तव्यों की भी याद दिलाता है। जब भी हम तिरंगे को देखें तो अवश्य उन लाखों स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को याद करें जिनकी कुर्बानियों से हमें आजादी मिली।
0: तो आइए श्रोताओं, हम सभी संकल्प लें कि हम अपने राष्ट्र ध्वज का सदैव सम्मान करेंगे, देश की एकता और अखंडता को बनाए रखेंगे और एक जिम्मेदार नागरिक बनकर भारत को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देंगे।
1: जी, और अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
0: तो श्रोताओं, आज का प्रश्न है, राष्ट्र ध्वज के चयन के लिए श्री पिंगली वेंकैया जी ने झंडों के कुल कितने डिजाइन प्रस्तुत किए थे? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: राष्ट्र ध्वज के चयन के लिए श्री पिंगली वेंकैया जी ने झंडों के कुल कितने डिजाइन तैयार किए थे?
0: श्रोताओ, आप अपना उत्तर हमें हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो आइए अब करते हैं रुख आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की ओर और सुनते हैं कार्यक्रम सुभाष चंद्र बोस।
1: इस कार्यक्रम में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनके उल्लेखनीय योगदान के बारे में बताया गया है। विशेष रूप से उनके द्वारा स्थापित आजाद हिंद फौज की चर्चा की गई है।
2: तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। बता सकते हो ये बात किसने कही थी? भारत की स्वतंत्रता के लिए भारतवासियों से खून की मांग करने वाले इस देशभक्त का नाम था नेताजी सुभाष चंद्र बोस। उन्होंने देश को स्वतंत्र कराने के लिए आजाद हिंद फौज का गठन किया और ब्रिटिश साम्राज्यवाद से जमकर टक्कर ली। देश के लिए जान न्योछावर करने वाले इस वीर का जन्म 23 जनवरी सन 1897 में उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था। उनके पिता राय बहादुर जानकीनाथ बोस कटक के एक प्रतिष्ठित वकील थे। सुभाष की प्रारंभिक शिक्षा कटक में हुई और कॉलेज की पढ़ाई कलकत्ता में। जब वे प्रेसिडेंसी कॉलेज में BA के छात्र थे तभी एक दिन
3: अरे दिलीप।
4: हाँ सुभाष।
3: अरे उधर कहाँ जा रहे हो भाई, कक्षा में नहीं चलना क्या? वो प्रोफेसर ओटन का पीरियड है ना?
4: हाँ है तो सुभाष, लेकिन कक्षा में मैं नहीं जाऊंगा। प्रोफेसर ओटन जिस तरह हम भारतीयों को गाली देते रहते हैं, मुझे उससे सख्त नफरत है।
3: अरे तो तुम क्या समझते हो, मुझे गालियां खाने का शौक है, है? मगर इस तरह कक्षा में ना जाने से क्या होगा भाई?
4: कक्षा में नहीं जाएंगे तो अंग्रेज के मुंह से अपने देश के बारे में अपमानजनक बातें तो नहीं सुनेंगे ना?
3: अरे इस तरह कहां कहां से बचोगे? प्रोफेसर ओटन कोई अकेला अभिमानी अंग्रेज तो है नहीं इस देश में। स्कूल, कॉलेज, घर, दफ्तर, हाट बाजार, सभी जगह तो ये लोग हमारे लाखों करोड़ों देशवासियों को लांछित और अपमानित करते रहते हैं।
4: तो फिर?
3: और हमारा दोष ये है कि हम विरोध करने की बजाय पीठ फेर कर चले जाते हैं। जिस दिन हमने सामने खड़े होकर इनका विरोध करना शुरू कर दिया ना, उसी दिन से इनका गाली देना भी बंद हो जाएगा।
4: कहना आसान है सुभाष, इन गोरों के आगे विरोध करने के लिए खड़ा कौन होगा?
3: हमारे तुम्हारे जैसे लोग ही खड़े होंगे बंधु, जिनका ये लोग सत्ता के नशे में चूर होकर दिन रात अपमान करते रहते हैं।
4: सुभाष, प्रोफेसर ओटन आ रहे हैं।
5: Hey, you idiots! क्लास का टाइम में इधर खड़ा होकर क्या करता तुम?
3: आप ही के बारे में बात कर रहे थे प्रोफेसर ओटन।
5: Is that right? You black monkey?
4: जी सर, वो ऐसा था जी कि सर।
5: वाह जी जी, बोलता क्यों नहीं, क्या बात करता था?
3: हम ये कह रहे थे कि आप टीचर हैं, आपके मुंह से बात बेबात गाली शोभा नहीं देती।
5: You bloody rascal! You are telling me what to do? तुम्हारा यह हिम्मत?
3: हिम्मत की बात ना कीजिए प्रोफेसर, हिम्मत तो इससे भी ज्यादा है।
5: तो क्या करेगा? हा? क्या करेगा तुम? मारेगा हमको? You scoundrel! You bloody swine! बोलो क्या करेगा तुम? हम तुमको गाली देगा, तुम्हारा बाप को गाली देगा।
3: बस प्रोफेसर बस, इससे ज्यादा एक शब्द भी नहीं सुनूंगा मैं।
5: ठीक है, हम तुमको देख लेगा। क्या नाम है तुम्हारा?
3: मेरा नाम सुभाष चंद्र बोस है।

0: मिस्टर उटन, आइंदा याद रखिएगा।
1: अन्याय और अत्याचार के खिलाफ ये सुभाष की पहली जंग थी। परिणाम ये निकला कि उन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया, लेकिन सुभाष को कोई अफसोस नहीं हुआ। बाद में दूसरे कॉलेज से उन्होंने बीए पास किया। फिर अपने पिता के आग्रह पर उन्होंने लंदन जाकर इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा भी पास की। लेकिन वे अच्छी तरह जानते थे कि आईसीएस के बंधन में बंधकर देश को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराना असंभव है। इसलिए उन्होंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया और स्वदेश लौट आए। बंबई आते ही वे महात्मा गांधी से मिले। गांधी जी के शांतिपूर्ण सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन के कार्यक्रम उन्हें पसंद नहीं आए। गांधी जी ने उनकी परेशानी को समझा और उन्हें सलाह दी कि वे कलकत्ता जाकर देशबंधु चितरंजन दास से मिलें। देशबंधु के विचार सुभाष के जोशीले स्वभाव के अनुकूल थे। बस फिर क्या था, देशबंधु के नेतृत्व में सुभाष ने बंगाल के युवकों को संगठित करना शुरू किया। उन्हीं दिनों इंग्लैंड के युवराज भारत की यात्रा पर आए। कांग्रेस ने प्रस्ताव किया कि युवराज के दौरे का पूर्ण बहिष्कार हो और हड़ताल की जाए। बंगाल में यह हड़ताल अभूतपूर्व रूप से सफल हुई। सभी बड़े नेता बंदी बनाए गए।
2: क्या कहते हो, सभी नेता पकड़े गए?
3: अरे ये महात्मा जी का आंदोलन है भाई, यहाँ नेता लोग जनता के आगे खड़े होते हैं, पहली लाठी गोली खुद खाते हैं, पहले जेल खुद जाते हैं।
2: तो क्या देशबंधु भी पकड़े गए?
3: हाँ, सबसे पहले तो उन्हीं को पकड़ा।
2: और अपने सुभाष बाबू?
3: वो भी आते ही होंगे। जब पुलिस हम लोगों को गाड़ी में भर रही थी, तब भी वे बचे हुए लोगों को आगे बढ़ने को प्रेरित कर रहे थे। लो, ये एक और दल आ गया, और शायद सुभाष बाबू भी साथ ही है। क्यों सुभाष दा,
4: कितनी सजा हुई?
0: नालायक कहीं के, सजा भी ठीक से नहीं दे सकते, उसमें भी कंजूसी कर गए।
2: क्या हुआ सुभाष बाबू?
0: अरे होगा क्या, इतनी बड़ी हड़ताल हुई और सजा दे रहे हैं सिर्फ 6 महीने की। मैं देशभक्त हूँ कि कोई मुर्गी चोर?
1: लेकिन इसके बाद से जेल यात्राओं का ऐसा दौर शुरू हुआ कि 1921 से 1940 के बीच सुभाष लगभग 16 बार जेल गए। जब जेल में रहते तो उनका स्वास्थ्य बिगड़ जाता, लेकिन जैसे ही जेल से छूटते फिर आंदोलन में जुट जाते। बार बार जेल जाने से उनका स्वास्थ्य इतना गिर गया कि उन्हें टीबी हो गई। जब भोवाली सेनेटोरियम में भी स्वास्थ्य नहीं सुधरा तो उन्हें स्विट्जरलैंड जाने की अनुमति दी गई। वहां पहुंचकर वे यूरोपीय देशों में भारत के प्रति सहानुभूति का वातावरण बनाने में लग गए। 1938 में उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। 1939 में वे फिर अध्यक्ष चुने गए, लेकिन गांधी जी से मतभेद होने के कारण उन्होंने इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस के भीतर ही एक प्रगतिवादी दल फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। तभी दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया। एक बार फिर सुभाष और गांधी जी का मतभेद सामने आया। गांधी जी अंग्रेजों पर आई विपत्ति का फायदा नहीं उठाना चाहते थे, जबकि सुभाष का कहना था कि इस समय अंग्रेज दूसरे मोर्चों पर फंसे हुए हैं, उनकी पकड़ हिंदुस्तान पर से ढीली हो रही है, यही सही वक्त है जब हमें पूर्ण स्वराज्य प्राप्त कर लेना चाहिए। सुभाष के ऐसे वक्तव्यों से घबराकर ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1940 में उन्हें फिर बंदी बना लिया। सुभाष ने आमरण अनशन की घोषणा कर दी। इस पर सरकार ने उन्हें जेल से तो छोड़ दिया, लेकिन उनके घर पर सशस्त्र पुलिस का कड़ा पहरा बैठा दिया।
0: कौन? शिशिर?
5: हाँ सुभाष काका, मैं हूँ, दरवाजा खोलिए।
0: आओ अंदर आ जाओ, क्या खबर है?
6: सब तैयार।

0: गई है, पीछे वाली गली में गाड़ी खड़ी है। कलकत्ता में आपका दिखाई देना ठीक नहीं है काका। ये सोचकर हम लोगों ने योजना बनाई है कि आप बिहार में गोमो से ट्रेन में बैठेंगे, मैं स्वयं गाड़ी चला कर ले चलूंगा।
1: ठीक है चलो, लेकिन मेरे ये कपड़े?
0: उसका भी प्रबंध हो गया है, आपके लिए तंग पैजामा, शेरवानी और तुर्की टोपी आ गई है। आप रास्ते में कहीं बदल लीजिएगा।
1: ठीक है।
0: उस वेशभूषा में आपकी ये दाढ़ी बिल्कुल ठीक लगेगी, किसी को शक नहीं होगा कि आप सचमुच मौलवी जियाउद्दीन नहीं है।
1: तो फिर ठीक है, आओ चले।
0: चलिए।

0: 16 जनवरी की रात वे पुलिस वालों की आंखों में धूल झोंककर गायब हो गए। इसमें उनके भतीजे शिशिर बोस ने उनकी मदद की।
1: दरवाजा खोलिए साहब, मैं रेलवे कर्मचारी हूँ। इन मौलवी साहब का रिजर्वेशन है यहाँ से।
2: खोलता हूँ भाई, खोलता हूँ, अभी खोल देता हूँ। आदाब अर्ज़ है मौलवी साहब।
3: आदाब, ये सामान यहाँ रख दीजिए।
2: लाओ लाओ।
3: शुक्रिया शुक्रिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जनाब गार्ड साहब।
4: नहीं साहब, इसमें शुक्रिया की क्या बात है।
3: अच्छा, खुदा हाफिज।
4: खुदा हाफिज साहब। लो भाई, यहां तक तो आसानी से आ गए, अब कल ना जाने क्या हो। ये अखबार कहां गए? हाँ, ये रहा, कल दिन भर पढ़ने के साथ साथ चेहरा छिपाने के भी काम आएगा।
5: अब थोड़ी देर आराम कर लूं।
0: ट्रेन से पेशावर पहुंचने पर सुभाष को कुछ विश्वस्त साथी मिले, जिन्होंने सीमा पार करने में उनकी मदद की। इस तरह कभी पैदल, कभी खच्चरों पर, तो कभी ट्रक वालों से मुफ्त सवारी मांगते हुए सुभाष काबुल पहुंचे। काबुल में उन्होंने कई विदेशी दूतावासों से संपर्क स्थापित करने की कोशिश की और आखिर इटालियन दूतावास के जरिए यूरोप जा पहुंचे। उन्होंने जर्मनी में हिटलर से भेंट की। सुभाष ने बर्लिन में रहकर वहां रहने वाले भारतीयों को इकट्ठा करके फ्री इंडिया लीग की स्थापना की। जर्मनी की सहायता से उन्होंने आजाद हिंद रेडियो का प्रसारण आरंभ किया। स्वयं सुभाष भी इस पर अपने विचार व्यक्त करते थे। उधर जापान में भी एक पुराने भारतीय क्रांतिकारी श्री रास बिहारी बोस भारत को स्वतंत्र कराने के प्रयत्नों में लगे हुए थे। इन लोगों की योजना थी कि युद्ध में ब्रिटेन की ओर से लड़ रहे जिन भारतीय सैनिकों को जापान और जर्मनी में बंदी बना लिया है, उनकी एक सशस्त्र सेना संगठित की जाए। इस सेना का नेतृत्व करने के लिए सुभाष को सिंगापुर बुलाया गया। 5 जुलाई 1943 को उन्होंने सुप्रीम कमांडर की हैसियत से आजाद हिंद फौज के विधिवत गठन की घोषणा की। यहीं उन्होंने एक नया नारा बुलंद किया।
6: जय हिंद,
7: जय हिंद,
6: जय

0: उससे मदद लेने में कोई हर्ज नहीं है। उधर युद्ध की भीषणता बढ़ती जा रही थी। आजाद हिंद फौज की टुकड़ियों ने भी कई मोर्चों पर युद्ध किया। खराब मौसम, कम रसद और बीमारियों के बावजूद नेताजी के सैनिकों के हौसले बुलंद थे। बर्मा की ओर बढ़ती हुई आजाद हिंद फौज कोहिमा तक पहुंच गई। भारत भूमि पर आजाद हिंद का झंडा फहराया गया। मगर इस बीच बहुत से सैनिक हताहत हुए। आजाद हिंद फौज को और अधिक बलिदानी वीरों की आवश्यकता थी। 22 सितंबर 1944 को रंगून का जुबली हॉल खचाखच भरा हुआ था। शहीद जतीन दास का स्मृति समारोह था। जय हिंद और दिल्ली चलो के नारे गूंज रहे थे।
1: मेरे बहादुर साथियों, तुम लोगों ने आजादी के लिए बहुत त्याग किया है, लेकिन अभी प्राणों की आहुति देना बाकी है। मैं भारत की स्वतंत्रता को स्पष्ट देख रहा हूं, वो अब ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन अभी उसे खून की जरूरत है। उसे ऐसे नौजवानों की जरूरत है जो अपने हाथों अपना सर काटकर उसके चरणों पर न्योछावर कर सके, जो उसके लिए अपना खून बहा सके। बोलो साथियों, क्या तुम लोग तैयार हो?
2: हम तैयार हैं।
1: तो फिर ठीक है, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा।
3: नेताजी, मेरे खून की एक एक बूंद ले लीजिए।
1: नहीं नहीं नहीं, इस तरह बातें बनाने से कुछ नहीं होता। मुझे इस प्रतिज्ञा पत्र पर तुम्हारे हस्ताक्षर चाहिए।
4: मुझे दीजिए कागज, पहले मैं हस्ताक्षर करूंगी।
1: ठहरिए ठहरिए ठहरिए, ये आजादी का परवाना है, इस पर सादी स्याही से हस्ताक्षर नहीं किए जाते, इस पर खून से हस्ताक्षर होते हैं। जिसकी नसों में सच्चा भारतीय खून बहता हो, जिसे अपने प्राणों का मोह ना हो, वो आगे बढ़े और इस पर हस्ताक्षर करे।
5: मैं करूंगी हस्ताक्षर, कागज मुझे दीजिए।
2: नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं।

यद्यपि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के नेता यही मानते थे कि एक साम्राज्यवादी शक्ति को हटाने के लिए दूसरी साम्राज्यवादी शक्ति का सहारा लेना उचित नहीं है, मगर नेताजी का कहना था कि शत्रु का शत्रु अपना मित्र होता है और

और उस दिन नेताजी के आह्वान पर सैकड़ों हजारों लोगों ने आगे बढ़कर आजादी के उस परवाने पर अपने खून से हस्ताक्षर किए। पता नहीं उनमें से कितने आजादी की सुबह देखने को जिंदा रहे और कितने आजादी की राह में शहीद हो गए।

0: खुद नेताजी का विमान 18 अगस्त 1945 को दुर्घटनाग्रस्त हो गया। 15 अगस्त 1947 की सुबह देखने के लिए नेताजी जीवित नहीं रहे, मगर जैसा उन्होंने खुद कहा था,
1: ये बात महत्वपूर्ण नहीं है कि हम में से कौन भारत को आजाद देखने के लिए जीवित रहेगा। यही काफी है कि भारत आजाद होगा और उसे आजाद करने के लिए हम अपना सर्वस्व अर्पित कर देंगे।
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम सुभाष चंद्र बोस, और आइए अब सुनते हैं एक विशेष गीत जिसने भारत की आजादी की लड़ाई के दौरान असंख्य युवाओं को प्रेरणा दी और उन्हें क्रांति पथ पर अग्रसर होने के लिए आह्वान किया। शीर्षक है जवानों उठो।
3: इस कार्यक्रम के द्वारा देश के जवानों को संदेश दिया गया कि वे देश के लिए पूरे समर्पण और दृढ़ निश्चय के साथ काम करें और इसे विकास की दिशा में आगे ले जाएं।

0: श्रोताओं, अभी आपने सुना ये खूबसूरत गीत जवानों उठो, और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब मुझे यानी अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुम लता, जगबंधु
1: और मंजू जी के साथ विमलेश को कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम सुन रहे थे उमंग। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर। 3 बजे हैं, हमारी आज की ये सभा अब समाप्त होती है। शाम 5 बजे हम आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। श्रोताओं, हमारे विविध भारती के नेशनल नेटवर्क के कार्यक्रम जारी रहेंगे।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। 5 बजे हैं, हमारी सायंकालीन सभा आरंभ होती है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे फिल्म संगीत। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। हम आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम की शुरुआत में आया सावन झूम के इस फिल्म का गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने, धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

कार्यक्रम के अंत में लीजिए सुनिए फिल्म आई मिलन की रात का गीत मोहम्मद अजीज और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ों में। शब्द रचना है समीर की, धुन बनाई आनंद मिलिंद ने।

इसी गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और FM 100.3 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। थोड़ी ही देर में युवा साथी अपना कार्यक्रम सुनेंगे युववाणी।

0: घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी। और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: मेहमान आएंगे, हो सकता है इंडिया मैच जीतेगा, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन HIV का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
2: HIV को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के ICTC केंद्र पर HIV टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए, स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें।

0: तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं और आज के सुहाने सफर में हम बात करेंगे कि यंग ड्रीम्स की और आइडियाज़ की, जिन्हें दुनिया जिनसे हम कहते हैं ना कि यंग आइडियाज़ यंग माइंड से दुनिया भी बदल सकती है।
1: और आज का तो टॉपिक भी स्पेशली हमारे लिए है, बिकॉज टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरनेशनल यूथ डे, यानी अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, जो हर साल आज ही के दिन यानी 12 अगस्त को मनाया जाता है।
0: वैसे उन्नति, ये सिर्फ एक दिवस की बात नहीं है, बल्कि हमारा पूरा कार्यक्रम ही यूथ को डेडिकेटेड होता है। तो मतलब हम युवा समाज के उस वर्ग से बिलोंग करते हैं जिनमें आइडियाज, इनोवेशंस और यूनिकनेस है, और उनकी क्रिएटिविटी के लिए हम उन्हें जानते हैं। और हमेशा से ही ये बात होती है ना कि अगर कहीं पे चेंज लाना है तो उसके लिए हमेशा जो नज़रें होती हैं वो यूथ की तरफ ही जाती हैं।
1: बिल्कुल सही कहा। और एक इंटरेस्टिंग बात एक और है, यूनाइटेड नेशंस ने 1999 में आज ही के दिन को इंटरनेशनल यूथ डे के रूप में डिजिग्नेट किया था। तो बेसिकली ये वो दिन है जब दुनिया ने ऑफिशियली एक्सेप्ट किया कि गाइज यूथ मैटर, और ऑनेस्टली युवा सिर्फ फ्यूचर नहीं है, यूथ आर द प्रेजेंट।
0: एब्सोल्युटली, क्योंकि आज जो यंग जनरेशन है वही टेक्नोलॉजी डेवलप कर रही है, बिजनेस को स्टार्ट कर रही है, रिसर्च कर रही है, स्पोर्ट्स में कंट्रीज को रिप्रेजेंट कर रही है और सोसाइटी में भी चेंज ला रही है। लेकिन अगर यूथ इतने ही इम्पोर्टेंट हैं तो सिर्फ क्या एक दिन उनके नाम कर देना इनफ होगा?
1: बिल्कुल नहीं। इंटरनेशनल यूथ डे का पर्पस सिर्फ सेलिब्रेशन नहीं है, ये एक रिमाइंडर है कि दुनिया को यंग पीपल, उनके प्रॉब्लम्स, आइडियाज़ और एस्पिरेशंस को सीरियसली लेना चाहिए।
0: बिल्कुल वैसे ही जैसे हम नॉलेज इन्फॉर्मेशन के साथ साथ एंटरटेनमेंट को भी इक्वली सीरियसली लेते हैं, ताकि जो हमारी बातें हैं उसके साथ साथ मनोरंजन भी बैलेंस बना रहे। तो लीजिए पेश है आज की शाम का पहला गाना, जिसके बाद हम वापस करेंगे फिर से बहुत ही इन सब इम्पोर्टेंट जानकारीज को फिर से कंटिन्यू।

0: हेलो नमस्कार गुड इवनिंग दोस्तों, आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट यूथ प्रोग्राम युवाणी, जहां बातें होती हैं यंग माइंड्स की और भारत के फ्यूचर की। हम स्वागत करते हैं आपका एक और रिफ्रेशिंग और इन्फॉर्मेटिव एपिसोड में। मैं हूं आपकी दोस्त उन्नति
1: और मैं हूं आपकी साथी सुषमा।

0: वेलकम बैक दोस्तों। सुष्मिता, जब भी यूथ की बात आती है तो हमारा माइंड तुरंत एसोसिएट करने लगता है एनर्जी, क्रिएटिविटी और आइडियाज़ से, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ हर किसी के पास इक्वल नहीं होती। बहुत से यूथ एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, बट दीज आर जस्ट सम ऑफ द चैलेंजेस।
1: बिल्कुल, और इन सब से जो मेजर चैलेंज है ना उन्नति, वो है स्किल गैप का। डिग्री होना इम्पॉर्टेंट है, लेकिन डिग्री के साथ प्रैक्टिकल स्किल्स भी होना ज़रूरी है। स्किल्स जैसे कि कम्युनिकेशन की, टीम वर्क, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिजिटल लिटरेसी, क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी। क्योंकि आज के जो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में ना, सिर्फ लर्निंग से बात नहीं चलती, लर्निंग के साथ हमें बाकी सारी स्किल्स को भी एक्वायर करना पड़ता है, जिससे हम हमेशा कुछ नया सीखते रहें और बढ़ते रहें।
0: अब बात करते हैं उन चैलेंजेस की जो ऑलमोस्ट हर यूथ जिससे रिलेट कर सकता है, करियर कन्फ्यूजन। और इसमें भी सबसे बड़ी बात जो होती है वो ये होती है कि जब लोग सोचते हैं सब लोग मुझसे आगे क्यों जा रहे हैं, और सोशल मीडिया ने तो इस कंपैरिजन को और भी ज़्यादा इंटेंस बना दिया है। लेकिन रियलिटी क्या है? नोबडीज लाइफ इज़ परफेक्ट, इसीलिए अपनी जर्नी को किसी और के हाईलाइट रील से कंपेयर मत कीजिए। याद रखिए, करियर का कोई सिंगल करेक्ट फॉर्मूला नहीं होता।
1: बिल्कुल सही दोस्तों, यूथ के पास एक इनक्रेडिबल पावर है, द पावर टू क्रिएट अ चेंज। आज के यूथ स्टार्टअप्स क्रिएट कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी इनोवेट कर रहे हैं, एनवायरमेंटल कैंपेन्स भी चला रहे हैं, वॉलंटियरिंग कर रहे हैं और सोशल प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन भी डेवलप कर रहे हैं। तो अगर ये हम कहें कि चेंज के लाने के लिए हमेशा कोई बड़ा स्टेप लेना ज़रूरी नहीं होता है।
0: एग्जैक्टली आप अपने स्कूल और कॉलेज से, अपने आसपास से, अपने घर से शुरुआत कर सकते हैं। क्लिनलीनेस ड्राइव्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, किसी स्टूडेंट को पढ़ाने में हेल्प कर सकते हैं, एनवायरनमेंट के लिए छोटे छोटे स्टेप्स ले सकते हैं, या सिंपली मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करने से बचा सकते हैं और फैक्ट्स को वेरीफाई कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, जैसे कि उन्नति ने कहा, ये छोटे छोटे स्टेप्स जो है ना, बहुत बड़ा चेंज ला सकते हैं। क्योंकि हमारा जो मैसेज है ना, वो बिल्कुल सिंपल है, अपनी पोटेंशियल को अंडर एस्टिमेट मत करें। आप सब कुछ कर सकते हैं, बात यह है कि आपको सब कुछ आज ही फिगर आउट करने का कोई स्ट्रेस नहीं लेना। धीरे धीरे लर्न करते रहें, सीखते रहें और एक्सपेरिमेंट करते रहें। मिस्टेक्स भी करिए, उनसे सीखिए, इम्प्रूव करिए और साथ ही साथ स्किल्स भी डेवलप करते रहिए।
0: बिल्कुल, सिर्फ मार्क्स के पीछे मत भागिए, नॉलेज गेन करिए, कम्युनिकेशन इम्प्रूव करिए, टेक्नोलॉजी को समझिए और अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर कीजिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट अपनी वॉइस यूज़ कीजिए, बिकॉज यूथ पार्टिसिपेशन मैटर्स।
1: और उन्नति, आज की और जो हमारे टॉपिक्स हैं ना, उसमें हम काफ़ी ज़्यादा जानकारी लेके आए हैं, लेकिन उससे पहले हमने कहा हुआ है कि हम एक बैलेंस बनाए रखेंगे इन्फॉर्मेशन एंड एंटरटेनमेंट का। तो आइए गीत सुन लेते हैं।

0: हेलो।
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए, अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
2: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: सर 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं। काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे।
5: RBI कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात।

0: संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: दोस्तों, हम युवाओं की इतनी ज़्यादा आज बात कर रहे हैं तो आई एम श्योर आपको ये तो समझ आ ही रहा होगा कि युवाओं का इम्पोर्टेंस क्या है, मगर इसके साथ साथ हमें ये भी समझना ज़रूरी है कि हमारा रोल और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है।
2: बिल्कुल, और इसी के साथ हम इस अपने चर्चा में अगले पड़ाव में आते हैं, जहां हम बात करेंगे कि विकसित भारत 2047 में युवाओं की क्या भूमिका है। आज हम बात करेंगे कि 2047 का जो भारत है एक्चुअली कैसा हो सकता है और उस भारत को बनाने में आपका और हमारा क्या रोल होगा। सो डियर लिसनर्स, वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा लीजिए और अपने दिमाग का फ्यूचर मोड ऑन कर लीजिए, बिकॉज द फ्यूचर स्टार्ट्स नाउ। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बेसिक क्वेश्चन हमारा है कि आखिर विकसित भारत 2047 का सरल शब्दों में आखिर मतलब क्या होता है।
1: सिंपल लैंग्वेज में समझें तो इसका मतलब है ऐसा भारत जो 2047 तक, यानी जब हम आज़ादी के 100 साल पूरे कर चुके होंगे, तब तक हम इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग, टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड, सोशली इंक्लूसिव, एनवायरमेंटली सस्टेनेबल और ग्लोबली इन्फ्लुएंशियल कंट्री हों।
2: मतलब क्या सिर्फ रोड्स और बिल्डिंग्स का डेवलपमेंट नहीं?
1: एग्जैक्टली, डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ ऊंची बिल्डिंग्स और मॉडर्न सिटीज़ नहीं होता। विकसित भारत का मतलब है बेटर एजुकेशन, बेटर हेल्थ केयर, क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट, इनोवेशन, स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लीन एनवायरनमेंट, इक्वल अपॉर्चुनिटीज और सिटीजन्स का ओवरऑल बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ।
2: और यहाँ एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों ये है कि टारगेट सिर्फ गवर्नमेंट का नहीं है। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बना सकती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकती है, लेकिन उन अपॉर्चुनिटीज़ को यूज़ करने वाले हम सिटीजन्स हैं, स्पेशली द यूथ। बट वाई द यूथ?
1: ऐसा इसलिए क्योंकि युवाओं के पास तीन सुपर पावर्स हैं, एनर्जी, आइडियाज़ एंड अडेप्टबिलिटी। साथ ही हम टेक्नोलॉजी के साथ ग्रो कर रहे हैं। हम आज AI यूज़ कर रहे हैं, ऑनलाइन लर्निंग यूज़ कर रहे हैं, स्टार्टअप्स क्रिएट कर रहे हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स यूज़ कर रहे हैं और दुनिया भर की इंफॉर्मेशन को सेकेंड्स में एक्सेस कर रहे हैं।
2: बिल्कुल उन्नति, और यानी जो हमारी जनरेशन है ना, इसको हम कह सकते हैं जनरेशन ऑफ चेंज, क्योंकि हम ही हैं वो जो सबसे जल्दी किसी भी चेंज को एक्सेप्ट कर सकते हैं, और हम ही वो जनरेशन है जो चेंज को लीड कर सकते हैं। तो याद रखिए,
1: यूथ आर नॉट जस्ट द लीडर्स ऑफ टुमारो बट ऑल्सो द चेंज मेकर्स ऑफ टुडे।

0: तो वेलकम बैक दोस्तों। इस प्यारे से गीत के बाद हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और उन्नति, हम बात कर रहे थे ना विकसित भारत की, हम कल्पना कर रहे थे कि उसमें क्या क्या चीज़ें हम इमेजिन कर सकते हैं आफ्टर 100 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। तो दोस्तों चलिए विकसित भारत के साथ सबसे इम्पॉर्टेंट पिलर से स्टार्ट करते हैं, जो कि है एजुकेशन, क्योंकि यही तो फाउंडेशन है जिसके बारे में हमने सबसे पहले बात की थी।
1: बिल्कुल, इसके अलावा एंटरप्रेन्योरशिप भी एक स्किल होने के साथ साथ डेवलप्ड इंडिया के लिए एक पिलर भी है। तो अगर आप भी कॉलेज में हैं तो सिर्फ एग्जाम्स के लिए मत पढ़िए, लर्न समथिंग दैट यू कैन एक्चुअली यूज़। कोई लैंग्वेज हो, कोडिंग हो, पब्लिक स्पीकिंग हो, रिसर्च हो या फिर इंटर्नशिप्स, मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है अपनी क्यूरियोसिटी को ज़िंदा रखना।
0: बिल्कुल, और हम कहते भी हैं कि क्यूरियोसिटी के साथ साथ हमें अपनी हॉबीज़ को भी ज़िंदा रखना चाहिए, क्योंकि कई बार हमारी हॉबीज़ हमारा पैशन बनते हैं और फिर करियर। और पता है उन्नति, एंटरप्रेन्योरशिप ना युवाओं को जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर बनाता है, ताकि एम्प्लॉयमेंट भी बढ़े। अब चाहे वो स्टार्टअप्स हों, छोटे बिजनेस हों या फिर सोशल एंटरप्राइजेस हों, उनका मकसद सिर्फ $1 बिलियन कंपनी बनाना नहीं है, बल्कि नेशन बिल्डिंग भी है।
1: बिल्कुल।
0: फिर आता है टेक एंड इनोवेशन, AI, रोबोटिक्स, बायोटेक, स्पेस टेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी, डिजिटल टेक्नोलॉजी। तो भविष्य का भारत इन सब फील्ड्स में स्ट्रांग होने का एक सपना है, और ये इम्पॉर्टेंट है कि हम जो हमारे आने वाले युवा हैं वो इसको सीरियसली लें। इसलिए युवाओं का रोल और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, और इसी से डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल्स भी डेवलप होती हैं।
1: बिल्कुल। अब विकसित भारत की जर्नी में एक और इम्पॉर्टेंट आइडिया है आत्मनिर्भरता, यानी सेल्फ रिलायंस, मतलब भारत को प्रोडक्ट्स और टेक्नोलॉजीज़ के लिए अननेसेसरीली दूसरों पर डिपेंडेंट ना रहना पड़े।
0: और ये होगा कैसे?
1: ये होगा लोकल आइडियाज़ को मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ कंबाइन करके। उदाहरण के तौर पर ट्रेडिशनल इंडियन प्रोडक्ट्स को डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू हम ग्लोबल कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं, जैसे हस्तशिल्प हो गया या हैंडलूम्स, जिसको हम इंटरनेट पर और सोशल मीडिया की मदद से ग्लोबल मार्केट्स तक पहुंचा सकते हैं, ताकि लोकल बिजनेसेस को भी पुश मिले और दुनिया भर के लोगों तक हमारी संस्कृति के बारे में जानकारी पहुँचे।
0: बिल्कुल। सिमिलरली खेती और नए प्रोडक्ट्स में टेक्नोलॉजी का यूज़ करके उन्हें प्रमोट करना, यानी कि लोकल थिंकिंग प्लस ग्लोबल विजन। वैसे उन्नति, एक डेवलप्ड कंट्री का मतलब सिर्फ रिच होना नहीं होता। अगर अर,

0: अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, लेकिन प्रदूषण भी बढ़ रहा है, वाटर रिसोर्सेस ख़त्म हो रहे हैं और पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है, तो कहीं ना कहीं हम डेवलपमेंट की तरफ नहीं जा रहे हैं। साथ ही साथ कहीं ना कहीं हमारे जो नेचर है, हमारे जो एनवायरनमेंट है, वो भी डिग्रेड हो रहा है।
1: बिल्कुल सही कहा। इसलिए विकसित भारत को सस्टेनेबल भारत भी होना होगा और हम युवा इसमें आसान कदमों से अपना योगदान कर सकते हैं, जैसे प्लास्टिक वेस्ट कम करना, पानी बचाना, पेड़ लगाना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना और ऊर्जा यानी एनर्जी बचाना और जलवायु परिवर्तन के बारे में जागरूकता बढ़ाना।
0: दोस्तों, आपको याद होगा कि हमने थोड़ी देर पहले ही छोटे छोटे स्टेप्स की बात की थी कि कैसे छोटे स्टेप्स बड़े चेंजेस ला सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: और अब आता है विकास का एक और बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट, जो कि है इंक्लूजन। यानी विकसित भारत तभी होगा जब इस विकास का लाभ समाज के विभिन्न वर्गों तक पहुँचे, और इसमें यूथ का रोल होगा डिस्क्रिमिनेशन को हटाना, वॉलंटियरिंग करना, कम्युनिटी सर्विस और अपने आसपास स्टूडेंट्स को एजुकेट करना और लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ और इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंचाना ताकि उनको मदद मिल सके।
1: और इन सब के बीच एक और इम्पॉर्टेंट एरिया है जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते, रूरल इंडिया यानी ग्रामीण भारत। भारत का विकास उनके ग्रामीण विकास के बिना अधूरा है। एग्रीटेक, स्मार्ट फार्मिंग, ड्रोन्स, डिजिटल मार्केटप्लेस, फूड प्रोसेसिंग और मॉडर्न इरिगेशन जैसे फील्ड्स में युवाओं की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है।
0: बिल्कुल दोस्तों, और खेती को सिर्फ ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन की तरह देखना नहीं है, बल्कि यूथ इसे इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप के अपॉर्चुनिटीज से भी लिंक कर सकते हैं। तो अगर ग्रामीण युवा को अपॉर्चुनिटीज उसके घर में यानी कि उसके गांव में मिल जाए तो माइग्रेशन बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा और साथ ही साथ इकोनॉमी तो बूस्ट होगी ही, वो भी स्ट्रांग होगी।
1: और इन सब रोल्स को हम तभी अच्छे से निभा पाएंगे जब हम एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बनकर इसे अपनी जिम्मेदारी समझकर अपना योगदान दें, तभी जाकर विकसित भारत 2047 का हम सब का लक्ष्य पूरा हो पाएगा और एक नया मगर कल्चरली रूटेड इंडिया हमारे आंखों के सामने होगा।
0: बिल्कुल दोस्तों, बातें तो कई हो गई कि जो हमारा विकसित भारत है उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, और हमने ये भी बात कर ली उन्नति कि स्पेशली जो यूथ हैं यानी कि जो हमारे श्रोता हैं उनका भी कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होगा। तो हम उनसे यही कहेंगे कि आप जिस भी फील्ड में हैं अपना 100% दीजिए और आगे चल के आप कहीं ना कहीं हम अपने जो भारत की ग्रोथ है उसमें हम काम ही आएंगे। तो इसी के साथ उन्नति आगे बढ़ते हैं, लेकिन एक प्यारे से गीत के साथ।

0: तो दोस्तों, कभी सोचा है अगर कोई लड़की सिर्फ 13 साल की उम्र में एक ऐसे आंदोलन से जुड़ जाए जो उसकी संस्कृति और उसके लोगों और उसकी आज़ादी की रक्षा के लिए हो, और सिर्फ 16 साल की उम्र में वह ब्रिटिश साम्राज्य के लिए बड़ी चुनौती बन जाए कि उसे पकड़ने के लिए सैनिकों की टुकड़ियां भेजनी पड़े।
1: एक आध्यात्मिक नेता, एक समाज सुधारक, एक राजनीतिक कार्यकर्ता और एक स्वतंत्रता सेनानी, और अपनी संस्कृति तथा लोगों की पहचान के लिए जीवन भर संघर्ष करने वाली एक अदम्य महिला। आज आइए प्रेरणा पुंज में जानते हैं रानी गाइडेल्यू की कहानी।
0: बिल्कुल दोस्तों, रानी गाइडेल्यू का जन्म हुआ 26 जनवरी वर्तमान के मणिपुर में 1915 में। वह रोगमय समुदाय से में थी और उनका बचपन में ऐसे समय में बीता जब ब्रिटिश औपचारिक निवेश शासन का प्रभाव पूर्वोत्तर में पहाड़ी इलाकों में बहुत ज़्यादा गहरा हो चुका था। कर, जबरन श्रम और प्रशासनिक हस्तक्षेप ने स्थानीय समाज में असंतोष पैदा कर दिया था।
1: मणिपुर और आसपास के पहाड़ी क्षेत्रों में प्रशासन अपना प्रभाव बढ़ा रही थी, दूसरी ओर स्थानीय समुदाय अपनी परंपराओं और धार्मिक मान्यताओं को बचाए रखना चाहते थे। इसी वातावरण में उभरे एक युवा नेता है पो जादोनांग।
0: जादोनांग ने हिराका आंदोलन को आगे बढ़ाया। दोस्तों बता दें कि ये केवल धार्मिक सुधार का आंदोलन नहीं था, बल्कि इसका संबंध नागा पारंपरिक आस्था के पुनर्जागरण और अपने लोगों के लिए स्वशासन का आकांक्षा में भी था।
1: समय के साथ ये आंदोलन ब्रिटिश शासन के विरोध का राजनीतिक रूप लेने लगा। वर्ष था 1931 जब ब्रिटिश सरकार ने जादोनांग को फांसी दे दी, और ये घटना आंदोलन के लिए बहुत बड़ा झटका साबित हुई। लेकिन आंदोलन समाप्त नहीं हुआ। जादोनांग के बाद गाइडेल्यू ने इसका नेतृत्व संभाला।
0: बिल्कुल, अब एक किशोरी के सामने एक विशाल औपनिवेशिक सत्ता थी। ब्रिटिश सरकार गिरफ्तार उन्हें करना चाहती थी, लेकिन गाइडेल्यू

0: ने भी पीछे हटने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपने लोगों को संगठित किया और ब्रिटिश शासन के खिलाफ प्रतिरोध जारी रखा।
1: ये संघर्ष केवल सत्ता के विरुद्ध नहीं था, इसमें अपनी सामाजिक पहचान, पारंपरिक विश्वासों और समुदाय के आत्मसम्मान को बचाने की भी भावना शामिल थी। यही वजह थी कि गाइडेलियों की कहानी केवल एक स्थानीय विद्रोह की कहानी नहीं है।
0: बिल्कुल दोस्तों, और 1932 में जब वो 16 वर्ष की थी तब उनके आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई और 1932 से 1947 तक उन्होंने पूर्वोत्तर के अलग अलग जेलों में समय बिताया।
1: जब वो बाहर आई तब देश आज़ाद हो चुका था। नेहरू जी ने उन्हें डॉटर ऑफ द हिल्स यानी पहाड़ों की बेटी कहा और उनके साहस के कारण रानी उनके नाम से जुड़ गया।
0: बता दे दोस्तों कि भारत जब आज़ाद हो गया उसके बाद भी उन्होंने अपनी लड़ाई जारी रखी, यानी कि सामाजिक और सांस्कृतिक हितों के लिए जो अपना कार्य था वो जारी रखा। उनकी लड़ाई के केंद्र हमेशा उनके लोगों का भविष्य और उनकी पहचान और सम्मान रहा।
1: 1972 में उन्हें ताम्र पत्र प्रदान किया गया जो स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान से जुड़ा राष्ट्रीय सम्मान था। इसके बाद 1982 में उन्हें पद्म भूषण और 1983 में विवेकानंद सेवा सम्मान से भी सम्मानित किया गया।
0: तो दोस्तों, आज हमने रानी गाइडेलियों के बारे में जाना अपने प्रेरणापुंज के सेगमेंट में, और अब उन्नति बात आती है ना कि हम जो क्वेश्चनेयर करते हैं, यानी कि हम एक सवाल जो अपने दोस्तों से पूछते हैं और उसका सही जवाब भी बताते हैं। तो कल का जो हमारा सवाल था वो था कि स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस को फांसी कब और कहाँ दी गई। तो इसका जवाब मैं आप सभी को बता देती हूँ दोस्तों। खुदीराम बोस को फांसी 11 अगस्त 1908 में मिली और मुजफ्फरनगर सेंट्रल जेल में।
1: इसी के साथ हमारा आज का प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग किसके द्वारा लिखी गई है। सवाल एक बार फिर से सुने, प्रसिद्ध पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग किसके द्वारा लिखी गई है। आप अपना उत्तर हमारे ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं जो कि है yuvvaniald@gmail.com और मैसेज कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जो कि है 8004926250 पर।
0: तो उन्नति, अपने दोस्तों को टाटा बाय बाय कहने से पहले आइए एक गीत सुनते हैं।
1: बिल्कुल।

0: तो दोस्तों समय हो चला है आपसे विदा लेने का। मुझे यानी सुष्मिता श्रीवास्तव को
1: और मुझे यानी उन्नति को दीजिए इजाजत।
0: नमस्कार।

0: अभी युवा साथी अपना कार्यक्रम सुन रहे थे युववाणी। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और FM 100.3 मेगाहर्ट्स पर 6 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आप दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। संसद ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे आज मंजूरी दी। लोकसभा पहले ही इसे पारित कर चुकी है। ये विधेयक राज्य सरकारों को सहकारी विकास में लगी किसी भी संस्था को निगम से निधि प्रदान करने की अनुमति देता है। निगम किसी भी सहकारी समिति या सहकारी विकास में लगी संस्था को सीधे ऋण और अनुदान भी प्रदान कर सकता है। सहकारी राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने कहा कि विधेयक के माध्यम से देश भर के करोड़ों किसानों के कल्याण और आर्थिक सशक्तिकरण को मजबूती मिलेगी। लोकसभा ने खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य भारत के खनन क्षेत्र को अधिक कुशल, निवेश अनुकूल और देश में महत्वपूर्ण खनिजों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए सुसज्जित बनाना है। विधेयक बिना चर्चा के पारित कर दिया गया। लोकसभा ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को विचार विमर्श के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया है। विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में और संशोधन करना है। ये विधेयक विदेशी अंशदान के उपयोग को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाएगा। सरकार ने आज बताया कि राष्ट्रीय AI कौशल विकास पहल के प्रथम चरण में 60,253 नामांकन प्राप्त हुए हैं। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरगुन ने लोकसभा में लिखित उत्तर में बताया कि कुल 4,620 प्रतिभागियों ने प्रथम चरण के 2 मॉड्यूल पूरे कर लिए हैं। उन्होंने बताया कि 552 प्रतिभागियों ने कार्यक्रम के प्रथम चरण के सभी 4 मॉड्यूल

0: पूरे किए हैं। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर एक बार फिर कहा है कि वे नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई विभिन्न घटनाओं पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार हैं। संसद परिसर में श्री रिजिजू ने ये बात कही।
1: सरकार डिस्कशन चाहते हैं पार्लियामेंट में और ओपोजिशन भाग रहे हैं, ये कल्पना करना मुश्किल है, क्योंकि पार्लियामेंट डेमोक्रेसी में ओपोजिशन पार्टी डिस्कशन के लिए डिमांड करते हैं और सरकार जवाब देते हैं। यहाँ तो सरकार खुद ही कह रहे हैं कि हम डिस्कशन करेंगे, जवाब देंगे, और ओपोजिशन जवाब सुनना नहीं चाहते और भाग रहे हैं। ऐसा परिस्थिति आप कल्पना कर सकते हैं? लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से आग्रह किया है कि वे अपने प्रिय व्यक्ति की आत्मकथा पढ़ें और रील्स तथा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के युग में शॉर्टकट अपनाने से बचें। उन्होंने विकसित भारत के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित तो युवाओं की निरंतर आवश्यकता पर भी बल दिया। श्री मोदी ने नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा भारतीय गणराज्य की विजय मेरा जीवन मेरा संघर्ष का विमोचन करते हुए ये बात कही। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय कारोबारियों और नागरिकों से निष्पक्ष व्यापार पद्धतियां अपनाने, पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग को बढ़ावा देने का आग्रह किया है। श्री गोयल ने भारतीय उत्पादों तथा सेवाओं को वैश्विक बाजार में ले जाते समय चक्रीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने का भी आग्रह किया। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि नौ मुक्त व्यापार समझौतों के माध्यम से भारतीय उद्योग और व्यवसायों के लिए बाजार खोले गए हैं।
2: भारत में उभरती हुई ताकत आज पूरी दुनिया देख रही है। पूरी दुनिया भारत के साथ व्यापारिक संबंध बढ़ाना चाहती है। पूरी दुनिया के ध्यान में आ गया है कि ये $4 trillion की आज की इकोनॉमी 2047 में जब हम 100 वर्ष आजादी के बनाएंगे तब ये $30 trillion की इकोनॉमी कम से कम बन जाने वाली।
0: आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि एक जड़ी बूटी एक मानक पहल का उद्देश्य पारंपरिक औषधियों की गुणवत्ता और विश्वसनीयता को मजबूत करना है। नई दिल्ली में श्री जाधव ने कहा कि ये पहल भारत की समृद्ध जैव विविधता और पारंपरिक चिकित्सा विरासत की रक्षा में योगदान देगी। जेपीएससी और जेएसएससी सहित प्रदेश की अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर रांची में विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन 19वें दिन भी जारी है। विपक्ष के नेताओं ने भी प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों को अपना समर्थन दिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और FM 100.3 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। लीजिए सुनिए आज प्रसारित होने वाले शेष और कल के कुछ प्रमुख कार्यक्रमों का विवरण। पहले आज के शेष कार्यक्रम, संसद समीक्षा होगी रात 8 बजे, रात 9:30 बजे चर्चा का विषय है कार्यक्रम होगा। ये दोनों ही कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। रात 10:30 बजे शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सुनेंगे पंडित रामकृष्ण का क्लैरिनेट वादन। 7:31 पर हमारा विशेष कार्यक्रम बोलते नगमे कार्यक्रम का प्रसारण होगा, वाचन स्वर नेहा गुप्ता और वंदना राठौर का। और शाम 6:30 बजे पंचायत घर कार्यक्रम में ग्रामीण भाई अपना कार्यक्रम सुनेंगे। तो ये थे आज के शेष कार्यक्रम। अब कल के कुछ प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। संदेश टू सोल्जर्स, ये कार्यक्रम शाम 4 बजे से होगा। संसद समीक्षा रात 8 बजे होगी और संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग रात 10 बजे। ये सभी कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। सुबह 6:35 पर कृषि जगत कार्यक्रम में आप सुनेंगे डॉक्टर रघुराज सिंह से की गई बातचीत, पशु आहार में खनिज तत्वों का महत्व। 6:45 पर स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में डॉक्टर आर के सिंह की वार्ता होगी, स्लिप डिस्क कारण लक्षण और समाधान। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में उमाडे का ख्याल गायन सुनिए सुबह 7:30 बजे, प्रेम जैन का गिटार वादन दोपहर 12:15 बजे और पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का बांसुरी वादन रात 10:30 बजे। नमस्कार प्रयागराज, ये कार्यक्रम सुबह 8:45 पर होगा। सुगम संगीत के कार्यक्रम में श्रेयस नायर के गाए भजन और गीत सुनवाए जाएंगे सुबह 9:50 पर। श्रुति मिश्रा के गाए भजन और गीत आप सुनेंगे शाम 7:45 पर। श्रोता अपने फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम हेलो फरमाइश सुनेंगे दोपहर 12:30 बजे, प्रस्तुत करेंगी मधु कुमार। एनसीईआरटी की ओर से प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे दिन में 2:30 बजे।

लोकगीत सुनिए राम कृपाल यादव और साथियों से सुबह 10:30 पर, और बोलते नगमे कार्यक्रम का पुनः प्रसारण होगा दिन में 11:30। वाचन स्वर नेहा गुप्ता और वंदना राठौर का। 11:00 सुनिए कार्यक्रम एक ही कलाकार। दिन में 1:15 पर पनघट कार्यक्रम में बहनें सुनेंगी आनंद लता कुशवाहा से की गई बातचीत, डिजिटल युग में बच्चों की परवरिश। और 5:15 युवा साथियों का कार्यक्रम होगा जिसमें युवा साथी सुनेंगे दिव्या शुक्ला की वार्ता, स्वतंत्रता आंदोलन में प्रयागराज का योगदान। 6:30 पंचायत घर कार्यक्रम होगा, इसमें ग्रामीण भाई सुनेंगे किसान चर्चा। 7:31 पर काव्य कौमुदी कार्यक्रम के कवि होंगे विजयानंद और डॉक्टर पीयूष मिश्र। तो ये थे कल के कुछ प्रमुख कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और FM 100.3 मेगाहर्ट्स पर। शिक्षा व्यक्ति में आत्मविश्वास भरती है, कठिन से कठिन परिस्थितियों का डटकर मुकाबला करने की शक्ति प्रदान करती है। इसीलिए खुद शिक्षित बनिए, औरों को भी साक्षर बनाइए।

0: एहसास की धूप छाओं में हवाओं के संग गूंजती है दिशाओं में रेडियो की तरंग। जुड़िए 1026 किलोहर्ट्ज़ और 100.3 एफएम आकाशवाणी प्रयागराज के साथ धड़कन हर दिल की।
1: आइए सुनते हैं देशगान समवेत स्वरों में।

अभी आप सुन रहे थे देशगान सव्य स्वरों में। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: कलाकार में फिल्मी सितारों का सफरनामा। जोड़िए दिल से दिल के तार हेलो फरमाइश के साथ।
1: गृह लक्ष्मी के साथ होंगी

0: लोक रंग लोक उमंग लेकर आता है पनघट।
1: युवाओं की सोच को आवाज देता कार्यक्रम युववाणी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: और पंचायत घर में होंगी खेत खलिहान और चौपाल की बातें।

0: कार्यक्रमों का संगम सिर्फ आकाशवाणी पर। तू शायर है,
1: मैं तेरी शायरी। समाज का प्रतिबिंब और जन जन की आवाज आईना के साथ।
2: तू आशिक है, मैं तेरी आशिकी।
0: सिल्वर स्क्रीन से खुलेगा सिनेमा की सुनहरी यादों का एल्बम।

0: लिफाफों में बंद एहसासों के रंग, चिट्ठी आई है के संग। पहली
1: बार सुबह से रात तक आपकी आवाज आपके साथ।
0: सुनते रहिए आकाशवाणी प्रयागराज, धड़कन हर दिल की।

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। हमारी स्टूडियो की घड़ी में 6:20 होने वाले हैं। बस थोड़ी देर में आप हमारे दिल्ली केंद्र से संस्कृत में समाचार सुनेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: तंचो राम राम कहो रानु भाई का होत बहो खेती किसानी में
1: ठीक है आए हो औधु भैया देखा है समय दौर राजा तो खूब मेहरबान है नो और बरसा तहन भैया देखा जब धान का खेत देखा तहन तो भैया देखा जीव करेजा और आंख दोनों हरियर हो जाते हैं
0: बिल्कुल हो सही कह गया भैया काहे न कि देखा साल भर के खेती बाटे
1: हाँ हाँ
0: तो अगर भैया देखा एक एक चेती हैं गुनी हैं धुनी हैं भैया देखा तब अपन खेती किसानी बढ़िया तरीके से होए हो
1: हाँ
0: तो
1: हाँ
0: भैया देखा जवन खरीफ का सीजन चलत बन हो
1: हाँ भैया
0: तो इमा देखा भैया धान का जवन अपन मुख्य फसल बाटे
1: हाँ हाँ
0: भैया एकर देख रेख ध्यान दे बहुत जरूरी बा
1: कही गया
0: काहे
1: भैया
0: से कि देखा तरह तरह के खरपतवारों भैया देखा अब उगी आवत हैं
1: हाँ हाँ हाँ
0: और वही के साथ साथ भैया देखा तमाम प्रकार के कीड़ा मकोड़ा लागत है बीमारी लागत है जौन है
1: हाँ हाँ
0: तो
1: हाँ
0: ये सब चीज के ध्यान देवे के किसान भैया हरन के आपने खेत का खेतवई मेड़वई जरूर करत रहा है।
1: एकदम सही कह भैया। अच्छा एक बात और है देखे धान के खेती में भैया देखे पानी रुका बहुत जरूरी है
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: और अगर
0: बिल्कुल
1: मेड़वाई सही ना रहत हो औधु भैया ना तो पानी का है कि भैया अपने खेते से निकल के दूसरे खेते में चला जाते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कह गया भैया देखा जवन अपने खाद पानी देखा जवन डाला जाता है
1: हाँ हाँ
0: अगर भैया मेड़ कहीं से कटी पटी बाए तो
1: हाँ
0: भैया देखा दूसरे खेते में बह के चली जाए
1: हाँ भैया
0: तो यह लिए मेड़ तो मजबूत रही के चाहिए हो और वही के साथ साथ भैया देखा कुछ जवन

0: अपन दलहन तिलहन हैं खरीफ में बोई के बाटे,
1: हाँ हाँ
0: ओहुक भैया खरपतवार नियंत्रण के व्यवस्था करे के चाहिए।
1: हाँ हाँ
0: और हम तो कहब देखा न कि अगर ओका खर निराय लें तो ज़्यादा बेहतर बा।
1: हाँ भैया देखा निराय से ये है ना कि घास जौन है भैया वो
0: पशुओं के खाए के भी
1: खाए
0: काम
1: हो जाता है, और बाद कर्म से भैया बढ़िया से तई पेड़ फरहर हो जाता है, और पेड़ फरहर हो जाता है तई उन्हें आज़ादी मिले था तो बढ़िया से भैया खूब विकसित हो।
0: बिल्कुल बिल्कुल भैया हो देखा बात बत कही होत रह तो हम कहब आज कुछ खास दिन बाटे हो।
1: आज भैया देखा अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है
0: कहिए
1: और ये भैया देखा 12 अगस्त के भैया मनावा जात है।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: और एकर जो शुरुआत बनो हो भैया ये भैया देखे 12 अगस्त सन 2000 से एक शुरुआत हो भैया, तो एकर जो मुख्य उद्देश्य है हो और भैया एकर मुख्य उद्देश्य है भैया देखे युवा के बारे में भैया उन्हें जागरूक करना।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: और उनके उनकर जौन स्थिति है पढ़ाई लिखाई उनकर अधिकार
0: बिल्कुल
1: एक बारे में भैया उन्हें
0: जागरूक
1: करके और सामाजिक परिवेश में भैया उनकर उपस्थित भी हुए के चाहिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कह गया भैया देखा इनके का योगदान बे वह भैया देखा सराहना किया जाता है।
1: हाँ हाँ हाँ
0: और साथ ही साथ भैया जो है इनका जो अच्छी दिशा और दिशा मतलब दैया था जो है
1: हाँ हाँ
0: कि ये
1: हाँ
0: एक अच्छे रास्ते पे चले भैया जो है।
1: हाँ हाँ
0: तो भैया देखा हो अपन युवा पीढ़ी जो है भैया कल का भविष्य भी बा
1: एकदम भैया सही कहते हैं हो। और देखे हर युवा के जागरूक हुए कि पड़ी
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: वो चाहे शिक्षा होए चाहे समाज होए चाहे सहयोग होए और साथे साथे भैया देखे अपने संस्कृत के भी अपनावे के बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
1: तो हम तो यह कहते रहे कि भैया देखे काम से आज पंचायती में का का है हो।
0: देखा भैया अपने पंचायती में जो है रोज के तरह से देखा गीत गौनई होई हो
1: हाँ हाँ हाँ
0: सुरेंद्र प्रसाद सिंह और संघातिन के।
1: हाँ हाँ हाँ
0: और साथ ही साथ भैया देखा आज है बुधवार का दिन,
1: हाँ हाँ
0: तो भैया आज देखा नीति वचन भी जो है सुनवाओ जाए
1: हाँ हाँ
0: प्रोफेसर मिथिलेश त्रिपाठी जी के।
1: अच्छा
0: और देखा एक ठे बात बत कही
1: हाँ हाँ
0: बाटे जो है कि वर्षा ऋतु एवं मृदा प्रबंधन
1: हाँ हाँ
0: ये
1: हाँ
0: भैया कैसे किया जाए यह सुनवाओ जाए जो है मूला। हम तो कहब आवा जौन है अपने पंचायती में सुरेंद्र प्रसाद सिंह और संघातिन के ठे विकास गीत सुन ले, ओकरे बाद फिर बात बत कही होत रहे
1: सुनवाई दे।

0: हाँ भैया देखा हो,
1: हाँ हो अहू भैया।
0: सुरेंद्र प्रसाद सिंह और संघातिन का भैया देखा, विकास गीत हो गए हो।
1: हाँ हाँ
0: अब देखा जौन बात बत कही होत रही खेती किसानी के भैया ना,
1: हाँ हाँ हाँ
0: तो भैया कही के बने कि धान पान और केरा ई है पानी का चेरा।
1: हाँ हाँ
0: तो
1: हाँ
0: भैया धान जौन अपन बा है फसल, एकरे बदे पानी बहुते जौन है
1: जरूरी है।
0: जरूरी बात। तो भैया देखा धान का फसल में पानी जोन है
1: हाँ
0: पूरा अगर भरा रहे ना, तो फसल बियास करे जोन है और बढ़िया अपन फसल होए हो।
1: हाँ भैया।
0: तो भैया देखा बारिश तो होते रह के जोन हो, और हम तो कहब अगर जोन ऊंचा से खेते अगर धान का फसल लगी बा भैया ने,
1: हाँ हाँ हाँ
0: तो ऊहू अपन मेड़ डांड बांध के जोन हो मन पानी रोक दें,
1: एकदम सही
0: तो
1: भैया,
0: जोने से कि अपन धान का फसल बढ़िया होए।
1: ये तो सही कहते हो। तो भैया एक बात और रहे हो, कुछ किसान भैया बहनी हरे सब्जियों की खेती करते हैं,
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो सब्जी में जैसे भैया लौकी बोए हैं, कोहरा बोए हैं, ओकरे बाद कम से
0: नेनुआ है
1: नेनुआ
0: भैया,
1: है।
0: तरोई है,
1: हाँ हाँ हाँ
0: और तो भैया देखा जो सब्जी के खेती बा ना, ओमा भैया वह खेत में पानी न लगे के चाही।
1: अच्छा।
0: अगर पानी लगे भैया देखा तो ओका जो जड़ बाटे ना उमन देखा कीड़ा भी लगे के संभावना बनी रहत है, और साथ ही साथ भैया उकठे के डर रहत है।
1: अच्छा।
0: तो इसलिए जोन है कुछ किसान भाई हरें तो देखा पेड़ी बांध देते हो,
1: हाँ हाँ
0: ओकरे
1: हाँ
0: जड़ में पेड़ी बांध दी है भैया, तो वो जोन है वहाँ तक पानी ना पहुँचे थे, नमी कम रहत है। तो
1: अच्छा।
0: भैया फसल जोन है बढ़िया हो तो फलत भी बढ़िया देत है।
1: हाँ हाँ हाँ हाँ
0: देखा हो रानू भाई, हम कहा ये तो बात बत कही चलत रही, मुला जौन आज कहत रहे ना कि
1: कि
0: देखा आज बुधवार है नीति वचन के दिन है,
1: हाँ हाँ
0: तो
1: हाँ
0: हम तो कहा बाबा प्रोफेसर मिथिलेश त्रिपाठी भैया का जौन है नीति वचन सुना और पंच भैया रे भी सुने।

0: सुनवाई दे भैया।
1: तो सुना भैया,
2: भारतीय संस्कृति में मानव जीवन मूल्यों की रक्षा के लिए और जीवन को सुगमता पूर्वक संचालित करने के लिए महापुरुषों द्वारा समय समय पर जिन नीति वचनों का उल्लेख किया गया है वे जीवन में प्रेरणा का काम करते हैं। संतों, महात्माओं, कवियों और प्रमुख समाज सुधारकों ने समय समय पर ऐसी बातें कही हैं जिनसे हमारे जीवन में सुधार की संभावना बनी रहती है। ये नीति वचन एक प्रकार से जीवन पद्धति की सूक्तियाँ हैं जो कम शब्दों में गहरी बातें बताती हैं। प्रस्तुत हैं कुछ नीति वचन और उनमें निहित उनके अभिप्राय। सबसे पहले मैं रामचरितमानस से शुरू करता हूँ। रामचरितमानस की एक मूर्ख पात्र है मंथरा। उसने जो बातें कही हैं वे बहुत बड़ी बात है और उसका अमल करने मात्र से जीवन सारी समस्याओं से बच सकता है। वाक्य है, भानु कमल कुल पोषण हारा, बिनु जल जारी करै सोई छारा। इसका ध्वन्यार्थ यह है कि जब कमल बिना जल के अर्थात अपने मूल जीवन स्रोत से कट जाता है तो पोषण प्रदान करने वाला सूर्य ही उसे नष्ट कर देता है। शिक्षा यह है कि अपनी मूल सांस्कृतिक धारा से अलग हुआ व्यक्ति विनष्ट हो जाता है। अपने स्वभाव, संस्कार और मनोवृत्ति के विरुद्ध पड़ने वाले कुटिल जनों से मित्रता न करने अर्थात उन्हें साथी या जीवन साथी न बनाने का उपदेश कविवर रहीमदास जी की निम्न पंक्तियों में व्यंजित हुआ है। कह रहीम कैसे निभे बेर केर को संग, वह डोलत रस आपने उसके फाटत अंग। संतोष को जीवन की सबसे बड़ी पूंजी और सुख का अक्षय स्रोत बताते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, बिन संतोष न काम न साही, काम अछत सुख सपने हु नाही। रहीम ने भी संतोष को सबसे बड़ा धन बताया है। गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरि समान। वर्तमान भौतिकवादी युग का मानव अपने दुख से दुखी न होकर पड़ोसी या पराये व्यक्ति के सुख को देखकर दुखी है। ऐसे लोगों को उपदेश देते हुए कबीर दास जी ने लिखा है, रूखा सूखा खाई के ठंडा पानी पियो, देख पराई चूपड़ी मत ललचाओ जियो। दूसरे की उन्नत से जलने वाली ईर्ष्या वृत्ति मनुष्य को जो तनाव देती है वही समस्त साध्य असाध्य रोगों की जड़ है। कबीर बिहारी ने बाज पक्षी के बहाने इस अन्योक्ति परक दोहा के द्वारा प्रत्येक मानव को यह शिक्षा दी है कि जिस कार्य से किसी स्वार्थ की सिद्धि न हो, कोई पुण्य लाभ न हो, बदले में श्रम की बर्बादी हो, उसे नहीं करना चाहिए। दूसरे को लाभ पहुंचाने के लिए तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा, देख विहंग विचार, बाज पराए पान पर तू पक्षी ही न मारी। मानव मात्र को जल कल्याण हेतु आत्म बलिदान का अमर संदेश मैथिली शरण गुप्त की निम्न पंक्तियों में व्यंजित हुआ है। विचार लो कि मर्त्य हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यों मरो जो याद हो करे सभी। आधुनिक महाकवि श्री रामवरण त्रिपाठी जी ने निम्न दोहे के माध्यम से उन लोगों के लिए स्वसंस्कृति में जीवित रहने का कड़ा संदेश दिया है जो पाश्चात्य सभ्यता की चकाचौंध में अंधराए हुए से अनर्थकारी शब्दों का धड़ल्ले से प्रयोग कर रहे हैं। यथा माँ को मम्मी पुकारते, पिता डेड भी साथ, अप संस्कृत के दौर में बच्चे हुए अनाथ। चलचित्र में घुसी हुई अमर्यादित नग्नता पर व्यंग करते हुए उन्होंने मर्यादित जीवन का आह्वान युग दर्शन के ही निम्न दोहे में किया है। क्यों मयूर इठला रहे अपने नंगे नाच, देखोगे चलचित्र तो टूटोगे ज्यो कांच। भावावेश में आकर अनुचित उचित का विचार किए बिना काम करके जीवन भर पश्चाताप करने वालों को गिरधर कवि ने इन शब्दों में सतर्क किया है, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगारे आपना जग में होए हंसाए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी ऐसी ही बातों का उल्लेख किया है, सहसा करिपा

अछे पछताही, कहे वेद बुध ते बुध नाही। हमारे आस पास के प्रच्छन्न राक्षसों के लक्षण बताते हुए उन्होंने लिखा है, मान ही मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवाओ ही सेवा, जिनके यह आचरण भवानी, जानहुते निश्चर्ये प्राणी। प्रजाजनों को प्रताड़ित करने वाले सत्तासीनों को उन्होंने इन शब्दों में कड़ी चेतावनी दी है, जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। महाकवि जयशंकर प्रसाद जी ने निरंकुश शासकों को चेतावनी देते हुए लिखा है, आह प्रजापति, यह न हुआ है कभी न होगा, निर्बाधित अधिकार आज तक किसने भोगा। नारी समाज के अधिकारों को हनन करने वाले पुरुष समाज को उन्होंने इन शब्दों में सावधान किया है, तुम भूल गए पुरुषत्व मोह में, कुछ सत्ता है नारी की, समरसता संबंध बनी अधिकार और अधिकारी की। माता पिता और गुरु अपनी संतति और शिष्य का सदैव हित चाहते हैं, उनके प्रत्येक आदेश में कल्याण छिपा होता है। इस यथार्थ को व्यक्त करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, मातु पिता गुरु प्रभु कई बानी, बिनहि विचार करी शुभ जानी। पिता के प्रत्येक आदेश के पालन का उपदेश उन्होंने इन शब्दों में दिया है, अनुचित उचित विचार तज जो पालय पितु बैन, सो भाजन सब सुजस कै बसय अमरपुर ऐन। विषम परिस्थिति का सामना करते करते मानसिक रूप से टूट चुके लोगों को नैराश्य के विरुद्ध आशावादी जीवन का संदेश राष्ट्र कवि मैथिली सरन गुप्त ने इन शब्दों में दिया है, नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। जीवन में स्वस्थ रहने के उपाय बताते हुए घाघ कवि ने लिखा है, प्रात काल खटियाते उठ के पियो तुरंत ही पानी, वैद घर में झांक न आवे बात घाघ की मानी। हमारे नीतिकारों ने जीवन को इतना मर्यादित कर दिया है कि यदि उस मर्यादा का पालन किया जाए तो किसी भी प्रकार की कोई समस्या पूर्ण जीवन काल में आ ही नहीं सकती। आगे भी बताया गया है कि भूख से अधिक भोजन करने वालों को अल्पायु होने का भय सदैव बना रहता है। इस बात को व्यक्त करते हुए घाघ कवि ने ही आगे लिखा है कि कम खाने वाले और गम खाने वाले लोग सदैव सुखी रहते हैं। ज्यादा खाए जल्द मर जाए, सुखी रहे जो थोड़ा खाए, रहे निरोगी जो कम खाए, बिगड़े काम न जो गम खाए। आयुर्वेद में जीवन रक्षा के लिए, स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए अनेक बातें बताई गई हैं। भोजन उनमें से प्रमुख है। आहार के विषय में उचित निर्देश देता हुआ साहित्यकार शास्त्रकार कहता है, पूरे दशने नार्धम तृतीयम उदकेन्तु वायो संचरणार्थाय चतुर्थम अवशेषेत। अभिप्राय है कि उदर का आधा भाग भोजन से भरना चाहिए, 1/3 भाग जल से भरना चाहिए और शेष 1/4 भाग वायु संचरण के लिए खाली छोड़ देना चाहिए। यदि व्यक्ति इस नियम के अनुसार अपना आहार सुनिश्चित करे तो उसे स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, बार बार उसे चिकित्सालय की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी, अर्थ और समय की बचत के साथ साथ स्वास्थ्य की सुरक्षा भी सुनिश्चित हो जाएगी। जिस समाज के लोग दूसरों का दुख बांटते हैं और अपना सुख बांटते हैं, उनके जीवन में स्वर्गीय सुख और शांति की स्थिति सदैव बनी रहती है। कामायनी में जयशंकर प्रसाद जी ने श्रद्धा के मुख से मानव मात्र को यही संदेश दिया है, औरों को हंसते देखो मन, हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, सबको सुखी बनाओ। दुखों का सामना करते करते हीनता की ग्रंथि में बंध चुके मानवों के म्रियमाण जीवन के लिए कामायनी की ही यह पंक्ति संजीवनी का काम करती है, दुख की पिछली रजनी बीच बिलसता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा यह झीना नील छिपाए है जिसमें सुख गात। परिस्थिति की मार से हताश लोगों के लिए आचार्य विश्वनाथ पाठक कृत सर्वमंगला काव्य

0: की निम्न पंक्तियाँ सबल संबल का काम करती हैं। आवय रात भये दिन फिर से, संझा भये सवेरा, कबहु निवास जुरै महलन मा, कबहु पेड़ तर डेरा, कबहु कथरिया मिले पुरुष का, कबहु फूल कैसैया, कबहु दृगन मा काजर सोहे, कबहु निछान असुइया। धरती पर जन्म लेने वाले व्यक्ति को दुखों का सामना अवश्य करना पड़ेगा। महियसी महादेवी वर्मा ने इस यथार्थ पर प्रकाश डालते हुए लिखा है कि जिनका जीवन फूलों की भांति सुकुमार था, उन्हें भी विधाता की क्रूर नियति व्यवस्था में कठिन से कठिन जीवन जीना पड़ा है। उन्होंने लिखा है, तुहिन बिंदु सा मंज सुमन सा, जिनका जीवन था सुकुमार, दिया उन्हें भी क्रूर काल ने पाषाणों का शयनागार। जीवन में छोटी सी उपलब्धि पर कुछ लोग इतने संतुष्ट हो जाते हैं कि आगे और उपलब्धि का प्रयास बंद करके पूर्ण शिथिल हो जाते हैं। ऐसे लोगों को प्रसाद जी ने इन शब्दों में सचेत किया है। इस पथ का उद्देश्य नहीं है श्रांत भवन में टिक रहना, किंतु पहुंचना उस सीमा तक जिसके आगे राह नहीं है। संकट में घिरे हुए लोगों को भगवान पर भरोसा रखकर मुक्ति का प्रयास करने की शिक्षा देते हुए कवियर रहीम दास ने लिखा है, रन बन व्याधि विपत्ति मह, रहिमन मरय न रोय, जे रक्षक जननी जठर, सो हरि गयउ की सोय। स्वस्थ सुखी और शांत जीवन के लिए हठधर्मिता का जहर नितांत घातक है। एक अकेला हठधर्मी व्यक्ति पूरे परिवार के लिए संकट का कारण बन जाता है। इसलिए हठवादी प्रवृत्ति से बचने का संदेश देते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, हठ बस सब संकट सहे, गालो नहुष नरेश। पुनः उन्होंने भगवान शंकर के मुख से सती के बहाने मानव मात्र को यह उपदेश दिया है कि जो हठ करहु प्रेम बस बामा, तो तुम दुख पैहौ परिणामा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने और भी बहुत सी बातें बताई हैं। एक व्यक्ति ने अपने जीवन का उल्लेख दिया था कि मैं बेरोजगारी से तंग आकर के आत्महत्या के लिए प्रयास कर रहा था, तभी गोस्वामी तुलसीदास की यह पंक्ति कानों में पड़ती है, कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिन सहित अहें रघुवीरा। जीवन से हताश लोगों के लिए यह पंक्ति संजीवनी का काम करती है। अच्छे और कल्याणकारी कार्यों के लिए हठधर्मिता को उन्होंने उचित भी बताया है। अति संघर्षन जो कर कोई, अनल प्रगट चंदन ते होई। गोस्वामी तुलसीदास जी ने नौ लोगों को इतना बड़ा दुश्मन बताया है कि उनसे विरोध न करना चाहिए, न तो उनसे मित्रता करनी चाहिए। मारीच के शब्दों में उन्होंने मानव मात्र को शिक्षा दी है कि तब मारीच हृदय अनुमाना, नवहि विरोधे नहि कल्याणा, शस्त्री मर्मी प्रभु षठ धनी, वैद बंद कवि भानस गुनी। पुनः उन्होंने खलों से बैर और प्रीति दोनों न करके उदासीन रहने की शिक्षा इन शब्दों में दी है, कवि कोविद गावहि यस नीति, खल सन कलहन भल नहि प्रीति, उदासीन नित रही गोसाई, खल परिहरी स्वान की नाई। देश रक्षा के लिए प्राणों का उत्सर्ग करने वाले वीरों के बलिदान को सुभद्रा कुमारी चौहान की इस कविता में मुक्त कंठ से महिमान्वित करते हुए मानव मात्र के लिए यह संदेश व्यंजित किया गया है कि राष्ट्रीय अस्मिता की रक्षा के लिए प्राणों की परवाह नहीं की जानी चाहिए। बढ़ जाता है मान वीर का रण में, बलि हो जाने से मूल्यवती होती है भस्म यथा सोने से। आधुनिक जनवादी कवि स्वर्गीय कैलाश गौतम जी ने अपने अनुभव के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति को कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ने से बचने की सलाह निम्न पंक्तियों में दी है, भले डांट घर में बीबी की खाना, भले काम ऐसे वैसे चलाना, भले वन में जाकर धुनी रमाना, मगर मेरे बेटे कचहरी न जाना, कचहरी न जाना।
1: हाँ भैया देखा हो,
2: हाँ हो,
1: नीति वचन में प्रोफेसर मिथिलेश त्रिपाठी जी कितना बढ़िया से सुनायन जवन है।
2: हाँ
1: भैया देखा, एक अपने नीति वचन के माध्यम से भैया खेती किसानी से स्वास्थ्य तक भैया जवन है सब जवन है बताएं जवन है, ऐसे कहीं न कहीं देखा सीख मिलत है।
2: एकदम सही तो कहते हैं भैया,
1: खेती किसानी में अपन किसान भैया हरेगा।

0: समय से जवन है खेती किसानी करी हैं, तो उनका भैया देखा लाभ होई हो। और देखा हम तो कहब खेती किसानी में समय समय पर नया नया तरीका भी आवत है। वैज्ञानिक भैया किसान गोष्ठी हो चाहे किसान मेला हो,
1: हाँ
0: ओकरे
1: हाँ
0: माध्यम से नई नई तकनीकियन के जानकारी देते हैं। मुला जरूरत बा कि किसान भैया रे अपन वो तकनीकी के जानकारी लई के जौन है अगर अपने खेत पे ये चीज़ उतारत हैं तो उनका फायदा होत है।
1: एकदम सही कहते हो तो भैया। एक बात और रहे हो, देखे खेती किसानी में देखे पशु प्राणी के बड़ा नाम
0: बिल्कुल
1: से
0: बिल्कुल
1: सहयोग रहे थे। तो हमार कहे के मतलब हो कि यह वक्त देखे बारिश होता है, तो बारिश के मौसम में भैया देखे गोरू चौवा का भी ध्यान रखे बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: कैसे रखे के है, कहाँ रखे के है, भाई उनका जो उन छावन है वो सही है कि ना है, ये जहाँ बैठे तो उठे थे वहाँ पानी न रुकत हुए,
0: बिल्कुल
1: थोड़ा साफ
0: बिल्कुल
1: सफाई का भी ध्यान देवे के है। और साथ ही साथ ही ये बात का भी ध्यान देवे के है कि भैया देखे कौनो कीड़ा मकोड़ा न आवे।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: और दूसरी चीज़ ये है कि देखे किसान भैया बहनी इनके सबसे बड़ी चीज़ के ध्यान ही देवे के है कि भैया उनकर जो उन टीकाकरण है अगर ना करवाए हैं तो किसान भैया बहनी हरे ओके करवा ली,
0: बिल्कुल
1: काहे
0: बिल्कुल
1: कि भैया देखो ये समय बरसात में मुँह पका खुरपका और जो उन रोग हैं वो होए के संभावना बढ़ जाता भैया।
0: बिल्कुल बिल्कुल भैया जौन है देखा वो बात बत कही हुई मुला जौन कहत रहे ना कि देखा एक पंचायती में अपने बातचीत बाटे कि वर्षा ऋतु एवं मृदा प्रबंधन, ये भैया देखा बरसात के मौसम में अपने माटी के प्रबंधन कैसे किया जाए, ए पर देखा डॉक्टर SP यादव से भैया अमरीश कुमार के बातचीत बाटे। हम तो कहा पंच भैया हरे भी सुनो तो सुनवाई दे।
1: सुनवाएं दे
0: किसान
1: भैया।
0: भाई, जब हम खेती किसानी करी थी तो हमरे सबके ऐसी चीज के जानकारी चाहा था कि जैसे हम अपने खेती का स्तर बहुत ऊंचा ले जाई, और हमारा सबसे जरूरी का हो था कि हम मिट्टी के बारे में अपने जानी कि हमारी मिट्टी कैसे है। बरसात का मौसम आ, इस समय आप देखा तो यही कि जब पानी बरसा था तो चाहे खेते का माटी हो, चाहे दुआरे का माटी हो, और चाहे बगिया का माटी हो, सबको माटी कटा था, माटी कट कट के बह जा था। तो ऐसी समस्या का हुआ था कि कुछ दिन में जहाँ पे तनी ऊंचाई रहा था वो गहराई हो जा था। फिर कुछ किसान भाई हमारे कहा थे कि हमारे मिट्टिया जो रही खेते का देखा हम पैदावार कम हो गया है। बहुत सारा भैया कारण होता कि जब मिट्टी में बारिश के बाद कटान होता तो ओकर प्रबंधन कैसे किया जाए, अपन मिट्टी कैसे ठीक रखा जाए, एकरे सब के बारे जानकारी दे खातिर आज अपने पंचायती में किसान चर्चा में डॉक्टर भैया आए हैं, और आज उनसे बहुत बात होने वाली है। कुलभास्कर डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर आए हैं आप मृदा विज्ञान में, और आपका नाम है डॉक्टर SP यादव, और बहुत लंबा अनुभव है आपका मृदा विज्ञान के बारे में। तो डॉक्टर SP यादव जी, हमारे पंचायती में आपका बहुत बहुत स्वागत बा। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो किसानी में सबसे ज्यादा तो हमका लोग का लागत है कि जोन जितने में हम माटी पे अपन हल चलाई थी, हमका लागत कि हमारे माटी वह है या ओकरे हाँ
1: अलावा कोनो माटी नहीं है। तो
0: हाँ
1: जरा एकरे बारे में आप बताओ कि माटी का हो था, एकरे बारे में तने बताओ का जोन हम जोती थी खेतवा केवल उतने हो
0: बिल्कुल
1: गए और कुछ होता है।
0: बिल्कुल मोटे तौर से जो आप बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं कि माटी वही है जो भूमि है, यानी अर्थ है, धरा है, पृथ्वी है, उसके ऊपरी सतह जिसमें हम खेती करते हैं, जिसमें फसल उगाते हैं, जिसमें निराई गुड़ाई जुताई करते हैं, बुआई करते हैं, और जिसमें हमारी फसल अच्छे से उग जाती है, माने उग सकती है, वही है हमारी माटी है, और उसी की जो है देखभाल करनी होती है।
1: अभी मौसम बारिश का आ गया है,
0: जी
1: पानी रोज बरसता है, झिमझिम सावन लागा है,
0: हाँ
1: ऐसे में होत का कि हमारे लोग को माटी जो ना है वो बहुत ज्यादा कट जात है। जब बारिश हुई तो देखा कहूँ कोई से मटिया बहत दिखा था कि हाँ मटिया बहत चली जाती है। तो एकरे बारे में बताओ, ये जो मिट्टी का क्षरण होत है
0: जी
1: एकरे
0: जी
1: बारे में जरा बताओ, ये का होत है।
0: हाँ जी खास तौर से बारिश के मौसम में जब बारिश होती है तो मिट्टी बह जाती है, और ये मिट्टी बहना जो हमारा जो भाषा है जिसको हम किताबों में पढ़ते हैं उसको कहते हैं मृदा अपरदन। इसमें क्या होता है कि मिट्टी जिसमें हम खेती करते हैं बारिश के पानी के साथ में बह जाती है, और उसके बहने से बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व हैं जो हमारे फसल के लिए, पौधों के लिए आवश्यक हैं, वो मिट्टी के साथ, बारिश के पानी के साथ वो बह जाते हैं, जिससे हमारी जो भूमि है, मिट्टी है, जो खेती है, उसमें पोषक तत्व तो कम हो जाते हैं, उसकी उर्वरा शक्ति कम हो जाती है, और अंततः जो है जो फसल का उत्पादन है वो भी कम हो जाता है।
1: अच्छा, तो डॉक्टर साहब, ये जो मृदा अपरदन होता है यानी जो
0: जी
1: मिट्टी बह जाती

0: कर कारण का है, काहे बेहजात है।
1: जो मिट्टी बहती है, एक तो ये है कि बारिश का पानी है, बारिश की जो बूंदें हैं इस तरीके से पड़ती हैं कि वो उसके कण हैं उसको तोड़ देती है, तोड़ करके वो बहाती है। दूसरा ये है कि वहाँ पे हम किस तरह की फसल को उगा रहे हैं, कैसे हम मेड़बंदी किए हैं या नहीं किए हैं, कई चीज़ें ऐसी आती हैं। मिट्टी बहने के लिए वो उत्तरदायी होती हैं कि यदि हम गलत तरीके से, जैसे जंगलों का काट देना और जो मेड़ है मेड़बंदी ठीक से न करना, पता चलता है कि मिट्टियाँ मेड़ जो है बहुत छोटी छोटी या उस पर घासें नहीं हैं तो वो टूट जाती हैं, जिससे पानी का जो बहाव है वो तेज होता है। उस बहाव के साथ में जो है, जो मिट्टी है जिसमें हम खेती करते हैं ऊपरी भाग, वो बह जाती है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो पोषक तत्व हैं जो पौधों के लिए, उसमें ऊपरी ही हिस्से में रहते हैं और मिट्टी के साथ बह जाते हैं। जैसे जो बारिश हो रही है तो जो बहाव है पानी का, तो एक तो जो बूंदें पड़ती हैं तेज़ से पड़ती हैं तो कण हैं उसको तोड़ देते हैं, और जब बारिश होती है तेज़ बारिश होती है और खेत में ढलान है, ढलान वाला खेत है, तो पानी जो है तेज़ी से बहता है। ये भी है कि जब खेत ढलान पे हो तो उसका हमको अलग तरीका से उसको प्रबंधन करना होता है। दूसरा ये कि वनस्पति आवरण की कमी, जहाँ पे हम खेती कर रहे हैं वहाँ पे आसपास में वनस्पति, जैसे ऐसा तो है नहीं कि एक ही खेत का पानी है जिससे वो बह जा रहा है, पानी बह करके आ रहा है। तो यदि हमारा वनस्पति आवरण, जिस खेत में हम जो भी खेती हम करते हैं तो उसमें जो क्रॉप रोटेशन है, मतलब कि एक सीजन में हमने कोई क्रॉप लगाया दूसरे में, तो बारिश सीजन में हमको कुछ ऐसी फसल को चुनना चाहिए, क्रॉप को चुनना चाहिए कि जो मिट्टी को बिल्कुल खुला ना छूटे, उसको कवर किए रहे, तो वो एक मल्चिंग का काम करती है, जिससे कि मिट्टी जो है डायरेक्टली फ्लो में नहीं आती है, बहाव में नहीं आती है पानी के। तो जो मिट्टी है वो खुले रहने के कारण भी जो है ये जो अपरदन है वो ज़्यादा हो जाता है।
0: अच्छा, मतलब कि डॉक्टर साहब, हमारे बारिश के मौसम में हम लोग खेती करी ऐसी ऐसी फसल का चुनाव करी कि मिट्टी ज़्यादातर ढकी रहे,
1: हाँ हाँ
0: बारिश के बूंद
1: बिल्कुल
0: सीधे मिट्टी पे ना गिरे।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: अच्छा, कई ऐसे कुछ एक आध भी फसल का नाम बताओ जेकर मिट्टी पे किया जा
1: हाँ,
0: सके इसमें
1: जैसे
0: खेती।
1: कैच क्रॉप बोलते हैं
0: अच्छा।
1: जो बारिश के सीजन में हैं, जनरली फसलें ऐसी हैं जो उस समय को भी कवर कर लेती हैं,
0: अच्छा।
1: हैं जैसे मूंग बीन हो गया है, लोबिया, इस तरह की जो फसलें हैं वो कवर कर लेती
0: अच्छा
1: हैं।
0: डॉक्टर साहब, एक चीज़ देखा जाता रहा कि पहले के समय में खेतों के आसपास बड़ी बाग उग रहा है, बाग बागवानी रहत
1: बिल्कुल
0: रही,
1: बिल्कुल
0: तो का
1: बिल्कुल,
0: कुछ हेमा
1: ये
0: प्रभाव डालत रहा है ये?
1: बिल्कुल ये एक महत्वपूर्ण कारण है जो मृदा अपरदन हो रहा है, जो बारिश के पानी से, उससे क्या हो रहा है कि जो बहाव है पानी का, वो बंद जो होते थे वो पानी के बहाव को रोकते थे, अब उन कट जाने के कारण जो है पानी का बहाव तेज़ी से हो रहा है, और जिस इसी कारण से जो बाढ़ की भी समस्या इससे आ रही है, और लंबे समय तक आपका खेत जो है पानी में डूबा रह जा रहा है।
0: अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और बताऊँ कि जैसे हम लोग दुई तरह जानी थी, अगर खेते में हमरे कुछ उपजता है यानी पैदावार होती है तो हम समझ गए कि माटी अच्छी है, और अगर कुछ नहीं उपजत होती है तो हम समझ गए माटी खराब ही है, तो फिर चाहे वहाँ पानी बरसे चाहे क्षरण हुए मतलब नहीं रखे। तो आप ही बताऊँ कि मटिया कौने प्रकार खोद केहमा ज़्यादा कटाव हो जाता और केहमा कम कटाव होता, एक बारे में ज़रा बताऊँ।
1: अब जैसे देखें कि हमारे यहाँ जो प्रयागराज है, इसके आसपास की जो मिट्टी है वो जो उसको अलग श्रेणी में रखा गया है वो है बलुई दोमट, कुछ बलुई दोमट है, मतलब इसी से रिलेटेड जो कैटेगरीज है उसमें आती है,
0: अच्छा
1: और इसमें कटाव भी ज़्यादा होता है,
0: अच्छा
1: इसमें कटाव भी ज़्यादा होता है। अब दूसरा जो कैटेगरी होती है जो चिकनी मिट्टी जिसको बोलते हैं क्ले सॉयल है, उसमें कटाव थोड़ा कम होता है, वो बारीक पार्टिकल्स होते हैं और वो आपस में जुड़े बहुत टाइटली होते हैं, मजबूती से जुड़े होते हैं वो, तो वो बहते नहीं हैं ना, वो बारिश के पानी से जल्दी बिखरते भी नहीं हैं। लेकिन जो सैंडी रिलेटेड सॉयल है जिसमें सैंड परसेंट बालू की मात्रा ज़्यादा है, वो जल्दी जो है टूट जाते हैं, वो जो पार्टिकल्स हैं अलग हो जाते हैं, बिखर जाते हैं, जब बिखर जाएंगे तो फिर पानी अपने साथ जो है उनको बहुत इजीली, मतलब थोड़ी भी बारिश होती है तो उनको बहा ले जाती है।
0: तो बड़ी बढ़िया जानकारी दें डॉक्टर साहब कि देखें कि मतलब अगर बलुई मिट्टी

0: या बलुई दोमट मिट्टी है तो ओकर मतलब क्षरण ज़्यादा होए के संभावना है। तो मतलब अगर ऐसे हमारे पास मिट्टी है तो हम ज़्यादातर ऐसे या तो फसल को लगाई जेमा की छाँव ज़्यादा रहा है या बाग बगीचा के बीच में खेती करी, क्या कहा चाहते हैं आप के बारे में?
1: मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो जंगलों की कटाई हो रही है वो रुकनी चाहिए या और पेड़ पौधे लगाना चाहिए कि कम से कम जो पानी का बहाव है वो कम हो। हैं, मेड़बंदी करना चाहिए जहाँ पे जो ढलान की एरिया है तो मेड़ जो है आपकी थोड़ी ऊंची रहेगी तो पानी जो है जो बह कर गया कम से कम वहाँ रुकेगा, और रुकने जब रुकेगा तो उसका बहाव गति जो कम हो जाएगी तो जिससे मिट्टी उस गति से नहीं वो बहा पाएगा और इससे सुरक्षा हो जाएगी।
0: मतलब एक तरह से डॉक्टर साहब, ये वर्षा ऋतु में हम कह सकें कि मृदा प्रबंधन का तरीका आया, तनिक विस्तार से करे बारे में डॉक्टर साहब आप बताएं कि किस तरीके से हम लोग मिट्टी के प्रबंधन हमारे पंच भाई कह सकते हैं।
1: अब जैसे मान लीजिए कि किसान भाई हैं, उनका खेत यदि ढलान पे है, ठीक है, तो जब यदि ढलान ज़्यादा है तो उनको चाहिए कि जो खेत है उसमें जो है समुच्च जुताई करना,
0: अच्छा
1: मतलब समान ऊंचाई पे जो है उसमें भी अलग अलग, एक तो सीढ़ी नुमा कर दें, ढलान है तो सीढ़ी नुमा कर देने से क्या होगा कि पानी का बहाव बहुत कम हो जाएगा।
0: अच्छा
1: नहीं? और दूसरा कि एक समान जो समुच्च जो है जुताई करने से जो फ्लो होता है वो ब्रेक हो जाता है, तो एक
0: अच्छा
1: समान ऊंचाई पे जो है समानांतर जो जुताई करने से समान ऊंचाई पे तो जो फ्लो होता है पानी का जो बहाव है वो कम हो जाता है, उसकी गति कम हो जाती है, तो इससे भी मिट्टी का बहाव जो है रुक जाता है।
0: अच्छा मतलब का है मतलब डॉक्टर साहब कि अगर खेत में हमारे ढलान यह है तो मौका इस तरह जुताई करी कि जितना बढ़िया समान हो सके, यानी जैसे हमारा टाठी रहा था बढ़िया थाली रहा था ओकरे बराबर में मट्टी ले आई ली तो हमारे मट्टी जो है कटान कम हो जाए, और अगर ढलान है तो कोशिश करी कि या तो मेड़ बनाई ली, वो जो गहराई वाला हिस्सा है ओका अलग कह ली, जो ऊंचाई वाला हिस्सा है अलग कह ली। हाँ,
1: और माने कि मल्चिंग जैसे आप फसलों का कुछ ऐसी फसल जैसे बताया कि मूंग बीन हो गया, लोबिया हो गया, कुछ इस तरह से फसल, कुछ चारे की भी फसलें उगाई जाती हैं तो इनको उगाने से जो है इस मौसम में वर्षा ऋतु में तो डायरेक्ट जो बूंदें हैं पानी की वो मिट्टी पे नहीं पड़ती हैं तो उनका पार्टिकल बिखरता नहीं है, तो वहाँ की मिट्टी तो बिल्कुल नहीं बहेगी जहाँ पर फसल लगी हुई है।
0: अच्छा डॉक्टर साहब, मेड़बंदी कितनी ज़रूरी होता है ये मिट्टी का कटाव रोकने में, का प्रबंधन में यह सहायक होता है?
1: बिल्कुल बिल्कुल, मेड़बंदी तो दोनों तरीके से, आपको पानी की भी आवश्यकता होती है और पानी रोकने की भी, जब नहीं पानी चाहिए होता तो पानी आना भी नहीं चाहिए, तो दोनों कंडीशन में जो है मेड़बंदी आवश्यक है, बहाव की गति को रोकता है, आपको पानी भी चाहिए कुछ फसलों के लिए ज़्यादा पानी चाहिए तो वो पानी को, पानी आप देंगे यदि चाहेंगे तो पानी रोक करके उसमें जो है लंबे समय तक आप रोक सकते हैं मेड़बंदी से।
0: डॉक्टर साहब एक चीज़ और देखें कि गांव देहात में कहावत बड़ी कही जाता है कि पनिया लईगवा पूरे खेत का जितनी ताकतवर रहा सब बहाय लईगवा, यानी जब पानी बरसा तो खूब तो ओकरे साथे साथे जो मट्टी कटत तो कहा दिन जितना हम हुमा पांस डाए रहे, जितना हुमा हम बढ़िया खाद डाए रहे या कुछ भी करे रहे ताकत खातिर वो सब बह गवा, तो एकरे बरे हम का किंजाई सिर्फ मेड़बंदी ने एक तरीका होता या कोनो और तरीका भी होता कि हम अपने खेते की जो उर्वरा शक्ति है उसका बचाए के रखी, जो ऊपर वाली परत है उसका सुरक्षित रखी?
1: सबसे ज़रूरी है कि हम उस अपने खेत की जो मिट्टी है उसको बहने न दें, उसको बर्बाद ना होने दें, क्योंकि बड़े समय से वो कमाई हुई मिट्टी होती है जिसमें हम खेती करते हैं तो वो उसका नुकसान ना हो। हैं, और चूँकि बारिश का मौसम है तो कुछ न कुछ लॉस नुकसान हो जाता है, तो इसके लिए जो है ऑर्गेनिक मैटर खाद है, गोबर की खाद हो गया, केंचुआ खाद, इसको मिलाने से ये क्या होता है कि जो हमारे यहाँ की मिट्टी है उसमें मिलाने से ये जो कणों का पार्टिकल्स है उसको पकड़ को मजबूत बनाती है।
0: अरे वाह,
1: जैसे फसलें भी हैं, जो फसलें की जड़ें हैं, पौधों की जड़ें हैं, वो मिट्टी में जो है मजबूती प्रदान करती हैं, जोड़े रखती हैं, तो इस तरीके से मदद करती हैं कि मिट्टी हमारी जो है बर्बाद ना हो।
0: अच्छा मतलब किसान भाई देखा एक बहुत बढ़िया जानकारी हम सब के काम के बारे आ कि अगर हम अपने मिट्टी में ये गोबर का खाद हो गए, केचुआ खाद हो गए, ये सब चीज़ मिलावत आ तो ये मिट्टी में मजबूती बढ़िया हुआ था, यानी मिट्टी आपको तुरंत भाई के नहीं कि एक बूंद पानी पड़ा और बहाव शुरू हो गया, वहाँ मजबूती आई जाए तो

चीज़ का ध्यान रखें, जौन जौन चीज़ डॉक्टर साहब को बताएं कि किस तरीके से आप कुछ फसल जौन है, चाहे वो जानवरन को बड़े खिया वगैरह आपको बरसेम होए, चाहे मूंग वगैरह होए, एकर बढ़िया अगर खेती हुआ आप करता है खास करके बारिश के मौसम में, तो समझा कि आपको मिट्टी कटान का जो संभावना है वो बहुत कम हो जाएगी। और मेड़बंदी तो डॉक्टर साहब कहे बहन भैया की देखा पंचभाई, इस सबसे जरूरी विषय है कि आप बढ़िया मेड़बंदी वगैरह करा। तो डॉक्टर साहब आप हमारे कार्यक्रम में आयन और किसान भाइयन के इतनी बढ़िया बढ़िया जानकारी रहन, एक खातिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: फरी आई के पूछें जो है,
1: हाँ
0: और
1: भैया।
0: डॉक्टर साहब बहुत बढ़िया जानकारी दें कि बरसात के मौसम में अपने माटी के कैसे सुरक्षित और संरक्षित किया जा सकत है।
1: हाँ
0: देखा कहीं कहीं भैया जौन है फसल चक्र भी अपनावा जात है अपने माटी के जौन है सुरक्षित और संरक्षित करे बदे, और साथे साथे कुछ उथला जलवाली फसल हैं, कुछ झकड़ा जलवाली फसल हैं, तो भैया इहू के बुआई किसान भैया हरिन के करे के चाही जौन है। और साथे साथे अपन तो भैया मेड़बंदी जरूरी बाटे जौन है, ये बरसात के पहले किसान भाई हरे कह सकते हैं, और बरसात के समय भी जौन है कैलिंग है तो उनके जौन उपजाऊ मिट्टी बाटे वो देखा भैया बह के न जाए पाई।
1: एकदम सही कहे भैया। अच्छा एक बात और है, देखे कुछ किसान भैया बहनी हरे खेती के डाड़े भैया जुट्टा उट्टा लगा देते हैं सब
0: बिल्कुल
1: बुद्धे का,
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: तो यहू से कहा है कि माटी के जो बहाव है वो रुक जाते हैं।
0: बिल्कुल हो सही भैया। देखा वही देखा डॉक्टर साहब बतावत रहे ने कि देखा देसी खाद जौन भैया सड़ी गोबर के खाद बाटे ओका जौन है मिलाई के जौन है अगर अपने माटी में डालत हैं तो ओहू से भैया मृदा कटाव रोका जा सकत है।
1: एकदम सही कह भैया। अच्छा एक बात और है, और भैया देखे समय समय पे हम सभी अपनी पंचायती में कृषि विशेषज्ञ भैया हरण के बुलावा जाता, और भी जो उन कृषि किसान भैया बहनी हरण के सुझाव है
0: बिल्कुल
1: आपन जिसन प्रतिक्रिया है किसान भैया बहनी हरे हमें सबके दे सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 800-4926-2500, एक बार भैया हम फिर से दोहरावत ही 800-4926-2500।
0: बिल्कुल भैया देखा हो टाइम टाइम से सब कुछ अच्छा लगा था,
1: चली
0: तो
1: चला के
0: भैया
1: मिला है।
0: पंचन से विदा लेवे के समय आएगे तो पंचो
1: राम
0: राम
1: राम।
0: राम।

अभी किसान भाई अपना कार्यक्रम सुन रहे थे पंचायत घर। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है।

0: एक ही कलाकार में फिल्मी सितारों का सफरनामा। जोड़िए दिल से दिल के तार हेलो फरमाइश के साथ।
1: गृह लक्ष्मी के साथ होंगी

0: लोक रंग लोक उमंग लेकर आता है पनघट।
1: युवाओं की सोच को आवाज देता कार्यक्रम युवावाणी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: और पंचायत घर में होंगी खेत खलिहान और चौपाल की बातें।

0: संस्कृत हिंदी और उर्दू कार्यक्रमों का संगम सिर्फ आकाशवाणी पर। तू शायर है,
1: मैं तेरी शायरी। समाज का प्रतिबिंब और जन जन की आवाज आईना के साथ।
2: तू आशिक है, मैं तेरी आशिकी।
0: सिल्वर स्क्रीन से खुलेगा सिनेमा की सुनहरी यादों का एल्बम।

0: गीत जो कह जाते हैं कहानी, कार्यक्रम बोलते नगमे की जबानी।
1: तुम इतने दिन थी कहां, मैं ढूंढता ही रहा। कभी लिंकिंग रोड, कभी वार्डन रोड, कभी कैडल।
2: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। हमारा अगला प्रसारण लखनऊ केंद्र से होगा, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि मंदिर में मुख्य कार्यकारी अधिकारी के लिए साक्षात्कार की प्रक्रिया पूरी। चयन समिति ट्रस्ट को सौंपेगी अंतिम तीन नाम। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने ग्रेटर नोएडा में इंडिया बिग एनर्जी एंड टेक एक्सपो को किया संबोधित। कहा, प्रदेश को बायो एनर्जी राजधानी बनाना सरकार का मुख्य लक्ष्य। नीति आयोग की रैंकिंग में गोरखपुर को मिला पहला स्थान। आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्यों के लिए किया गया पुरस्कृत। और प्रदेश में कल से फिर सक्रिय होगा मॉनसून, 18 अगस्त तक कई जनपदों में भारी बारिश की संभावना। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं राघवेंद्र त्रिपाठी और अब समाचार विस्तार से। अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि मंदिर के व्यवस्था संचालन के लिए मुख्य कार्यपालक अधिकारी की भर्ती के लिए साक्षात्कार की प्रक्रिया आज पूरी हो गई। उम्मीदवारों के इंटरव्यू और उनके अनुभव का आकलन करने के बाद चयन समिति अंतिम तीन नाम की सूची तैयार करेगी, जिस पर अंतिम फैसला ट्रस्ट द्वारा किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
1: कल से शुरू हुई प्रक्रिया के दौरान 18 आवेदकों के साक्षात्कार लिए गए। सेवानिवृत्त जस्टिस प्रमोद कोहली की अध्यक्षता में बनी 3 सदस्यीय चयन समिति ने कल पहले दिन करीब 10 आवेदकों का इंटरव्यू लिया था, जिनमें रिटायर आईएएस अधिकारी दिनेश चंद्र, रिटायर आईपीएस अधिकारी राजेश पांडे भी शामिल रहे। सभी उम्मीदवारों के इंटरव्यू और उनके अनुभवों का आकलन करने के बाद चयन समिति अंतिम तीन नाम की सूची तैयार करेगी। ये नाम श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट को सौंपे जाएंगे, जिस पर अंतिम फैसला ट्रस्ट के द्वारा किया जाएगा। इस फैसले पर 2 सितंबर को होने वाली ट्रस्ट की बैठक में अंतिम मोहर लगेगी। तन्मय सोनी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या।
0: प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा है कि उत्तर प्रदेश को बायो एनर्जी की राजधानी बनाना सरकार का मुख्य लक्ष्य है। ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर में आयोजित 3 दिवसीय इंडिया बिग एनर्जी एंड टेक एक्सपो के दूसरे दिन आज कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री शाही ने कहा कि कृषि प्रधान राज्य होने के नाते प्रदेश में 17 मिलियन टन कृषि अपशिष्ट की क्षमता है, जो ऊर्जा परिवर्तन और नए निवेश का

0: सबसे बड़ा आधार बनेगी।
1: देश में सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, सबसे ज्यादा चीनी पैदा करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, सर्वाधिक गन्ना उत्पादन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, सर्वाधिक इथेनॉल पैदा करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। और अगले दिनों में, जैसा आज ही आपके अपने प्रेजेंटेशन में आया कि कंप्रेस्ड बायोगैस में भी हम देश में सर्वाधिक उत्पादन कर रहे, ये बदलता हुआ उत्तर प्रदेश की तस्वीर।
0: कार्यक्रम में प्रदेश के ऊर्जा और नगर विकास मंत्री एके शर्मा भी शामिल रहे। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश के 69,000 शिक्षक भर्ती मामले की सुनवाई 8 सितंबर से लगातार 3 दिन करने का निर्णय लिया है। जस्टिस एवीएन भट्टी और जस्टिस एनवी अंजरिया की पीठ ने कहा कि अभ्यर्थी लंबे समय से दुविधा की स्थिति में हैं, उनके भविष्य को लंबे समय तक अधर में नहीं रखा जा सकता। कल मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश सरकार के वकील से कहा कि वह इस मामले से जुड़ी सूची तैयार करें, जिसमें यह सुनिश्चित हो कि किन किन पक्षों को इस मामले पर सुना जाना है। लोकसभा ने आज विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को विचार विमर्श के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया। इस विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान के उपयोग को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने व्यापक विचार विमर्श के लिए विधेयक को दोनों सदनों के सदस्यों वाली संयुक्त संसदीय समिति को भेजने का प्रस्ताव रखा। नीति आयोग के आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम रैंकिंग में गोरखपुर जिले का बांसगांव विकासखंड नंबर 1 चुना गया है। यह जानकारी नीति आयोग की मुख्य कार्यकारी अधिकारी निधि छिब्बर की तरफ से प्रदेश के मुख्य सचिव को भेजे एक पत्र में दी गई है। इस उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए गोरखपुर को 1.5 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि भी मिली है। जिलाधिकारी दीपक मीणा ने बताया कि नीति आयोग के आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम का जोर समावेशी विकास के जरिए नागरिकों के जीवन में सुगमता और गुणवत्ता की वृद्धि और समग्र रूप में जीवन स्तर के सुधार पर होता है। इसके अंतर्गत 5 थीम स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, आधारभूत ढांचा और सामाजिक विकास के कुल 39 संकेतकों पर संबंधित आकांक्षी ब्लॉकों का मूल्यांकन किया जाता है। यह समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। हर घर तिरंगा अभियान 2026 के तहत प्रदेश के कई जिलों में आज तिरंगा यात्रा निकाली गई। इसी क्रम में लखनऊ में महापौर सुषमा खरकवाल के नेतृत्व में लखनऊ नगर निगम मुख्यालय से गांधी प्रतिमा तक तिरंगा यात्रा निकाली गई। सीमांत मुख्यालय सशस्त्र सीमा बल ने साइकिल रैली का आयोजन किया। वहीं बलरामपुर, गौतम बुद्ध नगर, संभल, अमरोहा में बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं और स्थानीय लोग तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। कानपुर देहात में कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने तिरंगा यात्रा का नेतृत्व किया। उन्होंने कहा कि इस यात्रा का उद्देश्य लोगों के मन में राष्ट्रीयता और एकता की भावना को मजबूत करना।
2: तिरंगा यात्रा आज जो पूरे प्रदेश में देश में निकाली जा रही है, ये हमारे उन तमाम जो जिनकी बलिदानी हुई है स्वतंत्रता सेनानियों की याद में उनको नमन का दिन है। और ये तिरंगा केवल एक ध्वज नहीं है, बल्कि एकता, समृद्धि और विकास, 140 करोड़ लोगों का संबल है।
0: हापुड़ में हर घर तिरंगा अभियान के तहत राष्ट्रीय आजीविका मिशन के स्वयं सहायता समूहों को 2.5 लाख झंडे बनाने का लक्ष्य दिया गया है। गांव अनवरपुर के एक स्वयं सहायता समूह की सदस्य हेमलता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस अभियान के लिए आभार जताया है।
3: हमारे SSG अधिकारियों ने हमें 10,000 झंडे का टारगेट दिया था बनाने के लिए, हमने वो लक्ष्य पूरा किया है। हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे गांव में कुछ कार्य करने को मिला महिलाओं के लिए। और पहले गांव में महिलाएं बाहर नहीं जाती थीं, हम SSG से जुड़े तो हमें बाहर जाने का अवसर मिला और हम बहुत खुश हैं इस चीज।
0: राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आज अयोध्या में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के 30वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुईं। राज्यपाल ने युवाओं को नशे से दूर रहने और दूसरों को भी जागरूक करने की अपील की।
4: नशा किसी भी युवक की शक्ति नहीं, उसकी सबसे बड़ी कमजोरी या व्यक्ति से

0: उसका विवेक, आत्मविश्वास, स्वास्थ्य, परिवार का विश्वास और जीवन का उद्देश्य सब कुछ छीन लेता है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा प्रारंभ किया गया नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान केवल एक सरकारी अभियान नहीं बल्कि राष्ट्र की युवा शक्ति को सुरक्षित रखने का जन आंदोलन है।
1: 16वीं जूनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2026 के लिए उत्तर प्रदेश की महिला हॉकी टीम का चयन कर लिया गया है। टीम का कप्तान वंदना पटेल को बनाया गया है। प्रदेश में कल से एक बार फिर मॉनसून सक्रिय होगा, जिससे 18 अगस्त तक राज्य में व्यापक बारिश की संभावना है। उधर पहाड़ों पर लगातार बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण फरुखाबाद में गंगा नदी खतरे के निशान से 5 सेंटीमीटर नीचे बह रही है। जिलाधिकारी अंकुर लाठर ने बताया कि प्रशासन ने सभी इंतजाम किए हैं।
2: दिलीप की मड़ैया में कटान की शिकायत थी तो वहाँ कटान हुआ था। 25 जो मकान है वो भी बह गए थे तो उन सभी को राहत धनराशि भी दी जा रही है 1,20,000 और उन लोगों को पट्टा भी दिया जा रहा है। और शिक्षा विभाग को निर्देशित किया गया है क्योंकि गांव में बच्चे हैं, स्कूल से बिल्कुल संपर्क मार्ग टूट गया है तो कल से वहीं पे टीचर्स जाके बच्चों को पढ़ाएंगे।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि मंदिर में मुख्य कार्यकारी अधिकारी के लिए साक्षात्कार की प्रक्रिया पूरी। चयन समिति ट्रस्ट को सौंपेगी अंतिम 3 नाम। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने ग्रेटर नोएडा में इंडिया बिग एनर्जी एंड टेक एक्सपो को किया संबोधित। कहा, प्रदेश को बायो एनर्जी राजधानी बनाना सरकार का मुख्य लक्ष्य। नीति आयोग की रैंकिंग में गोरखपुर को मिला पहला स्थान। आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्यों के लिए किया गया पुरस्कृत। और प्रदेश में कल से फिर सक्रिय होगा मॉनसून, 18 अगस्त तक कई जनपदों में भारी बारिश की संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। लीजिए सुनिए हमारा विशेष कार्यक्रम बोलते नगमे, वाचन स्वर नेहा गुप्ता और वंदना राठौर का।

0: بولتے نغمے श्रोताओं नमस्कार, वंदना जी नमस्कार।
1: नमस्कार नेहा जी, और सभी सुनने वाले दोस्तों को भी हमारा नमस्कार।
0: अरे भाई, आज दिन क्या है?
1: नेहा जी, दिन तो वही है जब हम कुछ गुनगुनाते हैं, जिसमें कुछ मस्तियां छुपी होती हैं, कुछ तन्हाइयों की बातें की जाती हैं, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमें उदासियों से भर देती है, तो कुछ हमें जीवन का पाठ पढ़ा जाती है, यानी बातें नगमों की, वो भी बोलते हुए नगमों
0: की होगी।
1: जी
0: दोस्तों, आज ये जो नगमे गुनगुनाएंगे इस प्रोग्राम के साथ, उसमें दिन जो है फूल सा खिलेगा, कुछ दिन चढ़ेंगे और किसी न किसी वास्ते की बात करेंगे। कुछ बातें ऐसी हो सकती हैं जैसे कोई रिस्क सा महसूस होगा कि हाँ, ये रिस्क है क्या? या फिर
1: आंखों ही आंखों में कोई इशारे किए जाएंगे।
0: माय गॉड, मतलब ये जो क्लू है ना, आप संभाल कर रखिएगा कि क्या आपके मन में गाना कौन सा चला सूझा और हमारे गाने के साथ क्या वो मेल खाता है या नहीं।
1: नेहा जी, हम जब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और जो आपने क्लू दिया है, हमारे दोस्तों के दिमाग में बहुत कुछ आ रहा होगा, बहुत सारे गीतों ने हलचल मचानी शुरू कर दी होगी ना।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन बात थोड़ी सी और तवील करते चले हम कि बातें यहाँ मोहब्बत की हो रही है, और मोहब्बत की जब बात आती है तो हम सब जानते हैं कि बड़ा ही खूबसूरत सा जज्बा एक होता है। बहुत सारे शायरों ने बहुत सारे शेर, गजलें, रुबाइयां लिखी है, दीवान लिखे हैं बड़े बड़े, जिसमें कि मिर्ज़ा गालिब साहब कहते हैं कि मोहब्बत में नहीं है फ़र्क जीने और मरने का, उसी को देख कर जीते हैं जिस काफिर पे दम निकले।

0: सच में उसी को देख के दम निकले जिस काफिर पर दिल आता है ना। मिर्ज़ा गालिब साहब ने ये बात कब कही और ये बात आज भी ताज़ा तरीन है। हर मोहब्बत करने वाला दिल इस बात से वाकिफ होगा। डॉक्टर इरशाद कामिल को तो जानती होंगे आप।
1: जी बिल्कुल,
0: गीतकार भी हैं, कवि हृदय भी हैं। उन्होंने भी दो प्रेमी दिल को पढ़ा, देखा, जाना, सुना, तो क्या थोड़ा सा गुनगुनाते चलें?
1: बिल्कुल, दोस्तों तक साझा करते हैं।

0: वंदना जी, एक बात मुझे बड़ी समझ से परे लगी।
1: क्या?
0: कि इस गीत के जो बोल हैं वो पंजाबी हैं। आज दिन चढ़िया
1: जी,
0: और जो सीन दिख रहा है वो बिल्कुल बंगाली, मतलब जबान पंजाबी है, स्थान बंगाली है।
1: हाँ, स्थान बंगाली है,
0: है ना।
1: हाँ, और आप ये देखिए कि जो जिक्र हो रहा है
0: जी,
1: ये एक कहानी जो बुनी गई है, जिसे खुद ही लिखा है इम्तियाज अली ने, लव आजकल, यानी कि आजकल के जमाने में प्यार किस रूप में आता है और किस तरह से हम उसको पहले तो नकारते हैं और हमें ये लगता है कि सिर्फ ये टाइम पास वाली एक चीज है और वो लगावट नहीं दिखती, लेकिन जब किसी एक ऐसे व्यक्ति से भेंट होती है तब वहाँ पर वो चीज़ किस तरह से दिल में सरगोशियाँ पैदा करती हैं और दिल को धड़कने पर मजबूर करती हैं। बहुत ही शानदार गीत है, दिल के बहुत करीब गीत है। ये आगे बढ़ेगा, अरे जो लिसनर्स हैं वो भी इस गीत के साथ जुड़ते जाएंगे और अपनी जो खुद की कोई कहानी बुनी होगी, कही होगी, सुनाई होगी, किसी दिल तक पहुंचाई होगी, वो सब कुछ उनके सामने से गुजर जाएगा। तो चलिए, लुत्फ अंदोज होइए आप सब भी।

0: प्रीतम का संगीत दिल को छू लेने वाला। मुझे याद है जब इस गाने को मैंने पहली बार सिल्वर स्क्रीन पर देखा था तो सैफ अली खान साहब और दीपिका पादुकोण लोग उनके दीवाने होते दिखे थे मुझे। और इनकी सादगी, मुझे लगता है कि सिर्फ एक साधारण सा उन्होंने परिधान पहन रखा है, लेकिन जो भाव हैं वो इस तरह से बिखर रहे हैं कि मन करता है कि उस तिलस्म में हम कैद हो जाएं और एक खुशी बरस पड़ती है। जब वो कहते हैं तेनु दिल दवास्ता, वो सीधे रब से संवाद करते हैं कि देखो भाई रब, किसी को इन नज़रों ने पसंद कर लिया है और वो मुझे दिला दो, क्योंकि दिल दवास्ता है आपको, ये दिल की कसम है। तो सीधे ऊपर वाले से कसमें वादे लेना और देना, ये मुझे लगता है कि बड़ा करीबी मामला है ऊपर वाले से भी और जिस पर नजरें इनायत हुई हैं उससे भी।
1: और साथ ही साथ जो एक तरह से

0: चुनौती दी जा रही है खुदा को कि कैसा खुदा है तू, बस नाम का है तू। तो ये होता है ना कि दोनों जहां की दौलत मैं उस प्रेम पर वार दूंगा जिसे मैं प्यार करता हूँ, वो एक गहराई यहाँ पर वो बात एक आ रही है नेहा जी, वो भाव आ रहा है जो मन में खिलखिलाटे पैदा कर रहा है। और सब कुछ जैसे लगता है कि बहुत सारे जो वासंतिक रंग होते हैं, इंद्रधनुष जो बारिशों में खिलते हैं, वो सब दिल के जमीन पर, दिल के आसमान पर खिल उठे हों, बिखर उठे हों। तो
1: हम रुकते हैं, फिर से रुकें।

0: दोस्तों आप जरा इस गीत को देखें तो कहाँ से सैफ अली खान साहब मिलने के लिए ट्रेन का सफ़र करते हैं, वो भी जनरल डिब्बे में, और बैठे कहाँ हैं, बिल्कुल जो ऊपर वाली सीट होती है उस पर आलथी पालथी मार के बैठे हुए हैं और सफ़र करके मिलने जाते हैं और फिर उसी तरह से वापस लौटते हैं। उन्हें कोई तकलीफ़ नहीं है, बस सिर्फ एक झलक उनको मिलती है और उसी में वो अपने आप को इतना अमीर समझने लगते हैं। मतलब बहुत सुंदर, डॉक्टर इरशाद कामिल ने बहुत सुंदर तरीके से ये जो संवाद है ना रब से और उससे जिसे ये दिल पसंद करने लगा है, मुझे लगता है कि बैठकर रचा है उन्होंने, और तभी तो ये गाना हर किसी के हृदय और जहन में आ पसा। नहीं
1: जी बिल्कुल, बात है क्योंकि मोहब्बत की चल रही है नेहा जी, और मुंशी प्रेमचंद जी ने भी एक बात कही है मोहब्बत को लेकर ही
0: जी,
1: कि मोहब्बत रूह की खुराक है, ये वो अमृत बूंद है जो मरे हुए भावों को जिंदा करती है, ये जिंदगी की सबसे पाक, सबसे ऊंची और सबसे मुबारक बरकत है। तो देखिए ये बरकतें जो बरस रही हैं नगमों की शक्ल में, वहाँ पर एक और खूबसूरत सा नगमा दस्तक दे रहा है।
0: जी
1: तो चलिए थोड़ा सा इशारेबाजी की बातें यहाँ पर हो रही है, वो भी आंखों ही आंखों में कोई बात कही जा रही है, तो वो आंखों की जो बातें हैं उसको हम आंखों से पढ़ते हैं
0: जी।

जैसे ही गाना अभी हम लोग सुन रहे हैं रफ़ी साहब, आंखों ही आंखों में वो जो एक सादगी भी है, चुलबुलापन है और एक सहज भाव में बह लेना। देवरन साहब इतने हैंडसम शालीन दिख रहे हैं, उनको जब देखते हैं तो ऐसा लगता है नज़रें ठहर सी जाती हैं। और जब आप, हम लोगों ने पहले

0: भी देवानंद साहब का वो गाना किया था, आपको याद है, जिसमें कुतुब मीनार
1: बोलो
0: वाला सीन था?
1: अच्छा
0: कौन सा वाला बताइए?
1: फूल तुम गुलाब का क्या जवाब आपका,
0: आपका
1: जो अदा है वो बहार है,
0: है
1: प्यार का राग सुनो।
0: कुछ वैसा ही गाना। ऐसा लग रहा है कि एक ही जगह पे वो शूट हुआ और लोगों के दिलों पे छा गया। और ये गाना भी वैसा ही है जब शकीला जी साथ में होती हैं और कैमरा बहुत ज्यादा पैन नहीं होता है और कैमरे का वर्क इतना अच्छा है, एक जगह स्टैटिक है और देवानंद साहब और शकीला जी की जोड़ी और उनके एक्सप्रेशंस, मुझे लगता है कि आंखें जिस तरह से होठ अपनी बात कह जाते हैं। और उसमें ये लाइन भी कि बिखरे हैं बाल क्यों, चाल इतनी ये डगमग सी क्यों है, बहकी क्यों चाल है, हुआ क्या हुआ क्या।
1: देखिए नेहा जी, जानिसार अख्तर साहब ने इस गीत को लिखा है, वो एक
0: जी
1: शायर रहे हैं,
0: हाँ
1: और हमारे जो दोस्त हैं जो सुन रहे हैं इस प्रोग्राम को, वो जानते होंगे कि जानिसार अख्तर साहब का वास्ता जावेद अख्तर साहब से प्रगाढ़ है, क्योंकि वो उनके पिता हैं।
0: जी
1: तो देखिए, जो शायर जब कभी कुछ लिखता है तो उसकी बात ही बिल्कुल अलग हो जाती है, उसमें बहुत सारे मानी खेज रंग नज़र आने लगते हैं।

0: ये जो शकीला जी की शोखी है और गीता दत्त जी की बात हो रही थी, वो चुलबुलापन, बातों को सब समझना है लेकिन बात की जैसे शुरुआत हुई है उसके अंत आते आते तक उस सफ़र को बहुत खूबसूरत बनाना है, चुलबुलापन हो, उसमें थोड़ी सी शरारत हो, ऐसे ही तो कुछ भाव थे जानिसार साहब के। तो ज़रा देखिए कि कैसे वो जब इठलाती हैं, उन्होंने तो शायद देवानंद साहब की आंखों में कुछ पढ़ लिया था
1: है ना? या खुद को देख लिया।
0: ओ माई गॉड एक्चुअली।
1: लेकिन संगीत को भला कैसे भूल सकते हैं, ओपी नैयर साहब सदा बहार संगीतकार, पंजाबियत से भरपूर जो एक रिदम होती है उसमें ओपी नैयर साहब का कोई जवाब नहीं है। साथ ही साथ इस संगीत को जब हम सुन रहे हैं इस गीत में, तो नेहा जी बहुत सारे वाद्य यंत्र जब हमको सुनाई पड़ते हैं तो वहीं पर एक ऐसा वाद्य यंत्र हमें सुनाई पड़ रहा है इंटरल्यूड्स जब गाने के बीच में जब आते हैं, वो बताइए कौन सा है?
0: सच बात बताऊं मुझे नहीं पता चल रहा है।
1: सारंगी
0: जी।
1: तो ये बड़ा श्रेय दिया जाता है रोशन जी के बाद संगीतकार ओपी नैयर जी को कि उन्होंने सारंगी का इतना खूबसूरत प्रयोग किया है अपने गीतों में
0: जी,
1: जो कि लाजवाब बाकमाल रहा है। तो ये आगे जो बात गीता दत्त की, क्या आवाज है, रूह को छू जाती है, ऐसी मीठी बंगाली मिष्टी दोई की तरह जो आवाज है उसमें जब कोई बात कही जाती है, आहा, तो दिल जो है मीठेपन से भर उठता है।

0: मुझे इसमें जो शब्द बहुत अच्छे लगे वो जोर, कि दिल पे अब ना कोई जोर है, अब ना ही कोई शोर है, और
1: हमको
0: बहुत
1: है सब पता, दिल में
0: हाँ
1: जो चोर
0: चोर
1: है।
0: है, कुछ नाज की भी बात हो रही है। सच में जरा देखिए, जब किसी भी व्यक्ति के अंदर प्रेम के भाव पनपने लगते हैं और जब उमड़ने घुमड़ने लगते हैं, तो शायद उसे क्रोध छू भी नहीं पाता उस समय ना।
1: और नेहा जी, साथ ही साथ उसकी शख्सियत में पला का परिवर्तन आता है, कि जो कोई व्यक्ति देखने वाला, सूक्ष्मता से निहारने वाला हो, तो वो तुरंत जान जाएगा कि सामने वाले को प्यार हो गया है। उसकी चाल बदल जाती है, उसका नजरिया बदल जाता है, उसका बात करने का जो तरीका होता है वो बदल जाता है।
0: और वो जब कहते हैं ना कि बैठे बैठे जीने का सहारा मिल गया, ये बहुत बड़ी बात जानिसार साहब ने कही, कि जिसको ये सहारा मिल जाता है ज़िंदगी में, यकीन मानिए वो शायद ज़ीरो से सफ़र शुरू करता है और अपने आप को पाता है कि वो सिकंदर बन चुका है ना।
1: या फिर मोहब्बत से शुरू हुआ सफर इश्क की इंतहा को पार कर लेता है, जैसा कि इस गीत में सुनाई पड़ेगा दोस्तों, जो अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं।
2: शम्स की रामपुर मेरठ और इटावा से, संगीत है सोहेल सेन का, बोल है डॉक्टर इरशाद कामिल के। पेश करते हैं हर आशिक के दिल को कुरेदने वाला गाना, कैसा ये इश्क है

0: कई बार मुझे लगता है कि अपनी बात रखने में ये जो देशज बोली है वो ज़्यादा काम आती है,
1: सच कह रही
0: है ना
1: जी, बिल्कुल।
0: वो जब हम ऐसे तो कहते हैं इश्क, लेकिन इसमें है इश्क
1: जी,
0: रिस्क। शायद पहला गाना भी हम लोगों ने डॉक्टर इरशाद कामिल का लिया था, और ये वाला भी जो गीत है वो डॉक्टर इरशाद कामिल का ही लिखा हुआ है। वो जानते थे कि अगर इसमें ये पुट डाला जाएगा तो लोग इसको कैप्चर कर लेंगे, और हुआ भी कुछ वैसा ही।
1: और देखिए, जब ये शुरुआत ही होती है इसकी, तो रेडियो पे जो तमाम लिसनर होते हैं जो अपनी पसंद के गीत सुनना चाहते हैं, उनके नाम की उद्घोषणा के साथ ये गीत शुरुआत इसकी होती है, इस गीत की।
0: हाँ?
1: तो रेडियो कितना ज़रूरी है जीवन में
0: जी।
1: कि चलते फिरते जब हम कहीं से गुजर रहे होते हैं किसी रास्ते से और गीत जब सुनते हैं तो हमारे मन के जो उद्गार होते हैं वो उनसे मिल जाते हैं उस गीत से। और उसी रूप में जैसा भी हमारा, अगर हम बहुत दुखी हैं, परेशान हैं, और कोई हैप्पी सॉन्ग अगर आ रहा है, रेडियो पे बज रहा है, तो हमारा मूड थोड़ा सा चेंज होने लगता है, हम तरंगित होने लगते हैं।
0: हाँ बिल्कुल, ऐसा लगता है जैसे हमारी रूह ही हमसे बात कर रही हो और वो ये बात कह रही हो, कब तक रूठे रहोगे,
1: और देखिए
0: बैक टू लाइफ तो आना ही
1: जो
0: है
1: बिल्कुल
0: ना।
1: और देखिए, इरशाद कामिल साहब का तो आपने जिक्र किया, लेकिन संगीतकार इस बार चेंज है, बदले
0: हाँ।
1: हुए हैं, सोहेल सेन का संगीत है इसमें,
0: बहुत सुंदर,
1: बहुत ही खूबसूरत संगीत है।
0: एक बात वंदना जी, आपको रोकूंगी, माफ कीजिएगा सुधीर श्रोताओं, हम लोगों ने राहत फतेह अली खान साहब की आज दिन चढ़िया में भी बात नहीं कर पाए थे। और ये गीत भी राहत फतेह अली खान साहब ने गाया,
1: मेरे ब्रदर की दुल्हन, ये है फिल्म का नाम, और बहुत ही दिल को छू लेने वाला ये दिलकश नगमा है।

0: ये जब बात होती है कि ये जो दिलकश नगमा है और हम कह रहे हैं कि इतनी सुंदर स्टोरी लिखी गई और उस स्टोरी में एक बात है, कोई इसे कहता है कि भाई ये सोने जैसा है, कोई कहता है ना ये भाई बहुत दुख देता है, ये माटी है, कोई बोलता आ हाँ हाँ ये भैया दूर रहना है दरिया है कोई बोलता नहीं जी सहरा है। मुझे लगता है हर किसी के खट्टे मीठे अनुभव होते हैं ना।
1: इश्क को तो पहले ही कहा गया है एक आग का दरिया है और डूब कर जाना है।
0: ओह माय गॉड। अच्छा एक और बात, जब आप मुंशी प्रेमचंद साहब के भी कुछ लाइनें आपने कही
1: जी,
0: तो उसमें ये था ना कि मोहब्बत एक बरकत है और जिसको मिलता है वो खुशकिस्मत समझे अपने आप को। तो इन्होंने एक चीज लिखी कि भाई ये ऐसे मौके पर होता है जो रोके से नहीं रुक सकता। ये मौका कितना स्पेशल होता होगा, नहीं कोई चाहे अगर दिल में कोई छवि बसने लगी है, अगर उसको चाहे जाए कि नहीं ये छवि ना आए, तो आपके पास कंट्रोल बटन नहीं है
1: तो प्यार तो ऐसे ही होता है बिन बताए अतिथि की तरह, जिसकी कोई तिथि ना हो आने की वैसे ही आ जाता है और वो घर का सदस्य यानी दिल का सदस्य बनकर ऐसे बैठ जाता है जम के कि पूरा कब्जा ही कर लेता है दिल पर। हमारा कोई बस नहीं रहता, दिल हमारा होता है लेकिन अधिकार किसी और के पास, सुरक्षित है सब।

0: बिल्कुल बहुत सुंदर है। कैटरीना कैफ इसमें गुड़िया की तरह लग रही हैं और इमरान खान उनके आगे पीछे दूर से डोलते हुए, जिनको ये बात बहुत बाद में इसका पता चलता है कि असल में करने कुछ और चला था और हो कुछ और गया। और जब ये बात पता चलती है तो कैसे दूरी बनाई जाए, मुझे लगता है कि जितनी दूरी बनाई जाती है करीबियत का एहसास उतना अधिक होता है। और जब वो कहते हैं ना कि ये वो ऐसा भाव है कि आपसे कुछ भी करा सकता है, दिल में अगर कोई गांठ है तो वो गांठ भी खुल सकती है। वंदना जी, पहले मुझे इस बात का इतना भान नहीं था कि प्रेम में इतनी ताकत होती होगी कि ये दिल की कहानियों तक को बदल सकता है। मतलब ऊपर वाले ने इस भाव को मुझे लगता है सबसे प्रबल रूप में रखा है ना।
1: प्रेम ही तो एक ऐसा भाव है जिसके लिए देवता भी मनुष्य बनने के लिए धरती पर आना चाहते हैं, वो जन्म लेना चाहते हैं, क्योंकि ये इतना खूबसूरत जज्बा होता है। और आपने कहा ना कि जितनी दूरी होती है उतनी करीबियत महसूस की जाती है, तो दूरी में ही सबसे बड़ी सुंदरता पाई जाती है। और यही दूरी वाला जो एक रिश्ता है अनदेखा सा हमारा, हमारे दोस्तों के बीच भी है, जो बहुत ही करीबियत से महसूस हम करते हैं। और आज भी हमने इन तीनों गीतों के जरिए

0: उसे बहुत गर्मजोशी के साथ महसूस किया है, जिया है।
1: तो इन नगमों के जरिए हमारी कोशिश होती है कि हम आपको जीवन के करीब ले आएं, इतने करीब कि जो बात जहन में चल रही होती है उसको धरातल पर भी महसूस करिए, क्योंकि ये जीवन जो ऊपर वाले ने दिया है बहुत अनमोल है, बहुत ही प्यारा सा है। जब हम उसे पूरी हिम्मत के साथ जीना शुरू करते हैं ना, यकीन मानिए वो जो मोतियों की बारिश होती है सच में होती है, और महसूस होगी और उसका असर आपकी आंखों में दिखने लगेगा।
0: अभी तो असर दिखाई पड़ रहा है वक्त का, समय का। तो
1: नमस्कार,
0: अभी समय हो चला है इजाजत लेने का, तो हम अपने दोस्तों से लेते हैं विदा। नमस्कार,
2: बोलते नगमे। अभी आप सुन रहे थे हमारा विशेष कार्यक्रम बोलते नगमे। वाचन स्वर थे नेहा गुप्ता और वंदना राठौर के, प्रस्तुति नेहा गुप्ता की थी। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्स पर। हमारा अगला प्रसारण बस थोड़ी ही देर में होगा, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

अब आप मुकेश कुमार से संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले राज्यसभा, लेखिका हैं पीटीआई भाषा की मनीषा श्रीवास्तव। संसद ने आज राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी। इसमें राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम एनसीडीसी के अधिकार क्षेत्र का विस्तार करने का प्रावधान है। राज्यसभा ने विधेयक पर हुई चर्चा पर सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल के जवाब के बाद इसे ध्वनिमत से पारित कर दिया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। उच्च सदन में विधेयक पर विपक्ष द्वारा पेश संशोधनों को खारिज कर दिया गया। एक बार स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे सदन की बैठक फिर शुरू होने पर विधेयक पेश किया गया। विधेयक पर चर्चा शुरू होने से पहले नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस बात पर आपत्ति जताई कि इस विधेयक पर चर्चा के समय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह सदन में उपस्थित नहीं हैं। हालांकि उपसभापति ने उनकी ये आपत्ति खारिज कर दी। बाद में कांग्रेस सहित कई विपक्षी सदस्य विभिन्न मुद्दों पर विरोध जताते हुए सदन से बाहर चले गए। विधेयक पर हुई चर्चा का उत्तर देते हुए सहकारिता राज्य मंत्री मोहोल ने कहा कि एनसीडीसी को सहकारिता क्षेत्र में प्रौद्योगिकी और अन्य बदलावों के अनुरूप बनाने और भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए इस विधेयक में कई प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र ने सहकारिता क्षेत्र में कानून बनाने के लिए सदैव राज्यों की सरकारों से सुझाव लिए हैं और किसी भी राज्य के साथ भेदभाव नहीं किया गया है। विधेयक के अंतर्गत एनसीडीसी को सहकारी समितियों या इस क्षेत्र के विकास में लगी किसी भी इकाई को सीधे ऋण और अनुदान देने का अधिकार मिल सकेगा। सहकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले एनसीडीसी एक वैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 1963 में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम 1962 के अंतर्गत की गई थी। चर्चा में बीजू जनता दल की सोलता देव, डीएम के सदस्य के आर एन राजेश कुमार, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राजेंद्र हीरालाल जैन, बीआरएस के रविचंद्र वद्दी राजू, भारतीय जनता पार्टी के रामराव सखाराम वडकुते, अमरपाल मौर्य, सदानंद महालू शेठ तानवड़े, बंशीलाल गुर्जर, डॉक्टर अलका गुर्जर, एआईएडीएम के सदस्य एम थंबीदुराई, डॉक्टर एन धनपाल, यूपीपीएल के प्रमोद बोरो, शिवसेना की ज्योति नागनाथ बागमारे, टीडीपी के विजय चिंता कायला, जनता दल यूनाइटेड के संजय कुमार झा, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के गोल्ला बाबू राव ने भी हिस्सा लिया। विधेयक के पारित होने के बाद उच्च सदन में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 को चर्चा करने और पारित करने के लिए लिया गया। विधेयक पर हुई चर्चा के बाद इसे ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। इससे पहले विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि केरल की 15वीं विधानसभा ने 14 जून 2024 को संकल्प पारित कर केंद्र सरकार से अपील की थी कि संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार राज्य का नाम बदलकर केरलम करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाए। इससे पहले विधेयक पर

चर्चा में केरल के सदस्यों ने अपनी बात मलयालम में रखी तथा केरल की संस्कृति की सराहना करते हुए इसे भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग बताया। कई सदस्यों ने ध्यान दिलाया कि यह कदम राज्य के लोगों की इच्छा के अनुरूप उठाया जा रहा है। चर्चा में भारतीय जनता पार्टी के तरुण चुग, सुधांशु त्रिवेदी, लहर सिंह सरोया, कांग्रेस की जेबी माथेर हिशम, मनोनीत सदस्य सी सदानंद मास्टर, तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओब्रायन, डीएमके के तिरुचि शिवा, बीजू जनता दल के सुभाशीष खुंटिया, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के गोल्ला बाबू राय, एआईएडीएमके सदस्य एम थंबीदुराई, शिवसेना की ज्योति नागराज बागमारे, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राजेंद्र हीरालाल जैन, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, आरएलएम के उपेंद्र कुशवाहा, बीआरएस के रविचंद्र बद्दीराजू, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के वी शिवदासन और ए रहीम, टीडीपी के विजय चिंता कायला, केसीएम सदस्य जोस के मणि, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सदस्य संतोष कुमार पी, आईयूएमएल के हारिस बीरन, यूपीपीएल के रवंगवरा नारजारी और डीएमके सदस्य एल के सुधीश ने भी भाग लिया। संविधान के अनुच्छेद 3 में मौजूदा राज्यों के नाम परिवर्तन का प्रावधान है। अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद कानून द्वारा किसी भी राज्य का नाम बदल सकती है। इस विधेयक के पारित होने के बाद सदन की बैठक कल सवेरे 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। उच्च सदन में दोनों विधेयकों को पेश करने से पहले भारतीय जनता पार्टी की सुष्मिता देव ने कहा कि उन्होंने किसी राज्य की वेशभूषा पर कोई टिप्पणी नहीं की है और राज्यसभा से ऐसा कोई संदेश नहीं जाना चाहिए जिससे भारत को सांस्कृतिक या धार्मिक आधार पर बांटने की भावना पैदा हो। ये स्पष्टीकरण उन्होंने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद जॉन ब्रिटास के उस आरोप के सिलसिले में दी जिसमें उन्होंने कहा था कि सोमवार को सदन की कार्यवाही के दौरान भारतीय जनता पार्टी सदस्य ने उन्हें बार बार लुंगी वाला कहा था। सवेरे 11 बजे राज्यसभा की बैठक शुरू होने पर इस मुद्दे को लेकर हंगामा हुआ था। इसके बाद सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी थी। सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे फिर शुरू होने पर सुष्मिता देव ने अपना पक्ष रखा। सदन के नेता जगत प्रकाश नड्डा ने दोनों सांसदों के बीच पैदा हुई गलतफहमी को दूर करने की पेशकश की। इससे पहले दिन की कार्यवाही शुरू होने के बाद सूचीबद्ध दस्तावेज सदन के पटल पर रखे जाने के तुरंत बाद ब्रिटास ने ये मुद्दा उठाया। उन्होंने नाम लिए बिना कहा कि भाजपा के एक सदस्य ने उन्हें कथित तौर पर लुंगी वाला कहकर निशाना बनाया। विपक्षी सदस्यों ने ब्रिटास का समर्थन किया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि जब ये कथित घटना हुई थी तब वो सदन में मौजूद थे। उन्होंने सभापति से अनुरोध किया कि वो संबद्ध सदस्यों को अपने कक्ष में बुलाएं और उनकी बात सुनकर समाधान निकालें। सभापति राधाकृष्णन ने कहा कि सदन में एक सदस्य द्वारा दूसरे सदस्य के खिलाफ कथित अमर्यादित टिप्पणी करने का मामला उनके संज्ञान में आया है। उन्होंने कहा कि सदस्यों को टिप्पणियां करते समय ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि किसी की भावनाएं आहत ना हो। उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति अनूठी है और विविधता में एकता हमारी विशेषता है जो बनी रहनी चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी की संस्कृति को लेकर कोई भी आहत करने वाली बात कहना ठीक नहीं है। सभापति ने कहा कि वो संबंधित सांसदों को अपने कक्ष में बुलाकर इस मामले पर चर्चा करेंगे। सदन में सुष्मिता देव मौजूद थीं। इस बीच कांग्रेस सहित कुछ विपक्षी सांसदों ने नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने का अवसर देने की मांग की। उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर के लिए दिए गए चंदे की कथित चोरी को लेकर नारेबाजी की। हंगामे के बीच सभापति राधाकृष्णन ने 12:20 पर सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। अब आप सुनिए लोकसभा में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के वैभव महेश्वरी। लोकसभा में आज विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही 2 बार के स्थगन के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। वहीं सदन में हंगामे के बीच ही खान और खनिजों से संबंधित एक विधेयक पारित कर दिया गया और एफसीआरए विधेयक को विस्तृत समीक्षा के लिए संसद की संयुक्त समिति को भेजने को मंजूरी दी गई। अयोध्या राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर चर्चा और दिल्ली में प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण कार्यवाही पूर्वाह्न 11 बजे शुरू होने के कुछ मिनट के भीतर अपराह्न 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। इससे पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हंगामा कर रहे विपक्षी सदस्यों से सदन की कार्यवाही और प्रश्नकाल चलाने में सहयोग का आग्रह करते हुए कहा
कि नीतियों और विचारों में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन देश

सदन चलते हुए देखना चाहता है। श्री ओम बिरला ने आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस होने का उल्लेख करते हुए कहा कि देश का युवा भी चाहता है कि उनके विषयों पर चर्चा हो, छात्रों के मुद्दों पर चर्चा हो। अध्यक्ष ने कहा कि सरकार ने छात्रों के मुद्दे पर चर्चा के लिए सहमति दे दी है। गृह मंत्री भी अपना वक्तव्य देने को तैयार हैं। उन्होंने आसन के समीप हंगामा कर रहे सदस्यों से कहा कि देश की भावनाओं को समझना चाहिए, देश चाहता है कि संसद चले। उन्होंने विपक्षी सांसदों से अपील की कि प्रश्नकाल चलने दें, इसके बाद सभी को अपनी बात रखने का अवसर दिया जाएगा। दोपहर 2 बजे बैठक फिर शुरू होने पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन FCRA विधेयक 2026 को संसद की संयुक्त समिति के पास भेजने का प्रस्ताव रखा। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और DMK ने विधेयक को अल्पसंख्यकों के खिलाफ बताते हुए इसे वापस लेने की मांग की। सरकार ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि इस विधेयक में एक भी प्रावधान अल्पसंख्यकों के खिलाफ नहीं है तथा ये सिर्फ देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। विधेयक का विरोध करते हुए कांग्रेस सांसद KC वेणुगोपाल ने आरोप लगाया कि विधेयक गैर सरकारी संगठनों और अल्पसंख्यक संस्थानों को निशाना बनाने के लिए लाया गया है। उन्होंने विधेयक को वापस लेने की मांग की। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने FCRA विधेयक को अल्पसंख्यकों के खिलाफ बताते हुए तंज कसा कि यह सरकार आज तक ऐसा कौन सा विधेयक लाई है जो अल्पसंख्यकों के खिलाफ नहीं है। DMK नेता TR बालू ने भी विधेयक को वापस लेने की मांग की। अल्पसंख्यक और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि इस विधेयक में ऐसा एक भी प्रावधान नहीं है जो अल्पसंख्यकों या किसी भी समुदाय के खिलाफ हो। उन्होंने कहा कि किसी भी समुदाय को निशाना बनाने का सवाल नहीं उठता। श्री रिजिजू का कहना था कि कांग्रेस और कई विपक्षी दलों ने खुद मांग की थी कि विधेयक को संयुक्त समिति को भेजा जाए और अब जब इसे भेजा जा रहा है तो इस पर आपत्ति क्यों है। उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष को विधेयक के किसी बिंदु का विरोध करना है तो वो संयुक्त समिति के समक्ष अपनी बात रख सकते हैं। मंत्री ने आरोप लगाया कि विपक्ष कुछ समुदायों को गुमराह करने का प्रयास कर रहा है। इसके बाद सदन ने विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच विधेयक को संयुक्त समिति को भेजने के प्रस्ताव को ध्वनिमत से मंजूरी दे दी। नियम के अनुसार इस संयुक्त समिति में 31 सदस्य होंगे। इनमें लोकसभा से 21 और राज्यसभा से 10 सदस्य शामिल होंगे। प्रस्ताव में कहा गया है कि समिति इस वर्ष शीतकालीन सत्र से पहले सप्ताह में लोकसभा को रिपोर्ट सौंपेगी। हंगामे के बीच पीठासीन सभापति जगदंबिका पाल ने अपराह्न 2:27 पर सदन की बैठक 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 3 बजे बैठक फिर शुरू होने पर केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने विपक्षी सदस्यों के विरोध के बीच खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को सदन में चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया। विपक्षी सदस्य अयोध्या के राम मंदिर से चढ़ावे की कथित चोरी पर चर्चा और प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई पर गृह मंत्री अमित शाह के जवाब की मांग को लेकर नारेबाजी कर रहे थे। इसके साथ ही कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और DMK सदस्य विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन FCRA विधेयक 2026 वापस लेने की मांग करते हुए भी हंगामा करते रहे। RSP के NK प्रेमचंद्रन ने खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2026 का विरोध करते हुए कहा कि संविधान और संघीय ढांचे के खिलाफ है। हालांकि सदन के हंगामे के बीच ही बिना चर्चा के विधेयक ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। वहीं संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कुछ विपक्षी सदस्यों के प्रदर्शन के तरीके की इशारा करते हुए आसन से मांग की कि विपक्ष के वरिष्ठ साथियों को अनुशासन के साथ प्रदर्शन करने के लिए समझाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अनुशासनहीनता सही नहीं है। विपक्ष के सदस्य अपनी सीटों पर चले जाएं तो हम विद्यार्थियों के मुद्दे पर अभी चर्चा शुरू करने को तैयार हैं। 80% सदस्य चर्चा चाहते हैं। रिजिजू ने बताया कि गृह मंत्री अमित शाह ने आज एक पत्र लिखकर लोकसभा अध्यक्ष से फिर से अनुरोध किया है। नीट परीक्षा को लेकर छात्रों का जो आंदोलन हुआ है उस पर तत्काल चर्चा शुरू करने के लिए सरकार तैयार है, बशर्ते विपक्ष के सदस्य शांति से बैठें। पीठासीन सभापति जगदंबिका पाल ने कहा, सरकार इसके लिए तैयार है कि इस चर्चा को तत्काल प्रारंभ किया जाए। आपकी मांग थी कि गृह मंत्री इस पर जवाब दें। सरकार चर्चा के लिए तैयार है। गृह मंत्री हर बिंदु पर जवाब देने के लिए तैयार हैं। हंगामा नहीं थमने पर सदन की कार्यवाही 3:15 पर दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। संसद के मानसून सत्र की शुरुआत 20 जुलाई को हुई थी और पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कल इसका अंतिम कार्य दिवस है। राम मंदिर, चढ़ावा चोरी और छात्रों पर पुलिस कार्रवाई समेत विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण पूरे सत्र में सदन में गतिरोध बना रहा और अब तक एक

भी दिन प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं चलाए। निचले सदन ने पिछले कुछ दिनों में हंगामे के बीच ही कुछ विधेयकों को ध्वनिमत से मंजूरी दी है। इस बीच इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच करने वाली समिति की रिपोर्ट आज लोकसभा में पेश की गई। न्यायमूर्ति वर्मा के आधिकारिक आवास से कथित तौर पर नोटों की अधजली गड्डियां मिलने के मामले में उन्हें पद से हटाने की कार्यवाही शुरू की गई थी। उस समय वो दिल्ली उच्च न्यायालय में कार्यरत थे। लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह ने जांच समिति की दो खंडों वाली रिपोर्ट लोकसभा

0: उन्हें पद से हटाने की कार्यवाही शुरू की गई थी। उस समय वो दिल्ली उच्च न्यायालय में कार्यरत थे। लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह ने जांच समिति की दो खंडों वाली रिपोर्ट लोकसभा के पटल पर रखी। अभी आप संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
1: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं चित्रपट संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं फिल्म जमाना दीवाना के गाने से। इसे गाया है उदित नारायण और सपना अवस्थी ने। गीत के बोल लिखे हैं समीर ने और धुन बनाई है नदीम श्रवण ने।

कार्यक्रम का अंतिम गीत फिल्म डेंजरस इश्क से, आवाज़ें राहत फ़तेह अली खां और तुलसी कुमार की, शब्द रचना शब्बीर अहमद की, धुन बनाई हिमेश रेशमिया ने। आइए सुनते हैं।

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सबरस।

तलत अजीज़ के गाए इस गीत के साथ ही सबरस कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। हमारा अगला प्रसारण दिल्ली केंद्र से होगा, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। संसद ने सहकारी क्षेत्र के वित्त पोषण और विकास को बढ़ावा देने वाला विधेयक पारित किया। केरल का नाम बदलकर केरलम करने वाले विधेयक को भी मंजूरी। लोकसभा ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को आगे की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा वे नीट पेपर लीक से संबंधित मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने वैश्विक विकास के लिए ब्रिक्स देशों की अर्थव्यवस्थाओं में निजी पूंजी जुटाने का आह्वान किया। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव के क्षेत्र के कारण अगले दो दिन तक ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र में मूसलाधार बारिश की संभावना। और नाइजीरिया में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप के तीसरे दिन भारत ने 3 स्वर्ण सहित 5 पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। संसद ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने आज इसे मंजूरी दी। लोकसभा पहले ही इसे पारित कर चुकी है। ये विधेयक राज्य सरकारों को सहकारी विकास में लगी किसी भी संस्था को निगम से निधि प्रदान करने की अनुमति देता है। सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने कहा कि विधेयक के माध्यम से देश भर के करोड़ों किसानों के कल्याण और आर्थिक सशक्तिकरण को मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की स्थापना देश में सहकारी क्षेत्र के संगठित और सतत विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी।
2: सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के बाद माननीय उपसभापति महोदय पिछले 5 वर्षों में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। लगभग 3000 करोड़ रुपए की लागत से देश की 80,000 पैक्स को कंप्यूटराइजेशन किया जा रहा है। हमारे छोटे छोटे गांव के पैक्स को सक्षम बनाने के लिए पैक्स के मॉडल बायलॉज बना दिए गए और मुझे खुशी है कि देश के सभी राज्यों ने इस मॉडल बायलॉज को अडॉप्ट किया।
1: संसद ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 को पारित कर दिया है। राज्यसभा ने आज इसे मंजूरी दी। लोकसभा ने इसे कल पारित किया था। विधेयक का उद्देश्य संविधान की प्रथम अनुसूची में केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करना है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि केरल विधानसभा ने 2024 में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से राज्य का नाम केरल से बदलकर केरलम करने का अनुरोध किया था, क्योंकि मलयालम में राज्य का नाम केरलम है जबकि संविधान में इसे केरल लिखा गया है। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को व्यापक विचार के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया गया है। संसद के दोनों सदनों ने आज विधेयक संसदीय समिति को भेजने को मंजूरी दी। इस विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में संशोधन करना तथा विदेशी अंशदान के उपयोग को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है। लोकसभा ने

0: और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य भारत के खनन क्षेत्र को अधिक कुशल, निवेश अनुकूल और देश में महत्वपूर्ण खनिजों की बढ़ती मांग पूरा करने के लिए तैयार करना है। विधेयक बिना चर्चा के पारित कर दिया गया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के मुद्दे सहित किसी भी विषय पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है। संसद परिसर में श्री शाह ने कहा कि सरकार संसद में सदस्यों के सभी सवालों का जवाब देगी। श्री शाह ने आरोप लगाया कि विपक्ष सदन की कार्यवाही नहीं चलने दे रहा है।
1: विपक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है दोनों गृहों में, तो कोई जाकर क्या करेगा। जहां तक चर्चा का सवाल है, सरकार की ओर से किरण रिजिजू जी ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि जो नीट आंदोलन के छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए।
0: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर एक बार फिर कहा है कि वे विभिन्न घटनाओं पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार हैं।
2: सरकार डिस्कशन चाहते हैं पार्लियामेंट में और ओपोजिशन भाग रहे हैं, ये कल्पना करना मुश्किल है, क्योंकि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ओपोजिशन पार्टी डिस्कशन के लिए डिमांड करते हैं और सरकार जवाब देते हैं। यहाँ तो सरकार खुद ही कह रहे हैं कि हम डिस्कशन करेंगे, जवाब देंगे, और ओपोजिशन जवाब सुनने नहीं चाहते और भाग रहे हैं। ऐसा परिस्थिति आप कल्पना कर सकते हैं? लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।
0: केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने संसद में चर्चा को लेकर विपक्ष पर बार बार अपना रुख बदलने का आरोप लगाया है।
3: विपक्ष पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुका है। इस सत्र के शुरुआत से ही सरकार लगातार बातचीत कर रही है। पहले वो चर्चा डिमांड करते हैं, चर्चा के लिए सरकार तैयार होती है तो अपना स्टैंड बदल देते हैं। बार बार उनके रवैये में इस प्रकार का बदलाव ये स्पष्ट करता है कि राहुल गांधी समेत पूरा विपक्ष विषयहीन है, सदन चलने नहीं देना है।
0: उधर विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष नीट प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर सरकार से जवाबदेही तय करने की मांग कर रहा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि सार्वजनिक पूंजी को निजी निवेश के विकल्प के रूप में नहीं बल्कि उसके लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना चाहिए। जयपुर में ब्रिक्स सदस्य देशों में निजी पूंजी जुटाने में न्यू डेवलपमेंट बैंक की भूमिका पर आयोजित एक सेमिनार में उन्होंने ये बात कही। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि ब्रिक्स अर्थव्यवस्थाएं वैश्विक विकास के प्रमुख इंजनों में से हैं, लेकिन निजी पूंजी आकर्षित करना अभी भी एक बड़ी चुनौती है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय कारोबारियों और नागरिकों से निष्पक्ष व्यापार पद्धतियां अपनाने और पुनः उपयोग को बढ़ावा देने का आग्रह किया। श्री गोयल ने भारतीय उत्पादों और सेवाओं को वैश्विक बाजारों में ले जाते समय चक्रीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने का आग्रह भी किया। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि नौ मुक्त व्यापार समझौतों के माध्यम से भारतीय उद्योग और व्यवसायों के लिए बाजार खोले गए हैं।
4: भारत में उभरती हुई ताकत आज पूरी दुनिया देख रही है। पूरी दुनिया भारत के साथ व्यापारिक संबंध बढ़ाना चाहती है। पूरी दुनिया के ध्यान में आ गया है कि ये $4 trillion की आज की इकोनॉमी 2047 में जब हम 100 वर्ष आजादी के बनाएंगे तब ये $30 trillion की इकोनॉमी कम से कम बन जाने वाली।
0: आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि एक जड़ी बूटी एक मानक पहल का उद्देश्य पारंपरिक औषधियों की गुणवत्ता और विश्वसनीयता मजबूत करना है। नई दिल्ली में श्री जाधव ने कहा कि ये पहल भारत की समृद्ध जैव विविधता और पारंपरिक चिकित्सा विरासत की रक्षा में सहयोग देगी। इस बीच आयुष मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव की अध्यक्षता में हिंदी सलाहकार समिति की तीसरी बैठक आयोजित की। श्री जाधव ने कहा कि ये समिति हिंदी के उपयोग और प्रचार को मजबूत करने और इसे जन कल्याण तथा संचार का एक प्रभावी माध्यम बनाने के लिए महत्वपूर्ण मंच है। रेल मंत्रालय ने पश्चिमी रेलवे के गैरतपुर अहमदाबाद खंड पर 4 लेन वाले रोड ओवर ब्रिज के निर्माण के लिए 153 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी है। ये परियोजना पश्चिमी रेलवे के मौजूदा जारी रोड ओवर और अंडरब्रिज फुट

0: ओवरब्रिज जल निकासी व्यवस्था में सुधार और पुनर्निर्माण कार्यों के अंतर्गत स्वीकृत की गई है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि देश में लगभग 440 अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्टार्टअप पंजीकृत हैं। लोकसभा में एक लिखित उत्तर देते हुए डॉक्टर सिंह ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र ने 52 गैर सरकारी संस्थाओं को विभिन्न अंतरिक्ष गतिविधियों के लिए 113 अधिकार पत्र प्रदान किए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसे लेकर लोगों में व्यापक उत्साह भी देखा जा रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को रवाना किया। छत्तीसगढ़ के आदिवासी बहुल और माओवाद से अत्यधिक प्रभावित रहे बस्तर इलाके में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यात्रा में बड़ी संख्या में युवा शामिल हुए।
1: छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके में शांति, एकता और राष्ट्र निर्माण का संदेश लेकर आज से तिरंगा यात्रा शुरू हुई है। इस यात्रा का नेतृत्व छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा कर रहे हैं। यह यात्रा बस्तर के दुर्गम और आदिवासी इलाकों से होकर गुजरेगी। विशेष तौर पर यह यात्रा उन क्षेत्रों से होकर गुजरेगी जहां पूर्व में माओवादियों ने बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया था। 3 दिनों तक चलने वाली यह यात्रा 14 अगस्त शुक्रवार को पुर जिले के कर्रेगुट्टा पहाड़ी पर पहुंचकर संपन्न होगी। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
0: जम्मू कश्मीर में रियासी जिले में चिनाब नदी में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। हरियाणा के भिवानी में शहीद मदन लाल ढींगरा स्मारक से एक विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। महाराष्ट्र में देशभक्ति रैलियां, सांस्कृतिक कार्यक्रम और अन्य गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान देशभक्ति, राष्ट्रीय चेतना और स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति सम्मान का प्रतीक है। मिजोरम में दोपहिया वाहनों की एक रैली का आयोजन किया गया। मौसम विभाग ने अगले 12 घंटों में उत्तरी बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना व्यक्त की है। इसके कारण कल ओडिशा और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में मूसलाधार बारिश होने की आशंका है। इसके अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिम बंगाल और उससे सटे बांग्लादेश के तटों से होते हुए उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है। मुंबई में आज घाटकोपर पश्चिम के चिराग नगर स्थित एक चौल में भूस्खलन होने से 7 लोगों की मौत हो गई और 7 अन्य घायल हो गए। सुबह एक छोटी पहाड़ी से मिट्टी और मलबा चौल के 2 से 3 कमरों पर गिर गया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने आज कक्षा 12 की पूरक परीक्षा 2026 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। छात्र अपना परिणाम डिजी लॉकर रिजल्ट पोर्टल results.digilocker.gov.in पर देख सकते हैं। जेपीएससी और जेएसएससी सहित प्रदेश की अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर रांची में विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन 19वें दिन भी जारी है। विपक्ष के नेताओं ने भी प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों को अपना समर्थन दिया है। आज हरियाली अमावस्या के अवसर पर 31 राज्यों में 50,000 से अधिक पौधे लगाए गए। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हरियाली अमावस्या प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है। दुनिया के कई हिस्सों में आज महत्वपूर्ण खगोलीय घटना पूर्ण सूर्य ग्रहण होने जा रहा है। ये सूर्य ग्रहण उत्तरी ग्रीनलैंड, आइसलैंड, उत्तरी रूस, अटलांटिक महासागर, स्पेन और पुर्तगाल के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा। बेंगलुरु स्थित रमन अनुसंधान संस्थान ने सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य की जटिल चुंबकीय संरचना का अध्ययन करने की व्यवस्था की है। भारत से दिखाई न देने वाला ये पूर्ण सूर्य ग्रहण रात 9:04 पर शुरू होगा और चंद्रमा की छाया सूर्य को 2:18 तक ढक कर रखेगी। नाइजीरिया में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी प्रतियोगिता के 3रे दिन भारत ने 3 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीता। कनाग लक्ष्मी, राजेंद्रन, शांति मोल शेरजिन और सिंह करण सिंह ने स्वर्ण पदक हासिल किए। वहीं जॉयस आशिता ने रजत और कुमारीशन पद्मा गीशो निधि ने कांस्य पदक अपने नाम किया। प्रतियोगिता में भारत ने 8 स्वर्ण, 7 रजत और 14 कांस्य सहित कुल 29 पदक जीत लिए हैं।

0: Mr. Amit Shah says he is ready for detailed discussion on any AT paper leak related issue, writes letter to Lok Sabha Speaker. Finance Minister Nirmala Sitharaman calls for greater private capital mobilization in BRICS economies for global growth. Heavy to extremely heavy rainfall likely over parts of Odisha and Gangetic West Bengal for next 2 days as low pressure forms over Bay of Bengal. That is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है खबरों के साथ, मैं मोहम्मद अम्मार। पार्लियामेंट ने इमदाद बाहमी शोबे के लिए सरमाए की फराहमी और इसके फरोग से मुतालिक बिल को मंजूरी दे दी है। केरला रियासत का नाम बदलकर केरलम रखने से मुतालिक बिल को भी मंजूर कर लिया गया है। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों ने गैर मुल्की अतियात को मुंजबित करने से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 को मजीद जांच के लिए मुशरका पार्लिमानी कमेटी को भेजने की मंजूरी दे दी है। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि वो नीट पेपर लीक से मुतालिक मामले पर तफसीली बहस के लिए तैयार हैं। उन्होंने लोकसभा स्पीकर को एक मुरासला तहरीर किया है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने आलमी सतह पर तरक्की की खातिर ब्रिक्स मुल्कों की मईशतों में और ज्यादा प्राइवेट सरमाए पर जोर दिया है। खलीज बंगाल के ऊपर हवा के कम दबाव का हल्का बनने के तनाजुर में उड़ीसा और गंगा के तराई वाले मगरबी बंगाल के बाज़ हिस्सों में अगले 2 दिन के दौरान शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश होने का इम्कान है। और नाइजीरिया में दौलत मुशरका चैंपियनशिप के 3rd दिन भारत की फेंसिंग टीम ने सोने के 3 तमगों समेत 5 तमगे जीते। अब खबरें तफसील से। पार्लियामेंट ने कौमी इमदाद बाहमी तरक्याती कॉरपोरेशन तरमीमी बिल 2026 को मंजूरी दे दी है। राज्यसभा ने आज इसे मंजूर कर लिया। लोकसभा इस बिल को पहले ही पास कर चुकी है। इमदाद बाहमी के महकमे के वजीर ममलकत मुरलीधर मोहन ने यह बिल पेश किया जिसका मकसद कौमी इमदाद बाहमी तरक्याती कॉरपोरेशन से मुतालिक 1962 के एक्ट में मजीद तरमीम करना है। मजकूरा बिल के तहत कॉरपोरेशन को सनती सामान के शोबे में भी अपनी सरगर्मियां अंजाम देने की इजाज़त होगी। मजकूरा बिल की रूह से रियासती सरकारों को कॉरपोरेशन से सरमाया हासिल करके इमदाद बाहमी के फरोग में शामिल किसी भी इदारे को देने की इजाज़त होगी। इसके अलावा ये कॉरपोरेशन इमदाद बाहमी की तरक्की में शामिल किसी भी इदारे या इमदाद बाहमी से मुतालिक किसी भी सोसाइटी को बराह रास्त कर्जे और ग्रांट भी फराहम कर सकती है। लोकसभा ने कानों और मादनियात के फरोग और इन्हें मुंजबित करने से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 को मंजूरी दे दी है। आज दूसरी बार कार्रवाई मुलतवी होने के बाद जब से पहर 3 बजे ऐवान की कार्रवाई फिर शुरू हुई तो कोयले और कानों के महकमे के मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने कानों और मादनियात के फरोग और उन्हें मुंजबित करने से मुतालिक 1957 के एक्ट में मजीद तरमीम की खातिर बिल पेश किया। मजकूरा बिल का मकसद भारत के कानकनी शोबे को और ज्यादा मुअसर सरमायाकारी के लिए साजगार और अहम मादनियात की मुल्क की बढ़ती हुई मांग पूरी करने के लिए तैयार करना है। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों ने गैर मुल्की अतियात को मुंजबित करने से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 को मजीद जांच के लिए मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी JPC के सपुर्द करने के लिए मंजूरी दे दी है। मजकूरा बिल का मकसद गैर मुल्की अतियात को मुंजबित करने से मुतालिक 2010 के एक्ट में मजीद तरमीम करना है। इस बिल का मकसद गैर मुल्की अतियात के इस्तेमाल को और ज्यादा शफाफ और जवाबदेह बनाना है। उमूर दाखिला के वजीर ममलकत नित्यानंद राय ने यह बिल वसी तर सलाह मशवरे के लिए JPC के पास भेजने के लिए लोकसभा में एक तहरीक पेश की। JPC दोनों ऐवानों के अरकान पर मुश्तमिल होगी। इस कमेटी में लोकसभा के 21 अरकान होंगे जिन्हें स्पीकर मौसूफ नामजद करेंगे। इसके अलावा राज्यसभा से 10 अरकान भी हैं इसमें शामिल होंगे जिन्हें चेयरमैन नामजद करेंगे। ये कमेटी अपनी रिपोर्ट मौसम सरमा के इजलास के पहले हफ्ते के आखिरी दिन ऐवान में पेश कर देगी। इधर राज्यसभा ने भी गैर मुल्की अतियात को मुंजबित करने से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 पर गौर व खौज की खातिर मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के लिए अपने 10 अरकान को नामजद करने की तहरीक मंजूर कर ली है। पार्लियामेंट ने केरला के नाम को तब्दील करने से मुतालिक बिल 2026 को भी मंजूर कर लिया है। राज्यसभा ने आज इसकी मंजूरी दी। लोकसभा ने कल इस बिल को पास किया था। मजकूरा बिल का मकसद आईन के पहले शेड्यूल में रियासत केरला का नाम तब्दील करके केरलम करना है। बिल पर बहस का

0: जवाब देते हुए उमूर दाखला के वजीर ममलकत नित्यानंद राय ने कहा कि केरला कानून साज असम्बली ने 2024 में एक करारदाद मंजूर करके मरकज से रियासत का नाम तब्दील करने की दरख्वास्त की थी। उन्होंने कहा कि यह दरख्वास्त इसलिए की गई क्योंकि मलयालम जबान में रियासत का नाम केरलम है जबकि आईन में इसे केरला तहरीर किया गया है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: मुख्तलिफ मामलात पर अपोजिशन की हंगामा आरई के तनाजुर में पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई एक बार फिर मुतासिर हुई। शोरगुल की वजह से आज दोनों ऐवानों में सवालात का वक्फा नहीं हो सका। लोकसभा में वक्फा सिफर भी नहीं हो सका जबकि राज्यसभा में यह मुख्तसर मुद्दत के लिए हुआ। हुकूमत की जानिब से यह यकीन दहानी कराए जाने के बावजूद कि वो उठाए गए मसाइल पर तफसीली बहस और जवाब देने के लिए तैयार है, कांग्रेस समेत अपोजिशन पार्टियों ने नारेबाजी जारी रखी। अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असगर अली।
0: मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने अपोजिशन पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो पार्लियामेंट में बहस कराने के मामले पर अपना मौकफ बार बार बदल रही है। पार्लियामेंट के अहाते में नामा निगारों से बात करते हुए उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि अपोजिशन ने पहले तो बहस का मुतालबा किया था लेकिन जब सरकार इस पर रजामंद हो गई तो अपना मौकफ बदल दिया। जनाब गोयल ने कहा कि मानसून इजलास शुरू होने के बाद से सरकार लगातार अपोजिशन के साथ बातचीत करती रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पब्लिक इम्तिहानात में नामुनासिब तौर तरीके इस्तेमाल करने की रोकथाम से मुतालिक एक्ट में तब्दीलियां भी की हैं और अपोजिशन से बार बार ये अपील की है कि वो बहस में हिस्सा ले। जनाब गोयल ने इल्ज़ाम लगाया कि लोकसभा में अपोजिशन के लीडर राहुल गांधी ऐवान की कार्रवाई में खलल पड़ने के लिए जिम्मेदार हैं।
2: विपक्ष पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुका है। इस सत्र के शुरुआत से ही सरकार लगातार बातचीत कर रही है। पहले वो चर्चा डिमांड करते हैं, चर्चा के लिए सरकार तैयार होती है तो अपना स्टैंड बदल देते हैं। बार बार उनके रवैये में इस प्रकार का बदलाव ये स्पष्ट करता है कि राहुल गांधी समेत पूरा विपक्ष विषयहीन है, सदन चलने नहीं देना है।
0: मरकजी वजीर दाखला अमित शाह ने कहा है कि सरकार पार्लियामेंट में तलबा के मामले समेत किसी भी मामले पर बहस और अरकान की जानिब से उठाए गए किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। पार्लियामेंट अहाते में नामा निगारों से बात करते हुए जनाब अमित शाह ने कहा कि सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है और वो बहस के लिए तैयार है।
3: पक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है दोनों गृहों में, तो कोई जाकर क्या करेगा। जहां तक चर्चा का सवाल है, सरकार की ओर से किरण रिजिजू जी ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि जो नीट आंदोलन के छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए।
0: इधर लोकसभा में अपोजिशन के लीडर राहुल गांधी ने कहा कि अपोजिशन नीट मुजाहिरीन के खिलाफ मुबैना पुलिस कार्रवाई के मामले पर सरकार की जवाबदेही चाहती है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कहा है कि प्राइवेट सरमायाकारी के लिए पब्लिक सरमाया एक मुतबादिल होने के बजाय इसे तकवियत पहुंचाने वाला एक वसीला होना चाहिए। जयपुर में ब्रिक्स मेंबर मुल्कों में प्राइवेट सरमाए को यकजा करने में नए तरक्याती बैंक के रोल के बारे में एक सेमिनार से खिताब करते हुए मोहतरमा सीतारमन ने कहा कि ब्रिक्स मुल्कों की मईशतें आलमी सतह पर तरक्की में सरकर्दा रोल अदा कर रही हैं लेकिन साथ ही उन्हें प्राइवेट सरमाए को रागिब करने में चैलेंजों का भी सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि सरमाए की दस्तियाबी को यकीनी बनाने के साथ साथ सरमायाकारों का एतमाद कायम करना, इस्तेहकाम बरकरार रखना और एक तवील मुद्दती पॉलिसी फ्रेमवर्क फराहम करना भी उतना ही अहमियत का हामिल है। तिजारत और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने आज कहा कि भारतीय व्यापार महोत्सव का विजन खलाई टेक्नोलॉजी और दिफा समेत मुख्तलिफ शोबों में भारत की बढ़ती हुई ताकत को उजागर करना और मुल्क को आत्मनिर्भर भारत की जानिब आगे बढ़ाना है। जनाब गोयल ने नई दिल्ली में भारतीय व्यापार महोत्सव 2026 की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि खुद किफालत और कौमी तरक्की साथ साथ फरोग पाती हैं। उन्होंने कहा कि भारत की $4 खरब की मईशत मजबूत रफ्तार से आगे बढ़ रही है और ये $30 खरब की मईशत बनने की राह पर गामजन है। तजारत से मुतालिक हुकूमत के इकदामात को उजागर करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 4 वर्षों में किए गए आज़ाद तजारती समझौते 38 तरक्की याफ्ता ममालिक का इहाता करते हैं जिनकी मुश्तरका मजमूई घरेलू पैदावार GDP तकरीबन $60 खरब है।
2: भारत में उभरती हुई ताकत आज पूरी दुनिया देख रही है। पूरी दुनिया भारत के साथ व्यापारिक संबंध बढ़ाना चाहती है। पूरी दुनिया के ध्यान में आ गया है कि ये

0: हजार ट्रिलियन डॉलर की आज की इकोनॉमी 2047 में जब हम 100 वर्ष आजादी के बनाएंगे तब ये 30 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी कम से कम बन जाए।
1: सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE ने 12वीं क्लास के जिमनी इम्तिहान 2026 के नतीजों का ऐलान कर दिया है। तलबा डीजी लॉकर पोर्टल के जरिए अपने इम्तिहान के नतीजे देख सकते हैं, जो इस तरह है results.djlocker.gov.in। हर घर तिरंगा मुहिम के तहत जम्मू कश्मीर के रियासी जिला इंतजामिया ने वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के जश्न के हिस्से के तौर पर दरियाए चनाब में तिरंगा बोट रैली का एहतमाम किया, ताकि यौम आज़ादी की तकरीबा से कबल लोगों में हुब्बुल वतनी के जज्बे को और ज्यादा फरोग दिया जा सके। इस रैली से दरियाए चनाब के दिलकश पस मंजर में शान से तिरंगा लहराने के साथ हुब्बुल वतनी के जज्बे का जश्न मनाने का एक मुनफरिद और पुरजोश वसीला फराहम हुआ। उधर छत्तीसगढ़ में कबायलियों की अक्सरियत वाले बस्तर खित्ते में भी तिरंगा यात्रा का अहतमाम किया गया, जो कभी मावनवाजों के तशद्दुद से सबसे ज्यादा मुतासिर रहता था। इस तिरंगा यात्रा में नायब वजीर आला विजय शर्मा के हमराह बड़ी तादाद में नौजवानों ने शिरकत की। मजीद तफसील हमारे नामनिगार से।
2: तिरंगा यात्रा आज नारायणपुर से अमन, इतिहाद और मुल्क की तामीर के पैगाम के साथ शुरू हुई। मुख्तलिफ बिरादरियों के नुमाइंदों ने यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना किया। छत्तीसगढ़ के नायब वजीर आला और वजीर दाखला विजय शर्मा की क़यादत में ये तिरंगा यात्रा बस्तर के दूरदराज कबायली इलाके से गुजरी, जिनमें वो इलाके भी शामिल हैं जहां माजी में मावनवाजों के बड़े वाक़यात पेश आए। तीन रोज़ा यात्रा 14 अगस्त को बीजापुर ज़िले की करेगुट्टा पहाड़ी पर अख्ताम पजीर होगी, जहां कौमी परचम लहराया जाएगा। नायब वजीर आला विजय शर्मा ने कहा कि तिरंगा यात्रा का मकसद मुल्क और दुनिया को ये पैगाम देना है कि इन इलाकों में अब माओनवाजों की शोरिश ख़त्म हो चुकी है। विकल्प शुक्ला की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असगर अली।
1: भारतीय रेलवेज ने शिमाल मशरकी रेलवे के इज्जत नगर डिवीज़न के 660 रूट किलोमीटर पर कवच निज़ाम के चौथे मरहले के बंदोबस्त की मंजूरी दे दी है, जिस पर 295 करोड़ रुपये की लागत आने का तखमीना लगाया गया है। रेलवे की वजारत ने बताया है कि शिमाल मशरकी रेलवे के इज्जत नगर डिवीज़न के बालांस सेक्शन इसके दायरे में आएंगे। कवच निज़ाम के चौथे मरहले से मुतालिका रेल सेक्शनों पर सेफ्टी का बुनियादी ढांचा मजीद मुस्तहकम हो सकेगा। कवच निज़ाम मुल्क में ही तैयार किया गया अज खुद काम करने वाला एक ऐसा तहफ़ुज़ाती निज़ाम है, जिसका मकसद रेलगाड़ियों की आमदोरफ्त की लगातार निगरानी के जरिए रेलगाड़ियों के आपस में टकराने के हादसों की रोकथाम करना है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के इलाके में सूरत हाल अब भी कशीदा है। वहाँ मुजाहिरीन पाकिस्तानी फोर्सेस के जेर साए निशाना बनाकर की गई हलाकतों और बेकसूर अफराद को लापता किए जाने और सप्लाई निज़ाम में रुकावटों के तनाजुर में कराए गए हालिया मुतनाज़ा इंतखाबात पर सवाल उठा रहे हैं। भारतीय मौसमियात महकमे ने अगले 12 घंटे के दौरान शिमाली खलीज बंगाल के ऊपर हवा के कम दबाव का हल्का बनने की पेशगोई की है, जिसके जेर असर कल उड़ीसा और गंगा के तराई वाले मगरबी बंगाल में इंतहाई शदीद बारिश होने का इम्कान है। मौसमियात महकमे ने कहा है कि कर्नाटक, मशरकी उत्तर प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, कराईकल, पुदुचेरी, अंडमान व निकोबार जजायर, केरला, गोवा और राजस्थान में भी तेज बारिश हो सकती है। इधर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मध्य महाराष्ट्र, उत्तराखंड और मुल्क के शिमाल मशरकी हिस्सों में भी इस महीने की 15 तारीख तक इसी तरह का मौसम रहने का इम्कान है। नाइजीरिया के शहर लागोस में जारी दौलत मुशरका फेंसिंग चैंपियनशिप के तीसरे दिन भारतीय फेंसिंग टीम ने मुख्तलिफ सीनियर इनफरादी मुकाबलों में सोने के 3, चांदी और कांसे का 1-1 तमगा जीता। भारत के तमगों की मजमूई तादाद अब 29 हो गई है, जिनमें सोने का 8, चांदी के 7 और कांसे के 14 तमगे शामिल हैं। भारत ने सीनियर खवातीन के फॉयल मुकाबले में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए सोने और चांदी के दोनों तमगे हासिल किए। आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। पार्लियामेंट ने इमदाद बाहमी शोबे के लिए सरमाए की फराहमी और इसके फरोग से मुतालिक बिल को मंजूरी दे दी है। केरला रियासत का नाम बदलकर केरलम रखने से मुतालिक बिल को भी मंजूर कर लिया गया है। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों ने गैर मुल्की अतियात को मुनजवित करने से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 को मजीद जाँच के लिए मुशरका पार्लिमानी कमेटी को भेजने की मंजूरी दे दी है। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि वो नीट पेपर लीक से मुतालिक मामले पर तफसीली बहस के लिए तैयार हैं। उन्होंने लोकसभा स्पीकर को एक मुरासला

0: चर्चा का विषय है।
1: ये आकाशवाणी है, चर्चा का विषय है। कार्यक्रम में प्रस्तुत है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पर एमएसएमई मंत्रालय के सचिव भरत खेड़ा के साथ आनंद श्रीवास्तव की विशेष बातचीत।
2: नमस्कार। जब किसी शहर की एक गली में वर्कशॉप का शटर उठता है, जब किसी गांव में एक छोटा कारखाना शुरू होता है, तो सिर्फ मशीनें नहीं चलती, देश की अर्थव्यवस्था की धड़कन भी चलती है। देश की जीडीपी में 30% से अधिक की हिस्सेदारी और करोड़ों हाथों को रोजगार देने में एमएसएमई सेक्टर का कोई सानी नहीं है। लेकिन क्या हो जब एक छोटा उद्यमी काम करने के बाद अपनी मेहनत के पैसे के लिए वर्षों इंतजार करे? क्या हो जब उसे कानूनी दांवपेच या कागजी कार्रवाई में लंबे समय तक परेशानी झेलनी पड़े? इन्हीं अड़चनों को जड़ से समाप्त करने के लिए संसद के दोनों सदनों में पारित हुआ है एमएसएमई डेवलपमेंट अमेंडमेंट बिल 2026। क्या है इसके प्रावधान, या फिर यूं कहें कि क्या इससे समस्या का समाधान हो जाएगा और एमएसएमई सेक्टर एक नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ेगा? इन तमाम सवालों पर चर्चा के लिए मौजूद हैं एमएसएमई मंत्रालय में सचिव भरत खेड़ा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर।
3: नमस्कार।
2: यहीं से शुरुआत करते हैं। 2006 में एमएसएमई एक्ट बना, 20 वर्ष यानी 2 दशक बीत गए। बहुत सारे लोगों के जहन में ये बात आ रही है कि 20 वर्षों के बाद अमेंडमेंट बिल की जरूरत क्यों पड़ी?
3: आनंद जी, 2006 में जैसे आपने बताया, सबसे पहले ये एक्ट बना था एमएसएमई क्षेत्र के लिए, और इन 20 वर्षों में कई ऐसे चेंजेस आए जिसके लिए ये आवश्यक हो गया था कि हम इस एक्ट में संशोधन करें। और 20 वर्षों बाद जब संशोधन होता है तो वो बड़ा स्वाभाविक है कि ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस किए जाते हैं, और इस पीरियड में टेक्नोलॉजी का भी बहुत स्वीपिंग चेंजेस आए, और उसके साथ साथ कई ऐसे प्रोविजंस थे जो कि रिडंडेंट और ऑब्सोलीट लगने लगे, और हमें ज़रूरत लगी कि आज के युग के साथ उनको भी आगे बढ़ाया जाए। और कुछ चुनौतियां रहीं हमारे एमएसएमई क्षेत्र में जो हम अनुभव कर रहे थे पिछले कुछ वर्षों में, उनसे भी निपटारा करने के लिए ये ज़रूरी हो गया था कि हम एक्ट के प्रोविजंस के अंदर प्रावधानों में अमेंडमेंट करें। इसी के चलते ये चेंजेस इस बार लाए गए हैं, और जैसे आपने कहा, 3 अगस्त को राज्यसभा से और 7 अगस्त को लोकसभा से हमारा एमएसएमई बिल पारित हुआ है।
2: कई सारी चुनौतियों के समाधान को खोजने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। एक एक करके अगर आपसे समझना चाहें तो मध्यस्थता के लिए 90 दिनों का समय निर्धारित किया गया है कि अगर कोई भी समस्या होती है तो पहले मध्यस्थता में उसे भेजा जाएगा, जिसे मीडिएशन भी कहते हैं, और 90 दिन एक समय सीमा निर्धारित की गई है। लेकिन फैसिलिटेशन सेंटर्स के पास अभी भी हजारों की समस्याएं पेंडिंग है। आपसे ये समझना चाहेंगे कि क्या राज्यों के साथ मिलकर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है, कोई एक कार्य प्रणाली बनाई जा रही है जिससे 90 दिनों की समय सीमा के अंदर उस मामले को निपटारा किया जा सके?
3: देखिए, एमएसएमई क्षेत्र के अंदर पेमेंट्स का डिले होना एक बहुत बड़ी चुनौती हमेशा से रही है। छोटे सप्लायर्स हैं जो माइक्रो स्मॉल और मीडियम श्रेणी के सप्लायर्स हैं, और उनके लिए लिक्विडिटी बहुत क्रिटिकल रहती है। उनके लिए वर्किंग कैपिटल समय से उपलब्ध हो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि उसी से वो खरीदारी करके अपने व्यापार को, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि पेमेंट्स में विलंब हो जाता है। इसी के चलते प्रावधान पहले एक्ट में किया गया था कि डिलेड पेमेंट्स को कैसे एड्रेस किया जाए। हालांकि मीडिएशन, आर्बिट्रेशन के भी प्रावधान थे, लेकिन ये देखने में आ रहा था पिछले वर्षों में, अनुभव ये किया जा रहा था कि इसमें उसके बावजूद, इन प्रावधानों के बावजूद विलंब हो रहा था। तो इस नए संशोधन के अंदर एक तो ये तय किया गया है कि हर चीज़ की अपनी समय सीमा हो, और उस मीडिएशन और आर्बिट्रेशन शुरू करने से पहले प्रयास ये हो कि जो सप्लायर है और जो ऑर्डर प्लेस करता है, उन दोनों के बीच में अगर म्यूचुअल नेगोशिएशन और डिस्कशन से भी मामला सुलझ सकता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप ये समझ सकते हैं कि जो कंपनी ऑर्डर प्लेस करती है छोटे सप्लायर के ऊपर, उनका भी बड़ा लंबे समय तक

0: रिश्ता बन जाता है आपस में, तो वो चाहते भी नहीं कि कोई डिस्प्यूट हो, और प्रयास भी सबसे पहले यही होता है कि उसको आपसी बातचीत से सुलझा लिया जाए। लेकिन अगर वो निपटारा नहीं हो पाता और किसी वजह से उसमें डिस्प्यूट का फॉर्म ले लेता है, तो मीडिएशन के लिए समय निर्धारित किया गया कि वो 90 दिन के भीतर भीतर किया जाए, और अगर मीडिएशन में भी उसका सोल्यूशन नहीं निकला तो 30 दिन के अंदर अंदर उसके लिए आर्बिट्रेशन में मूव किया जाएगा, और आर्बिट्रेशन में आने के बाद 90 दिन के अंदर अंदर अवार्ड अनाउंस किया जाएगा। तो ये जो समय सीमा है इसको एक्ट में ही निर्धारित किया गया है। प्रयास ये है कि बहुत ज़्यादा विलंब इन डिस्प्यूट्स के अंदर भी ना हो। आपका कहना सही है, जो MSCFCs हैं जहाँ पर फैसिलिटेशन काउंसिल्स के अंदर ये डिस्प्यूट्स आती हैं, उनमें कई समय तक कई बार डिलेज भी हो जाते हैं चूँकि प्रोसेस उनके लंबे होते हैं, तो प्रोसेस को भी सरल किया गया है। चूंकि अब प्रावधान किया गया है ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का, तो एक ODR पोर्टल है हमारा जो पिछले साल हमने लॉन्च भी किया था, उसमें हमारा जो सेलर और परचेजर दोनों उस पर रहेंगे और पहले प्रयास करेंगे कि आपसी बातचीत से हो जाए, नहीं होगा तो उसी के माध्यम से मीडिएशन के लिए जाएगा, और ये सारी प्रक्रिया ऑनलाइन की जा सकेगी। अपने घर के एंटरप्राइज के कंफर्ट में बैठ करके कहीं फिजिकली दूर जाने की जरूरत नहीं है, तो ये ऑनलाइन प्रक्रिया हो पाएगी और आर्बिट्रेशन का काम भी ऑटोमेटिकली वहीं से फॉरवर्ड हो जाएगा। तो मैं ये समझता हूँ इस समय सीमा को निर्धारित करने से इन डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने में और आसानी होगी, और जो पेमेंट्स समय से नहीं हो रही थी वो समय से होने लगेंगी, डिलेज ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगे।
1: थोड़ी चर्चा अगर ट्रेड्स की कर लें इस बिल पर, ट्रेड्स पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है, उसको बहुत अहमियत दी गई है। आकाशवाणी के श्रोताओं के लिए हम बता दें कि मान जाइए कि आपने ए साथ आपकी डील हुई, वो डील 25 करोड़ रुपए की है। ट्रेड्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आपने वहां पर अपनी इन्वॉइस जेनरेट की, किसी दूसरी कंपनी को लगता है कि वो 24 करोड़ रुपए आपको अभी तत्काल दे सकती है, बायर के पैसे 2 सालों के बाद आएंगे तो उसको 25 करोड़ मिल जाएगा, लेकिन हमने अपना पैसा लगाया है तो हम 24 करोड़ में अगर सेटल होना चाहें तो वो हम सेटल हो सकते हैं। ये ट्रेड्स की खासियत है इनवॉइस सेटलमेंट के लिए। इसको कैसे प्रभावी बनाया जा रहा है इस बिल के माध्यम से?
0: देखिए, ट्रेड्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सभी के लिए विन विन सिचुएशन है, सप्लायर के लिए, परचेजर के लिए और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए, तीनों के लिए। और जैसे आपने बड़े सरल रूप से बताया, ये जो ट्रेड्स प्लेटफॉर्म है 2017 में RBI ने शुरुआत की थी, और शुरुआती दौर में इस पे ट्रांजैक्शंस बहुत कम होती थी। रादर मैं ये कहूँगा 2021-22 में भी हम तकरीबन 40,000 करोड़ के करीब ट्रांजैक्शंस कर पा रहे थे, जो पिछले वर्ष में 2025-26 में बढ़कर के 3.5 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। और ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज हमारी ऑनबोर्ड कर रही हैं ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पर। इस नए संशोधन के अंदर जितने हमारे केंद्रीय उपक्रम हैं, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं, उनके लिए अनिवार्य किया गया है कि जितने भी MSME से संबंधित पेमेंट्स हैं उनको ट्रेड्स के माध्यम से इनवॉइसेस को वहां पर रेज किया जाए, ताकि उनकी पेमेंट्स ट्रेड्स के माध्यम से की जा सके। तो इसके चलते काफ़ी आराम हमारे MSMEs को मिलेगा, क्योंकि कई बार उनको बहुत देर तक इंतजार करना पड़ता था, उसके चलते वो आगे रॉ मटेरियल की खरीद नहीं कर पाते थे, तो उसमें उनको आसानी होगी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी इसमें बेझिझक आगे बढ़ेंगी। तो अभी तक ट्रेड्स का एक्ट के अंदर प्रावधान नहीं था, अब उसकी एक बाकायदा स्टैट्यूटरी बैकिंग है, और जो एक सिर्फ नोटिफिकेशन से चल रहा था उसका एक्ट में प्रावधान किया गया। CPSEs को मैंडेट दिया गया कि वो इस पर ऑनबोर्ड भी हों और इसके माध्यम से करें, और उसके साथ साथ वो उसकी पब्लिक डिस्क्लोजर भी करेंगे कि हमारे इन MSME से संबंधित जो इन्वॉइसेस थी वो रूट की गई ट्रेड्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से इस पीरियड के दौरान, तो वो भी करना एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट रहेगा।
1: यहाँ एक छोटा सा सवाल और उठता है कि बड़े कॉरपोरेट्स घरानों को ट्रेड्स तक लाने के लिए क्या MSME मंत्रालय के पास कोई योजना है या उस पर काम किया जा रहा है?
0: देखिए, जहाँ तक केंद्रीय उपक्रम है उनके लिए तो अब एक्ट में ही प्रावधान हो गया। हमारे 291 इस समय केंद्रीय उपक्रम हैं और ये सब उपक्रम अब ट्रेड्स के माध्यम से ही करेंगे। जहाँ तक प्राइवेट इंडस्ट्री है, 250 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर वाले उपक्रमों को भी ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि वो ट्रेड्स के माध्यम से करें, और स्टेट गवर्नमेंट्स को इस नए संशोधन के अंदर प्रावधान ये किया गया है कि वो भी चाहें तो अपने स्टेट के जो उपक्रम हैं उनको भी मैंडेटरी कर दें ट्रेड्स के माध्यम से ऑपरेट करने के लिए। तो मैं ये समझता हूँ पूरा इकोसिस्टम जब इसका बेनिफिट उठाएगा तो हमारे MSMEs के लिए ये व्यवस्था बहुत बेहतर हो जाएगी, और लिक्विडिटी क्रंच जो अक्सर वो फेस करते हैं उससे उनको छुटकारा मिलेगा।
1: एक बहुत ही व्यवहारिक सवाल जहन में आ रहा है कि कोई भी जो उद्यमी है, अगर उसने बायर के अगेंस्ट कोई कंप्लेन की है और उसके पक्ष में वो निर्णय आता है, लेकिन बायर चूंकि मजबूत होता है, उसके

0: पास आर्थिक ताकतें ज्यादा होती हैं, वो कोर्ट में उस मामले को ले जाता है और फिर वो मामला काफी लंबा खींचता है। जो छोटा उद्यमी है, जिसने अपना पैसा लगाया है, जिससे उम्मीद है कि काम पूरा होने के बाद उसको पैसे मिलेंगे, उसके साथ जो लोग काम कर रहे हैं उसकी वो सैलरी दे पाएगा, जो रॉ मटेरियल्स लाया है उसका भुगतान कर पाएगा, ऐसे में जो कोर्ट में लंबा मामला खींच रहा है, क्या इस बिल में उसके लिए प्रावधान है?
1: इसके लिए भी बड़ा प्रभावी प्रावधान किया गया है। अगर कोई डिक्री या अवार्ड को अपील के अंदर चैलेंज किया जाता है तो उस अवार्डेड राशि का 75% अनिवार्य है कोर्ट के पास जमा करवाना। अब उस राशि में से कोर्ट्स को ये एम्पावर किया गया है कि अवार्डेड अमाउंट का 50% राशि वो उसको तुरंत जारी करवा सकते हैं एमएसएमईज के फेवर में, अगर कोई अपील 6 महीने से ज्यादा पेंडिंग है। एक समय सीमा आ गई 6 महीने की, अगर 6 महीने से ज्यादा कोई अपील लंबित रह जाती है तो कोर्ट्स 50% राशि अवार्डेड अमाउंट की उस एमएसएमई को तुरंत जारी कर देंगे, ताकि विलंब अगर होता भी है तो भी 50% राशि तो उसको मिली गई फैसला होने तक,
0: जी,
1: बाद में बाकी भी मिल जाएगी। ये नया प्रावधान इस संशोधन में लाया गया है।
0: एक और प्रावधान किया गया है उद्यम पंजीकरण पोर्टल का, थोड़ा इसके बारे में भी बताइए। जो लोग एमएसएमई से जुड़ना चाहते हैं उनके लिए किस तरीके से ये सहायक होने वाला है?
1: देखिए, इसमें मैं सबसे पहले तो ये स्पष्ट करना चाहूंगा कि उद्यम पोर्टल पर या अन्य कहीं पर पंजीकरण कराना अनिवार्य नहीं है, पूर्ण रूप से स्वैच्छिक है। यही प्रावधान एक्ट में भी किया गया है। और उद्यम पोर्टल पर ये ऑनलाइन प्रोसेस है, बहुत ही सरल प्रक्रिया है इसकी। इसमें उद्यम पोर्टल हमने लॉन्च किया था 2020 के अंदर और धीरे धीरे फॉर्मलाइजेशन काफी हुई, क्योंकि पहले अक्सर ये देखा जाता था कि एंटरप्राइजेस इनफॉर्मल क्षेत्र में तो कई साल काम करते थे लेकिन फॉर्मल इकोसिस्टम का हिस्सा नहीं बनते थे। शायद इस बात से भी घबराते हों कि कंप्लायंस बर्डन बढ़ जाएगा और परेशानी आने लगेगी। तो सरकार ने बड़े प्रयासों के बाद ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करने के लिए इंडस्ट्री के ऊपर कंप्लायंस बर्डन भी कम किया। इसके भी चलते प्रेरित हुई एंटरप्राइजेस कि हम फॉर्मल रूप से अपना पंजीकरण करवाएं, और मैं ये समझता हूँ इसमें बहुत बढ़ोतरी हुई पिछले कुछ वर्षों में। 1.65 करोड़ हमारे एंटरप्राइजेस फॉर्मल इकोसिस्टम में थे आज से 4 साल पहले, और आज हमारी संख्या 9 करोड़ से ऊपर पहुंच गई है। तो ये तभी संभव हो पाया जब उनको लगा कि ये इससे उनको लाभ मिलेंगे, सरकार द्वारा जो विभिन्न योजनाएं और बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं उसका भी वो लाभ उठा पाएंगे, तो आगे बढ़कर के हिस्सा ले रहे हैं इसमें। अब चूंकि उद्यम पोर्टल का प्रावधान एक्ट में ही किया गया है तो ये फॉर्मलाइजेशन की हमारी जो कैंपेन है ये और बेहतर रूप से चलेगा और इसमें हम सैचुरेशन प्राप्त करेंगे।
0: आपने अभी कैंपेन का जिक्र किया, ये नए प्रावधान से एमएसएमई से जुड़े उद्यमियों को रूबरू कराने के लिए किस तरह के कैंपेनिंग प्रोग्राम शुरू करने की दिशा में सोचा जा रहा है? क्योंकि हमने देखा कि कई सारे मंत्रालय एक्सपोज करते हैं, सेमिनार्स करते हैं, वेबिनार करते हैं, और जहां पर बहुत सारे छोटे बड़े उद्यमियों को मिलाकर विशेषज्ञ उनको बारीकियां समझाते हैं, क्या इस तरह की भी कोई योजना है?
1: देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि ये जो संशोधन विधेयक लाया गया, इससे पहले भी फील्ड में हमारे बहुत अच्छा एंगेजमेंट रहा सभी एमएसएमई एसोसिएशंस के साथ, इंडस्ट्री के लोगों से, उन्हीं से ये फीडबैक ले करके उन्हीं के सुझावों के आधार पर ये प्रस्ताव तैयार किया गया। और अब चूंकि बिल पारित हो गया है, आने वाले समय में हम एमएसएमई के साथ डायरेक्टली एंगेज करके उनको इसके बारे में इंफॉर्मेशन भी डिसेमिनेट करेंगे। हमने अभी तकरीबन 5 करोड़ मैसेजेस एक ही दिन में सभी एमएसएमई को डायरेक्टली भी भेजे हैं, ईमेल्स भी भेज रहे हैं, और एसोसिएशंस के माध्यम से भी हम उन तक ये सारे प्रावधान जो नए हैं उसके बारे में उनको जानकारी उपलब्ध करवाएंगे ताकि वो पूरा इसका लाभ उठा सके।
0: सचिव साहब, एक और यहाँ पर एक जो पेंच समझ में आता है वो ये है कि जो रिकवरी का मामला है उसमें ज्यादा हिस्सेदारी राज्यों की होती है, ऐसे में एमएसएमई मंत्रालय राज्यों के साथ किस तरीके का संगठनात्मक समन्वय की स्थिति बना रहा है जिससे रिकवरी थोड़ी फास्ट हो सके?
1: देखिए, समन्वय तो इसमें हमेशा राज्यों के साथ रहता ही है, लेकिन इस संशोधन के अंदर एक एक्ट में भी प्रावधान किया गया है, अगर कोई सेटलमेंट होता है मीडिएशन के आधार पर या आर्बिट्रेशन के बाद कोई अवार्ड होता है तो उस अमाउंट को रिकवर करने के लिए उसको एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू भी घोषित किया जा सकता है। तो स्टेट गवर्नमेंट्स ने नॉर्मली जो जिला मजिस्ट्रेट या जिला कलेक्टर होते हैं उनको अधिसूचित किया गया होता है एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू के तौर पर रिकवर करने के लिए, वो प्रावधान भी पहली बार इस एक्ट में किया गया है ताकि कोई अमाउंट अगर ड्यू है तो वो अनरिकवर्ड ना रह जाए, उसकी वसूली सुनिश्चित करने के लिए ये भी प्रावधान किया गया है। और ये हमें राज्यों से ही फीडबैक भी आया, राज्य सरकारों से, और मैं ये समझता हूँ ये जो प्रावधान है ये आने वाले समय में और प्रभावी रूप से काम कर पाएगा।
0: एक और इसमें व्यवहारिक बदलाव किया गया है, पहले अगर कोई उद्यमी जो है वो छोटी मोटी गलती कर देता था या चूक कर देता था, उस

0: उसके लिए जेल या जुर्माने का प्रावधान था, लेकिन इसमें उसको हटाकर वार्निंग की व्यवस्था की गई है। क्या इससे वो जो इंस्पेक्टर राज वाला कॉन्सेप्ट था उसको समाप्त करके एमएसएमई से जुड़े उद्यमियों को आत्मविश्वास कॉन्फिडेंस देने की सोच है?
1: देखिए, डीक्रिमिनलाइजेशन और ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस, ये ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जिसके आधार पर पूरी केंद्र सरकार में आप देख ही रहे हैं सभी एक्ट्स के अंदर बदलाव लाया जा रहा है। हमारा जो ये एक्ट है, इसमें जेल का प्रावधान तो खैर नहीं था, लेकिन क्रिमिनल ऑफेंस जरूर था, क्योंकि उसमें कन्विक्शन बेस्ड पेनल्टी थी कि
0: जी
1: कोर्ट के माध्यम से कन्विक्शन होगा और फिर उस पर पेनल्टी लगेगी। उसको अब सरल कर दिया गया है, उसमें ग्रेडेड फाइन, जो ग्रेडेड पेनल्टी का प्रावधान किया गया है, और वो भी एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर उसका डिसीजन लिया जा सकता है, कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। और अगर कोई पहले कोई जानबूझकर गलती नहीं करता, किसी कारणवश नासमझी की वजह से कोई
0: जी
1: लैप्स होता है, तो पहले इंस्टेंस पर वार्निंग देने का प्रावधान है, दूसरे इंस्टेंस पर पेनल्टी लगेगी, वो भी एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर 1,000 से 50,000 के बीच में, और अगर उसके बाद भी वो करता है तो पेनल्टी के अमाउंट बढ़ जाएगी, लेकिन कन्विक्शन के लिए कोर्ट में जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इसीलिए हमने डेवलपमेंट कमिश्नर को एडजुडिकेट करने के लिए अधिकृत किया है, और अगर उसमें भी अगर कोई अपील करना चाहे तो वो सचिव के पास अपील भी कर सकता है, उसके लिए भी समय सीमा निर्धारित की गई है। तो मैं ये समझता हूँ ये पूरा जो इकोसिस्टम है ये ट्रस्ट के आधार पर काम करने के लिए बनाया गया है।
0: एक और व्यवहारिक सवाल जहन में आ रहा है कि जब भरोसा दिया जा रहा है, और आपने शुरू में भी कहा कि चूंकि 20 वर्षों में तकनीक बहुत बदल गई इसलिए इस संशोधन बिल की जरूरत आन पड़ी। आज का जमाना एआई का जमाना है, क्या इस बिल में तकनीक को लेकर या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सहारे समस्याओं को सुलझाने को लेकर भी कोई प्रावधान है या कोई चर्चा है?
1: देखिए, जो हमारा ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का पोर्टल है, वो नया पोर्टल बना, बहुत ही रोबस्ट है, और उसमें सारा जो प्रक्रिया है वो उस पोर्टल के माध्यम से हो रही है। उसमें एआई भी मदद करेगा ड्राफ्ट करने में भी, कि आपने कोई डिस्प्यूट है उसको ड्राफ्ट करना है, वो भी एआई भी मदद करेगा। उसके बाद ऑटोमेटिकली मीडिएशन के अंदर, आर्बिट्रेशन के अंदर भी एआई का इस्तेमाल किया जाएगा, और ये सारी प्रक्रिया पोर्टल के माध्यम से होगी, जो कि मैं ये समझता हूँ टेक्नोलॉजी के अच्छे यूजेज को दर्शाता है। और जो MSEFCs हैं हमारी, जो फैसिलिटेशन काउंसिल्स है, उनके कार्य में भी और ज़्यादा एफिशिएंसी आएगी, क्योंकि वो भी अपने पुराने फैसलों का अध्ययन कर पाएंगे, सब तरह के केसेस का एक साथ निपटारा करना भी उनके लिए सरल हो पाएगा। तो टेक्नोलॉजी का प्रयोग पोर्टल के अंदर किया जा रहा है, उसके साथ ही जो उद्यम पोर्टल है उसमें भी टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग किया गया है। आज हम बड़ी सरल रूप से बता पाते हैं कि हमारे कितने माइक्रो एंटरप्राइजेस हैं, कितने स्मॉल हैं, कितने मीडियम हैं, किस सेक्टर में कितने हैं, किस राज्य में, किस जिले में, कितने महिलाओं के हैं, ये सारी जो सेग्रीगेशन है, ये सारा जो एनालिसिस है, ये हम कुछ सेकंड्स के अंदर कर पाते हैं, और ये एनालिसिस हमें मदद करता है नीतियां निर्धारित करने में, नई योजनाओं को प्लान करने में। तो मैं ये समझता हूँ टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये चीजें और सरल होती जा रही।
0: आकाशवाणी से युवाओं का एक बड़ा वर्ग हमेशा से जुड़ा रहा है, उनके जहन में जरूर एक सवाल उठ रहा होगा कि अब तक बहुत सारे हाथों को रोजगार देने का काम किया है एमएसएमई ने, क्या इस नए बिल से रोजगार के अवसरों में और बढ़ोतरी होने की उम्मीद है?
1: देखिए, हमारे देश में एमएसएमई का रोजगार में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है, और कृषि के बाद ये दूसरा क्षेत्र गिना जाता है रोजगार के टर्म्स में, तकरीबन 38 करोड़ से 40 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान करता है। मैं ये समझता हूँ आने वाले समय में हमारे एमएसएमईज जो हैं ग्लोबल वैल्यू चेन का बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा बनने जा रहे हैं, और ये तभी संभव है जब उनमें कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस आएगी, उनमें इनोवेशन रहेगी। तो नवाचार में सबसे ज़्यादा योगदान युवा पीढ़ी का रहता है। हमारी एमएसएमई चैंपियंस योजना के माध्यम से हमारा प्रयास रहता है कि हम इनोवेशन के लिए हमारी युवा पीढ़ी को इंसेंटिवाइज करें, उनको प्रेरित करें, और वो अपनी क्वालिटी को भी इंश्योर कर पाएं अपने प्रोडक्ट्स के अंदर, कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस ला पाएं, और अलग अलग प्रोडक्ट चेन के अंदर किस प्रकार से वो एक इंडस्ट्री का महत्वपूर्ण हिस्सा बन पाएं, Tier 2 और Tier 3 वेंडर से बढ़ करके पूरी वैल्यू चेन संभाल पाएं और स्केल अप करें अपने एंटरप्राइज को। आज भी हमारे एमएसएमई क्षेत्र में 98% माइक्रो एंटरप्राइजेज हैं,
0: जी
1: तो हमारा प्रयास है फॉर्मलाइजेशन होने के बाद स्केलिंग अप करें, माइक्रो बढ़ करके स्मॉल बने, स्मॉल बढ़ करके मीडियम बने, मीडियम के बाद लार्ज एंटरप्राइजेस बने, तो ये स्केलिंग करने में इनोवेशन का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। और मैं ये समझता हूँ हमारी युवा पीढ़ी आज के समय में बहुत इसमें रुचि भी रखती है। पहले वेज एम्प्लॉयमेंट की तरफ ध्यान रहता था, अब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, बजाय इसके कि रोजगार ढूंढें वो खुद रोजगार

0: देने के लिए तैयार हैं और स्कूल कॉलेज के अंदर ही प्रयास करने लगते हैं कि किस प्रकार से अपना एंटरप्राइज खोलें और लोगों को रोजगार दे पाए।
1: आपने अभी बात की एक सपने की, उस आपकी बात में एक सपना छिपा था कि छोटे से बड़े स्तर तक अपने कारोबार को लेकर जाने की। आपने बात की कि ग्लोबल स्तर पर अपने प्रोडक्ट की अहमियत को बनाने की, लेकिन इसमें एक जो बड़ी भूमिका है वो आपके स्किल सेट की होती है, कौशल विकास की होती है। क्या MSME जो दूर दराज के छोटे शहर हैं, गाँव हैं, वहाँ के उद्यमियों को स्किल बढ़ाने के लिए, उनको और बेहतर बनाने के लिए किसी कार्यक्रम पर, किसी योजना पर काम कर रहा है?
0: आपने बिल्कुल सही कहा, जो स्किल अपग्रेडेशन है बड़ा महत्वपूर्ण रहता है, खासतौर पे युवाओं के लिए। और हमारे मंत्रालय की दो मुख्य योजनाएं हैं इसको लेकर के। एक तो टेक्नोलॉजी सेंटर्स हैं, हमारे 55 टेक्नोलॉजी सेंटर्स देश भर में बन रहे हैं और इसमें से 35 ऑलरेडी फंक्शनल हैं, कुछ बाकी अभी बन रहे हैं। इनमें अलग अलग टेक्नोलॉजीज की ट्रेनिंग और स्किल अपग्रेडेशन दिया जाता है और हाल ही में इसमें ऐड की गई हैं रोबोटिक्स, AI, IoT, इस तरीके की टेक्नोलॉजीज जिसमें हमारे सक्षम बन रहे हैं युवा। उसके साथ ही साथ हमारी एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्किल डेवलपमेंट योजना भी है जिसके माध्यम से वोकेशनल ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज की जाती है पूरे देश भर के अंदर। और हम दूसरे जो मंत्रालय हैं जैसे मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप है, उनके साथ कॉन्वर्जेंस करके भी हम कौशल विकास की ओर विशेष ध्यान देते हैं।
1: इस बिल में क्लासिफिकेशंस की भी थोड़ी चर्चा है, इस बारे में भी बताएं।
0: देखिए, पहले क्लासिफिकेशन में मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज के अंदर अंतर रखा जाता था और अब वो खत्म हो गया 2020 के अंदर, जब हमने कहा कि चाहे वो एंटरप्राइज मैन्युफैक्चरिंग में लगा हो या सर्विसेज में कार्यरत हो, उसके क्राइटेरिया सिमिलर होंगे। और उसी से ट्विन क्राइटेरिया लाया गया इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर का। पहले सिर्फ इन्वेस्टमेंट आधार रहता था, अब कितना निवेश किया गया प्लांट एंड मशीनरी में और कितनी उसकी टर्नओवर है, इन दोनों क्राइटेरिया को ध्यान में रख करके क्लासिफिकेशन की जाती है माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम के अंदर। तो अब इसको बकायदा एक्ट के अंदर प्रावधान किया गया, चूंकि ये पहले सरकार की नोटिफिकेशन के माध्यम से तो किया गया था, लेकिन अब ये एक्ट का हिस्सा बन चुका है कि ये ट्विन क्राइटेरिया को फॉलो करके क्लासिफिकेशन की जाएगी। उसकी सीमा कितनी होगी वो समय समय पर सरकार निर्धारित करती रहेगी। जैसे आप जानते ही हैं 2025 के अंदर पिछले वर्ष ही इसकी जो सीमा है उसको भी बढ़ाया गया था। आज के समय में 125 करोड़ तक के निवेश और 500 करोड़ तक का जो टर्नओवर है वो MSME क्षेत्र को डिफाइन करता है, तो इसमें पिछले वर्ष ही बढ़ोतरी की गई थी। तो मैं ये समझता हूँ आने वाले समय में और ज़्यादा एंटरप्राइजेज फॉर्मल इकोसिस्टम का हिस्सा बन पाएंगे डेफिनेशन में बदलाव आने के कारण।
1: सचिव साहब, कोई अगर बैंक से लोन लेता है MSME के तहत, लोन तो बहुत आसानी से मिल जाता है कानूनी प्रक्रिया के तहत, लेकिन अगर वो 6 महीने या निर्धारित समय में वो वापस नहीं कर पाता है, तो जो क्रेडिट पॉलिसी बनाई गई है इस बिल में, उसके लिए भी क्या कोई प्रावधान है? उसमें भी कोई जोड़ घटाव किया गया है क्रेडिट पॉलिसी को लेकर?
0: देखिए, MSME क्षेत्र में क्रेडिट सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा करता है और क्रेडिट इन्फ्यूजन इस क्षेत्र में काफी बढ़ा भी है। 2014 में तकरीबन 10 लाख करोड़ का क्रेडिट था इस क्षेत्र को, जो आज के समय में तकरीबन 38 लाख करोड़ पे पहुंच चुका है। और ये तभी संभव हो पाया जब सरकार ने क्रेडिट गारंटी को बड़ा महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंस दी और क्रेडिट गारंटी के माध्यम से जब बैकिंग मिली बैंक्स को, तो उनका भी विश्वास और बेहतर हो गया और बैंक्स ने यह भी अनुभव किया कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स लगातार गिरते आए हैं इस क्षेत्र के अंदर। हमारा परसेप्शन पहले ये रहता था कि जो छोटा उद्योग है वो शायद डिफॉल्ट करेगा, लोन वापस नहीं कर पाएगा, लेकिन फॉर्चुनेटली नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में कमी आई पिछले वर्षों में और ये जब बैंकों ने अनुभव किया तो वो और ज्यादा प्रेरित हुए क्रेडिट बढ़ाने के लिए। तो मैं ये समझता हूँ कि क्रेडिट का आने वाले समय में और ज्यादा भूमिका बढ़ेगी और बैंक्स जो हैं प्रेरित होंगे और बेहतर रूप से क्रेडिट उपलब्ध करवाने के लिए हमारे उद्यमियों को।
1: एक थोड़ा अलग सा सवाल जहन में आ रहा है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स को भारत में GI टैग्स भी मिले हैं, बहुत सारे शहरों की अपनी खासियत है, जैसे हम बनारस की बात करें तो वहाँ बनारसी साड़ियों की खासियत है, कहीं का दाल काफ़ी फेमस है, कहीं के मसाले बहुत फेमस हैं। क्या मंत्रालय का कोई यूनिट उन छोटे शहरों में जहाँ कुछ विशेष चीज़ें बनती हैं वहाँ पर किसी को सिलेक्ट करता है या वहाँ कोई कैंप का आयोजन करता है कि यहाँ की ये खासियत, अगर आप इसको लेकर कुछ करना चाहते हैं, जैसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की भी बात है, वोकल फॉर लोकल की भी बात है, अगर आप इसको लेकर कोई उद्यम शुरू करना चाहते हैं तो मंत्रालय आपको विशेष योगदान देगा या आपको सपोर्ट करेगा?
0: देखिए, DPIIT जो डिपार्टमेंट है उसके माध्यम से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और GI टैग को भी प्रमोट किया जा रहा है। तो GI टैग जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें अपना आवेदन करने के लिए और GI सर्टिफिकेशन लेने के लिए अगर MSMEs सामने आते हैं तो उसमें हम लोग भी अपने MSME चैंपियंस स्कीम के तहत

0: उनको इंसेंटिव्स प्रदान करते हैं और इसमें बहुत बढ़ोतरी हुई है पिछले कुछ वर्षों में। बिकॉज कुछ साल पहले तक शुरुआती दौर में तो बहुत ही कम GIs थे, लेकिन पिछले सालों में आज हम करीब 800 के करीब GIs ऑलरेडी देश में रजिस्टर्ड हैं। और आने वाले समय में भी हमने MSME चैंपियन स्कीम में ये प्रावधान रखा है कि GI लेने के लिए जो प्रक्रिया है उसमें हम लगभग 100% इंसेंटिव प्रोवाइड करते हैं अपने मंत्रालय के माध्यम से।
1: ये जो बिल आया है, क्या इसमें कोई नेशनल डैशबोर्ड बनाने की भी कोई पहल की गई है, जिससे कि रियल टाइम जो लोकेशन है मामलों के निपटान की, उसको लेकर कोई प्रावधान है जो कि आसानी से बायर भी देख सके, उद्यमी भी देख सके?
0: देखिए, जैसे मैंने आपको ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पोर्टल के बारे में बताया,
1: जी
0: ये एक ऐसा पोर्टल रहेगा जो कि देश भर में बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा और ये इंटीग्रेटेड पोर्टल रहेगा। तो इसमें बायर और सेलर दोनों रहेंगे और साथ ही साथ MSEFCs भी इसमें ऑपरेट करेंगे। तो मैं ये समझता हूँ ये प्लेटफॉर्म इतना उपयोगी सिद्ध होगा कि जो डिस्प्यूट्स हैं उनमें काफ़ी कमी आने की संभावना है, ये हमारी सोच है।
1: 2047 भारत विकसित भारत बने, ये सपना प्रधानमंत्री का है और हर भारतीय चाहता है कि जब हम आज़ादी के 100 वर्ष पूरे करें तो एक विकसित भारत का निर्माण हो सके। ये जो बिल है और MSME, चूंकि हमने कार्यक्रम के शुरू में ही बताया कि 30% GDP में उसकी हिस्सेदारी 30% से थोड़ी ज़्यादा ही है, क्या लगता है इस बिल के माध्यम से विकसित भारत के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है?
0: देखिए, मैं ये समझता हूँ विकसित भारत 2047 के संदर्भ में MSME क्षेत्र की भूमिका और अधिक बढ़ेगी आने वाले सालों में। आपने सही कहा कि आज के समय में भी GDP में 31% हमारा योगदान है और निर्यात में 48% है, मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट में 45% है। आने वाले समय में हम उम्मीद करते हैं कि ये तकरीबन 40% GDP का बन जाएगा, एक्सपोर्ट्स भी हम 60% के करीब पहुँचेंगे। तो इन प्रयासों को ध्यान में रखकर, इस विजन को ध्यान में रख करके ही हम अपनी योजनाओं को भी और बेहतर रूप से इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रयासरत हैं। आने वाले समय में हमारी कोशिश ये रहेगी कि जो MSMEs हैं वो स्केल अप करें और कॉस्ट कॉम्पिटिटिव हों ताकि वो ग्लोबल वैल्यू चेन का हिस्सा बन सकें, और उसके लिए हम उनकी प्रोडक्ट्स अच्छी क्वालिटी के हों, बेहतर गुणवत्ता के हों, तभी वो ग्लोबल मार्केट्स में पहुंच पाएंगे। उसमें भी उनको हम सहायता प्रदान करेंगे और साथ ही जो प्रोसेसेस हैं वो सस्टेनेबल हों, कम लागत के हों, कॉस्ट कॉम्पिटिटिव हों, उसकी ओर भी हमारी कुछ स्कीम्स हैं MSME चैंपियंस के तहत, जिसको अब हम और आगे प्रभावी रूप से इम्प्लीमेंट करेंगे।
1: आपको बहुत सारे छोटे उद्यमी या फिर मध्यम उद्यमी सुन रहे हैं या वैसे युवा भी सुन रहे हैं जो भविष्य में MSME से जुड़ना चाहते हैं, क्या संदेश देंगे उन्हें आप?
0: देखिए, हम तो यही चाहेंगे कि ये क्षेत्र और आगे बढ़े और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो हमारे एग्जिस्टिंग एंटरप्राइजेज हैं वो ये विजन रखें कि किस प्रकार से अपने बिजनेस को और आगे बढ़ाएंगे, स्केल अप करें, और जो युवा सोच रहे हैं कि अब आगे बढ़ करके भविष्य में क्या करना है, वो बजाय इसके कि नौकरियां ढूंढें, बेहतर है कि अपना खुद का एंटरप्राइज स्थापित करने के लिए इनोवेशन लेकर के आएं और प्रयास करें और रोजगार प्रदान करें, बजाय इसके कि रोजगार ढूंढें, रोजगार प्रदान करें। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा युवा पीढ़ी से।
1: ये नया भारत है, नए भारत में नई संभावनाएं होती हैं और उन संभावनाओं को संभव बनाना जीवन की भी सच्चाई है और साथ ही साथ सरकार का भी दायित्व बन जाता है। सरकार ने समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए और खासकर ऐसे MSME क्षेत्र को और बढ़ावा देने के लिए इस बिल में कई प्रावधान किए हैं, उस पर विस्तार से चर्चा की हमारे साथ भरत खेड़ा ने, और उम्मीद है कि MSME क्षेत्र आने वाले वर्षों में और तरक्की करेगा। भरत जी, आकाशवाणी में बात करने के लिए और विस्तार से इस अमेंडमेंट बिल पर अपने विचार रखने के लिए बहुत बहुत आभार।
0: धन्यवाद आनंद जी।
2: अभी आप सुन रहे थे सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पर MSME मंत्रालय के सचिव भरत खेड़ा के साथ आनंद श्रीवास्तव की विशेष बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
3: चर्चा का विषय है।

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं फिल्म चिराग के गाने से। इसे गाया है लता मंगेशकर और साथियों ने। गीत के बोल लिखे हैं मजरूह सुल्तानपुरी ने, धुन बनाई है मदन मोहन ने।

आप सुन रहे हैं फिल्म वारिस का गीत, सुरेश वाडेकर और लता मंगेशकर की आवाजों में। गीत के बोल लिखे हैं वर्मा मलिक ने, धुन बनाई उत्तम जगदीश ने।

अभी आपने सुना क्रिएचर 3 का फिल्म का गीत अरिजीत सिंह की आवाज़ में। शब्द रचना टिनी कक्कर की थी और धुन बनाई थी टोनी कक्कर ने। अब हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म CID का गीत मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले और शमशाद बेगम की आवाज़ों में। गीत के बोल लिखे हैं मजरूह सुल्तानपुरी ने, धुन बनाई OP नैयर ने।

लीजिए सुनिए न तुम जानो न हम फिल्म का गाना उदित नारायण और सुखविंदर सिंह की आवाज़ों में, शब्द रचना आनंद बख्शी की, धुन बनाई राजेश रोशन ने।

इसी गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्स पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। शास्त्रीय संगीत आज इस कार्यक्रम में लीजिए सुनिए पंडित रामकृष्ण का क्लैरियोनेट पर बजाया राग मारू बिहाग। आपके साथ तबले पर संगत की है सुदर्शन कुमार ने।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पंडित राम कृष्ण का क्लैरियोनेट पर बजाया राग मारू बिहाग, आपके साथ तबले पर संगत की सुदर्शन कुमार ने। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। हमारी स्टूडियो की घड़ी में 11 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। संसद ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने आज इसे मंजूरी दी। लोकसभा पहले ही इसे पारित कर चुकी है। ये विधेयक राज्य सरकारों को सहकारी विकास में लगी किसी भी संस्था को निगम से निधि प्रदान करने की अनुमति देता है। सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने कहा कि विधेयक के माध्यम से देश भर के करोड़ों किसानों के कल्याण और आर्थिक सशक्तिकरण को मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की स्थापना देश में सहकारी क्षेत्र के संगठित और सतत विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी।
1: सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के बाद माननीय उपसभापति महोदय, पिछले 5 वर्षों में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। लगभग 3,000 करोड़ रुपए की लागत से देश की 80,000 पैक्स को कंप्यूटराइजेशन किया जा रहा है। हमारे छोटे छोटे गांव के पैक्स को सक्षम बनाने के लिए पैक्स के मॉडल बायलॉज बना दिए गए और मुझे खुशी है कि देश के सभी राज्यों ने इस मॉडल बायलॉज को एडॉप्ट किया।
0: संसद ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 को पारित कर दिया है। राज्यसभा ने आज इसे मंजूरी दी। लोकसभा ने इसे कल पारित किया था। विधेयक का उद्देश्य संविधान की प्रथम अनुसूची में केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करना है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि केरल विधानसभा ने 2024 में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से राज्य का नाम केरल से बदलकर केरलम करने का अनुरोध किया था, क्योंकि मलयालम में राज्य का नाम केरलम है जबकि संविधान में इसे केरल लिखा गया है। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को व्यापक विचार के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया गया है। संसद के दोनों सदनों ने आज विधेयक संसदीय समिति को भेजने को मंजूरी दी। इस विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में संशोधन करना तथा विदेशी अंशदान के उपयोग को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है। लोकसभा ने खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य भारत के खनन क्षेत्र को अधिक कुशल, निवेश अनुकूल और देश में महत्वपूर्ण खनिजों की बढ़ती मांग पूरा करने के लिए तैयार करना है। विधेयक बिना चर्चा के पारित कर दिया गया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के मुद्दे सहित किसी भी विषय पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है। संसद परिसर में श्री शाह ने कहा कि सरकार संसद में सदस्यों के सभी सवालों का जवाब देगी। श्री शाह ने आरोप लगाया कि विपक्ष सदन की कार्यवाही नहीं चलने दे रहा है। गृहमंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने वर्चुअल माध्यम से ग्रामीण ज्ञान सेतु ऐप लॉन्च किया। ये ऐप गुजरात के गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र के ग्रामीण पुस्तकालयों को जोड़ने के लिए बनाया गया है। श्री शाह ने बताया कि करीब 63 गांवों में पुस्तकालय शुरू किए जा चुके हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि सार्वजनिक पूंजी को निजी निवेश के विकल्प के रूप में नहीं बल्कि उसके लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना चाहिए। जयपुर में ब्रिक्स सदस्य देशों में निजी पूंजी जुटाने में न्यू डेवलपमेंट बैंक की भूमिका पर आयोजित एक सेमिनार में उन्होंने ये बात कही। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि ब्रिक्स अर्थव्यवस्थाएं वैश्विक विकास के प्रमुख इंजनों में से हैं, लेकिन निजी पूंजी आकर्षित करना अभी भी एक बड़ी चुनौती है। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में राष्ट्रीय साधन सहयोग्यता छात्रवृत्ति योजना को वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने के प्रस्ताव पर चर्चा हुई। बैठक में योजना के प्रमुख पहलुओं और देश भर के विद्यार्थियों के हित में इसके प्रभावी क्रियान्वयन पर विचार विमर्श किया गया। नाइजीरिया में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी प्रतियोगिता के तीसरे दिन भारत ने 3 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीते। कनाग लक्ष्मी राजेंद्रन, शांतिमोल शेरजिन और सिंह करण सिंह ने स्वर्ण पदक हासिल किया। वहीं जॉयस आशिता ने रजत और कुमारेशन पद्मा गिशो निधि ने कांस्य पदक अपने नाम किया। प्रतियोगिता में भारत ने 8 स्वर्ण, 7 रजत और 14 कांस्य सहित कुल 29 पदक जीत लिए हैं।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्स पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। 11:10 हुए हैं, हमारी ये सभा अब समाप्त होती है। कल सवेरे 5:55 पर पहली सभा के कार्यक्रमों के साथ हम आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।